0: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जाबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है, और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहां तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था, और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वहीं महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रुक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
4: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
3: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए MOU, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम करके देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो ये साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है, देखिए रिपोर्ट।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइंस कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकीलों पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन ये वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है। इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's heat up your routine with couples games, massage oils, and 20% off Cal Exotic toys. Start exploring at your local Cirilla's or online at Cirilla's.com.
2: Good news today is really good. This is the उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रही पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती। वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: We hope you're loving TuneIn.

0: Are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown.
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात यूरोप की करेंगे, जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त न केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिनसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहा जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं। सावलिया सेठ वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई, और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सावलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे, और हर बार जब 1000 कम थे, 900 थे, वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्योत्यो बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है, वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवरिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से कामकाज में व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं, इस दौरान भक्तों ने अपने आराध्य को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
1: अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग है।
0: तो मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुँच गयी। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुँच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें

0: राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है, इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सांवरिया सेठ का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सांवरिया सेठ का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है, और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया

पेट के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। आज 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी पंक्ति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ से सात की बड़ी थी, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
4: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
6: सोचो। जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
7: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखी मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वहीं महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रुक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
8: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
10: One more, let's go.
9: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई, क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
12: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्टरूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था, और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम करके देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो ये साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइन्स कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकील और पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है। इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़। और
3: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी की क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशंस के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रही पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती। वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
6: पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम।

0: शरणं प्रपद्ये। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत और राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर पर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। अरे तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास पर कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसी दास। पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का गर्मी अमीरों की खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। आओ भैया दो मिनट कीर्तन गाओ। राम राम गाइए, राम राम गाइए, सीता राम गाइए, राम राम गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए जी गाइए, राम राम गाइए, सीता राम गाइए, राम राम गाइए, बालाजी के चरणों में चित्त तो लगाइए, बालाजी के चरणों में मन को लगाइए, गुरुवर के दर्शन करके, गुरुवर के दर्शन करके, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो जाइए, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो। राम राम गाइए, हाँ राम राम गाइए, राम राम, बागेश्वर बालाजी कृपा करते, अपने भक्तों की खाली झोली भरते, अपने भक्तों की पीड़ा को हरते, बागेश्वर आकर के, बागेश्वर आकर के परकम्मा लगाइए, बागेश्वर आकर के परकम्मा लगाइए, राम राम गाइए, राम राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, बागेश्वर धाम की महिमा निराली, बागेश्वर बाबा की महिमा निराली, महिमा निराली, हाँ महिमा निराली। हम गरीबों की, हम गरीबों की, हम गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए, गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए, राम राम गाइए, हाँ राम राम, राम राम गाइए, हाँ हाँ जी राम राम, सीता राम गाइए, हाँ जी राम राम गाइए, सीता राम। और सुनो, जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वह वो तो संकट मुक्त हो।
1: कौन कौन संकट मुक्त होना चाहता, दोनों हाथ उठाओ।
0: सीताराम सीताराम।

राम राम गाइए हाँ सीता राम गाइए, ए जी राम राम गाइए हाँ सीता राम राम राम, राम।

हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे, दुखियों के दाता हैं जग के विधाता। अब दास

ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਈਏ ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੋ ਖੜੇ ਹੈ ਵੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਜ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਅਬ ਸਮੇਂ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮ ਟਾਈਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹੈ हमने कहा था हम 6-7 बजे आ जाएंगे देखो घड़ी के 7 बजने वाले होंगे हम पहले ही आ गए हैं क्योंकि हमने अपनी घड़ी के सेल निकाल दिए थे तो हमारी घड़ी में 6:30 ही हुए हैं भीतर हम मरीजों को भभूति बांट रहे थे फिर मंदिर वालों की मीटिंग कर रहे थे बुढ़ापे का शरीर है दोपहर में सो गए थे उम्र ज्यादा हो गई है फिर भी सेवा चल रही है जब तक तन में प्राण रहेंगे बालाजी ने जो विद्या दी शक्ति दी उससे मनुष्यों की सेवा करते रहेंगे आप तुम लोगों के भी मुंह दिखने लगे हैं 3200 दांत दिख रहे हैं दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम पागलों क्या हाल है हाँ तो हम अपनी आत्मकथा सुना रहे थे आत्मकथा ये थी कि दिन में हम सो गए थे फिर मरीजों को मिले फिर दीक्षा दी फिर लोगों को मिले फिर 6 बज गए हम यहां आ गए अब आज का दरबार प्रारंभ कर रहे एक बात हम कहना चाह रहे कहो तो कहें तुम्हें जल्दी तो नहीं है हमें कौन सा रोटी बनाना है सुनो भगवान किसकी सुनते हैं तुम बता क्या हमने ठेका ले रखो किसकी सुनते हैं भगवान है? इसका उत्तर है भक्त की किसकी बोलो बोलो मिश्रा जी भक्त की तो भगवान किसकी सुनते अच्छा भक्त कौन है तुम भक्त हो तो भाई इधर क्या कर रहे हो जब तुम्हारी भगवान सुन रहे तो हमें क्यों सुना रहे हैं अब सुनो भगवान किसकी सुनते भक्त की भक्त कौन है जिसके अंदर 3 लक्षण है वो पूछो क्या जिसके अंदर भाव हो भरोसा हो और भोलापन भाव भरोसा और भोलापन तो भक्त कौन जिसके अंदर भाव भगवान के प्रति भगवान के अलावा किसी के प्रति बालाजी के अलावा किसी के भी प्रति ना हो एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाएं एक को साध ले भरोसा कितना जैसे पर्वत की पर्वत का हमेशा बरसात हो पानी की बूंद गिरे ओले गिरे खड़ा रहना दिखाई पड़ता वैसे ही भक्त का भरोसा होना चाहिए कि दुनिया बिगड़ जाए पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए और हम लोगों का भरोसा कैसा है 4 दिन हनुमान जी ना सुने तो 5वें दिन चादर चढ़ाने चले जाते ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा चादर फादर निकट न आवे बालाजी जब नाम सुनावे हैं सनातनियों को हनुमान जी के अलावा किसी और पर भरोसा करने की आवश्यकता क्योंकि हनुमान जी ही किसी से कम और देवता चित्रा धरी हनुमत से ही सब सर्व सुख करी तो भाव भरोसा और भोलापन जानो सब पर उल्लू बने रहो नहीं तो ज्यादा समझदार बन जाओगे तो लोग खा जाएंगे ज्यादा समझदार बनने में आदमी खाते ज्यादा हैं इसलिए हम कह देते भैया हमें तो पता ही नहीं है हम जानते ही नहीं पढ़े लिखे ही नहीं गांव के गरीब आदमी अच्छा पढ़े लिखे नहीं है इसी चक्कर में बताओ 15 देश हुआ है पढ़े लिखे होते तो क्या हाल होता विचार करो हमें अंग्रेजी नहीं आती फिर भी हम अंग्रेजों की ठटरी बारे आए यदि अंग्रेजी आती होती हमें ऐसा नचाते अंग्रेजों को हाउ डू यू हाँ, आओ, आओ, वो यहीं पर डांस करके करते वेलकम वेलकम वेलकम सेम टू यू यही करते तो
भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो रंक को राजा बना देते, पत्थर को हीरा बना देते, नदी को गंगा बना देते, भैया अपात्र को पात्र बना करके सुपात्र बना देते, जीवात्मा को महात्मा बना देते और महात्मा को परमात्मा बना देते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती सबकी हो जाती, और जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो किसी की भी नहीं होती। भगवान रूठ जाए तो दुनिया भले ही कितनी साथ में रहे है हलवा काम नहीं आता है। कौरवों के साथ कितनी भीड़ थी एक नहीं बचा, और पांडवों के साथ भीड़ नहीं भगवान थे एक नहीं मरा। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत भगवान जिसके पक्ष में होते हैं उसकी जीत होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान किसकी सुनते, भक्त की। भक्त कौन, जिसमें भाव हो, भरोसा हो और भोलापन हो। तो भरोसा इसमें भाव कैसा हो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। रामायण में भी लिखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जिसके अंदर भाव होगा वो भगवान के अलावा कहीं पर भी मत्था नहीं टेकेगा। इसलिए

0: इसमें हमें भरोसा पूर्ण रूप से है, 1% भी हमको डाउटफुल नहीं है। अच्छा एक बात कह रहे, क्या इंसान कभी भगवान हो सकता? नहीं हो सकता। काहे को बेफिजूली में तो मनुष्यों के चक्कर में पड़े, हमारे भी चक्कर में काहे को पड़े, हम गांव के गवार पढ़े लिखे है नहीं, उल्लू आदमी, हमारे पीछे तो हमारो भी समय खा रहे, तुम भी अपनों बर्बाद कर रहे बेफिजूली में, तो हमारे पीछे पड़े। एक काम करो, तुम्हें कृपा चाहिए, भला करवाना है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो तो हमारी बात मानोगे, हमारे पिंड छोड़ दो, सदा सदा के लिए जिनसे हमें कृपा मिली तुम भी उनके चरण पकड़ लो, जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोल बालाजी महाराज की जय। नारियल फूटे छे, बोलो सीताराम। एक बात और, कुछ लोग कहते महाराज कृपा नहीं हो रही है, 6 दिन पियो तुम पग्गा बोतल, और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटली के भरे ते खुद पिशाच। नियम का पालन ना करो, लहसुन प्याज बंद ना करो, परिक्रमा करो ना, पेशी करो ना, कहां से बालाजी की कृपा हो जाए? नियम करो, भगवान के घर देर है अंधेर, यहां की दिव्य शक्तियों का क्या कहना बताओ, जंगल में मंगल है। एक समय ऐसा था कि हमारे गांव में आने से लोग डरते थे, हमने पूछा क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, यहां डकैत मिलते थे, अब भी डकैत हैं, लेकिन अब ओपन वाले डकैत हैं, पहले हिडन वाले, अब भी डकैत हैं, यहां 2 डकैत हैं, एक चोर वो है जो तुम्हारे पीछे बैठे सामान चुराएंगे, मतलब पीछे ना मुड़ के देखो, उदाहरण बता रहे हैं कि सामान ले जाएंगे, एक चोर वो, एक और चोर है वो मंदिर पे बैठे, वो तुम्हारा संकट चुराते हैं, हाँ वो तुम्हारी मुसीबत चुराते हैं। एक समय ऐसा था यहाँ कोई नहीं आता था, आज ऐसा है पूरी दुनिया आ रही, राजा प्रजा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी 3 दिन में हो गए, सब बड़े बड़े लोग, भारत के सबसे अमीर आदमी वो भी हो गए, सदगुरु जी भी हो गए, लाखों लोग यहाँ आ रहे, सबकी अर्जी बालाजी लगा रहे, सबका भला कर रहे। भैया हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते। बागेश्वर धाम की बताओ, एक नहीं गए, ठीक है बैठे रहो, हम पर्चा बना देते हैं। ये प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? बोलो बोलो बोलो बोलो, किसकी कृपा है? बागेश्वर। कल जो आत्महत्या करने जा रहे थे, मकान बिक गया था, परिवार बर्बाद हो गया था, आज उनकी जिंदगी भगवान ने ऐसी बनाई कि वो बालाजी का मकान बनाने के लिए सपने देख रहे, संकल्प ले रहे हैं। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो, इनके जैसा इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाएंगे।
1: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts,

0: in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: कहता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में होगा भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में होगा कमीशन। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 7वां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। जापान के नगानो शहर में साइकिल राइडर्स का अनोखा कारनामा, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू। गुंडीचा मंदिर के पास भगवान के तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है तैयार, सेवादारों ने रथों की जांच और रखरखाव का काम शुरू किया। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की पवित्र वापसी का प्रतीक, 7 दिनों तक मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद होती है वापसी यात्रा। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भगवान की एक झलक पाने के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। बहुड़ा यात्रा दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु, पुलिस प्रशासन ने की विशेष तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें रहेंगी सक्रिय। बद्रीनाथ में बारिश के बीच भी आस्था बरकरार, मॉनसून अलर्ट के बावजूद श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कायम। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा हुई प्रभावित, श्राइन बोर्ड के भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के पावन धाम हरिद्वार में आने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सहज स्वागत के लिए राज्य सरकार तैयार, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर भी होगा सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस करेगी डीजे पैन ड्राइव की जांच, केवल मंजूर किए जाएंगे भक्ति गीत ही। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेले की तैयारियां तेज की, श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर में भक्ति और आस्था की अनोखी तस्वीर, एक भक्त ने चढ़ाया 6.25 तोले का सोने का छत्र। अगरतला में आज होगा 7 दिवसीय खर्ची मेले का शुभारंभ, चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, महोत्सव में होगा संस्कृति और लोक परंपरा का प्रदर्शन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों ने फिल दिया टूट आस्था का प्रमाण, आया रिकॉर्ड चढ़ावा, नकदी के साथ भारी मात्रा में सोना चांदी और आभूषण। मंदिर की मासिक गणना में अब तक 29.25 करोड़ से ज्यादा का नकद दान प्राप्त हुआ, चरणबद्ध तरीके से जारी है दान पात्र की गणना। अब तक हो चुकी है 6 चरणों की गणना पूरी, चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। भेंट कक्ष में नकद मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप मिले सोने चांदी की गणना भी शेष, मंदिर मंडल के अनुसार 7वें चरण में की जाएगी शेष राशि और सोना चांदी की गणना। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि रहते हैं मौजूद, बेहद पारदर्शी तरीके से होती है दान की गणना। आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत, मालवन कर्नाटक के कारवार में होगा भव्य समारोह। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ इस्तेमाल। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने में है माहिर, तटीय रक्षा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक अभियान चलाने की क्षमता से लैस है मालवन, टॉरपीडो और अन्य आधुनिक हथियार प्रणालियों से है सुसज्जित। मालवन की नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार। देश की रक्षा निर्माण क्षमता और नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल दो दिन के लिए बंद किए गए। महाराष्ट्र और कोंकण गोवा क्षेत्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा में बड़ा जलस्तर, वाराणसी में डूबने लगी घाटों की सीढ़ियां, मंदिर और मूर्तियां। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी को हाई अलर्ट पर, श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी गई। आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है गंगा का जलस्तर, नाविकों को जरूरी सुरक्षा उपकरण और लाइफ जैकेट अनिवार्य रखने के निर्देश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 20 घंटे लगातार बारिश से घोघरा नदी में फंसे 9 लोग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। तेज जुलाई तक भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट, लोगों को नदी नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रहने की अपील की गई। गुजरात डांग में मॉनसून सीजन में प्राकृतिक सौंदर्य में हुई बढ़ोतरी, झरने और पहाड़ों का नजारा देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक। डांग जिले में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में जलभराव, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में कालसी चक्राता रोड पर लैंडस्लाइड से सड़क पर गिरा मलबा, कई घंटे तक आवाजाही ठप रहने के बाद खोला गया रास्ता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मूसलाधार बारिश, पहाड़ पर बादल फटने के अचानक बाढ़ और मलबा आने से कई मकान चपेट में आए। कांगड़ा में प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ की टीम पहुंची, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करने के साथ साथ राहत और बचाव कार्य भी जारी। असम में बाढ़ के गंभीर हालात के बीच देवदूत बने सेना के जवान, ऑपरेशन जल राहत के तहत भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 571 लोगों को सुरक्षित निकाला। 45 सैनिकों वाली तीन विशेष राहत टीमें असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट सहित सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तैनात, बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। प्रशासन के साथ मिलकर जवान मोटर बोटों के माध्यम से संभाल रहे हैं राहत और बचाव कार्य, बच्चों, बुजुर्गों और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम जारी। प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है भारतीय सेना, तेजी से चल रहा है लोगों तक खाना और बाकी राहत सामग्री पहुंचाने का काम। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां, अचानक जलस्तर बढ़ने से गांव हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटे से बाकी नुकसान, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर कर रही है बाढ़ पीड़ितों की मदद। कारगिल में आई फ्लैश फ्लड के बीच देवदूत बनकर सामने रेस्क्यू टीमों के जवान, मलबे के बीच से रास्ता बनाकर पीड़ितों की मदद, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रजौरी में सेना का साहस, तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला, 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। रजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल और तंगमर्ग जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी ली जा रही है मदद। भूस्खलन के बाद सड़कों पर भी आकर गिरा मलबा और चट्टान, जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कर ट्रैफिक वाहन करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को दी मंजूरी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होगा आधुनिकीकरण। परिवर्तन योजना के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे करीब 2,00,000 ट्रक और बस। नए BSVI और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए डिस्काउंट और सब्सिडी देगी सरकार। गुवाहाटी में देश के 22वें IIM का शुभारंभ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पहले एकेडमिक सेशन का उद्घाटन किया। बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में पेश किया गया मोबाइल कर्फ्यू प्लान। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से प्रभावित बच्चों का किया जा रहा इलाज। बिहार के समस्तीपुर में कैंसर संस्थान के द्वारा निःशुल्क 5 दिवसीय कैंसर जांच शिविर का आयोजन। आधुनिक उपकरणों से की जा रही है जांच। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज। रेलवे आज चला रही है 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। झारखंड के गढ़वा जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने खोली 3 कृषि पाठशाला। 21 गांव बनेंगे कृषि विलेज। किसानों को सीधा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद गढ़वा जिले के भवनाथपुर की कृषि पाठशाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जानकारी। इस साल 84 टन तरबूज की खेती कर किया कारनामा। दिल्ली के रोहतास चौधरी ने रचा इतिहास। पीठ पर 27 किलो से ज्यादा वजन रखकर 1 घंटे में मारे 847 पुशअप्स। भारत के पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहतास चौधरी ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीरिया के सामी जोमा हसन का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जापान के नगानो शहर में साइकिल राइडर्स ने दिखा अनोखा कारनामा। बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तोमोमी निशिकुबो ने ऊंची ढलान पर एक पहिए से पीछे की ओर दौड़ाई साइकिल। ऐसा हैरतअंगेज करतब दिखाने वाले पहले शख्स बने। तोमोमी निशिकुबो ने हाकुबा स्की जंप स्टेडियम में 136 मीटर की ढलान को पार किया। इस दौरान साइकिल के केवल अगले पहिए पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बैलेंस बनाया। तोमोमी ने ढलान और दूरी का अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 37.5 डिग्री की ढलान पर दिखाया करतब। दो साल से अनोखा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे तोमोमी। पिछले साल जून में 35 बार कोशिश करने पर भी हुए थे नाकाम। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। डिफेंडर मनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ती टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। 19 अगस्त को 6 प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। कल से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज। आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचेस के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया टेंडर। अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: वन सेकेंड, यू आर एंजॉयिंग योर फर्स्ट डे ऑफ इन फॉरएवर. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: News Pak, Raah Sachai Ki, Raat 9 Baje.
7: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
6: Aur durbhagya kehta hai
7: ki bhagya kahin dur nahi.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
1: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में, अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है। और गलत दशा आने पर, खराब दशा आने पर ये डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अध्यात्म पैदा कर देता है, व्यक्ति साधना की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है, कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है।
ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। अवसाद के डिप्रेशन के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ज्योतिष के हिसाब से आपको अवसाद से डिप्रेशन से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, उससे और जल्दी फायदा होगा उपायों के साथ। डिप्रेशन दूर करने में, अवसाद दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का नाम जप करने के लिए कहें। डिप्रेशन के मामले में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, तो अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है अगर आपको, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल की दिक्कतें आ गई हैं, वो दवाइयों से बेहतर होंगी। और अगर आप साथ में उपाय भी करेंगे तो दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी, आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। डिप्रेशन की दो स्थितियां ज्योतिष में होती हैं। एक स्थिति हल्की होती है कि डिप्रेशन हुआ, समय बदला, डिप्रेशन समाप्त हो गया। और एक स्थिति ऐसी होती है कि डिप्रेशन हो गया, वो जीवन भर चलता है, उसमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है,
उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: समुद्री रक्षा मोर्चे पर देश को मिलेगा एक और महायोद्धा, आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में होगा भव्य समारोह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। दिल्ली NCR में आज तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। जापान के नागानो शहर में साइकिल राइडर का अनोखा कारनामा, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देवर, मेरे साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ आज चर्चा होने वाली है नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है? पंडित जी आज आपको जानकारी देंगे कि ज्योतिष में नवमांश कुंडली होती क्या है, इसका हमारे और आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है, इसके बारे में पंडित जी विस्तार से आपको समझाएंगे और उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र कौन सा है।
5: बाहर जो आप जूते चप्पल पहनते हैं उनको घर में पहनकर मत घूमिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। बाहर के जूते चप्पलों को घर के बाहर या घर के बाहरी हिस्से के किसी कोने में रखकर तब घर में प्रवेश करिए। बाहर पहने जाने वाले जूते चप्पलों को सामान्यतः घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
4: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको जानकारी दी है कि नवमांश कुंडली के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहला प्रश्न पंडित जी से यही है कि क्या होती है नवमांश कुंडली और पंडित जी इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में?
5: जी देखिए, आम तौर पर ज्योतिष में हम ज्यादातर भविष्यवाणियां जन्म लग्न से करते हैं या लग्न कुंडली से करते हैं, लेकिन अगर आप केवल लग्न कुंडली से भविष्यवाणी करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, बहुत सही नहीं होगी। ज्योतिष के अध्ययन में वैसे तो जन्म लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, मुख्य होती है, उसके साथ जन्म लग्न के साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां जुड़ी होती हैं, तो कुल मिलाकर 16 कुंडलियां हो जाती हैं। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को मिलाएं तो 16 कुंडली होंगी और इनको षोडश वर्ग कहा जाता है। इन कुंडलियों में लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सप्तांश भी है, द्रेशकाण भी है, पंचमांश भी है, बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन लग्न और नवमांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। केवल शरीर को देख करके आप जीवन का विचार नहीं कर सकते। बिना नवमांश कुंडली को देखे जन्म कुंडली पर विचार करना कभी सही परिणाम नहीं देता है। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति जान सकते हैं, वैवाहिक सुख जान सकते हैं और आपके जीवन के तमाम रहस्य कौन से हैं। जितनी बढ़िया लग्न कुंडली दिख रही है, क्या वास्तव में उतनी बढ़िया है या नहीं है, ये आप नवमांश कुंडली से जान सकते हैं।
4: चलिए, नवमांश कुंडली के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछेंगे। अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है।
5: मेष राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए, नवमांश कुंडली के बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो पंडित जी अब आपसे अगला सवाल यही है कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है।
5: देखिए, लग्न कुंडली में ग्रहों की डिग्री होती है 30, भाव भी 30 अंश के होते हैं, तो मुख्यतः उनका जो नवा हिस्सा है 3 डिग्री 20 मिनट, ये जो नवा हिस्सा है इससे एक अलग कुंडली बनाई जाती है जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं। क्या बता देती है ये? देखिए, किसी भी कुंडली का जो आधार है, कुंडली को हम समझते हैं, जानते हैं ग्रहों के माध्यम से और उनकी शक्ति के माध्यम से। बिना नवमांश को जाने हुए आप ग्रहों की क्षमता और उनकी ताकत कभी नहीं जान सकते। जैसे अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो वास्तव में वो कमजोर है, वो जीवन में औसत फल देगा, मजबूत फल नहीं देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत है लेकिन लग्न कुंडली में कमजोर है तो भी वो आपको जीवन में बेहतर फल प्रदान करेगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है तो ये आपको जीवन में बेहतरीन परिणाम जरूर देगा। इसी प्रकार अगर कोई राजयोग या कोई बुरा योग नवमांश कुंडली में बनता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। राजयोग या दुर्योग लग्न कुंडली में भी असर डालता है, लेकिन अगर नवमांश में कोई राजयोग बने या नवमांश में कोई धन योग बने या दुर्योग बने तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। नवमांश कुंडली अलग से भी देखी जाती है लग्न कुंडली के साथ मिलाए बिना। तो जब आप नवमांश कुंडली अलग से देखते हैं तो दरअसल ये विवाह के लिए देखा जाता है। और अगर विवाह पर विचार करना है या वैवाहिक जीवन को गहराई से जानना है तो आपको अलग से नवमांश कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप अलग से नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना विवाह का निर्णय लेंगे तो विवाह का निर्णय गलत हो सकता है।
4: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब वापस आते हैं राशिफल पर। अगले तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
5: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर के मामले आपके हल होंगे। कोई संपत्ति आप खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें। नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा।

0: बज के 40 मिनट, जन्म स्थान है दिल्ली, मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है और मैं अपने पति से पिछले 1.5-2 साल से दूर रह रही हूं, तो क्या ये शादी चलेगी या इसमें सेपरेशन होने की संभावना बनती है। महिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है, विवाह चलना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। दूसरा विवाह करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आप दूसरी शादी भी करेंगी तो मामला वहां भी बहुत बेहतर नहीं दिखेगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं अपने वैवाहिक झंझट से, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है अगला सवाल। पंडित जी,
0: जी। अगला प्रश्न प्रांजल ने हमें लिखा है और प्रांजल हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 2002, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है नोएडा। प्रांजल कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए मैनेजमेंट का क्षेत्र बेहतर होगा या मुझे किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए। प्रांजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कोशिश करना शुरू करें तो साल 2027 के आरंभ से किसी अच्छे संस्थान से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैनेजमेंट की पढ़ाई बढ़िया है और आगे आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में बहुत अच्छा करियर बना सकेंगे, ये संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आने वाले समय में बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं और सवाल पंडित जी आपसे अब ये है कि नवमांश कुंडली का जिक्र हो रहा है तो नवमांश कुंडली से विवाह के बारे में निर्णय कैसे लिया जा सकता है।
0: देखिए, अलग से अगर हम नवमांश कुंडली को देखें तो मुख्यतः ये विवाह के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देती है। कैसे निर्णय लें? लग्न कुंडली के साथ मिला करके नवमांश को देखें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। लग्न में शुक्र कैसा है और नवमांश में शुक्र की स्थिति कैसी है, इस पर विचार करिएगा। लग्न में शुक्र बहुत ही कमजोर है, लेकिन नवमांश में अगर शुक्र मजबूत हो गया है तो चीजें बेहतर हैं। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार जरूर करिए, एलिमेंट का। लग्न कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व में बैठे हैं और नवमांश में किस तत्व में बैठे हैं, ये भी देख लीजिए। नवमांश कुंडली में ये जरूर

0: देखिए कि आठवें स्थान की अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी बारहवें स्थान की स्थिति क्या है, और नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न कुंडली में तो मंगल अच्छा है लेकिन नवमांश के आठवें स्थान में चला गया तो मंगल नकारात्मक हो गया, सतर्क रहें। लग्न और नवमांश को मिलाकर भी नवमांश को देख सकते हैं, और आप नवमांश कुंडली को अलग से इंडिपेंडेंट कुंडली मानकर भी देख सकते हैं, और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को देख करके ही विवाह का सही निर्णय आपको लेना चाहिए। केवल लग्न कुंडली देख करके अगर आप विवाह का निर्णय लेंगे तो जो इसके रिजल्ट हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो परिणाम गलत होंगे।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल पर आते हुए अगली तीन राशियों का भी हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा है इनका भाग्य। तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी है।
0: तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, सवाल अगला आपसे ये है कि अगर जीवन में या ग्रहों में नवमांश कुंडली के कारण कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे?
0: देखिए, हो सकता है कि लग्न कुंडली से समस्या समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपने नवमांश को देखा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि समस्या कहां है। तो अगर नवमांश कुंडली की वजह से जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, तो एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा, आपका विवाह शीघ्र तय होगा। अगर नवमांश कुंडली में ग्रह गड़बड़ हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर नवमांश कुंडली की वजह से कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हो तो सूर्य देव को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो नवमांश कुंडली की अशुभता कम हो जाएगी। अगर आपको नवमांश कुंडली को मजबूत करना है और जीवन में सफलताएं बढ़ानी हैं तो देवी की उपासना करनी चाहिए, मां दुर्गा की उपासना करना बेहतर होगा। अगर आपकी नवमांश कुंडली बहुत कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें शुभता नहीं है तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का अगर जप करें तो नवमांश कुंडली ताकतवर होगी, इसकी शुभता और पवित्रता का आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ आपके फिर से सवाल लेने का वक्त आ चला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न हमें दामिनी वर्मा ने लिखा है और दामिनी जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1991। जन्म का समय सुबह के 7:55। जन्म का स्थान है लखनऊ। दामिनी कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है और परिवार के लोग हम सब दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मेरा दूसरा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी होगी, लखनऊ या लखनऊ के आसपास ही होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और अगर संभव हो तो सोमवार का उपवास रख करके भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का, पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न जितेंद्र जी ने हमें लिखा है और जितेंद्र जी हमें गुजरात अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1982। जन्म का समय है सुबह के 6:55। जन्म का स्थान है भोपाल। में लिखते हैं अहमदाबाद से। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी में परिवर्तन के 2 ऑफर आए हैं, तो क्या इस समय नौकरी में परिवर्तन करना मेरे लिए बेहतर होगा। जितेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन करने का सही समय नहीं चल रहा है। आप जिस नौकरी में हैं वहीं पर आपकी प्रगति अगले 6 महीने में अवश्य हो जाएगी, लेकिन नौकरी में परिवर्तन करने से हो सकता है बीच में आपको नौकरी छोड़नी पड़े, जो आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंडली के हिसाब से करियर में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है, का हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: आने वाले वर्ष में करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, साल के अंत में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का जन्म उसी परिवार में होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, मृत्यु के समय व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसी प्रकार का जीवन आगे मिलता है। चूंकि मरते समय आदमी को अपने परिवार की याद बहुत आती है, बच्चों की, पति पत्नी की, माता पिता की, परिवार का ही ध्यान करता रहता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों का अगला जन्म उसी परिवार में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम निरंतर जप किया जाए, भगवान का नाम निरंतर जपा जाए, ताकि मृत्यु के समय में परिवार की याद ना रहे, मृत्यु के समय में भगवान के नाम का स्मरण रहे। तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, नॉर्मली मृत्यु के बाद उनका जन्म अपने ही परिवार में होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के श्रद्धालु होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों का जन्म वहां होता है जहां उनको अगले जन्म में भी ईश्वर की उपासना करने का अवसर मिल सके।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनकी शिक्षा सामान्यतः ठीक रहती है। एक साथ कई कोर्स कर लेते हैं या कई डिग्री इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपको शिक्षा में लाभ होगा।
1: और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है वो भी आपसे जानते हैं।
0: जी अगर आप बेवजह झूठे इल्जाम में, झूठे चक्कर में, किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? बेर का एक पौधा लगा सकते हैं घर के बाहर या पार्क में, और रोज सुबह बेर के पौधे में जल डालिए। लाल रंग के हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाएं या लाल रंग के हनुमान जी की एक मूर्ति लगाएं, उनकी रोज पूजा करें, और सुबह के समय हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो जिस तरह के मुकदमे में भी आप फंसे हैं उससे आपको मुक्ति जल्दी मिलेगी।
1: तो पंडित जी महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
3: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: देश में मॉनसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो करीब 70% आसमान पर बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने कम से कम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत दिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देश भर के मौसम का पूरा हाल, और साथ ही ये भी समझिए कि आखिर मॉनसून ने बरसने से पहले इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मॉनसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मॉनसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूर्वानुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर मॉनसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी, नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मॉनसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है।
2: मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशन बन रही होती है वहाँ पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है।
0: अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
2: अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है।
0: इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह।
1: और चलिए अब बात यूरोप की करेंगे, जहां इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसा तेवर दिखाया है कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट्स का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात गणपति बप्पा की। भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में बप्पा के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। देखिये,

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: ये बापा के लिए आसन है एक से बढ़कर एक, शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बापा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बापा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बापा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: नौसेना की बढ़ेगी ताकत, अब से कुछ ही देर में नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हो रहा है भव्य समारोह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडिचा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में भी बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, आज दिनभर हल्की बारिश का अनुमान। जापान के नागानो शहर में साइकिल राइडर का अनोखा कारनामा, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
9: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
8: उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
8: तो शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून के साथ करेंगे। देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, दिल्ली से हिमाचल और मध्य प्रदेश तक सभी जगह ऐसा ही हाल है। इसी बीच मॉनसून में मिशन जिंदगी भी चला जा रहा है, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसी युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही है, तो इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने। साथ ही बात कांवड़ यात्रा की भी होगी। दरअसल सावन का महीना शुरू होने वाला है और भगवान शिव की भक्ति का ये सबसे खास समय माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए दिल्ली से हरिद्वार तक तैयारियां की जा रही है, तो इसके बारे में विस्तार से आगे करेंगे बात। साथ ही आपको मिलवाएंगे महाबली मालवन से, समुद्री रक्षा मोर्चे पर देश को एक और महायोद्धा मिलेगा, स्वदेशी युद्ध पोत मालवन नौसेना में शामिल होगा, तो इस पर भी हम आगे करेंगे बात।
10: तो वहीं बात करेंगे पीवी सिंधु की सक्सेस स्टोरी की। दरअसल उन्होंने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर दो साल का सूखा खत्म किया, कैसे उन्होंने इसमें वापसी की है, कौन बना है प्रेरणा स्रोत, तो इन सभी के बारे में विस्तार से होगी।
8: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे जापान, जहां के नागानो शहर में साइकिल राइडर्स का अनोखा कारनामा देखने को मिला, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, कैसा रहा इसका नजारा आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
10: पुरी में बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां पर बाहुड़ा यात्रा को लेकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों का सेवादारों ने निरीक्षण किया। रथों में तकनीकी जांच के साथ ही सभी आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को गुंडीचा मंदिर से रवाना भगवान जगन्नाथ होंगे।
8: ये तस्वीरें तमिलनाडु के मुदुकुल थुर से श्री वडक्कुवासल चेली अम्मन मंदिर की है, जहां स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इस 50वें महोत्सव के दौरान प्रमुख ध्वजारोहण समारोह स्थानीय परंपराओं और अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में आयोजित अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
10: वहीं अजमेर के ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर में लक्ष्मण सिंह नामक भक्त ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता रानी को 6.25 तोले वजनी सोने का छत्र अर्पित किया। करीब 10 लाख से ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। छत्र को विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ माता के चरणों में चढ़ाया गया है।
8: गुजरात के जामनगर में लगभग 500 साल पुरानी अनोखी आस्था से जुड़ी एक परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। इस परंपरा के तहत गांव की महिलाएं विशेष विधि से बड़ी रोटी तैयार करती हैं। रोटी तैयार होने के बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ ग्रामीणों का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस गांव में कुएं के किनारे बने सती माता जी मंदिर पहुंचता है, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना ध्वजारोहण किया जाता है। फिर परंपरा अनुसार तयशुदा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उस रोटी को कुएं में प्रवाहित करता है।
10: तो भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करने जा रही है। आज नौसेना को मालवन नामक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। दरअसल ये माहे श्रेणी का दूसरा पोत है, जिसे उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा लगातार स्थगित की जा रही है। कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा पर रोक जारी रखी है। श्राइन बोर्ड ने भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। वहीं कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा आयोजित की जा रही है और उनकी सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित असम में भी भारतीय वायुसेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर तैनात किया। असम और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, इसलिए सेना के जवानों की रेस्क्यू टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का पता लगाकर उन्हें एयरलिफ्ट करने में जुटी हुई है। चीन के शंघाई में गर्मी के बीच खास तरह से डिजाइन किया गया पार्क सबसे आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क का नाम आइस एंड स्नो वर्ल्ड रखा गया है। इस पार्क में अब 10 पेंगुइन्स की एंट्री हुई है और पर्यटकों को लुभाने के लिए यहां पेंगुइन परेड की शुरुआत की गई है। दूर दूर से लोग पार्क में पेंगुइन परेड देखने आ रहे हैं।
8: फिल्म ओ माय गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की नई फिल्म ओ माय डॉग का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। दरअसल इसमें इंसानों और डॉग के बीच बना शर्त प्यार वफादारी और साथ को दिखाती है ये फिल्म। फिल्म ओ माय डॉग में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, विजेश मिश्रा और साथ ही कई कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होगी।
11: वेब सीरीज बहुत देखते हैं क्या?
12: पिछले 10 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जो तुम लोगों के रूटीन से अलग हो?
13: डॉक्टरवा को बोल देना इस बार ज्यादा लगेगा।

0: तो शुभ समाचार में आज बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। आज भी राजधानी की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, संसद बाग, मोतीबाग, तमाम जगहों से बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन गर्मी और तपिश से लोगों को राहत मिली है। तो तस्वीरें देखिए दिल्ली के कोने कोने से आई हैं और कैसे सुबह सुबह झमाझम बारिश से लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कान आई है, क्योंकि काफी गर्मी हो गई थी, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है इस बारिश से। लेकिन वहीं स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तर जाने वाले लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही है, काफी ट्रैफिक जाम भी हो जाता है बारिश की वजह से, लेकिन इन सब के बीच गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
1: देखिए ट्रैफिक रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम सुहावना हो गया है दिल्ली में और सुबह सवेरे थोड़ी बहुत बारिश भी दिल्ली में हुई। ये तीन अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के इलाकों की आप देख रहे हैं, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस जहां पर बारिश हुई है, और कनॉट प्लेस ये वही जगह है जहां पर कई लोग पहुंचते हैं और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाते हैं। तो मौसम काफी सुहाना हो गया, जो भीषण गर्मी दिल्लीवासियों को झेलनी पड़ रही थी वो अब नहीं झेलनी पड़ रही। गर्मी उमस से थोड़ी राहत दिल्लीवासियों को मिली है और इस मौसम का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है।
0: तो ये आरकेपुरम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के आरकेपुरम में लगातार बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह उठते ही झमाझम बारिश के दीदार हुए और इसी के साथ लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि काफी दिनों से बेहद गर्मी और उमस हो गई थी, लोग काफी परेशान थे और मानसून भी जो है इस बार देरी से दस्तक उसने दिल्ली में दी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जाते हुए बच्चों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। और आप देखिए किस तरह से लोग सुबह स्कूल जाते हुए, दफ्तर जाते हुए जो है वो परेशान भी हो रहे हैं इस बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है। और ये तस्वीर मोतीबाग दिल्ली से, तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी के साथ मौसम जो है वो बेहद सुहाना हो गया है, काफ़ी ठंडा हो गया है। काफ़ी गर्मी थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इस बारिश ने काफ़ी ठंडक ला दी है और इससे मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है, पारा काफ़ी नीचे लुढ़क गया है। और एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है, हवा बेहद साफ हो गई है और मौसम खुल गया है। देखिए किस तरह से अलग अलग शहरों में तो लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली में इस बार मानसून ने एंट्री जो है वो थोड़ी देरी से ली है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब ये बारिश का दौर लगातार 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा।
1: तो देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पर भी प्रभाव डाला है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लाखों लोग इसकी चपेट में आए हैं। सबसे अधिक असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हुआ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भी ऐसा ही हाल देखा गया। असम में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों उफान पर हैं, जिससे ऊपरी असम के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। सेना असम में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है और ऑपरेशन जल राहत चलाया जा रहा है। वहीं इसके तहत अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया भी जा चुका है। IAF का ऑपरेशन लगातार जारी है, अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं कई इलाकों में। उत्तराखंड का चाहे विकास नगर हो या फिर हिमाचल प्रदेश का चंबा, कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
0: और अब तस्वीरें असम से। असम के शिवसागर में ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, खेत खलिहान डूब गए हैं और कई इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे हैं। सेना के जवान नावों और विशेष बचाव उपकरणों की मदद से लगातार जलमग्न इलाकों तक पहुंच रहे हैं। अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है और राहत अभियान सिर्फ लोगों को निकालने तक सीमित नहीं है। सेना प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। देखिए किस तरह से असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार जो है बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और इस बीच जो है वो सेना जो है प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचा रही है।
1: तो ऐसी स्थिति में कैसे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं? चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है। और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है, जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे।

0: टीम बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है, खड नालों के किनारे जाने से परहेज करें और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही, वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू।
5: रात से
4: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है, सेलंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अर्षभ पानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
6: तो मुंबई में भी मॉनसून मेहरबान है। बीएमसी ने लोगों से भारी बारिश को लेकर सावधान रहने को कहा है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पुणे के घाट इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: किया गया है। साथ ही लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है ताकि मॉनसून के मौसम में बीमारियों से बचा जा सके।
1: इस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दी गई है वो ये भी कि आप अपने घरों में जो पानी पीते हैं उसे गर्म करके पीजिए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से झीलें जो हैं वो पूरी तरह से भर गई हैं, जिसमें नालों का पानी भी जा चुका है। साथ ही साथ जो गंदी मिट्टी है वो भी इसमें मिश्रित हो गई है। अगर इस तरह से गंदा पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी ही शक्ति के साथ दो जो बड़ी चेतावनी दी है वो ये कि पहले अगले 24 घंटों तक लगातार मुंबई में बारिश होनी है, उसके बाद भी लगातार एक हफ्ते तक मध्यम धीमी से बारिश होगी। इसलिए उन जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जैसे समुद्र है, जहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे खुद भी ना खड़े रहें और अपनी गाड़ियों को भी न पार्क करें। साथ ही साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो वो चीज़ें अपने साथ ले चलें जिससे आप अपनी और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है घर बैठे ही करें, तब जाकर के एक गुड न्यूज मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुरी की। दरअसल पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। ये रथ यात्रा उत्सव का आखिरी पड़ाव है। मंगलवार को इससे जुड़े अनुष्ठान किए गए, रथों की जांच की गई, साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई गई। इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के तीनों रथों को दक्षिण दिशा में मोड़ कर रखा गया। यहीं से 24 अप्रैल को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी और इससे पहले पुरी में हर दिन परंपराओं का दौर भी जारी है। पंचमी वाले दिन पुरी में हीरा पंचमी का पर्व मनाया गया। दरअसल मान्यता ये है कि भगवान के बिना बताए चले जाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पांचवें दिन वो स्वर्ण पालिका में सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं और वहां वो भगवान जगन्नाथ से शीघ्र लौटने का आग्रह करती हैं। इस पूरे आयोजन में भक्ति, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के भाव का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। गुंडीचा मंदिर में भक्त महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो वहीं जगन्नाथ धाम में पूजा पाठ भी जारी है।

0: estão para...
1: भगवान जगन्नाथ का गुंडिचा मंदिर में प्रवास अब खत्म होने वाला है। बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 जुलाई को एक बार फिर निकलेगी भव्य रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर से अपने मुख्य निवास श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर तक की रथ यात्रा करेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है। इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे। वापसी के दौरान देवताओं का रथ माउसी माँ मंदिर के पास रुकता है। भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडिचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए गए। जिस रथ में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे थे, उन रथों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, ताकि गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए।
2: तो हम खुद देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया हो, कुछ कील वील निकल गया हो, तो उस सब को चेकिंग करते हैं, और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं, तो थोड़ा मोरा कुछ कील वील निकल गया तो उसको हम चेकिंग कर लिया।
1: रथों को परखने के बाद यहाँ एक और खास परंपरा निभाई गई, दक्षिण मोड़ परंपरा। इसमें तीनों रथों को गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से हटाकर दक्षिण दिशा में नाग चढ़ा द्वार तक लाया गया, और नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन तीनों रथों को वापसी के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा गया।
3: रथ दक्षिण मोड़ बोला जाता है, और एक अहम प्रक्रिया है जिसमें रथ को दोबारा से मोड़ के गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से नागचाना द्वार में जाके उसकी स्थापना की जाती है, और ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं। उसके साथ हमारे जो रथ के जो भोई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं, और सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है, और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ने का अनुमान है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर लगाम लगाने और श्रद्धालुओं की सहूलियत के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
4: बहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट सभी लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। सारा अरेंजमेंट लाइक पुलिस अरेंजमेंट, हमारा वाटको के तरफ से पानी का व्यवस्था, मेडिकल की तरफ से हेल्थ टीम्स की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्थाएं अभी हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है।
1: 9 दिन मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में रहने के बाद भगवान अपने मुख्य निवास लौट रहे हैं। अब रौनक श्री मंदिर में होगी, जब भगवान अपने पुराने स्वरूप में श्री मंदिर में स्थापित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, भारतीय नेवी से जुड़ रहा है समंदर का महाबली।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: Tune in how to
0: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: नौसेना की बढ़ेगी ताकत, अब से कुछ ही देर में नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हो रहा है भव्य समारोह।
14: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, मुनिजा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
5: तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया।
14: यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों पर भी रहेगी पुलिस की नजर।
5: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में भी बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, आज दिनभर हल्की बारिश का अनुमान।
14: जापान के नागानो शहर में साइकिल राइडर का अनोखा कारनामा, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शुभ समाचार में अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। दरअसल आज पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल कर रही है नौसेना। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया जा रहा है। दरअसल इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि है। इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन और साथ ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि, नौसेना के सीनियर अधिकारी भी मौजूद है। INS मालवान को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर है ये सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सबसे ताजा तस्वीर है। आकार में छोटा होने के बावजूद मालवान बहुत शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और मल्टीपल रोल निभाने में ये सक्षम भी है। इसकी सटीक ऑपरेशनल क्वालिटी और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता इसे उतले जल क्षेत्र में बेहद ही कारगर बनाती है। तो जाहिर है मालवन का भारतीय नौसेना में शामिल होना नई पीढ़ी के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उतले जल युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे सहयोगी शिवानी जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, ये कितना महत्वपूर्ण है मालवान का नौसेना में शामिल होना, इसकी खासियत के बारे में बताइएगा और क्या वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? शिवानी,
1: बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है कि नौसेना के जहाज की कमिश्निंग हो और एयर चीफ इसके मुख्य अतिथि हो, तो ये सिनर्जी भी दिखा रहा है किस तरह से फोर्सेस के बीच में एक सिनर्जी है और कैसे आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी है। उसके अलावा अगर हम मालवान की बात करें तो ये भारत में बनाया हुआ शैलो एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है, यानी कि सबमरीन को रोकने के लिए, खासतौर पर आप देखिए ईस्टर्न फ्रंट में जहां पर चीन की लगातार मसल फ्लेक्सिंग दिखाई देती है, लगातार वो अपने नौसेना के बेड़े बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत को सतर्क और तैयार रहने की बेहद जरूरत है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले एक महीने में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला ये 5वां युद्धपोत है, वॉरशिप है। इससे पहले आपको याद होगा कि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग की थी कोलकाता में, जिसमें 3 शिप्स मिले थे और उसी वक्त यहाँ पर माहे जो इसी क्लास का पहला शिप है वो भी वहां पर कमीशन किया गया था। और इससे पहले अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि महेंद्र गिरी वॉरशिप को कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में, और अब ये 5वां शिप है महज एक हफ्ते में जिसको भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। खास इसलिए भी है क्योंकि इंडिजिनस कॉन्टेंट की अगर हम बात करें, यानी कि इसके जो पुर्जे हैं, इसको बनाने के लिए जो भी कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है वो 80% भारत में बनाए गए हैं, यानी कि इंडिजिनाइजेशन पर बहुत जोर है।
0: जी शिवानी, INS मालवन को क्या हम पनडुब्बियों का काल भी कह सकते हैं, क्या ये कहना सही होगा, और किस तरह की आधुनिक प्रणालियों से लैस है ये?
1: बिल्कुल, पनडुब्बियों का काल इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसका काम और इसकी भूमिका ही एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट की है। इसके अंदर जो टॉर्पीडोज है, जो हथियार है और अत्याधुनिक उस तरह की मशीनरी है जिसे पता लगाया जा सकता है अगर कोई भी प्रेजेंस होता है आसपास किसी भी सबमरीन का शैलो वाटर्स में, तो ये शैलो वाटर क्राफ्ट पता लगाएगा और इतना ही नहीं उन सबमरीन को नष्ट भी कर देगा। इसके अंदर जो हथियार हैं, जो प्रणालियां हैं, वो इस तरह की हैं कि पहले तो ये सबमरीन का पता लगाएगा और उनके लिए घातक भी सिद्ध होगा। और कई ऐसी मिसाइल सिस्टम जिसमें लगाई गई हैं जिसके जरिए ये सबमरीन को अटैक कर सकता है, काउंटर कर सकता है। तो मालवान जो है बेहद अहम इसलिए है क्योंकि सबमरीन की दृष्टि से आप देखिए तो चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चीन के साथ साथ पाकिस्तान, अगर हम अरेबियन सी की बात करें वहां पर भी बहुत तेजी से अपनी फ्लीट को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना अपने इंडियन ओशन रीजन में, चाहे वो बे ऑफ बंगाल का इलाका हो या फिर नीचे दक्षिण की मलाका स्ट्रेट की तरफ की बात की जाए या फिर वेस्ट में जहां पर अरेबियन सी है, उन सभी जगहों पर भारतीय नौसेना पूरी तरह से अपने आप को मुस्तैद और तैयार बनाकर रखे हुए हैं।
0: यानी इंडियन नेवी की ताकत में एक बहुत बड़ा कदम भी ये माना जा रहा है। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखेगा। आज से करीब 27 साल पहले 1999 में भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर एलओसी, करगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज भी हो चुकी हैं, जिनमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जाबाजी देखी। लेकिन इसी करगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर से नाम से जाना जाता है।
2: पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं।
3: कश्मीर छीनना है,
4: हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयर फोर्स।
5: वो तारीख थी 26 मई 1999, जब भारतीय वायुसेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपना सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था।
6: वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है,
7: ये मुजाहिदीन है।
8: मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं।
9: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
10: श्रीनगर जाना।
5: ऑपरेशन सफेद सागर दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक।
9: ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट्स टुमारो एट 0700 आवर्स।
5: मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायुसेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में द्रास से लेकर पूर्व में बटालिक तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे। ये काम आसान नहीं था। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया।
11: सर, उन्होंने अपने साथ मुझे,
12: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।
5: 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों, उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके द्रास, कारगिल और बटाली के आसपास के थे। ये पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा दिखता था, इसलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोडनेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनाने का भी खतरा था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायुसेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायुसेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेडर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारत लड़ाकू विमान से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया और उसे निस्तानाबूद कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआ लड़ाकू विमानों ने मुश्कोट घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली। भारतीय वायुसेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर के बाद ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वायुसेना की फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदानों की असलियत दिखाई गई है।
9: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
5: इस शो की शूटिंग भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें मिग एयरक्राफ्ट और वायुसेना के जवान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बार फिर अपनी फिल्म जननायकन को लेकर चर्चा में है, जो 7 महीने देरी के बाद थिएटर्स में 23 जुलाई को आ रही है। एच विनोद के डायरेक्शन में बनी ये तमिल एक्शन थ्रिलर थलापति विजय के राजनीति में पूरी तरह आने से पहले की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसके चलते उनके फैंस के बीच फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साह है। फिल्म की रिलीज को लेकर हुई इस पर देरी के चलते दर्शकों के बीच भी काफी बेताबी देखी जा सकती है और इसकी मिसाल नजर आई फिल्म की एडवांस बुकिंग में, जो शुरू हो गई है। खास बात तो यह है कि देश में चुनिंदा जगहों पर फिल्म की प्रीमियर टिकट की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन जननायकन को लेकर लोगों का क्रेज साफ नजर आ रहा है।
7: तूने बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल्स का
11: 7 महीने की देरी सही, लेकिन अब थलापति विजय की फिल्म जननायकम फुल फॉर्म में रिलीज के लिए तैयार है।
7: लोग उसे बुलाते हैं थलापति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
11: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म बताई जा रही, लिहाजा विजय के फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म को लेकर दर्शकों की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्शक फिल्म की एक टिकट के लिए 2,500 रुपए तक भी खर्च करने को तैयार हैं। भारत में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में थिएटर्स मिनटों में हाउसफुल हो गए। जननायकन के तमिल वर्जन के लिए ज्यादातर जगहों पर टिकट की कीमत 100 से 800 रुपए के बीच रखी गई है, लेकिन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के मुताबिक बेंगलुरु में सुबह के शो के टिकट की कीमत 1,200 से 2,500 रुपए के बीच है। कई जगह टिकट सोल्ड आउट भी हो चुके हैं।
7: बेटियों पे डर हावी नहीं होना चाहिए, विजय को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है।
11: फिल्म की टिकट की कीमत इतनी ज्यादा होने के बावजूद एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है, और इसकी बड़ी वजह तो यही है कि इसे थलापति विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इसके बाद पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होंगे। जननायकन का क्रेज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ब्रिटेन में एडवांस बुकिंग विंडो खुलते ही शुरुआती 60 मिनट के भीतर ही 10,000 से ज्यादा टिकट्स बिक गए।
7: तबाही।
11: पहले फिल्म इसी साल 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी।
13: डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे चाचा।
11: विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेच ऐसा अटका कि फैंस को महीनों तक मायूस होना पड़ा।
7: लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत अड़ाना।
11: कहा गया कि इस फिल्म से विजय को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। जननायकन में कुछ सीन्स पर आपत्ति भी उठी। कहा यह भी गया कि इनसे भारतीय सेना और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण माना गया, जिससे सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट को कई महीनों तक टाले रखा। हाल ही में जननायकन को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, जिसके बाद इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो सका।
7: I am.
11: Bureau report, good news.
7: Coming.
0: और अब बात पीवी सिंधु की कर लेते हैं, जिन्होंने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर 2 साल से ज्यादा का सूखा खत्म किया। सिंधु ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। इस जीत के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मुश्किल दौर में विराट कोहली की एक सलाह ने न केवल उनका खेल बदला बल्कि उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ जापान ओपन की ट्रॉफी नहीं है, ये दो साल के दर्द, संघर्ष, आंसुओं और अनगिनत सुबहों की कहानी है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर न सिर्फ जीत का इंतजार खत्म किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी और 31 साल की उम्र में सुपर 750 जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी हैं। लेकिन असली कहानी मेडल या रिकॉर्ड की नहीं है, उस सोच की है जिसने सिंधु को फिर से चैंपियन बना दिया। सोचिए, जब चोटें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी तब पेरिस ओलंपिक की राह उनका दिल तोड़ चुकी थी। जब पीवी सिंधु को लेकर आलोचनाएं बढ़ रही थी तब उन्होंने उस खिलाड़ी को फोन किया जिसने खुद भी करियर में ऐसे ही तूफान देखे थे। नाम था विराट कोहली। सिंधु को किसी तकनीकी सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जो जीत के शोर और हार के सन्नाटे दोनों को समझता हो। विराट ने सिंधु से सिर्फ एक बात कही, ट्रॉफियों के पीछे भागना छोड़ो, खेल से फिर प्यार करो, उसी में अपनी खुशी तलाशो। बस यहीं से सब बदल गया। कोहली के विराट सलाह के बाद सिंधु ने सिर्फ मानसिकता नहीं बदली, खुद को पूरी तरह बदल डाला। उन्होंने 3.5 किलो वजन कम किया, नेट गेम सुधारा, ड्रॉप शॉट, हाफ स्मैश, लंबी रैलियों में धैर्य और आधुनिक बैडमिंटन की हर छोटी बड़ी जरूरत पर काम किया। इतना ही नहीं, अब उनकी तैयारी का नया साथी बन चुका है डेटा एनालिसिस, मतलब कब शरीर धीमा पड़ रहा है, कहां रिकवरी की जरूरत है और कौन सी कमजोरी सुधारनी है, हर जवाब अब आंकड़ों की भाषा में उनके पास था। और फिर आया जापान ओपन का फाइनल। सामने थी जापान की स्टार अकाने यामागुची। दबाव था लेकिन सिंधु के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि विश्वास था। 36 शॉट्स की लंबी रैली जीतकर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया और 17-17 के बाद लगातार अंक लेकर साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो पहले अपने मन को जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी सबको हंसा रहे हैं। देखिए गौतमी कपूर की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए पेड़ और चपेड़ जिथे मौका मिले रख रख के लगाएं।
3: एक बात पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब से परेशान हो रही हूँ। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन, जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त, और ना जिनकी शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है वो पति पत्नी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट से बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ। कमेंट से बताना सही क्या है।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
5: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: Into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Here we go. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
12: 9 सेना की बढ़ेगी ताकत, अब से कुछ ही देर में 9 सेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन का नाटक के कारवार में हो रहा है भव्य समारोह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 7वां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। तेज
1: बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में भी बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, आज दिन भर हल्की बारिश का अनुमान। जापान के नागानो शहर में साइकिल राइडर्स का अनोखा कारनामा, ढलान पर उल्टी दिशा में साइकिल चलाकर बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में, अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है। और गलत दशा आने पर, खराब दशा आने पर ये डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले हल होंगे,
संपत्ति खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अध्यात्म पैदा कर देता है, व्यक्ति साधना की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है, कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। अवसाद के, डिप्रेशन के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन

काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ज्योतिष के हिसाब से आपको अवसाद से, डिप्रेशन से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, उससे और जल्दी फायदा होगा उपायों के साथ। डिप्रेशन दूर करने में, अवसाद दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा।

बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का

0: और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
6: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
5: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
7: Because people who all watch games, they hear the voice.
5: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to Premium to get in the game.
8: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्।

शरणं प्रपद्ये। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत और राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर पर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। अरे तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास पर कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसी दास। पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का गर्मी अमीरों की खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। आओ भैया दो मिनट कीर्तन गाओ। राम राम गाइए, राम राम गाइए, सीता राम गाइए, राम राम गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए जी गाइए, राम राम गाइए, सीता राम गाइए, राम राम गाइए, बालाजी के चरणों में चित्त तो लगाइए, बालाजी के चरणों में मन को लगाइए, गुरुवर के दर्शन करके, दुरुवर के दर्शन करके, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो जाइए, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो, राम राम गाइए, हाँ राम राम गाइए, राम राम, बागेश्वर बालाजी कृपा करते, अपने भक्तों की खाली झोली भरते, अपने भक्तों की पीड़ा को हरते, बागेश्वर आकर के, बागेश्वर आ

राम राम सीता राम राम सीता राम। बागेश्वर धाम की महिमा निराली, बागेश्वर बाबा की महिमा निराली, महिमा निराली हा महिमा निराली। हम गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए, गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए। राम राम गाइए हाँ राम राम गाइए हाँ हाँ जी राम राम सीता राम गाइए हाँ जी राम राम गाइए सीता राम। और सुनो, जो नर बागेश्वर आता है जो वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो। कौन कौन संकट मुक्त होना चाहता, दोनों हाथ उठाओ। सीता राम सीता राम सीता

राम राम गाइए सीता राम गाइए, ए जी राम राम गाइए सीता राम राम राम। हाँ हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे, हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे, दुखियों के दाता हैं जग के विधाता, अब दास अब दास।

हाँ राम राम गाइए हाँ, है जी राम राम गाइए हाँ, राम राम बोलो बालाजी महाराज की, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। साधु जी, आज का दरबार अब समय पर शुरू हो रहा है, हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कहा था हम 6-7 बजे आ जाएंगे, देखो घड़ी के 7 बजने वाले होंगे, हम पहले ही आ गए हैं, क्योंकि हमने अपनी घड़ी के सेल निकाल दिए थे, तो हमारी घड़ी में 6:30 ही हुए हैं। भीतर हम मरीजों को भभूति बांट रहे थे, फिर मंदिर वालों की मीटिंग कर रहे थे, बुढ़ापे का शरीर है, दोपहर में सो गए थे, उम्र ज्यादा हो गई है फिर भी सेवा चल रही है। जब तक तन में प्राण रहेंगे, बालाजी ने जो विद्या दी, शक्ति दी, उससे मनुष्यों की सेवा करते रहेंगे। अब तुम लोगों के भी मुंह दिखने लगे हैं, 3200 दांत दिख रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। पागलों क्या हाल है। हाँ, तो हम अपनी आत्मकथा सुना रहे थे। आत्मकथा ये थी कि दिन में हम सो गए थे, फिर मरीजों को मिले, फिर दीक्षा दी, फिर लोगों को मिले, फिर 6 बज गए, हम यहां आ गए। अब आज का दरबार प्रारंभ कर रहे, एक बात हम कहना चाह रहे, कहो तो कहें, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें कौन सा रोटी बनाना है। सुनो, भगवान किसकी सुनते हैं तुम बता, क्या हमने ठेका ले रखो, किसकी सुनते हैं भगवान है? इसका उत्तर है भक्त की। किसकी? बोलो बोलो मिश्रा जी, भक्त की। तो भगवान किसकी सुनते? अच्छा, भक्त तो कौन है? तुम भक्त हो तो भाई इधर क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी भगवान सुन रहे तो हमें क्यों सुना रहे हैं? अब सुनो, भगवान किसकी सुनते? भक्त की। भक्त कौन है? जिसके अंदर 3 लक्षण है, पूछो क्या? जिसके अंदर भाव हो, भरोसा हो और भोलापन। भाव, भरोसा और भोलापन। तो भक्त कौन? जिसके अंदर भाव भगवान के प्रति, भगवान के अलावा किसी के प्रति, बालाजी के अलावा किसी के भी प्रति ना हो, एक ही साधें, सब सदें, सब साधें, सब जाएं, एक को साध ले। भरोसा कितना? जैसे पर्वत की पर्वत का हमेशा बरसात हो, पानी की बूंद गिरे, ओले गिरे, खड़ा रहना दिखाई पड़ता, वैसे ही भक्त का भरोसा होना चाहिए कि दुनिया बिगड़ जाए पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और हम लोगों का भरोसा कैसा है? 4 दिन हनुमान जी ना सुने तो 5वें दिन चादर चढ़ाने चले जाते। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा, चादर फादर निकट न आवे, बालाजी जब नाम सुनावे। सनातनियों को हनुमान जी के अलावा किसी और पर भरोसा करने की आवश्यकता, क्योंकि हनुमान जी ही किसी से कम, और देवता चित्रण धरी हनुमत से ही सब सर्व सुख करी। तो भाव, भरोसा और भोलापन, जानो सब पर उल्लू बने रहो, नहीं तो ज्यादा समझदार बन जाओगे तो लोग खा जाएंगे। ज्यादा समझदार बनने में आदमी खाते ज्यादा हैं, इसलिए हम कह देते भैया हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं, गांव के गरीब आदमी। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है, इसी चक्कर में बताओ 15 देश हुआ है, पढ़े लिखे होते तो क्या हाल होता, विचार करो। हमें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी हम अंग्रेजों की ठटरी बारे आए, यदि अंग्रेजी आती होती हमें ऐसा नचाते अंग्रेजों को, हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू।
आओ, वो यहीं पर डांस करके करते वेलकम वेलकम वेलकम सेम टू यू, यही करते। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो रंक को राजा बना देते, पत्थर को हीरा बना देते, नदी को गंगा बना देते भैया, अपात्र को पात्र बना करके सुपात्र बना देते, जीवात्मा को महात्मा बना देते और महात्मा को परमात्मा बना देते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती सबकी हो जाती, और जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो किसी की भी नहीं होती। भगवान रूट जाए तो दुनिया भले ही कितनी ही साथ में रहे, हलवा काम नहीं आता है, कौरवों के साथ कितनी भीड़ थी एक नहीं बचा, और पांडवों के साथ भीड़ नहीं भगवान थे एक नहीं मरा। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत भगवान जिसके पक्ष में होते हैं उसकी जीत होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान किसकी सुनते? भक्त की। भक्त कौन? जिसमें भाव हो, भरोसा हो और भोलापन हो। तो भरोसा इसमें भाव कैसा हो? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। रामायण में भी लिखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जिसके अंदर भाव होगा वो भगवान के अलावा कहीं पर भी मत्था नहीं टेकेगा। इसलिए हमारी एक बात सुनो, कान खोलकर हिंदुओं एक बात मान लो, हम बहुत पक्की बात कह रहे हैं। हनुमान जी कली काल के देवता हैं, तो मैं तांत्रिक मांत्रिक दरबारों में बाबाओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा।

0: और बेटियां में आज देखिए। सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Thumbtack presents... Tile trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे, सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
0: बिना सहारे के मैं दो कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
1: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
23: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then simply stop by to pick up your keys. The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
3: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग, जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंजी फिजा। लद्दाख में अचानक जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्रि की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में भी बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, आज दिन भर हल्की बारिश का अनुमान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवल, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में है माहिर, तटीय रक्षा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक अभियान चलाने की क्षमता से लैस है मालवन, टॉरपीडो और अन्य आधुनिक हथियार प्रणालियों से है सुसज्जित। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार, देश की रक्षा निर्माण क्षमता और नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर के पास भगवान के तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है तैयार, सेवादारों ने रथों की जांच और रखरखाव का काम शुरू किया। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की पवित्र वापसी का प्रतीक, 7 दिनों तक मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद होती है वापसी यात्रा। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भगवान की झलक पाने के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालु की लंबी लाइन लगी। बाहुड़ा यात्रा दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु, पुलिस प्रशासन ने की विशेष तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें रहेंगी सक्रिय। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। नागपुर की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ, हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन को सौभाग्य। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। मां नैना देवी के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। कावड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर भी होगा सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, कावड़ यात्रा से पहले पुलिस करेगी डीजे पेन ड्राइव की जांच, केवल मंजूर किए गए भक्ति गीत ही बजाने की इजाजत होगी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कावड़ मेले की तैयारियां तेज की, श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर में भक्ति और आस्था की अनोखी तस्वीर नजर आई, एक भक्त ने चढ़ाया 6 तोले का सोने का छत्र। अगरतला में आज होगा 7 दिवसीय खर्ची मेले का शुभारंभ, चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, महोत्सव में होगा संस्कृति और लोक परंपरा का प्रदर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब, घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में आस्था अपने चरम पर, मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त रामलला के दर्शन कर खुद को महसूस कर रहे हैं धन्य, राम भक्तों की भारी भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्ति माहौल में डूबा। झांसी में सावन की तैयारियां तेज, कावड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक। कावड़ यात्रा पर सुरक्षा के कड़े होंगे बंदोबस्त, सीसीटीवी से होगी भक्तों की निगरानी। उज्जैन में बाबा महाकाल के उतारे गए विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें श्रद्धालु। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया दिव्य भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकार। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग चंदन और सिंदूर किया गया अर्पित, दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म सितारे अक्षरा सिंह, निकितिन धीर, कार्तिक चंदन और अनुष्का कौशल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। बलरामपुर में सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। बलरामपुर के तुलसीपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने तुलसीपुर मंदिर परिसर स्थित गौशाला का किया निरीक्षण, मवेशियों को खिलाया चारा। चंडीगढ़ में ब्रिक्स के प्रतिनिधिमंडल ने किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम देखने पहुंचे ट्रेनी, आईएएस अधिकारी, एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स, इतिहास के बारे में बच्चों को दी गई जानकारी। श्रीनगर में एनजीओ के जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की हुई जांच। पश्चिम बंगाल को मिली 50 एसी बसों की सौगात, सीएम शुभेंद्र अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया उन्हें रवाना। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने जीविका के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा हर जगह होगी जीविका दीदियों की नियुक्ति। हरिद्वार में सीएम धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना का किया शिलान्यास, 235 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा है ये कॉरिडोर। पंचकुला में सीएम सैनी युवा संसद एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल, युवाओं के साथ किया संवाद। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह ने भी वर्चुअल ली इसमें की शिरकत। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को दी मंजूरी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होगा आधुनिकरण। परिवर्तन योजना के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे करीब 2 लाख ट्रक और बसें, नए BS6 और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए डिस्काउंट और सब्सिडी देगी सरकार। गुवाहाटी में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का हुआ शुभारंभ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पहले एकेडमिक सेशन का किया उद्घाटन। बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए प्रयागराज के सरकारी अस्पताल ने पेश किया मोबाइल कर्फ्यू प्लान, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से प्रभावित बच्चों का किया जा रहा है इसमें इलाज। बिहार के समस्तीपुर में कैंसर संस्थान के द्वारा निःशुल्क 5 दिवसीय कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन, आधुनिक उपकरण से की जा रही है जांच। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव, बारिश से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। दिल्ली के मोती बाग में भी हुई जोरदार बारिश, तापमान में भी आई गिरावट। मुंबई में भी सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। रुद्रप्रयाग की छोड़ी में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। भारी भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, भक्तों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में आया उफान, नदी के बीच में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे युवक का रेस्क्यू कर बचाई उसकी जान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राहत बचाव का काम लगातार जारी। बड़गांव में भारी बारिश से आई बाढ़, प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव का कार्य। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों और दुकानों को पहुंचा नुकसान। रियासी में भारी बारिश से सलाल जलाशय का बड़ा जलस्तर, बांध के खोले गए गेट। कटरा में भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। भलेसा में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, जनजीवन अस्त व्यस्त। राममन के धुंध भरे पहाड़, मानसून की बारिश से बने खूबसूरत नजारे। वलसाड में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, यातायात प्रभावित। असम में बाढ़ से 16 जिले हुए प्रभावित, सभी जिलों में राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। असम का शिवसागर जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित, 3.5 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 6 लाख लोग हुए प्रभावित, 71 राहत शिविर में शिफ्ट किए जा रहे हैं लोग। असम के 872 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 12,284 लोगों को राहत शिविर में किया जा रहा है शिफ्ट। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को पर

कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना

0: जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
3: सोशल मीडिया पर इस मजदूर को इतनी मेहनत करने के बावजूद मुस्कुराते देखना लोगों को बहुत भा रहा है। हर कोई ये समझ रहा है कि इस मुस्कान के पीछे न जाने कितनी अधूरी ख्वाहिशें दबी हैं और इतनी मेहनत आखिर एक बाप, एक बेटा या एक भाई क्यों करता है। इन तस्वीरों को देख लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां हर इंसान को जीना सिखा देती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बेशक भावुक हो जाएंगे और इस बच्चे पर आपको बेहद प्यार भी आएगा। बच्चे की माँ सबवे में थकान से जूझते हुए सो जाती है। अब इस माँ के इस छोटे से बेटे को बस एक ही चिंता है कि कहीं नींद में झटके से माँ को चोट न लग जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश में है कि माँ को चोट लगने से बचा ले। अब जो भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख रहा है, माँ बेटे की इस बॉन्डिंग और छोटे से बेटे को चिंतित देखकर इमोशनल हो रहा है। दादा और पोती के बीच का प्यार और बॉन्डिंग देखनी है तो ये तस्वीरें देखिए। दादा खाना खा रहे हैं और पोती बड़े प्रेम से किचन में रोटी बनाती अपनी माँ से गर्मा गर्म रोटी लेकर दादा को देने जा रही है। रोटी मिलने के बाद दादा अपनी पोती को प्यार भरा आशीर्वाद भी देते हैं। मानो बस इसी आशीर्वाद और प्यार के लिए पोती दादा को गर्मा गर्म रोटियां परोस रही है। लोग इस वीडियो को देख इमोशनल हैं और दादा पोती की इस बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल न जाने के लिए न सिर्फ बहाने बनाते हैं बल्कि दहाड़े।
4: तो जब सिगरेट, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ, क्योंकि मगर एक दिन जरूर होगा, हमें यकीन है आप पे, निकोटेक्स।
5: Our journey started 160 years ago because it's the devotion of fans that keeps this country moving. And across every mile, every engine, and every dream, we protected them all. Valvoline, the original engine oil.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायु सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज सातवां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू, गुंडीचा मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग, जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंजी फिजाएं। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्र की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त। लद्दाख में अचानक जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट।

आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी मेघ मल्हार भक्ति अपार की। जी हाँ, इन दिनों पूरा देश आस्था के ऐसे ही अलौकिक और मनमोहक दृश्यों का साक्षी बन रहा है। कहीं मानसून की रिमझिम फुहारों के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्ति भाव से सराबोर नजर आ रही है। कहीं बादलों की ओट में बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो चरम पे है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं गणपति बप्पा के स्वागत की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में भक्ति का रंग और गहरा होता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से ऐसा लगता है, ऐसा व्यतीत होता है मानो प्रकृति भी ईश्वर के आराधना में शामिल हो गई हो। बादलों की गर्जना शंखनाद बन गई है, बिजली की चमक दीपों की आभा बन उठी है और बारिश की हर बूंद पुष्प बनकर भगवान के चरणों में अर्पित हो रही है। और सिर्फ बारिश का ही मौसम नहीं, ये विश्वास परंपरा और सनातन संस्कृति के मंगल महोत्सव की एक छटा है, जहां हर भीगा हुआ रास्ता किसी तीर्थ की ओर जाता नजर आता है और हर जयघोष में भक्ति की अनुगूंज सुनाई देती है। आज हम आपको अगले आधे घंटे तक देश भर से आई अटल आस्था की ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे, जहां मानसून से मौसम ही नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव बन गया है।

वो दिन सचमुच कितने दिव्य होते हैं जब आसमान से सिर्फ पानी नहीं मानो भगवान का आशीर्वाद बरसता है, जब मेघों की रिमझिम और मंदिरों की घंटियां एक साथ गूंजती हैं, जब बारिश की हर बूंद के साथ जय जगन्नाथ और जय श्री बद्री विशाल का जय घोष भी वातावरण में घुल जाता है। आजकल श्रद्धालु ऐसे ही दिव्य दिनों के साक्षी बन रहे हैं।

तस्वीरें भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति के मिलन को दर्शाती है। रिमझिम फुहारों के बीच भगवान के जयकारों से वातावरण पूरी तरह से आस्था में डूबा हुआ है। बारिश के बीच श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति देखने को मिल रही है। आसमान से बूंदों के रूप में गिरने वाली ये फुहार तन मन को भिगोने के साथ साथ अंतरात्मा को भी पवित्र कर देती है। क्या अद्भुत संयोग है, पुरी से लेकर दिल्ली तक और बद्रीनाथ से लेकर मुंबई तक कहीं रिमझिम फुहारे हैं तो कहीं झमाझम मूसलाधार, और इसके साथ उमड़ रहा है आस्था का अपार सैलाब।

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। अब ये बादल मॉनसून की बची बारिश का कोटा पूरा करने वाले हैं। दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई है। मॉनसून केवल दिल्ली NCR में ही नहीं पहाड़ों पर भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और इन सब के बीच मैदान से लेकर पहाड़ तक भगवान के दरबार श्रद्धालुओं से गुलजार है।

0: ओडिशा के पुरी धाम में भक्तों पर महाप्रभु की कृपा बरस रही है। गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विश्राम कर रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का सातवां दिन है। भगवान के दर्शन के लिए अडापा मंडप में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जिस दिन भगवान अपने रथ पर विराजे थे उस दिन भक्तों ने पुष्पों की वर्षा की थी और ऐसा लगा मानो प्रकृति ने भी बारिश करके महाप्रभु का अभिनंदन किया हो। इसके बाद भी पुरी में कई बार बारिश हो चुकी है। पहाड़ों पर भी बरसते बादलों के बीच आस्था का सफर जारी है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। यात्रा का ये अनुभव श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन रहा है। इधर माया नगरी मुंबई में मानसून शहर को भिगो रहा है और उसी के साथ गणेश उत्सव की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ रही है। मुंबई के लाल बाके राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला में गणपति उत्सव का रंग बिखरने लगा है। बापा के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए भक्त रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल जगमगाती लाइट्स मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। यहाँ बापा के लिए एक से बढ़कर एक आसन भी मौजूद है। राजस्थान में मॉनसून रफ्तार पकड़ चुका है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक राज्य के पूर्वी हिस्से में मॉनसून सक्रिय है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश भर में मॉनसूनी गतिविधियां तेजी से रहेंगी और कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर भी चलेगा। आसमान से इंद्रदेव की कृपा बरस रही है तो भक्त चढ़ावे की बारिश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरस रहा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। जुलाई महीने में अब तक 6 चरण की मासिक गणना का काम पूरा हो चुका है और इन 6 चरणों में 29.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद राशि प्राप्त हो चुकी है। मानसून की हर बूंद धरती को नया जीवन देती है, सूखी मिट्टी को हरियाली में बदल देती है, नदियों को भर देती है, खेतों को मुस्कुराने का कारण देती है। ठीक उसी तरह भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा मनुष्य के भीतर सूख चुकी आशा को फिर से जीवित कर देती है। वो मन से भय मिटाती है, अहंकार को धो देती है और जीवन को विश्वास शांति और आनंद से भर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट कुकीज टुडे।
1: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज सातवां दिन है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के प्रवास पर है। ऐसे में भक्तों की भीड़ भी गुंडीचा मंदिर में लगातार जुट रही है। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। देखिए बारिश हो या धूप लोग भगवान के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं।

0: भगवान अपनी मौसी के घर आए हैं, अपने जन्म स्थान। अड़ापा मंडप में भक्तों की भीड़ है। पालनहार जगत के नाथ को करीब से देखने का मौका मिला है। कोई कैसे छोड़ दे भला ये पावन अवसर। और फिर भगवान के अड़ापा दर्शन का अपना महत्व भी तो है। सुमंदिर प्रांगण में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। जब से भगवान गुंडिचा मंदिर पधारे हैं, धूप हो कि बारिश, भक्तों की लंबी कतारें हर दिन देखने को मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है।
1: हमारे पास पूरे 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस तैनात हैं। किसी को भी अगर किसी का भी तबीयत खराब हो, उनको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या IDH हॉस्पिटल तक हम लोग ले जाएं। फायर डिप्लॉयमेंट बेसिकली पूरा वाटर स्प्रेइंग से शुरू करके ट्रैक टीम्स भी हमारे हैं। किसी को अगर घुटन हो या सफोकेशन वो लोग फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग उनको ऑक्सीजन कैनिस्टर के माध्यम से उनको हेल्प कर रहे हैं। ये सारे व्यवस्था जो है अभी एक्सटेंसिव वे में रहेगा आगे तक।
0: पूरे ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित स्कॉन मंदिर की है, जहां रथ यात्रा उत्सव की रौनक छाई रही। फूल मालाओं से भक्त रथ यात्रा का स्वागत करते दिखे। भगवान को अलग अलग मिठाइयां और फलों का भोग लगाया गया और फिर प्रसाद को भक्तों में बांटा गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव में डूबकर गाते झूमते रहे।
2: बहुत दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हर साल निकलती है और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शोभा यात्रा भी कहते हैं।
3: बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी के दर्शन करके, उनको सुकून मिलता है दर्शन करके, इसीलिए मंदिर आते।
0: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गयी, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते भगवान के रथ की रस्सी खींचते हुए और रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और फिर मंदिर परिसर में इस रथ यात्रा का समापन हुआ। बिहार में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य रंग देखने को मिले। यहाँ मुजफ्फरपुर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई इस रथ यात्रा में करीब 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। ढोल, मृदंग, झांझ और करताल की धुन पर हरिनाम संकीर्तन गूंजता रहा और भक्त भक्ति भाव से झूमते रहे। अब महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो उसमें श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह दिखा। 31 फीट ऊंचे और करीब 5 टन वजनी रथ पर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रथ को खींचा। खास बात ये रही कि भक्तों ने भगवान से सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं बल्कि रूठे मानसून की जल्द वापसी, किसानों के खेतों में हरियाली और पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल बरसाकर रथ यात्रा का स्वागत किया। शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी इस रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के सामूहिक भजन गायन ने समूचे वातावरण को भक्ति और अध्यात्म के रंगों से सराबोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। उत्तराखंड में तो मॉनसून के बीच आस्था का प्रवाह लगातार जारी है। चमोली में बसे बद्रीनाथ धाम में बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में पारंपरिक हरेला पर्व की भी धूम है।

0: पहाड़ों पर बरसते बादल, ठंडी हवाएं और हर कदम पर मौसम की परीक्षा, लेकिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन की आस में श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु सहज दर्शन भी कर रहे हैं। मानसून के बीच बद्रीनाथ यात्रा लगातार जारी है, तो ऐसे में रात के समय अक्सर बारिश होती है, जबकि सुबह मौसम साफ हो जाता है। इसी कारण श्रद्धालु आराम से दर्शन भी कर पा रहे हैं। बारिश के चलते अलकनंदा उफान पर जरूर है, लेकिन प्रशासन ने यात्रियों से इस दौरान खराब मौसम में एहतियात बरतने की सलाह खासतौर पर दी हुई है।
1: धाम में आना लगातार जारी है। मौसम की बात करें तो रोजाना रात्रि में चमोली जनपद में बारिश हो रही है, हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में नुकसान की भी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है वो तड़के सुबह ही पूरी तरह से खुला हुआ है और यात्रा लगातार जारी है बद्रीनाथ धाम में। इस समय जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अच्छे दर्शन और सुगम यात्रा उनकी हो रही है, क्योंकि दिन भर बारिश पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। ऐसे में रात्रि की बारिश यात्रा पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर उनके दर्शन हो रहे हैं और यात्री भी पूरी तरह से गदगद। हालांकि बद्रीनाथ धाम में बारिश, जो रात्रि की बारिश है, उसके बाद अलकनंदा नदी का जो बहाव है वो अपने पूरे विकराल रूप पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदिर की बात करें या पैदल रास्तों की बात करें, यहाँ पे हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिर आते हुए और दर्शनों की लाइन में दिखाई दे रही है।
0: इस बीच धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह भी बड़ा हुआ है। बारिश में लगातार भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन रहा है। दूसरी तरफ सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भारत चीन सीमा से सटी नीत घाटी का पार्वती कुंड भी श्रद्धा का केंद्र इन दिनों बना हुआ है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल पर दूर दराज गाँव के लोग विशेष अनुमति लेकर आए। उन्होंने पार्वती कुंड में स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और पवित्र जल अपने गांव के शिव मंदिरों के लिए साथ लेकर गए।
1: चमोली में नीति घाटी में बाड़ा होती बॉर्डर, जो भारत चीन सीमा के समीप स्थित है, भारत चीन सीमा पर ही लगा हुआ है, यहीं पर मौजूद है पार्वती कुंड। पौराणिक से यहाँ की जो यात्रा है वो यहाँ के लोग करते हैं, खासकर नीति घाटी के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत व्यापार जब होता था तब इसी रास्ते को यूज करते थे, इसी रास्ते का उपयोग करते थे, यहीं पे वे लोग सामान लेकर आते थे। और यहाँ पे पार्वती कुंड है जिसे पवित्र माना जाता है, और खासकर सावन का महीना जब पहाड़ों में शुरू होता है तो नीति घाटी के अलग अलग गाँव के जो दर्जनों गाँव हैं, यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों की जो यात्रा होती है, ये लोग यहाँ से पार्वती कुंड जाते हैं और वहाँ से जल लेकर वहाँ पे पहले तो वहाँ पे पूजा स्नान करने के बाद पूजा स्नान करते हैं और उसके बाद वहां का जल वो लेकर आते हैं और सावन के महीने में भोलेनाथ पर ये चढ़ाते हैं, इसलिए वो लोग सावन में वहां जाते हैं, खासकर अष्टमी और जो रक्षाबंधन है इस दौरान भी वहां पे पहुंचते हैं।
0: दरअसल भोटिया समाज के इन लोगों की ये परंपरा सदियों पुरानी है। हर सावन मास में ये समाज इसी तरह इस कठिन यात्रा को पूरा करता है। प्रशासन, भारतीय सेना और ITBP पूरे रास्ते भर सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन जैसी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। अब सीमा दर्शन योजना और आसान इनर लाइन परमिट व्यवस्था की वजह से ही देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु भी इस पवित्र स्थान तक पहुंचने लगे हैं। एक तरफ बादलों की चुनौती, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों का कठिन रास्ता, लेकिन आस्था का सफर हमेशा हर मुश्किल से बड़ा साबित होता रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल का दर्शन हो या पार्वती कुंड में सदियों पुरानी परंपरा, आज भी उसी श्रद्धा के साथ आस्थावान यहां पर पहुंच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैष्णो देवी धाम में भारी बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों की आस्था अडिग है। माता वैष्णो देवी धाम में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के चलते एहतियातन यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। हालांकि यात्रा रुकी है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल भी नहीं रुका है, वो अडिग है। देखिए, भवन पर मौजूद श्रद्धालु पूरे धैर्य के साथ मौसम के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही विश्वास है, माँ ने बुलाया है तो वो दर्शन भी जरूर देंगी।
3: इस समय हम कटरा वैष्णो देवी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दर्शनी गेट के दृश्य हैं। आपको बता दें कि 18 तारीख की रात 8-9 बजे के करीब जो है वो वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद के कुछ दृश्य इस तरह के हैं। यहाँ पर श्रद्धालु कुछ मौजूद हैं जो तभी से जो है वो अपने दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कब ये मौसम ठीक हो और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहीं से माथा टेक रहे थे, आइए इनसे बात करते हैं।
4: कहाँ से हैं आप?
5: हम बिहार से हैं, बेतिया जिला।
4: कब से आए हैं कटरा में?
5: हम तो 3 दिन हो गए आए हुए, संडे को आए थे
6: जी। माता बहुत शक्तिशाली है, जो कोई जो कहता है वो इच्छा पूरा करती है, बहुत दयालु माँ है। यहाँ हर श्रद्धालु का श्रद्धा पूरा होता है, जो कहता है वो पूरा होता है।
7: श्रद्धा से हर्षो उल्लास से आए लोग, माता रानी से रिक्वेस्ट है कि अभी भी बारिश रोक दे।
8: बस माता रानी से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द साइन बोर्ड द्वारा माता वैष्णो देवी का मंदिर यात्रा चालू कर दिया जाए और हम लोग का दर्शन हो जाए और हम लोग हर्षोल्लास के साथ जाए।
3: LED आप देख रहे हैं मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर कि इस पे जो है वो लगातार माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो दिखाए जाएं, ताकि कटरा में पहुंचे हुए श्रद्धालु जो है वो मायूस ना हो और यहीं से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर कर भी वापिस लौट सकें।
2: भले ही बप्पा के आगमन में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। झमाझम मानसून के बीच गणेश उत्सव के लिए खरीदारी भी लगातार जारी है।

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: ये बापा के लिए आसन है एक से बढ़कर एक, शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाप्पा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बाप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बापा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।

0: और बेटियां में आज देखिए। सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संसार समाया है। सावलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अब की बार सावलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सांवरिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सांवरिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की मासिक गणना के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सांवलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्ध पोत, मालवन कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन।

0: भक्ति की अनूठी भक्ति, एक भक्त की अनूठी भक्ति। मुराद पूरी होने पर माता चामुंडेश्वरी मंदिर में चढ़ाया 6 किलो से ज्यादा सोने का छत्र।
1: नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ गूंजी फिजाएं।
0: तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया।
1: हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्र की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त।
0: लद्दाख में अचानक जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने में माहिर है, तटीय रक्षा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 7वां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां तेज। गुंडीचा मंदिर के पास भगवान के तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा तैयार, सेवादारों ने रथों की जांच और रखरखाव का काम शुरू किया।
0: नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा पाठ। कावड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर भी होगा सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, कावड़ यात्रा से पहले पुलिस करेगी डीजे पेन ड्राइव की जांच, केवल मंजूर किए गए भक्ति गीत ही बजाने की इजाजत होगी। वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेला की तैयारियां तेज की, श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। झांसी में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक।
1: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग परेशान। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्मी सितारे अक्षरा सिंह, निकेतन धीर, कार्तिक चंदन, अनुष्का कौशल ने किए बाबा के दर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर में भक्ति और आस्था की अनोखी तस्वीर, एक भक्त ने चढ़ाया 6.25 तोले का सोने का छत्र। बलरामपुर में सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, मां का आशीर्वाद दिया।
0: बलरामपुर के तुलसीपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा पाठ। सीएम योगी ने तुलसीपुर मंदिर परिसर स्थित गौशाला का किया निरीक्षण, मवेशियों को खिलाया चारा। चंडीगढ़ में ब्रिक्स के प्रतिनिधिमंडल के किया योग, लोगों से योग करने की अपील की। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम देखने पहुंची ट्रेनी, आईएएस अधिकारी, एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स, इतिहास के बारे में बच्चों को दी गई जानकारी। श्रीनगर में एनजीओ में जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
1: ओएमजी 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माय डॉग का ट्रेलर सामने आया, 31 जुलाई को रिलीज हो गया। थलपति विजय के जन नायकन की रिलीज में 2 दिन बाकी, नया प्रोमो हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी हुई कहानी, 7 अगस्त 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी वेब सीरीज।
3: सर हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं, उनकी हाइट के एडवांटेज को काउंटर कर
4: हमने हमारी कारगिल ड्रास सेक्टर की सारी पोस्ट।
1: 17 साल के बाद पर्दे पर लौट रहे अफोंसो क्वांगलू, 4 सितंबर को थिएटर्स में री रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की हुई सगाई, अपने मंगेतर माइल्स के साथ सगाई की तस्वीरें शेयर की।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवान को अपने बेड़े में शामिल किया।
1: पूरे जगन्नाथ में जोर शोर से जारी है बहुड़ा यात्रा की तैयारी, भारी संख्या में शामिल हो रहे भगवान जगन्नाथ के भक्त।
0: हिमाचल के बिलासपुर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है गुप्त नवरात्र का जश्न, आज अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त।
1: पहाड़ों में अजब गजब हुआ ये मौसम, कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी तो लद्दाख में मानसून में हो रही जमकर बर्फबारी।
0: बिग बॉस सीजन 20 का ऐलान हुआ, हर बार की तरह सलमान खान कर सकते हैं शो की मेजबानी।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। और लंच टाइम में सबसे पहले बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की करते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में आज और इजाफा हो गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल किया। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में फाइनली कमीशन किया गया। इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
1: INS मालवान को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया था और अब स्वदेशी युद्धपोत INS मालवान भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया है। तो जाहिर है इन युद्धपोतों के एक के बाद एक नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत बढ़ी है।
0: और देखिए INS मालवान को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। माही क्लास का INS मालवान एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का दूसरा युद्धपोत है। इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है। आकार में छोटा होने के बावजूद मालवान बहुत शक्तिशाली और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और मल्टीपल रोल निभाने में सक्षम है। इसकी हाई सटीक ऑपरेशनल क्वालिटी और लंबे वक्त तक समुद्र में रहने की क्षमता इसे उथले जल क्षेत्र में बेहद कारगर बनाती है।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन As far as naval ship building is concerned, India has always had an edge, and we had carried our legacy forward.
3: Anti-submarine shallow watercraft Malvan आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये shallow waters यानी उथले जल में किसी भी तरह के submarine का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी fleet के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्रगिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन। मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से।
1: तो देखिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ये नई मिसाल है INS मालवान, जिसके नौसेना में शामिल होने से इसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि INS मालवान कैसे जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।

ये है समंदर का नया महाबली INS मालवन। हिंदुस्तान का एक और शक्तिशाली आत्मनिर्भर महायोद्धा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की ये सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में एक ऐसे महाबली की एंट्री हुई है जो पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइन बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन जंग के मैदान का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को निस्तनाबूद कर सकता है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है, चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वाटर जेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम

0: आसानी से भेद सकता है। समंदर में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में ये सक्षम है। इसमें 30 मिलीमीटर की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन लगी है, जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती हैं। इस युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवण के नाम पर रखा गया है। ये जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। INS मालवण एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोत है। INS मालवण इनमें दूसरा है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचीन शिपयार्ड बना रहा है और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवण की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिशन जिंदगी की।

0: देखिए, देश के कई राज्यों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में देखा जा रहा है। असम में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं।
1: देखिए, ऊपरी असम के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। सेना असम में बड़े ही स्तर पर ऑपरेशन जल राहत चला रही है, जिसके तहत अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है। देखिए, असम के शिवसागर में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घरों में जाकर घुस गया है। खेत खलिहान डूब गए हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। सेना के जवान नाव और विशेष बचाव उपकरणों की मदद से लगातार जलमग्न इलाकों तक पहुंच रहे हैं।
0: अब देखिए, अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है और राहत अभियान सिर्फ लोगों को निकालने तक सीमित भर नहीं, सेना प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। तो देखिए, कैसे इन हालातों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्धस्तर पर लगातार बचाव अभियान चला रही हैं, वो दिखाते हैं आपको।

ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है। और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है, जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में छह

0: महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है, खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही, वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू।
5: रात से
4: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है, सेलंगट हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अशफानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
6: लगातार हो रही बारिश से चंबा की रावी नदी खतरनाक रूप से उफान पर है और इसी बीच नदी के तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति फंस गया। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और तेज धार खराब मौसम के बावजूद टीम ने पूरी तैयारी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।
7: हर कदम बहुत सावधानी से उठाया गया। सीढ़ी के सहारे आखिरकार टीम ने उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस सफल रेस्क्यू के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और टीम के साहस की सराहना की। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नालों के पास ना जाएं और किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। मौसम खराब होने पर सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है, इसीलिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित जरूर रहें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर, जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही है। मॉनसून के बीच में यहाँ ट्रैकिंग का रोमांच चरम पर है। भारी बारिश के बावजूद उच्च हिमालयी ट्रैकों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, खासकर गुप्त खाल ट्रैक जो करीब 16,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और नीति घाटी को माणा घाटी से जोड़ता है। ये ट्रैक इन दिनों ट्रैकिंग प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। देश भर से सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अद्भुत प्राकृतिक नजारे का मजा ले रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे देश के अंतिम गाँव में रौनक लौट आई। पर्यटकों की इस बम्पर आमद से स्थानीय कारोबारी, होम स्टे संचालकों और गाइडों के चेहरे पर खुशी की लहर है।
8: पहाड़ों में जहां चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस बार बर्फीले ट्रैक पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में शुरू हुए, जून के शुरुआत में शुरू हुए गुप्तखाल ट्रैक इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं, विशेषकर वही लोग इन ट्रैकों पर जाते हैं, खासकर नीति घाटी और माणा घाटी, दोनों ही घाटियों से यहाँ पहुँचते हैं पर्यटक। बड़ा ही कठिन होता है, हर तरफ बर्फ और मौसम बदलते ही बर्फबारी यहाँ देखने को मिलती है। लगभग 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये मौजूद हैं और यहाँ जाने के लिए बहुत समय भी लगता है, पोर्टरों की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही ट्रैकिंग किया जाता है। गुप्तखाल जो एक्सपीडिशन है, उसके लिए इस समय पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मानसून का दौर शुरू है, लेकिन उच्च हिमालय क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो पर्यटक हैं, जो बंगाल, दिल्ली, तमाम अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पहुँच रहे हैं, वे इन यादों को अपनी बना रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो प्रशासन की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है सीमा दर्शन के तहत, अब अनुमतियां जो हैं, चाहे वो आप भारत चीन सीमा की बात करें या फिर तमाम ट्रैकिंग रूटों की बात करें, यहां जाने के लिए अब अनुमति आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है, बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाती है। यही कारण है कि जो इस बार चमोली के, चाहे देवताल की बात करें, पार्वती कुंड की बात करें, या फिर ये गुप्तखाल ट्रैक हुआ, या फिर कालंदी पास, या तमाम जितने भी ट्रैक हैं, हर जगह पर्यटक आसानी से पहुँच रहा है। कमलन सिलोरी, चमोली, GNT।
9: सीमाएं हैं उनको लोगों के लिए अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं लगातार, उसके क्रम में लोग उसके दर्शन में काफी रुचि दिखा रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 1500 से अधिक लोग आ चुके हैं, जो विभिन्न स्थानों में देवताल, सरस्वती कुंड, नीति क्षेत्र में, माणा क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में काफी लोग आए हैं, और उसके लिए जनपद प्रशासन द्वारा उनको ILP और अन्य औपचारिकताओं से लगातार लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि लोग उन क्षेत्रों में जाएं।
6: देखिए, पूरे देश में मॉनसून जोर पकड़ रहा है। ऐसे मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
7: और देखिए, देश के 18 राज्यों में बादलों का डेरा है। इसी दौरान कुछ एक जगहों पर करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अंदेशा है।
10: बहुत भारी वर्षा की चेतावनी, यानी कि हैवी टू वेरिएबल रेनफॉल एक्टिविटी चेतावनी जो है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी है। साथ साथ में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आज के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, यानी कि अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में देखेंगे हम बाकी का जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो अभी इस मैप में देख सकते हो, साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राज्यों में देखें अगर हम, तो गुजरात रीजन है, वहां पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जो है रेड अलर्ट साथ जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी जो कोंकण का क्षेत्र है, वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी हो सकती है। वहीं कल के दिन कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी जो घाट के क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र के, वहां पर होने की जो संभावना है। जी।
11: अच्छा, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो मेघालय और असम में भी जो है लगातार नागालैंड के हिस्सों में भी जो है बारिश जो है अच्छी खासी देखी गई, हालांकि वहां पर आज की स्थिति क्या है क्योंकि थोड़ा सा कम।
10: जी जी, जो लगातार वहां पर वर्षा गतिविधि चल रही थी उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी वाइज जो है कमी आ रही है, तो जो वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी चल रही थी उसमें हमारा अनुमान है कि अब आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी ही जो है रह सकते हैं 4 से 5 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से असम मेघालय में और नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा का जो नागालैंड का क्षेत्र है वहां पर।
11: आने वाले अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं, क्योंकि ज्यादा दिन का तो डेटा आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आने वाले एक हफ्ते की मैं बात करूं तो किस तरीके की स्थिति रहने वाली, वापस से उमस और गर्मी का तो लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा।
10: देखिए अभी जो एक ये इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी का जो दौर चल रहा है इसमें जरूर 2 से 3 दिन के बाद थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का जो फोरकास्ट चल रहा है उसमें 2 दिन के बाद में जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी इंटेंसिटी में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो वर्षा गतिविधि है वो अभी अच्छी रहने की संभावना है, मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, इन सभी क्षेत्रों में जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है। देखिए अभी हम देखेंगे तो अगले 2 दिनों के दौरान जैसे बताया भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है पहाड़ी राज्यों में भी, साथ साथ में जो प्लेन एरियाज हैं, वहीं पश्चिम भारत में हम देखेंगे तो राजस्थान में भी जो वर्षा गतिविधि जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, जो है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है।
6: अब देखिए मुंबई में मानसून मेहरबान है, बीएमसी ने लोगों से भारी बारिश को लेकर सावधान रहने की अपील की है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे के घाट इलाके में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, साथ ही लोगों को पानी उबाल कर पीने की यहां पर सलाह भी दी गई है।
12: इस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दी गई है वो ये भी कि आप अपने घरों में जो पानी पीते हैं उसे गर्म करके पीजिए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से झीलें जो हैं वो पूरी तरह से भर गई हैं, जिसमें नालों का पानी भी जा चुका है, साथ ही साथ जो गंदी मिट्टी है वो भी इसमें मिश्रित हो गई है। अगर इस तरह से गंदा पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है, इसलिए बहन मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी ही शक्ति के साथ 2 जो बड़ी चेतावनी दी है वो ये कि पहले अगले 24 घंटों तक लगातार मुंबई में बारिश होनी है, उसके बाद भी लगातार एक हफ्ते तक मध्यम धीमी से बारिश होगी, इसलिए उन जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जैसे समुद्र है जहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, साथ ही साथ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे खुद भी ना खड़े रहें और अपनी गाड़ियों को भी ना पार्क करें, साथ ही साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो वो चीज़ें अपने साथ ले चलें जिससे आप अपनी और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है घर बैठे ही करें, तब जाकर के एक गुड न्यूज मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
6: चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
14: और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
15: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
16: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
17: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
16: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
18: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: मानसून के बीच चमोली के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, 16,400 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले गुप्तखाल ट्रैक पर उमड़ रही सैलानियों की भारी भीड़। लद्दाख में अचानक से जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट, पहुंचने लगे सैलानी। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन। अजमेर में देखने को मिली एक भक्त की अनूठी भक्ति, मुराद पूरी होने पर माता चामुंडेश्वरी मंदिर में चढ़ाया 6 किलो से ज्यादा वजनी सोने का छत्र। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ की यात्रा, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्र की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: देखिए पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये रथ यात्रा उत्सव का आखिरी पड़ाव है, मंगलवार को इससे जुड़े हुए कई सारे अनुष्ठान भी यहां पर संपन्न किए गए,
3: रथों की जांच की गई, साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई गई और इसमें भगवान जगन्नाथ उनके भाई बहन के तीनों रथों को दक्षिण दिशा में मोड़ कर रखा गया। यहीं से 24 अप्रैल को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी, इससे पहले पुरी में हर दिन परंपराओं का दौर जारी है, पंचमी वाले दिन पुरी में हेरा पंचमी का पर्व मनाया गया। दरअसल मान्यता ये है कि भगवान के बिना बताए चले जाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पांचवें दिन वो स्वर्ण पालकी में सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं।
2: यहाँ पर वो भगवान जगन्नाथ से शीघ्र लौटने का आग्रह करती हैं। इस पूरे आयोजन में भक्ति प्रेम और दाम्पत्य जीवन के भावों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। गुंडीचा मंदिर में भक्त महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वहीं जगन्नाथ धाम में पूजा पाठ भी लगातार जारी है।
4: भगवान जगन्नाथ का गुंडीचा मंदिर में प्रवास अब खत्म होने वाला है, बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 जुलाई को एक बार फिर निकलेगी भव्य रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य निवास श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की रथ यात्रा करेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है, इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे। वापसी के दौरान देवताओं का रथ माउसी माँ मंदिर के पास रुकता है, भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए गए। जिस रथ में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे, उन रथों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, ताकि गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए।
5: तो हम खुद देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया होगा, कुछ कील वील निकल गया हो तो उसको चेकिंग करते हैं, और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोरा कुछ खेल वेल निकल गया था।
4: रथों को परखने के बाद यहाँ एक और खास परंपरा निभाई गई, दक्षिण मोड़ परंपरा। इसमें तीनों रथों को गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से हटाकर दक्षिण दिशा में नाग चना द्वार तक लाया गया और नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन तीनों रथों को वापसी के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा गया।
6: रथ दक्षिण मोड़ बोला जाता है और एक अहम प्रक्रिया है जिसमें रथ को दोबारा से मोड़ के गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से नागचाना द्वार में जाके उसकी स्थापना की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं। उसके साथ हमारे जो रथ के जो भोई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं और सब लोग मिल के इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
4: 24 जुलाई को बोहरा यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ने का अनुमान है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर लगाम लगाने और श्रद्धालुओं की सहूलियत के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
7: बाहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट सभी लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। सारा अरेंजमेंट लाइक पुलिस अरेंजमेंट, हमारा वाटको के तरफ से पानी का व्यवस्था, मेडिकल के तरफ से हेल्थ टीम्स की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्थाएं अभी हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है।
4: 9 दिन मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में रहने के बाद भगवान अपने मुख्य निवास लौट रहे हैं। अब रौनक श्री मंदिर में होगी जब भगवान अपने पुराने स्वरूप में श्री मंदिर में स्थापित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राजस्थान के अजमेर लिए चलते हैं। आस्था की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर यहां से सामने आई। यहां चामुंडा माता मंदिर में एक श्रद्धालु के जरिए माता के चरणों में करीब 6.25 तोला सोने का छत्र भेंट किया गया। इस सोने के छत्र की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रद्धालु लक्ष्मण सिंह का कहना है कि उनकी सालों पुरानी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए उन्होंने माता को यह स्वर्ण छत्र अर्पित किया। उन्होंने माँ चामुंडा का आभार जताते हुए अपने परिवार और दोस्तों की खुशहाली, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जब जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा इसी तरह व्यक्त करते हैं। इससे पहले भी इच्छा पूरी होने पर उन्होंने इंद्रकोट के महादेव मंदिर में भेंट चढ़ाई थी। आस्था और विश्वास की यही परंपरा आज भी मंदिरों में जीवंत है, जहां श्रद्धालु अपनी खुशियों और मनोकामनाओं के पूरा होने पर भगवान का धन्यवाद अलग अलग तरीकों से करने के लिए आते हैं।
8: ये मेरी बड़ी दिल से तय दिल से इच्छा थी कि माता जी के मैं सोने का छत्र चढ़ाऊं, मेरी मनोकामना थी। तो मेरा आज पूरे परिवार वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलके मैंने खुशी से ये माता जी को छत्र अर्पण करा है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये छत्र अर्पण करके। और मैं यही चाहता हूँ कि बस इससे मेरे परिवार खुशहाल रहे, मेरे फ्रेंड सर्किल सब खुशहाल रहे।
2: कहते हैं नामुमकिन सिर्फ एक सोच है और जापान के एक साइकिल राइडर ने इसे सच करके दिखाया है। उन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। ओलंपिक्स की जंप उल्टी दिशा में सिर्फ एक पहिए के सहारे साइकिल चलाकर उन्होंने 2-2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक असली वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। जापान के स्टंट साइकिल राइडर टोमोमी निशिकुबो एक ऐसे स्की जंप पर खड़े हैं जहां आमतौर पर स्की खिलाड़ी बर्फ पर फिसलते हैं, लेकिन आज यहां बर्फ नहीं बल्कि साइकिल का कमाल दिखने वाला है। टोमोमी ने अपनी साइकिल को उल्टी दिशा में मोड़ा और सिर्फ आगे वाले पहिए पर बैलेंस बनाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये रास्ता करीब 37.5 डिग्री की खड़ी ढलान वाला था, जरा सी गलती उन्हें सीधे नीचे गिरा सकती थी। करीब 136.6 मीटर तक टोमोमी ने बिना संतुलन खोए ये हैरतअंगेज सफर पूरा किया। इस दौरान उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही, लेकिन उन्होंने पूरे 35 सेकंड तक कमाल का बैलेंस बनाए रखा। यही कारनामे ने उन्हें दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिला दिया।
1: I was hooked on this challenge and I was like, okay, let's do my favorite trick on the ski jump rounding. Ski jump rounding is such a unique location, and you know, it's very slippery for ski jumpers. So my challenge was like opposite challenge. I need grip. I want to go down as slow as possible. So very, very opposite location to do my favorite trick. But I love crazy challenge. So I was like, okay, it's gonna be the farthest first. So I did it.
0: लेकिन ये सफलता एक दिन में नहीं मिली। साल 2025 में उनके पहले 35 प्रयास नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने अभ्यास के लिए 10 मीटर लंबी वैसे ही ढलान तैयार की और बार बार प्रैक्टिस की। आखिरकार साल 2026 में दूसरी कोशिश में उन्होंने इतिहास रच दिया। इस रिकॉर्ड को देखने के लिए उनकी फैमिली और करीब 20 लोगों की टीम वहां मौजूद थी। जैसे ही टोमोमी ने अपना रन पूरा किया, हर तरफ तालियां गूंज उठी। ये कारनामा साबित करता है कि अगर हौसला बड़ा हो तो सबसे मुश्किल रास्ता भी जीत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
2: लंच टाइम में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip. The next home renovation. Or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: and life is like a song,
6: and new discoveries,
7: so much more than a history. Wake up!
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के फैंस का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मेकर्स ने बिग बॉस 20 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। शो का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।

0: करीब दो दशक से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने 20वें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। 19 सफल सीजन के बाद मेकर्स ने बिग बॉस 20 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शो का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस रियलिटी शो की खास पहचान बन चुके बिग बॉस की आंख को मेकर्स ने बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मल्टी कलर आई लोगों के साथ लिखा गया है, दो दशक बाद अभी भी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बिग बॉस की आंख बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है जी हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर। हालांकि मेकर्स ने अभी तक शो की प्रीमियर डेट और इस बार थीम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भी शो की कमान सुपरस्टार सलमान खान ही संभाल सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बार बिग बॉस सिर्फ अपने नए सीजन की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े रिकॉर्ड की वजह से भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार बिग बॉस के सभी 6 रीजनल एडिशन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सितंबर 2026 में एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिग बॉस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा। शो के ऐलान के साथ ही अब सबसे ज्यादा चर्चा कंटेस्टेंट को लेकर हो रही है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के कई चर्चित सितारों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नामों को अप्रोच किया जाने की चर्चा है उनमें रिद्धिमा गुप्ता, टूटू ठाकुर, भागीरथ भट्ट, निया शर्मा, जन्नत जुबैर, मिस्टर फैजू, करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, भव्या सिंह, सेंटी शर्मा और अरबाज पटेल शामिल हैं। लेकिन ये सभी नाम फिलहाल सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। वही सोशल मीडिया पर फैंस की अपनी अलग ही डिमांड है। कई लोग चाहते हैं कि स्प्लिट विला फेम रूरू ठाकुर इस बार बिग बॉस के घर में जरूर नजर आए। वही कुछ फैंस रूरू के साथ आकांक्षा चौधरी को भी शो में देखना चाहते हैं, ताकि घर के अंदर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिले। हालांकि नामों को लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बिग बॉस 20 का सिर्फ पहला लुक सामने आया है। अब फैंस को इंतजार है प्रीमियर डेट, थीम और फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट का। एक बात तो तय है, दो दशक पूरे करने जा रहा बिग बॉस इस बार भी टीवी और ओटीटी की दुनिया में जबरदस्त धमाका करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही।
2: चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप दिन भर देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
6: continue to face political pressure to reach a peace deal,
5: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
3: मॉनसून के बीच चमोली के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्तखाल ट्रैक पर उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। लद्दाख में अचानक जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट, पहुंचने लगे सैलानी। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत, मालवन कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन। अजमेर में देखने को मिली एक भक्त की अनूठी भक्ति, मुराद पूरी होने पर माता चामुंडेश्वरी मंदिर में चढ़ाया 6 किलो से ज्यादा वजनी सोने का छत्र। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्र की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत, मालवन कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने में है माहिर, तटीय रक्षा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक अभियान चलाने की क्षमता से है लेस मालवन, टॉरपीडो और अन्य आधुनिक अधिक हथियार प्रणालियों से है सुसज्जित। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार, देश की रक्षा निर्माण क्षमता और नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 7वां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू। गुंडीचा मंदिर के पास भगवान के तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है तैयार, सेवादारों ने रथों की जांच और रखरखाव का काम शुरू किया। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की पवित्र वापसी का प्रतीक, 7 दिनों तक मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद होती है वापसी यात्रा। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भगवान की एक झलक पाने के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। बहुड़ा यात्रा दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु, पुलिस प्रशासन ने की विशेष तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें रहेंगी सक्रिय। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। नागपुर की सड़कें हुई भक्ति में, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ। मां नैना देवी के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर भी होगा सहारनपुर पुलिस का शिकंजा। कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस करेगी डीजे की पेन ड्राइव की जांच, केवल मंजूर किए जाएंगे भक्ति गीत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेले की तैयारियां तेज की, श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर में भक्ति और आस्था की अनोखी तस्वीर, एक भक्त ने चढ़ाया 6.25 तोले का सोने का छत्र। अगरतला में आज होगा 7 दिवसीय खर्ची मेले का शुभारंभ, चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, महोत्सव में होगा संस्कृति और लोक परंपरा का प्रदर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब, घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में आस्था अपने चरम पर, मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त रामलला के दर्शन कर खुद को महसूस कर रहे हैं धन्य, राम भक्तों की भारी भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा। झांसी में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा के कड़े होंगे बंदोबस्त, सीसीटीवी से होगी भक्तों की निगरानी। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भस्म आरती के दौरान महाकाल को भांग चंदन और सिंदूर किया गया अर्पित, दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्मी सितारे अक्षरा सिंह, निकितन धीर, कार्तिक चंदन और अनुष्का कौशल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। बलरामपुर में सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा, मां का लिया आशीर्वाद। बलरामपुर के तुलसीपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा पाठ। सीएम योगी ने तुलसीपुर मंदिर परिसर से गौशाला का किया निरीक्षण, मवेशियों को खिलाया चारा। चंडीगढ़ में ब्रिक्स के प्रतिनिधि मंडल ने किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम देखने पहुंचे ट्रेनी आईएएस अधिकारी, एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स ने इतिहास के बारे में बच्चों को दी जानकारी। श्रीनगर में एनजीओ में जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की हुई जांच। पश्चिम बंगाल को मिली 50 एसी बसों की सौगात, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने जीविका के लिए चुने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा हर जगह होगी जीविका दीदियों की नियुक्ति। हरिद्वार में सीएम धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना का किया शिलान्यास, 235 करोड़ की लागत से बन रहा है कॉरिडोर। पंचकुला में सीएम सैनी ने युवा संवाद एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए युवाओं के साथ संवाद किया। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वर्चुअली शामिल हुए। श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की बड़ी आमद। शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टूरिस्ट से होटल और शिकारा कारोबारियों की कमाई भी पकड़ रही है रफ्तार। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन। शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बड़ा सहारा। जयपुर में मिसेज इंडिया बनी आकांक्षा चौधरी ने महिलाओं को किया प्रेरित। कहा शादी के बाद ही सपने पूरे होते हैं, हर महिला बना सकती है पहचान। कोटा के युवक ने नौकरी छोड़ शुरू किया मशरूम की खेती का बिजनेस। सालाना 20 लाख की कर रहा है कमाई। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को दी मंजूरी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होगा आधुनिकीकरण। परिवर्तन योजना के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे करीब 2 लाख ट्रक और बस। नए BSVI और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए डिस्काउंट और सब्सिडी देगी सरकार। गुवाहाटी में देश के 22वें IIM का शुभारंभ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पहले एकेडमिक सेशन का उद्घाटन किया। बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए प्रयागराज के सरकारी अस्पताल ने पेश किया मोबाइल कर्फ्यू प्लान। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से प्रभावित बच्चों का किया जा रहा इलाज। बिहार के समस्तीपुर में कैंसर संस्थान के द्वारा निःशुल्क 5 दिवसीय कैंसर जांच शिविर का आयोजन। आधुनिक उपकरणों से की जा रही है जांच। लद्दाख में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गर्मियों के बीच अचानक जोरदार बर्फबारी। भारी बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों का बर्फ से भव्य श्रृंगार। भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। पड़ रही है सर्दियों जैसी ठंड। उत्तराखंड के चमोली में बर्फीले ट्रैकिंग रूट पर्यटकों से गुलजार हुए। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्तकाल ट्रैक पर उमड़ रही है भीड़। चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। ट्रैकिंग का आनंद ले रहे हैं सैलानी। दिल्ली NCR में सुबह सुबह झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव। बारिश से वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली NCR में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। दिल्ली के मोतीबाग में भी हुई बारिश। तापमान में भी आई गिरावट। मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया। भारी बारिश के चलते यात्रा की गई स्थगित। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह दी गई। रुद्रप्रयाग के छोड़ी में भारी बारिश से भूस्खलन। सड़क पर आया मलबा। भारी भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा। भक्तों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की गई। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में आया उफान। नदी के बीच में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे युवक का रेस्क्यू कर बचाई जान। लोगों से नदी नाले से दूर रहने की अपील की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अग्नि परीक्षा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
6: continue to face political pressure to reach a peace deal,
5: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भगवान शिव की भक्ति का ये सबसे खास समय माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए दिल्ली, सहारनपुर से लेकर हरिद्वार तक तैयारियां की जा रही हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।

बोल बम हर हर महादेव इन जय घोष के साथ एक बार फिर शिव भक्ति का महासागर उमड़ने वाला है। देवों के देव महादेव को समर्पित पावन सावन दस्तक देने वाला है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यही वजह है कि देश भर से लाखों शिव भक्त आस्था के कांवड़ उठाकर गंगा जल लेने निकल पड़ते हैं। नंगे पांव भोले के नाम का जय घोष करते हुए ये श्रद्धालु गंगा से जल भरते हैं और अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। घाटों की सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा

0: व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। उधर यूपी के सहारनपुर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। यात्रा में इस्तेमाल होने वाली हर डीजे पेन ड्राइव का पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ स्वीकृत भक्ति गीतों को ही बजाने की अनुमति मिलेगी।
1: उनको ये निर्देश दिया गया, उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो डीजे की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा जो डीजे में बचेगा उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द हो खराब हो और किसी व्यक्ति को की जो भावना है वो आहत हो।
0: सहारनपुर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अग्निशमन के इंतजाम, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। शिविरों में केवल शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाएगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी कांवड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी। खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी और सभी भोजनालयों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। हरिद्वार से मुदित, सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
4: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे

0: न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: मॉनसून के बीच चमोली के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्तखाल ट्रैक पर उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। लद्दाख में अचानक जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट, पहुंचने लगे सैलानी। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन। अजमेर में देखने को मिली एक भक्त की अनूठी भक्ति, मुरादपुरी होने पर माता चामुंडेश्वरी मंदिर में चढ़ाया 6 किलो से ज्यादा वजनी सोने का छत्र। और भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी लगा ब्रेक, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। हिमाचल के बिलासपुर में छाई गुप्त नवरात्र की रौनक, आज अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: अब दाल का असल स्वाद तो उसमें लगे हुए तड़के से आता है, और बताइए तड़के में क्या होता है, मसाले। कभी सोचा है आपने अगर ना होते मसाले तो कैसे आता स्वाद? और बिल्कुल इन मसालों की तरह है हमारा शो सास बहू और बेटिया, जो आपकी जिंदगी में लेकर आता है एंटरटेनमेंट का तड़का। आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर गुड न्यूज, जो कर रहे हैं बेसब्री से यहाँ पर आप सबका इंतजार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
6: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, सूरज पर लगेंगे इल्जाम, शुरू होगा बंदूक ड्रामा, उर्मी और मोंटू की शादी में मचेगा धमाल और होगा बवाल,

0: शो लॉकअप में होगी अपूर्वा रिबेल किड की एंट्री, साथ ही हर्षद और शिवांगी करेंगे शिल्पा से लड़ाई।
1: अफवाहें उड़ा रही उसके बारे में,
2: जिंदगी में एक दोस्त तो बना नहीं है।
1: वो जलन होती है क्या? लवर लवर लवर लवर लगी रहती है पूरे टाइम, दोस्त उसका।
0: और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की दामिनी यानी कि रावी गुप्ता संग करेंगे सैलून वाला डे आउट, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

पानी पूरी मसाला तो है हमारी राध्या का फेवरेट। ये तो कह रही है कि घर में ही कर देती है ये पूरी पानी पूरी पार्टी। क्या करती है कि पानी पूरी मसाले को ये पानी में घोल लेती है, उसमें बर्फ डालती है, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डालती है उसे और खट्टा करने के लिए। फिर उस पानी को अलग रख देती है, उसमें बूंदी मिलाकर, और फिर पानी पूरी तो आ जाती है रेडीमेड घर पर। काले चने उबालती हैं, आलू उबालती हैं और उसका एक मसाला तैयार कर लेती हैं जिसमें वो मूंग स्प्राउट्स भी डालती हैं, और बस फिर तो हो गई ना फुल ऑन पानी पूरी पार्टी। वैसे हम तो चाहते हैं कि इसी तरह आपकी जिंदगी में भी हो एंटरटेनमेंट की पार्टी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन अति सुंदर के सेट पर।

0: अपशगुन में हुआ अपशगुन। सगाई में कलावंती का ड्रामा।
1: मुझ पर ही चांदी के बर्तनों की चोरी का इल्जाम लग गया। वाह,

0: मंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज हो रही है उर्मी और मोंटू की सगाई। ऐसे में आज सभी घरवाले बहुत खुश हैं और देखिए कैसे मोंटू और उसके घरवालों का कर रहे हैं स्वागत, वो भी नाचते गाते। भाई घर में सबकी शादी हो चुकी है, खाली उर्मी बची थी। ऐसे में उर्मी की जिंदगी में खुशियाँ आ रही है, इसीलिए घर वाले बहुत खुश है।
1: तेरी बन जाना आज तो सजना।
0: भाई नाच गाकर सभी ने खुशियां तो जाहिर कर ली, अब बारी है सगाई की रस्म की। उससे पहले होगी पूजा। ऐसे में वहां पर पूजा के लिए प्रसाद लेकर आती है राधिया, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो तो शुक्र है कि प्रथम उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर राधिया की परवाह ना करते हुए दादी राधिया पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि वो शगुन में अपशगुन ले आई है। ऐसे में कलावंती भी पीछे नहीं हटती।
2: पहले तो मैंने ये सोचा था कि जो बर्तन है वो राधिया को गिराया जाए प्रसाद के साथ, और सब पूरी फैमिली से डांट खिलवाती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया है। राधिया मेरे पीछे पड़ गई थी, शक शक शक हर बात में शक होता था। तो मैंने सोचा चलो आज पूरी फैमिली की डांट खिलवाती हूँ करके उसको मैंने गिरा दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो बर्तन में मिट्टी के बर्तन डाल दिए हैं गलती से, और जो कि किया है बबलू ने, पर ठीक है उसके बाद अभी संभालना तो पड़ेगा ही।
0: भाई रजनी के कहने पर पंडित जी ने पूजा का सुझाव तो दे दिया, लेकिन तब भी पंडित जी ने टोक दिया कि प्रसाद मिट्टी के बर्तन में क्यों आया। ऐसे में टूटी हुई थाली देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं, और तो और रजनी भी राधिया से सवाल कर रही है। राधा ने तो बता दिया कि वो तो हमेशा चांदी के बर्तन में ही लेकर आती है, उसे तो पता ही नहीं था कि ये चांदी की नहीं बल्कि मिट्टी की थाल है। ऐसे में सभी घर वाले ये सुनकर हैरान हैं, क्योंकि एक एक कर सारे बर्तन मिट्टी के निकल रहे हैं।
3: मम्मी जी, सिर्फ वो थाल नहीं बल्कि ये लोटा भी मिट्टी का ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछली दिवाली पर तो हमने चांदी के बर्तन खरीदे थे, वो सिर्फ मिट्टी में कैसे बदल गए?
4: जब कोई इस घर से बाहर नहीं गया, बाहर से इस घर में कोई अंदर नहीं आया, तो फिर ये पूजा का बर्तन चांदी से मिट्टी कैसे हो गया? क्या बताया?
5: दरअसल उर्मी जी की शादी बहुत सालों बाद हो रही है, घर में सबकी शादी हो चुकी है, सिर्फ उर्मी जी की नहीं हुई है, तो सब बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये सब तो बहुत खुश हैं, पर राध्या को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट है सामने वाली फैमिली पे कि वो कुछ तो गलत लोग हैं, कहीं शादी होने के बाद उनकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। तो एक नया बवाला हो गया है, कलावंती जो है उन्होंने राध्या को गिराने की कोशिश की है, जिसकी वजह से चांदी के बर्तन टूट गए और इतना सारा बवाला हो रहा है। तो दादी वापस से राध्या को डांट रही हैं।
0: भाई घर वाले तो हैरान थे ही, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि घर में बाहर से कोई आया नहीं, तो आखिर चांदी के बर्तन मिट्टी के कैसे हो गए। ऐसे में राधिया ने कलावंती के परिवार की ओर इशारा कर दिया। बस फिर क्या, कलावंती ने बवाल मचाना शुरू कर दिया।
6: सही कहते हैं लोग, हाथी के दांत चबाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अरे हम तो मित्तल परिवार को कुछ और ही समझ रहे थे। लेकिन ये है आपकी मेहमान नवाजी। मेहमान को पहले घर पर बुलाओ और पर पूरी और चोरी का इंतजाम लगा दो। बस बस अब ये बेहद
2: अरे नहीं नहीं, हमने इतनी अच्छे से जाल बिछाया था ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है, वो हमें पता था। ये हम तो पहले से यही सब करते आए हैं ना, तो हमें तो पता है कि कैसे इन लोगों को घुमाना है, तो हमने घुमा दिया, बस यही था।
0: कलावंती के इस फैसले से मोंटू परेशान हो गया, लेकिन कलावंती वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही, उन्हें तो बस अपनी इज्जत प्यारी है, ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सगाई हो। इतना ही नहीं, ये सुनकर ओमकार से रहा ना गया और उन्होंने राधिया से माफी मांगने को कहा, लेकिन राधिया हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देती है क्योंकि वो गलत है ही नहीं। ऐसे में उसने बबलू के सामने सवाल कर दिए कि बबलू से मिलने बाहर का कोई आया था जिससे बबलू ने लेन देन की है।
4: वो तो मेरा दोस्त था।

0: गुस्साई कलावंती तो चली गई, ऐसे में उर्मी को भी गुस्सा आ गया और उसने राध्या पर नाराज होना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मोंटू ने भी आकर वहाँ से जाने की बात कही। उर्मी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन मोंटू अब रुकने के लिए तैयार नहीं है, बस फिर क्या। ये सुनते ही उर्मी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो राध्या पर बरस पड़ी। बेचारी राधिया फिर से एक बार फंस चुकी है। इसी बीच कलावंती भी अपने सूटकेस ले आती है और जानबूझकर एक सूटकेस नीचे गिरा देती है ताकि वो खुल जाए और उसके अंदर के सारे गहने बाहर आ जाएं। ऐसे में वो गहने बाहर भी आते हैं। ये देखकर सभी घर वाले हैरान होते हैं। बस फिर क्या, कलावंती अपना खेल खेलती है और सभी को बताती है कि वो सारे गहने उर्मी के लिए लाई थी।
1: नहीं नहीं, सोने के एक्सचेंज नहीं कर दिए, जो हमने पिछली चोरी में जो सारे जेवर चुराए थे ना, वही सारे जेवर हैं, वही सारे जेवर हमने रख लिए और इन लोगों को दिखा दिया कि भाई हम भी अमीरों के खानदान से है, वही नहीं है कुछ भी आ गए।
2: पर ठीक है, राधा तो भी स्टेप अप करती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। पर राधा, मैं बोल रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर ले, वो बहुत ट्राई कर रही है कि वो एडजस्ट कर ले या फिर सेठीज़ को एक्सेप्ट कर ले, पर कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ तो झोलम झाल लग रही है। तो अभी माफ़ी तो मांग ली है ऊपरी मन से।
3: कैसे झोल, फैमिली इतना सोना है उनके पास यार, कम ऑन यार।
2: लालची पीपल्स यू नो, कोई बात नहीं, नकली सोना है वो सब, असली सोना हमारा शूट का सोना है। पर आई थिंक राधा कैसे ना कैसे करके सब कुछ पता लगा ही ली।
0: ये सारे गहने मित्र परिवार को दिखाकर कलावंती अपना ताव दिखा रही है और तो और अपने भाई से होटल बुक करने के लिए कह रही है। ऐसे में उर्मी मोंटू को रोकती है, कलावंती को भी मनाने की कोशिश करती है। बस फिर क्या, अपनी बहन के आगे ओमकार भी हार मान जाता है और कलावंती के आगे हाथ जोड़ता है। लेकिन तभी राध्या सामने आती है और कलावंती के आगे खड़े होकर कान पकड़ती है और माफी भी मांगती है। बस फिर क्या, ये सब देखकर उर्मी मान जाती है इस सगाई के लिए। लेकिन प्रथम वो अभी भी हैरान है चांदी की थाली मिट्टी कैसे बदल गई ये सोचकर। बस फिर क्या, उसने भी फैसला ले लिया कि वो पुलिस को बुलाएगा।
1: ऑफकोर्स पुलिस आती तो उनके पास तो हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा होता, हमारी पोल पट्टी पूरी बाहर आ जाती, फिर तो कैसे। बट ठीक है, दादी ने संभाल लिया तो हम तो बच गए।
0: भाई पुलिस की बात सुनते ही कलावंती का डर बढ़ गया। ऐसे में मोंटू ने भी सभी के सामने अपनी इज्जत की बात रख दी कि समाज में क्या नाम होगा, सब लोग उन्हें बदनाम कर देंगे। ऐसे में दादी ने उनकी बात मानते हुए सगाई करवाने का फैसला लिया। अब दादी के आगे किसी की कहां चलेगी। खैर, मोंटू और उर्मी की सगाई तो हो रही है, अब देखना होगा क्या राध्या कलावंती की चोरी पकड़ पाएगी और उनका खुलासा कर पाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मन्नत, देखिए, जब मसाले नहीं होते हैं हमारे खाने में तो किसी चीज में स्वाद ही नहीं आता है, सब कुछ हो जाता है फीका। और वैसे ही जब आपकी कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं ना जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आते हैं, तो हमें भी नहीं अच्छा लगता, बस फीका फीकापन सा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आती है आंख के चेहरे पर मुस्कुराहट, वैसे ही आता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट। वैसे ये जो आपकी कहानी में सुपर विलन्स है ना, ये भी नहीं लेने देती हैं आपको चैन की सांस। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है मन्नत और विक्रांत की कहानी में आज।
5: हो पालनहारी निर्गुण और
0: को लेकर मन्नत परेशान। माता रानी से करती प्रार्थना। मन्नत और धैर्य के बीच लड़ाई।
5: तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं।
0: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में मन्नत की बिटिया रानी दुआ किडनैप हो चुकी है। ऐसे में मन्नत काफी परेशान है कि कैसे वो उसे ढूंढे और वापस अपने घर पर ले आए। इसी परेशानी में देखिए कैसे वो भगवान से दुआ के लिए दुआ मांग रही है।
6: माता रानी, कहाँ है मेरी दुआ? प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, उसे वापस ले आइए। मेरी बेटी अकेली है, उसके उसके पापा भी नहीं है उसके पास।
0: तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं धैर्य, जो मन्नत की किसी बात से हो गए हैं गुस्सा, और ऐसे में दोनों के बीच छिड़ गई है बहस। लेकिन धैर्य मन्नत को प्रॉमिस करते हैं कि वो दुआ को वापस घर जरूर लेकर आएंगे।
6: उसके पापा है तो जाइए ढूंढिए उसे, ढूंढिए मेरी बेटी को वापस लेकर आइए, मैं मर जाऊंगी।
7: प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका। जिसने भी उसको किडनैप किया ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं लेके आऊंगा उसको वापस। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ मंदिर में खड़े होकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमारी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। मुझे मौका दीजिए, कुछ तो भरोसा तो कीजिए। अब आइए मेरे साथ, आइए जी। क्यों इधर इधर बैठे?
0: लेकिन मन्नत ने भी ठान लिया है कि वो अपनी बेटी दुआ को ढूंढ कर ही रहेगी।

0: अपनी बेटी को मैं सम्राजी को उनके खेल में कभी नहीं मैं तुम्हारे
1: दूसरी तरफ बंटी और यूवी भी दुआ को लेकर काफी परेशान है। ऐसे में रोनी दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रोनी की भी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मन्नत वहां पहुंचती है जो रोनी को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहती है और बच्चों को दिलासा देती है कि वो दुआ को जरूर लेकर आएगी।
2: और फिर फेरी अंकल और मन्नत भी तो गए उसे ढूंढने। वो लोग जरूर उसे ढूंढ के गए। ठीक है
0: पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज आराम कीजिए।
2: तुम्हें लगता है कि मैं आराम कर पाऊंगा जब तक दुआ नहीं मिलती है? कैसी बातें कर रहे हो?
0: प्लीज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करने की जरूरत है।
2: प्लीज मन्नत, मन्नत मेरी बात मानो, मुझे दुआ को ढूंढने जाना है। प्लीज
0: आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आपको जाने पर नहीं, अभी नहीं।
1: वैसे आपको बता दे कि दुआ को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि सम्राज्ञी ने करवाया है, क्योंकि वो चाहती है कि अभिमन्यु और मान्यता की शादी में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि मन्नत कैसे दुआ को ढूंढती है, क्योंकि तभी तो आएंगे असली ट्विस्ट।
3: मन्नत की सबसे बड़ी कमजोरी है दुआ, हमें इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। जब कल उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी अफवाह हो गई है तो वो सारी बातें भूलकर अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाएगी, और इसी बात का फायदा उठाकर उस वक्त हम मान्यता और अभिमन्यु की शादी करवा देंगे।
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: जब अलग अलग मसाले आपस में मिलते हैं ना, तब आता है खाने में स्वाद। और इसी तरह हमारे पास भी है आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स, जिससे लेकर हाजिर है हमारी सास बहु अल्पेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो खुले हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में दादी की सच्चाई जानने के लिए रूही नर्स का पीछा करते करते उस अड्डे पर पहुंच तो गई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस नर्स के साथ हादसा हो जाता है। ऐसे में नर्स का ये हाल देखकर रूही परेशान हो रही है और मदद की गुहार लगा रही है।
5: उस टेम्पो वाले ने जानबूझकर मारा।

के सीरियल जूही मुई में अपने पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए जूही सबूत ढूंढने के लिए निकल तो चुकी है, लेकिन गलती से वो फंस गई है रास्ते में।

0: ऐसे में देखिए कैसे वो बीच रास्ते में खड़ी है, ना अच्छे से क्रॉस कर पा रही है, ना चल पा रही है, और तो और उसे वहाँ चल रहे लोगों से भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जूही तो अतरंगी है।
1: सबको, ये पापा का घर है, पापा का घर है। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है ऑक्शन रुकवाने। कब से गोल गोल घूम रहे हैं, ये राउंड राउंड है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। आपको पता है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है?
2: आगे से लेफ्ट लो और दूसरी बिल्डिंग।
1: कितने कदम पे होगा? बिल्डिंग का कुछ कलर है?
0: वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर संयम एक बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंच गया है, और ऐसे में वो ले ही जा रहा था कि तभी उसे आ जाता है कॉल, और उसे पता चलता है कि जूही घर से बाहर निकल गई है। बस फिर क्या, ये सुनकर इंस्पेक्टर संयम हो जाते हैं परेशान, क्योंकि पता है कि अब जूही नई मुसीबत जो लाएगी।
3: आ जल्दी बोल भाई। ये बोल रहा है भाई। ना ना, तू घर पे ही रहे, मैं ढूंढता हूं। मैं ढूंढता हूं बोल रहा हूं ना। तू एक काम कर, जूही मैडम का फोटो भेज दे मुझे। मैं करी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट में अपना फोन चेक करो, फोटो भेज रहा हूँ डिटेल के साथ, लड़की ने ढूंढना है। हाँ। नहीं मारूंगा मैं।

0: रूम में रिश्वत फंगस की तरह घूम रही है। हम फंगस की जड़ तक पहुँचेंगे। हम कोठारी को 20,000 रुपए देंगे। नोटों पे एस्क्यूलिन सॉल्यूशन लगाएंगे, यूवी लाइट जलाएंगे। जिस जिसने वो नोट छुए होंगे
1: उनके हाथ चमकेंगे। रे रेड़े हो, हो जाइए शुरू।
2: अरे वकील है हम लोग, तो चुपचे क्रिमिनल्स नहीं है।
3: यहाँ तो है आप सबके लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। मैं तो बात कर रही हूँ रियलिटी शो तुम हो ना कि, जिसे होस्ट करते हैं हम सबके फेवरेट राजीव खंडेलवाल। देखिए यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं, गेम्स और फन में इंडल्ज करते हैं, उसके साथ साथ लेकर आते हैं हमारे लिए अपनी और वो भी सच्ची कहानियाँ। वैसे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये शो, हम सोच भी नहीं पाते कि आम आदमी भी अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर जाते हैं। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है शो में। एक्साइटिंग।
4: मेरा नाम भारती आनंद उम्बर साड़े है, मैं मुंबई से हूँ और मैं हाउसकीपिंग का काम करती हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ।
5: आपका मंत्र क्या है जिंदगी का?
4: मैं कभी भी लाइफ में अपने हार नहीं मानती और कभी मानूंगी भी नहीं। मेरे बच्चों के लिए काम करूंगी, करती रहूंगी। बहुत ज्यादा पढ़ाई का शौक था मुझे, पर घर में कैसा था कि पापा नहीं थे और माँ, हम दोनों बहनें, तो इसके लिए माँ काम पे जाती थी तो हम लोगों को भी साथ में लेके जाती थी। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं पढ़ी, ठीक है, पर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। जो मैंने लाइफ जी है वो मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी। मैंने बचपन को कभी मतलब ऐसा खेला ही नहीं। अभी मैं क्या करती हूँ, काम से आई ना तुरंत, ये सब लोग रहते हैं तो चलो आज कुछ नया हो जाए।
5: अब क्या काम करती हूँ?
4: हाउसकीपिंग। ऑफिस में हूँ।
5: ऑफिस में आप हाउसकीपिंग संभालती हैं?
4: तो ऑफिस में भी मतलब ऐसा है कि जो अपन ये काम कर रहे हैं तो सुबह का टाइम है, तो अपन ऐसा कोई आएगा कि ऐसे बोलते हैं ना कि हाथ मिला के कि हाँ हाय गुड मॉर्निंग ऐसे करके बोलते हैं, पर अभी हम लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा हाथ तो नहीं मिलाएगा हम लोगों से कि हाँ चलो आ जाओ। थोड़ा लगता है कि हाँ, पर बाद में ऐसा मेरे को लगता है जान दो हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो मुझे तो खुद पे गर्व है कि मैं कर रही हूँ ना, तो दूसरों को सच्चता तो दे रही हूँ, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
5: बिल्कुल।
4: आप हैं तभी ऑफिस है।
5: हाय भारती जी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू सर।

0: आई एम वर्षा, मैं जयपुर से हूँ, राइटर हूँ और मैं मेरी जिंदगी काश में नहीं जीती। खुल के जीना चाहिए और रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए। सर, मैं 23 इयर्स की थी जब ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैं, हम बस 10 मिनट पहले हमने गाड़ी स्विच करके दूसरी गाड़ी में बैठे थे। उसकी डेथ हो गई इस एक्सीडेंट की वजह से। जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा फेस पे ब्लड था और मेरे साइड में लोग थे जो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और हंस रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बोल रहे थे मर गए, सब पीछे वाले मर गए। फिर उसके बाद मैं खड़ी हुई, मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं वॉक करके गई और मैं एम्बुलेंस में जाके बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने आँख खोली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे यहाँ पे लगी थी, मेरे बोन में फ्रैक्चर आया था और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 55 स्टिचेस हैं। हमारे समाज में क्या है ना कि एक लड़की के फेस पे लग जाती है ना तो बहुत बड़ी बात है। और घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने बहुत मजाक उड़ाया, सबने मतलब बहुत सुनाया भी कि तू क्या कर रही थी वहां पे, जैसे कोई मैं सच में जाके मतलब इंटेंशन से भिड़ी हूं। मम्मी ने मेरे को बोला कि अब ना, अब खुद को देखना मत थोड़े दिन के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक बार देखूंगी। तो मैं गई और मैंने जाके वॉशरूम में खुद को देखा। तब मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि अगर मैं तुझे इसमें लेके आई हूँ जैसा कि सब कह रहे हैं तो मैं तेरे को इससे बाहर भी निकालूंगी और मैं ही निकालूंगी। अभी कोई भी वर्षा ये देख रही है स्क्रीन पर जो खुद को लेके बहुत कॉन्शियस है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या दिखती हूँ, तो ट्रस्ट मी, यू आर बिगर देन व्हाट हैपेंस टू यू।
1: हमारी टीम सास बहू और बेटियां भी लेकर हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। बताइए कैसे? वेल, यहां तक ये है उन्होंने आपके फेवरेट सितारे से खास मुलाकात, दैट टू ऑन पॉपुलर डिमांड। यहां तो हुई हैं ढेर सारी बातें, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास जिससे की है हमारी टीम ने ये प्यारी सी मुलाकात।

0: पर्दे पर गौतम की पत्नी और तुलसी की विरासत को आगे ले जाने वाली। लेकिन इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री रावी गुप्ता क्या रियल लाइफ में भी दामिनी है या कुछ और? भाई ये जानने के लिए आज सास बहुर बेटिया दामिनी वीरानी यानी रावी गुप्ता के साथ कुछ खास पल बिता रहा है। भाई ये खूबसूरत अभिनेत्री खुद का बहुत ध्यान रखती है, खासकर इन्हें नेल आर्ट का बहुत शौक है और साथ साथ ये पेडिक्योर मैनिक्योर भी कराती है। कहते हैं एक्टिंग एक विजुअल मीडियम है जहाँ कलाकारों को खूबसूरत दिखना जरूरी है। पथ के कलाकार लाखों लोगों को सुंदर दिखने का मंत्र बताते हैं, तो ऐसा ही मंत्र आज रावी गुप्ता भी हमें बता रही है, क्योंकि आज ये कर रही है एक खास सैलून वाला डे आउट ओनली विद सास बहू और बेटियां। क्योंकि सास भी कभी बहुती को दूसरे सीजन में भी बहुत प्यार मिला और खास बात है कि रावी पहले क्योंकि सास भी कभी बहुती में थी और दूसरे में भी थी, दोनों सीजन में इनके अलग अलग किरदार थे। फिलहाल नए सीजन में इन्हें मिला है ढेर सारा प्यार। अपनी शूटिंग और अपनी फैमिली लाइफ के बीच से रावी ने कुछ वक्त निकाला और ये आई हैं हमारे साथ करने ये ब्यूटी वाला डे आउट।
1: नेल्स कराना बहुत अच्छा लगता है और मेरे शो की वजह से भी मेरे नेल्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मुझे आज मौका मिला तो मैं आई हूँ नेल्स करवाने, अपने मैनिक्योर करवाने। जी प्लीज़ आइए।
2: चोर

तो भाई रावी आई हैं शूटिंग के बीच से और इन्हें चाहिए रिलैक्सेशन, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कराया अपना पेडिक्योर और मैनिक्योर। जी हाँ, हाथ पैरों को संवारना बहुत जरूरी है, चेहरे को तो सब संवारते हैं लेकिन हाथ पैरों के लिए ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है। तो देखिए कैसे रावी खुद को रिलैक्स कर रही है इस पेडिक्योर यानी पैरों की साफ सफाई और मैनिक्योर यानी हाथों की साफ सफाई के साथ। तो देखिए किस तरह हुआ रावी का ये मैनिक्योर और पेडिक्योर।

0: मतलब यहाँ तो मेरी शक्ल भी आधी काली होती है. बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, स्पेशली जब पेडिक्योर के लिए गर्म पानी में पैर डाला. इट फील्स सो गुड. और जो मैम अभी स्क्रब कर रही हैं, ये इट रियली फील्स नाइस. इट वाज मच नीडेड फॉर मी. ये पहली बार मिले तुम पे ये दम निकले,
1: तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मां. दिन रात की शूटिंग के बीच में कलाकार को वक्त नहीं मिलता कि वो खुद का ख्याल रख सके, लेकिन आज रावी ने वक्त निकाला और अपने पैरों और हाथों के लिए ये खास ट्रीटमेंट कराया, जो एक हाइजीन की दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ कलाकारों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है.
0: नहीं, टाइम नहीं मिल पाता मुझे बिल्कुल भी. तो जब भी थोड़ा भी, महीने में एक बार तो कम से कम कोशिश करती हूँ मैं कुछ भी करके कि दो एक घंटे निकाल के मैं ये करवा लूँ, एटलीस्ट पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लूँ. बिकॉज एज एक्टर्स आपको भी पता है बहुत ज़रूरी है हमें अपना ध्यान रखना, क्योंकि इट्स अ विजुअल मीडियम. तो हमारे पूरी अपीयरेंस का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है. वो स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, स्पेशली काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है.
1: बारी है नेल आर्ट की. जी हाँ, रावी को नेल आर्ट का बहुत शौक है और देखिए अपने नेल्स पर किस तरह की चित्रकारी करा रही हैं. भाई, नेल आर्ट से आप अपने नेल्स को अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से सवार सकते हैं और पेडिक्योर प्रेडिक्योर के बाद नेल आर्ट से आपके नेल निखर जाते हैं. तो देखते हैं किस तरह का नेल आर्ट आज रावी ने कराया.

0: लड़कियों की सास भी कभी बहू थी, वो इज अ शो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई वॉज वेरी यंग जब मैंने वो किया था और इट्स अ लेजेंडरी शो लाइक वी ऑल नो फॉर इंडियन टेलीविजन. दैट इज समथिंग वेरी क्लोज टू मी, सो आई वुड से दैट इज माई फेवरेट शो दैट आई हैव डन.
1: नागिन को इंसानों वाली मौत देने में बड़ा मजा आएगा. नागिन की
2: वैसे द्रावी ने कई शोज में काम किया है, लेकिन इनके दिल के बहुत करीब है नागिन, क्योंकि वो इनका कमबैक शो था और यहाँ पर इन्हें एक बहुत ही अनोखा किरदार निभाने को मिला था, जहाँ इनका मेकअप भी खास था, लुक भी बहुत खास था. तो आज सास बहू और बेटिया में रावी ने शेयर किया अपना फेवरेट शो जिसे निभाने में उन्हें बहुत मजा आया, खासकर उनका किरदार. तो जानते हैं उनसे नागिन की यादें.
3: माने एक शैतानी ताकत है.
4: प्यार और ममता की इस लड़ाई में होगी किसकी जीत?
0: काफी तो नहीं बट हाँ किए हैं शोज. करंटली डेफिनेटली नागिन इज माई फेवरेट शो, ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन. सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक करोड़ों लोगों का इट्स फेवरेट शो. आधी नागिन से भागी नागिन हो गई.
5: ये किस रूप में हो तुम? कौन सी जीव हो तुम? उड़ने वाली इच्छाधारी सांप तो नहीं? ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ.
0: जिस दिन मुझे ऑफर हुआ नागिन, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. आई मेड श्योर जब मैंने ऑडिशन भी, मैंने सेल्फ टेप करके, कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, आई हैड टू सेल्फ टेप माई ऑडिशन. मैंने बहुत मेहनत की थी उस ऑडिशन के लिए. 2 घंटे लगाए थे उस करीब 30-40 सेकेंड के क्लिप के लिए. सो वेल एंड आई गॉट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी. ये नेगेटिव लीड है और इसका अपीयरेंस काफ़ी ड्रामेटिक होने वाला था एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट गॉट मी हुक्ड, के इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में से कि हाउ विल आई स्टैंड अपार्ट, कि मैं कैसे, मेरा कैरेक्टर कैसे उभर के आएगा. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टोल्ड मी कि आपका आधा मुँह काला करेंगे, ऐसा करिए.
2: फाइनली रावी का डे आउट हुआ कंप्लीट और अब वो फ्रेश है अपनी शूटिंग के लिए. भैया के साथ भी कभी बहुत ही अपने सीजन 2 में भी दर्शकों का दिल खींच रहा है और ऐसे में दामिनी वीरानी के साथ एक खास पल इस किरदार के रियल लाइफ में झांकने की एक कोशिश है, जो एक माँ है, एक पत्नी है, एक बेटी है और पर्दे पर एक अदाकारा है जो निभाती है एक ऐसा किरदार जो लोगों को पसंद आता है. तो उम्मीद है क्योंकि साथ भी कभी बहू थी कि दामिनी वीरानी यानी अभिनेत्री रावी गुप्ता पितवई के साथ पूरा दिन बिताकर आपको रावी के बारे में कुछ बातें पता चली होंगी जो शायद आपको इंटरनेट पर नहीं मिले. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
6: अब खाने में अगर मिर्ची तेज हो जाए तो डेफिनेटली आता है जिंदगी में ट्विस्ट. उई मां, कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आते हैं यहाँ पर हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में, जो लेकर आते हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट का तीखापन. तो चलिए फिर नजर डालते हैं उन तमाम ट्विस्ट पर इस सेगमेंट में. तो हम दिखाते हैं आपको ये सारे ट्विस्ट, वो भी एक साथ. गेट सेट गो.
7: दोनों अलग होके भी इस काम में एक हो गए.
8: प्लस के सीरियल अनुपमा में कुकिंग कंपटीशन में प्रेम और अनुपमा की टीम के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. दोनों ही टीम जुटी हुई है जीत हासिल करने के लिए. ऐसे में अनुपमा बिचारी को हाथ में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही और अपने दर्द को भुलाकर बस जीत की ओर बढ़ना चाहती है. वहीं प्रेम की टीम भी जीत और मशक्कत कर रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक राही के साथ हादसा होने वाला होता है कि तभी अनुपमा बन जाती है राही की रक्षक.

0: तू ठीक है? हाँ तू ठीक है?
1: हाँ? तू ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? हाँ ठीक हो ना?
0: तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? थैंक यू, आप वापस जाइए, टाइम बहुत कम है हमारे पास।
2: अपना ख्याल रखना बेटा।
3: संभल के करो।
4: अब अनुपमा भले ही कुकिंग कंपटीशन में अपना ध्यान बटा रही हो, लेकिन उसका ध्यान अपनी बेटी पर भी है। खैर समय कम बचा हुआ है, दोनों टीम समय के रहते खाना बना लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पर तो अनुपमा की टीम में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रेरणा और माही दोनों ही बहसबाजी में लगी हुई हैं। उनका खाना कम लेकिन लड़ाई ज्यादा हो रही है। ऐसे में अनुपमा ने ठान ली है कि वो खुद ही अपना पकवान बना कर रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है, क्योंकि अनुपमा के साथ हादसा होने वाला होता है कि प्रेम उसे बचा लेता है।

0: भाई नफरत दोनों के बीच चाहे जितनी भी हो, लेकिन जाने अनजाने दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मदद के साथ क्या दोनों फाइनल्स में पहुंच पाएंगे।
1: मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही है।
2: टाइम अप। तो फाइनल्स में जाने वाली दूसरी टीम का नाम है अनुज कैफे। अनुपमा जी का सफर यही खत्म होता है।
1: सब कुछ खत्म हो गया।
3: मेरा रक्षित जो किसी पे हाथ तक नहीं उठाता था, आज गुंडों की तरह मार रहा था उस आदमी को।
0: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में रक्षित अपनी माँ को समझा रहा है और बता रहा है कि अपराजिता के चलते ही आज रक्षित के पापा बिना भूले ऑफिस तक चले आए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं रक्षित की माँ को भी एहसास हो रहा है अपराजिता की अच्छाई का, लेकिन फिर भी उनके अंदर तो अब भी नफरत है। खैर, वहीं अपराजिता ने ऑफिस छोड़कर जाने का फैसला किया है। ऐसे में वो जाती भी है, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रक्षित उसे बचा लेता है और दोनों की आँखें टकरा जाती है। प्यार तो है, लेकिन इजहार अब तक नहीं हुआ है।
1: कहा था ना मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं संभाल लूंगी खुद।

आई नो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तुम अकेली सौ पर भारी हो, पर एक चीज है जिसकी जरूरत है तुम्हें। 1 सेकंड।

0: भाई जब भी अपराजिता मुश्किल में होती है तो सामने रक्षित को ही पाती है, और आज भी रक्षित उसके सामने सहारा बनकर खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने तो देख लिया था कि अपराजिता की सैंडल टूट गई है, इसीलिए वो उसके लिए नई सैंडल लाया है। ऐसे में अपराजिता वो सैंडल पहन तो लेती है और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एहसास हो रहा है प्यार का। लेकिन जाने से पहले वो रक्षित को धन्यवाद कहती है। ऐसे में रक्षित चाहता है कि अपराजिता ना जाए, इसीलिए उसे रोकने की पूरी कोशिश में लगा है।
1: तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत था, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी भी बोल चुका हूँ, हजार बार बोलूंगा, पर एक शिकायत है तुमसे, तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए था। नहीं, आज मुझे बोलने दो ना, आज तुम चुप रहो, बस मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ दर्द तुम्हारा है, हक तुम्हारा, फैसला तुम्हारा, पर वो लड़कियां जो कल मैथानी के सामने खड़ी होंगी, उनका क्या मतलब? उनके पास तो तुम्हारी तरह आवाज भी नहीं है ना, तुम्हारी लड़ाई उनकी ढाल बन सकती थी। That's why you should have fought. Really, you should have. इसलिए नहीं कि तुम जीतती, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लड़ते हुए देख कर ना वो लड़कियां जीना सीख जाती। अपू सही के लिए की गई लड़ाई ना हार कर भी जीत होती है, और गलत में एक चुप्पी जीत कर भी हार।
2: आपने जो मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, उसके थैंक यू। कोई और होता तो एक मामूली एम्प्लॉय के लिए इतने बड़े क्लाइंट्स नहीं लड़ता। थैंक यू।
1: फिर भी काम छोड़कर जा रही हो ना?
0: खैर, अपराजिता ने जो फैसला ले लिया है वो उससे पीछे तो नहीं हटेगी, लेकिन रक्षित भी अपनी हार नहीं मानेगा। वहीं दूसरी ओर रक्षित की माँ भी पूरी कोशिश करेगी कि अपराजिता उसके बेटे रक्षित से हमेशा के लिए दूर रहे।
3: पूजा के लिए बुलाया है।
4: पंडित जी, बस मेरे बेटे थोड़ी देर में आते ही होंगे। देख, तेरे देखने के लिए कुछ भेजा है।
5: रक्षित मुझसे झूठ बोलकर अपराजिता के घर गया है।
4: आज तक हम चुप थे क्योंकि तूने हमसे पंगे लिए।
0: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में वक्त के रहते रज्जी और नर्मदा ने मोगरा के खेल को पलट दिया है। ऐसे में आज मोगरा की चोरी फिर से पकड़ी गई है, लेकिन मोगरा अपना ताव दिखाना कभी नहीं छोड़ती। बस फिर क्या, उसके ताव पर आज रज्जी को आ गया है गुस्सा, और उसने पकड़ ली है मोगरा की गर्दन।
6: तेरे पे पैर जूते सब उठाएंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी मोगरा?
7: छोड़ो गई हो ये हाथा भाई, छोड़ो, मैं ही
6: नहीं जाने देंगे हमसे। अरे हर बार इसे छोड़ते ये कोई छोटा काम करती है, लेकिन एक दिन इतना कुछ बड़ा और बुरा करेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज इसका सच सबके सामने लाएंगे हम।
7: जी, तुम्हें समझ नहीं रही हो रज्जी, छोड़ो उसे। ये मोगरा है, घर वालों के सामने कभी सच नहीं बोलेगी, नाटक करेगी, झूठ बोलेगी। और ये पैकेट हमें इसी के बैग से मिला है, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है।
6: तो क्या करे, डर जाए इससे? हम नहीं डरते, उसे मार देंगे।
7: रज्जी की बात सुन ले थोड़े, हम सुना की आसानी से पार नहीं पाओगी तुम। छोड़ हमें, ये तो तुम दोनों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें खत्म कर डालो। मारो हमें, मारो। क्या हुआ, छोड़ क्यों दिया हमें? मारना
6: भाभी, इसके खिलाफ सबूत है ना हमारे पास? चलिए सबको बता देते, नहीं सहन हो रहा है इसके नाटक, हमसे नहीं होगा।
7: रज्जी
0: भाई, आज तो नर्मदा ने रज्जी के गुस्से को रोक लिया और बता भी दिया कि मोगरा दो कदम आगे है, इतनी आसानी से वो पकड़ी नहीं जाएगी, इसीलिए उन्हें वक्त का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर गुस्से के मारे मोगरा ने अपनी माँ को सच बता दिया है कि उनका खेल पलट गया है। बस फिर क्या, मोगरा की माँ ने अगली चाल चली और विश्वा और उसके फूफा को अपने प्लान में शामिल कर दिया। उसी के चलते विश्वा और फूफा पहुँच गए हैं पापड़ के उस टेम्पो को रोकने, करने मिलावट। यानी फिर से अब रज्जी और नर्मदा की कोशिशें फेल हो गई हैं, क्योंकि अब विद्या पर इल्जाम जो लगेगा।
8: माँ, पांडे जी का फोन आया है, लगता है पापड़ों की तारीफ करने के लिए किया।
7: बात कीजिए, क्या पता एक और ऑर्डर मिल जाए।
9: हेलो।

गरम मसाला, स्पेशली जब सब्जी बनने के बाद डाला जाता है ना, तब सब्जी में एक अलग ही स्वाद लेकर आता है, होता है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन जरा संभल कर, अगर ये भी हो जाएगा ना ज्यादा, तो डेफिनेटली होगा आपके पेट के लिए शॉकिंग। जी हाँ, गरम मसाला हीट प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा लिमिट में। और देखिए, गर्मियों के दिन में तो आप इसे अवॉइड ही करें, सर्दियों के दिन में, बारिश के दिन में आप इसका फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि ये होता है सुपर स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़।

0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस सीजन 20 की। जी हाँ, जल्द आने वाला है बिग बॉस सीजन 20, जिसकी दस्तक मेकर्स दे चुके हैं। आ गई है बिग बॉस 20 की पहली झलक, यानी कि वो आंख। इसी के साथ खबरें भी आ गई है कि इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं योगेश, जिन्हें आप लॉकअप में देख चुके हैं, और साथ ही बिग बॉस के इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगी रूरू। लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे खबरें तो ये भी है कि बिग बॉस सीजन 20 सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर ये नोट, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सर्जरी हुई और उन्होंने हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए कितने स्ट्रगल्स किए और चैलेंजेस को फेस किया।
1: बचपन में हमें सिखाया गया था कि जो पहले जवाब दे सबसे सही वही है।
0: वैसे इसी के साथ आने वाला है केबीसी का नया सीजन, जिसकी पहली झलक आ गई है सामने।
1: बचपन में हमें सिखाया गया था कि जो पहले जवाब दे सबसे सही वही है, लेकिन जिंदगी में कई बार पहला जवाब जो है सही नहीं होता। तो इस बार केबीसी में जवाब देने से पहले खुद को जरा रोकना पड़ेगा, समझे? इस बार सोचना पड़ेगा।
2: कौन बनेगा करोड़पति?
0: जियो हॉटस्टार पर जल्द आने वाला है शो भोजपुरी बवाल, जिसमें भोजपुरी के सभी कलाकार नजर आएंगे। देख लीजिए इसका नया ट्रैक।
3: और अभी सुनिए, ए सिपाही, ये गाना बजाएंगे उसमें तुम बहुत ठुमका लगाना।
4: धीरज के दिल में बढ़ रहा है रज्जी के लिए प्यार का एहसास।
0: नजर डाल लीजिए महादेव एंड सन्स के इस नए प्रोमो पर, जहां पर रची और धीरज की नजदीकियां बढ़ेंगी और होगा इन्हें प्यार का एहसास।

0: लाएगा इन दोनों को एक दूसरे के पास।
1: बात करते हैं द अलायंस रियलिटी शो की। खबरों की माने तो इसमें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आएंगी कशिश कपूर, जो शो में और भी ज्यादा तड़का डालेंगी।
2: वेलकम द न्यूएस्ट इनमेट।
1: नजर डाल लीजिए लॉकअप के नए प्रोमो पर, जहां पर रिबेल किड यानी अपूर्वा की एंट्री हो चुकी है।
2: लेटेस्ट वाइल्ड कार्ड, इनको रिबेल करने का बहुत शौक है। अपूर्वा ऑल्सो नोन एज रिबेल किड।
3: हाय,
2: हेलो श्रेया,
3: लव यू,
2: सॉरी बोलो।
4: यू वांट सेल?
5: भाई हर्षदन शिवांगी वांट सेल। इन दोनों लव बर्ड्स के लिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगी।
6: एक सेकंड, ये लव बर्ड्स क्या बोल रही है शिल्पा जी?
1: और इसी के साथ शिल्पा हर्षद शिवांगी की हो गई है लड़ाई।
7: बिना मैट के सोइएगा, फिर बात करेगा, सारा प्रिविलेज लेके बैठिए।
6: जाओ जाओ। हाँ, लव बर्ड।
8: पकड़ क्यों करती है लव बर्ड? सब लोग जानते हैं हम लोग क्या है। अरे इन्होंने दोस्ती नहीं देखी कभी जिंदगी में।
9: शादी की उम्र है, अफवाहें उड़ा रही उसके बारे में।

0: जलन होती है क्या? लबड़ लबड़ लबड़ लबड़ लगी रहती है पूरे टाइम। दोस्त उसका
1: कट्टर भरा है दिमाग में, वो और क्या सोच सकता है।
2: हर्षद का कबीर सिंह देखा है आज हमने फिर से। लेट्स गो।
3: मेरी माँ बोल रही थी मत कर खतरों के खिलाड़ी।
4: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का ये नया प्रोमो सामने आया है, जहां गौरव आग से खेलते नजर आए और ऐसे में डर का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
3: मेरी माँ बोल रही थी मत कर खतरों के खिलाड़ी।
5: 3, 2, 1।

0: आई प्रॉमिस मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।
1: देख लीजिए ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा का नया प्रोमो, जहां अपराजिता को होगा रक्षित से अपने प्यार का इजहार और शुरू होगी इनकी नई कहानी।

0: जल्द आने वाली है महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म वाराणसी। ऐसे में खबरों की माने तो महेश और प्रियंका साथ साथ डांस करते नजर आएंगे, वो भी लैटिन स्टाइल में, जिसकी शूटिंग वो जल्द शुरू करने वाले हैं फिल्म के स्पेशल गाने के लिए। अनीस बज्मी लेकर आ रहे हैं भूल भुलैया 4। तो भाई पहले तो नाम था कि इस फिल्म में अक्षय कुमार नजर आएंगे, लेकिन अब खबरें हैं कि कार्तिक आर्यन ही भूल भुलैया 4 में नजर आएंगे, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बात करते हैं सीरियल सैराब की। भाई खबरों की माने तो सीरियल सैराब में रोहित चंदेल को रिप्लेस कर सकते हैं एक्टर आशय मिश्रा, जो कि हैं प्रणाली राठौर के क्लोज फ्रेंड। इसी के साथ बता दें कि सीरियल सैराब में फिलहाल ट्रैक चल रहा है कि नयनिका ईशान को ढूंढ रही हैं, क्योंकि ईशान हो गए हैं लापता। तो भाई अब देखना होगा कि सीरियल सैराब में कौन बनकर आएगा नया ईशान, आशय मिश्रा या फिर कोई और, क्योंकि अब तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है।
1: आपने 25 करोड़ हमें ट्रांसफर नहीं किए
2: तो दुनिया वाले रॉकस्टार ईशान को दोबारा नहीं देख पाएंगे।
3: डॉक्टर, तुझे मरने से डर नहीं लगता? तेरी प्रेमिका डॉक्टर
4: नयनिका, और अगर पिस्टल का निशाना उसके तरफ चला गया तो?
5: ईशान, हम जल्दी ही आ रहे हैं तुम्हें बचाने।
0: सूरज और ईशा की जिंदगी में तो घुली रहे सिर्फ और सिर्फ शहद की मिठास, ना हो यहाँ पर तीखी मिर्ची का तीखापन। लेकिन क्या करें, जैसे ही हम सोचते हैं कि कहानी में अब हो गया है सब कुछ ठीक, वैसे ही आ जाता है एक नया ट्विस्ट जो कम्प्लीटली बदल देता है इस कहानी का मोड़, और हम तो बस अचंभित रह जाते हैं। लेकिन तभी तो ये कहानी हमें एंटरटेन करती है, क्योंकि अगर कहानी हो जाएगी प्रेडिक्टेबल तो वो हो जाएगी बोरिंग। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के। भाई उर्फ सूरज ने की गलती,

0: बोल क्यों नहीं रहा है? आदित उठो, आंखें खोलो ना। आदित देखो, मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं दूसरी शादी करी थी। आदित उठ जाओ, यहीं पे उठ जाओ।
1: इसकी मौत की जिम्मेदार तुम, तो क्या जवाब दोगे?
2: फूटा ईशा का गुस्सा।
0: तुम दादा भाई के पास क्यों गए? क्यों गए? उठो आदित, उठो ना। मैं क्या करूं?
2: जुदा हुए दो प्यार करने वाले। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में दादा भाई के पास आदित आया था, जो चाहता था कि अवनी से उसकी शादी हो, और घर वाले इसके लिए मान नहीं रहे थे। ऐसे में दादा भाई यानी सूरज ने ली थी अवनी और आदित की शादी करवाने की जिम्मेदारी। ऐसे में जब वो दुल्हन अवनी को यहाँ लेकर आए तो दादा भाई यानी सूरज को लगा जोर का झटका, क्योंकि अवनी के परिवार वालों ने आदित को मरवा दिया था। और ऐसे में आदित की डेड बॉडी देखकर सूरज को तो शॉक लगा ही, साथ ही साथ अवनी का हाल बेहाल हो गया। ऊपर से ईशा के ताने, जो दादा भाई को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही है,

0: ये है दादाजी की सुल्तान।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आदित्य उठो ना, अरे आदित्य क्या हुआ, आदित्य उठो, आंखें खोलो ना, अरे देखो मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं दूसरी शादी करी थी, आदित्य उठ जाओ प्लीज उठ जाओ, तुम दादा भाई के पास क्यों गए, क्यों गए, उठो आदित्य उठो ना।
2: मेरी गलती, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए दादा भाई, सजा दीजिए मुझे। मैं दर्जी की दुकान में अंदर जाके चेक कर लिया तो तुम
3: भाई। आज तो अवनी का गुस्सा भी दादा भाई पर फूटा।
1: खबरदार, अगर अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना।
3: वो सूरज को थप्पड़ मारने जा ही रही होती है कि बंटी बीच में आ जाता है, लेकिन अवनी कहां सुनने वाली। वो तो आदित्य की मौत और आदित्य से उसकी जुदाई का सारा इल्जाम दादा भाई पर लगा रही है।
1: ये आदमी खूनी है, इसने मेरे आदित्य को मारा है, मेरे आदित्य को इसने मारा है।
3: और सुना रही है सूरज यानी दादा भाई को खरी खोटी।
1: अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। दादा भाई ने कहा था ना, दादा भाई ने कहा था ना कि वो आदित्य का ख्याल रखेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। मैंने आदित्य को हजार बार मना किया था कि दादा भाई के पास मत जाओ, मत जाओ।
4: उसकी जान
1: बचाने के लिए मैं दूसरी शादी भी कर रही थी ताकि मेरा आदित्य सेफ रहे। मेरा आदित्य इस दुनिया से चला गया, ये लिए जिम्मेदारी दादा भाई ने। मेरा प्यार का खून करके ये आदमी खूनी है, इसने मेरे आदित्य को मारा है, मेरे आदित्य को इसने मारा है। दुनिया में नहीं जा, आपने मुझे मेहनत से उठा लिया, मैं प्यार के चक्कर में भागी हुई लड़की हूँ, और एक भगोड़ी लड़की का परिवार बदनाम हो जाता है।
0: ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कानून तुम्हारे साथ।
1: आपका कानून तब कहाँ गया जब मेरे आदित्य को मुझसे दूर किया जा रहा था? आपका कानून तब कहाँ गया था जब मेरा आदित्य मारा गया था?
5: जहाँ तक दादा भाई है, दादा भाई ने तो उस लड़के से प्रॉमिस कर दिया है कि तुम दोनों की शादी कराऊंगा, लेकिन उसी समय ईशा जी ये बोलती है दादा भाई को कि इसे कानून के थ्रू जाने दो, तुम जो करोगे वो गलत ही होगा। तो सूरज यही बोलता है कि कुछ भी हो जाए, लड़के और लड़की को तो मैं मिला के ही रहूंगा। बंटी तू एक काम कर, ये लड़के को लेकर जा, शेरवानी वगैरह सिलवा, मलहम पट्टी करवा, क्योंकि कुछ लोग मारे रहते हैं उसे, और मैं लड़की को लेकर आता हूँ। अब सूरज एक तरफ लड़की लाने जाता है और कहीं ना कहीं बंटी लेकर जाता है शॉपिंग एंड ऑल में, और वहाँ पे लड़की के डैड, जो लड़की है उसके डैड इसे मरवा देते हैं, ये मर जाता है। एंड यहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। सूरज आता है लड़की को लेके, ना लड़की को पता है ना सूरज को पता है यहाँ पे हुआ क्या है। भीड़ देखता है सूरज और पूछता है बंटी क्या हुआ। ईशा जी आती है, बताती है ये है तुम्हारे मतलब कि पीए की सजा, देखो।
3: भाई आदित्य की मौत के बाद अवनी तो अपना सुध खो बैठी है और गुस्से में देखिए उसने ईशा से बंदूक छीन ली और खुद पर तान दी, लेकिन वो खुद को मार ना सकी। ऐसे में वो सबके पास जाकर उसे मारने के लिए कह रही है।

0: और आखिर में वो पहुंचती है सूरज के पास, उसके हाथों में बंदूक देकर कहती है कि वो उसे मार डाले।
1: अभी, अभी नहीं।
2: नहीं, ये तो गलत कर रही।
1: आप तो मुझे मत ही समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही। नहीं, मुझ पे कुछ नहीं तो मैं कब की मर जाती। आप एक काम कीजिए, आप गोली चलाइए, आप मुझे माफ कीजिए प्लीज। आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगी, तो प्लीज आप कह रहे कि मैं आदित्य के साथ भाग रही थी और आपने कहा कर दिया, प्लीज आप मुझे प्लीज आगे आइए, प्लीज मुझे मार दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मार दीजिए। ये दादा भाई का दरबार है, यहाँ पे सिर्फ दादा भाई का काम नहीं चलता है, आप पे तो कोई हाथ भी नहीं उठाएगा। आपने वादा किया था कि आप मुझे और अदित को एक कर देंगे, जिंदगी की रहते तो हम एक नहीं हो पाए, तो मरने के बाद ही सही। चलाइए चलाइए दादा साहब चलाइए।
0: भाई सूरज और ईशा दोनों ही अवनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद अवनी कुछ ऐसा कह देती है जिसके बाद सूरज और ईशा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रखती है शर्त कि या तो दादा भाई यानी सूरज अवनी को मार डाले या तो वो अवनी से शादी करे। अवनी की ये बात सुनकर सूरज दंग है और आखिर में वो फैसला लेता है कि वो अवनी से शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अवनी सूरज के घर में रह सकती है।
3: शॉक में जाने की वजह से वो आउट ऑफ द जोन हो जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है, वो पूरा पैनिक हो जाती है, सिचुएशन एकदम डैमेज हो गया है, मतलब पूरा का पूरा उस मतलब उस लड़की की लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में आके यही कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और तो सूरज कहीं ना कहीं यही बोलता है कि आपको मतलब कि जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप बताओ क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होने के बाद वो यही कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, जिससे शादी होने वाली थी वहाँ भी शादी टूट गई, इससे प्यार करती थी ये मर गया, अब घर वाले मुझे वापस लेंगे नहीं, तो आप एक काम कीजिए, मैं बच एक ही चीज़ एक ही कंडीशन में सकती हूँ कि मुझे लोग मारेंगे नहीं जब मैं आपकी पत्नी बनूंगी, मुझसे शादी कर लो। तो सूरज आ जाता है शौक में, सूरज बोलता है मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एंड ईशा जी भी समझाती है कि सूरज देख लो तुम्हारे की एक ही सज़ा यही है, तो अब दो इसे इंसाफ दो, क्या दोगे। तो सूरज ओवरऑल यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, ना वचन दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें छत जरूर दूंगा। आदित्य को नहीं बचा पाया मैं, लेकिन डेफिनेटली मैं, जब तक तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल जाता, सही रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहीं मेरे घर में रहोगी और आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे चीज़ें ये आ गई है कि सूरज की जिंदगी में क्या वाकई कोई लड़की आ गई है या ट्रायंगल लव स्टोरी बनने वाला है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो है कहीं ना कहीं सूरज जो है इमोशनली मतलब अभी गिल्ट में है।
0: तो क्या ये है नए रिश्ते की शुरुआत? क्या सूरज और ईशा की जिंदगी में आ गया है नया ट्विस्ट? क्योंकि अब अवनी कौन कौन से खेल खेलेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मैं बोल रही हूँ दादा भाई, आप मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ।
4: आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आरंभी का फेवरेट मसाला है दाल मखनी मसाला, जो लेकर आता है दाल में स्वाद। ओ माय गॉड, आ गया मेरे मुंह में पानी। वैसे ये जो आपकी फेवरेट डॉक्टर आरंभी है ना, यानी ऐश्वर्या खरे, मेरे शुभ भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी, हम भी अक्सर शेयर किया करते थे लंच लंच टाइम पर। और बस दोनों का है काफी सिमिलर टेस्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन फूड। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सीधा यहाँ और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग।

0: मंत्री पर लगे इल्जाम। माँ बेटी में शुरू हुई बहसबाजी।
1: तू ही पीछे पड़ी थी ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दहेज नहीं देने दूंगी, इसीलिए तूने ये सब किया।
2: प्लीज कल इंडियन रुकना चाहती, मेरा मकसद था मेरी फैमिली को क्राइम करने से रुकना, मैं जेल पे छोड़ना नहीं।
0: भेस बदल कर जासूसी करती अवंतिका। टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में राजा और नायरा की शादी हो रही थी, लेकिन इस शादी में आ गया तमाशा जहां नायरा ने बुला ली पुलिस क्योंकि टंडन्स पर लगा है दहेज लेने का इल्जाम।
3: दहेज लेना जुर्म है और मैं इस परिवार को ये जुर्म नहीं करने दूंगी।
4: रुको रुको, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली टंडन्स ने अपने बेटे राज से मेरी शादी करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है, जिसके लिए सजा मिलनी चाहिए। प्लीज अरेस्ट देम राइट नाउ।
3: मुझे पता है राज बेकसूर है और मैं उसे बचा कर रहूंगी।
0: ऐसे में आरंभी की मम्मी को लग रहा है कि आरंभी ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि आरंभी को पता था कि टंडन परिवार नायरा के परिवार से दहेज ले रहा है और इसीलिए वो इस कमरे में पहुंची है आरंभी के साथ उसे सवाल पूछने के लिए। ऐसे में आरंभी कर रही है साफ इनकार कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया है। हालांकि आरंभी को दहेज की बात पता थी, लेकिन आरंभी का कहना है कि पुलिस वालों को आरंभी ने यहां पर नहीं बुलाया है।
1: ये सब तुम्हें क्या लगा? मैंने बुला किया था, फिर भी तुमने पुलिस को बुलाया, सबूत दिया, क्यों किया ये सब? क्या बोल रहे हो? यही जो तुमने किया है वो सब? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? तू ही पीछे पड़ी थी ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दहेज नहीं देने दूंगी, इसीलिए तूने ये सब किया।
2: मां मैं दहेज नहीं देने दूंगी, इसका इंडियन रुकना चाहती, मेरा मकसद था मेरी फैमिली को क्राइम करने से रोकना, मैं जेल पे छोड़ना नहीं। अगर आप मुझ पर भरोसा ही नहीं है, मेरी नियत पेश है, तो फिर मेरा कुछ बोलने का क्या है? प्लीज मुझे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बोला।
0: भाई कहीं ना कहीं आरंभी की मम्मी को आरंभी की बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन आरंभी इसी बात पर अड़ी है कि उसने पुलिस वालों को नहीं बुलाया है और ना ही राज और नायरा की शादी रुकवाई है, लेकिन ये सारी बातें कमरे के बाहर छुपकर सुन रही है अवंतिका, जो अब इन बातों का फायदा उठाएगी और घर में बवाल शुरू करेगी।
2: जहाँ क्रांति लाने की जरूरत हो वहाँ क्रांति लाना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन क्रांति लाने का ये मतलब नहीं होता कि अपने परिवार का तमाशा बना दो, ये बात जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं पुलिस को बुलाती हूँ तो पुलिस पहले आके मुझसे नहीं सवाल जवाब करेगी कि किसने क्या किया है, वो आके सबसे पहले सबको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राज के बारे में बिना सोचे पुलिस को बुलाएंगे? मुझे नहीं पता,

0: वहीं दूसरी तरफ नायरा भी आरंभी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उसे तो बस टंडन परिवार वालों को जेल भेजना है, ऐसे में वो आरंभी की भी बात नहीं सुन रही।
1: चेहरा छुपाना पड़े ऐसी घटिया और चीप हरकत तो अब टंडन ने की है।
2: एंड होते होते तो मुझे पता चल जाएगा कि आरंभी दीदी ने इन सबको रोकने की बहुत कोशिश करी, बट या इनिशियली तो मेरा आरंभी दीदी से भी हार्ट ब्रेक हो ही गया है कि दीदी ने तक मुझे धोखा दे दिया जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, आसार तो नहीं दिख रहे, जितना नायरा गुस्सा है तो लगता तो नहीं है।
0: तो भाई अब इन सब तमाशों के बीच देखना होगा कि आरंभी कैसे अपने परिवार वालों को बचाती है और क्या नायरा और राज की शादी हो पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अभीरा तो कह रही हैं कि जब भी उनकी किचन में टमाटर खत्म हो जाते हैं तो वो इस्तेमाल करती हैं चाट मसाले का। ये तो है मेरा फेवरेट। इसे वो डालती हैं सैलड्स में, करीज में, छाछ में, सब्जियों में, और सब्जियों के स्वाद में आ जाता है चार चांद। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं अब आपको अरमान और अभीरा के पास और देखते हैं क्या इनकी कहानी भी लगा रही है हम सबके टेलीविजन स्क्रीन्स पर चार चांद, क्योंकि फिर से आया है यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ड्रामा।

0: सपनों की मिली है। अरमान अभीरा का सरप्राइज।
1: कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये।
0: खुश हुई मायरा और मुक्ति।
1: कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सो बातें करता ये बुद्धू समन है।
0: स्कॉलरशिप के लिए शुरू हुई जंग।

0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अभीरा लेकर आ गए हैं मायरा मुक्ति के लिए तोहफा। असल में मायरा मुक्ति को अपनी थीसिस तैयार करनी है, ऐसे में उनकी थीसिस में उनका माइंड ना भटके इसीलिए वो अलग अलग तोहफे लाए हैं, जिसे पाकर मायरा और मुक्ति बेहद खुश हो गए हैं और तो और दोनों की नजरें एक दूसरे के तोहफे पर है।
1: अभी हमारी थीसिस चालू है स्कॉलरशिप के लिए, तो ऐसा है कि हम दोनों को थीसिस के लिए थीसिस मतलब लिखना है ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल पाए। लास्ट ईयर की फीस फ्री हो जाएगी उसके लिए, तो हम दोनों का ऐसा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं थीसिस के लिए। तो गिफ्ट मिले हैं हम दोनों को, मुझे गिफ्ट मिला है कि मुझे टाइम टेबल मिला है, एक बजर मिला है ताकि मैं टाइम लगा पाऊँ कि कब मुझे कौन सा राइटिंग टाइम करना है, क्या स्टडी करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो सब कुछ के लिए मुझे बजर मिला है, लैम्प मिला है और मुक्ति की फेवरेट मुझे मटरी मिली है जो कि वो हमेशा स्टडी करते टाइम खाती है, तो मुझे तो ये सारे गिफ्ट मिले हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन क्योंकि हम दोनों ने सेम टॉपिक चूज़ कर लिया था अपनी थीसिस के लिए, सोशल रिफॉर्म्स फॉर इंडियन वुमेन, हमने दोनों ने सेम टॉपिक चूज़ कर लिया तो हमारा वही टेंशन था। फिर घर वालों ने समझाया कि दोनों सेम पे लिखो तो इससे टीचर का ध्यान भी आप पे जाएगा और मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसे इसका अलग बॉक्स मिला है, मुझे मेरा अलग बॉक्स मिला है जिसमें स्ट्रेस बॉल है, टम्बलर है, स्लीप मास्क है, फेस मास्क हैं, सारी मायरा वाली चीज़ें, मायरा कोडेड चीज़ें हैं सारी, और अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स, पेन्स वगैरह सब वैसा फैंसी स्टेशनरी है मेरे पास। एंड हाँ, फिर बहुत मेहनत कर रही है मायरा तो अलग लेवल के लिए, अलग लेवल पे मायरा तो मेहनत कर रही है इस थीसिस के लिए, दिन रात रात भर, इसके सोने के बाद भी मायरा थीसिस लिख ही रही है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मायरा तो थीसिस के लिए।
0: खैर, अपने मम्मी पापा की बात मानकर मायरा और मुक्ति दोनों ही अपने अपने तोहफे खोलती हैं और उनके अंदर का सामान देखकर वो होती हैं बेहद खुश, क्योंकि वो सारा सामान उनकी थीसिस में काम जो आने वाला है। ऐसे में वो पहुंच जाती हैं अरमान अभीरा को थैंक यू बोलने।
1: सारी चीजें काम की तो थी ना? हाँ माँ, अब काम की बात सुनो, चल के मेरी थीसिस
2: बस आप दोनों की थीसिस सुनेंगे।
1: सुन के बता ना किसकी बेटर है।
3: हमें अकेले क्यों सफर
1: है?
3: आई मीन टू से कि ये थीसिस पढ़ने का सफर हमें अकेले ही क्यों तय करना है? सारी फैमिली बैठकर तुम लोगों की थीसिस सुनेगी क्यों?
2: सो आधे लोग मुक्ति के थीसिस सुनेंगे और आधे लोग मायरा, और आप दोनों के थीसिस को कोई भी कंपेयर नहीं करेगा।
3: क्या करेंगे हम? आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे ताकि आप अपनी थीसिस को इम्प्रूव करें।
1: मैं बोलती हूँ कि आओ मेरी थीसिस सुनो, ये बोलती है इसकी सुनो, तो पापा बोलते हैं कि आधे आधे लोग, आधे लोग मायरा की सुन लो, आधे लोग मुक्ति की सुन लो, तो सब आधे आधे सुनते हैं। फिर बाद में मम्मा पापा का सीन है, मम्मा को मेरी अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने मेरी सुनी है, पापा को इसकी अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने इसकी सुनी है, तो उन दोनों का है कि किसकी अच्छी होगी, यही सब चल रहा है अभी तो। अभी हमें पता नहीं है बट ड्रामा तो बिल्ड हो रहा है, हम दोनों के सीन्स भी हुए कि हम दोनों कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये तो पता है कि स्कॉलरशिप को एक ही जीतेगा, बट हमारा ऐसा सीन हुआ था कि हम में से जो भी जीतेगा दूसरा उसके लिए हैप्पी ही होगा। अब आगे जाके ड्रामा क्या होगा वो पता नहीं, बट अभी तो थीसिस की जो तैयारियां चल रही है, मायरा जो थीसिस इतना लिख रही है भाई, क्रेजी पागल हो गई है मायरा थीसिस के पीछे, बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा दिन रात पढ़ने वाली मेहनत होती है ना वो मायरा कर रही है।
0: अभीरा की टीम मायरा की थीसिस सुन रही है तो वहाँ अरमान की टीम मुक्ति की थीसिस पर ध्यान दे रही है। दोनों टीम अपने अपने पॉइंट्स बना रही है ताकि उनकी गलतियों को सुधारा जा सके और दोनों को ही तैयार कर रही हैं स्कॉलरशिप के लिए। अब देखना होगा कि दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार। फिलहाल तो रिश्तों में एक एक कर ट्विस्ट आ रहे हैं।
4: बेचारी अभीरा कितनी मेहनत कर रही हो, पर अफसोस बोर्ड मेंबर्स इस बार।
0: और ये शुरुआत हुई है संजय से, जो हाथ धोकर अभीरा के पीछे पड़ गए हैं। अब देखना होगा अभीरा इन रिश्तों को कैसे संभालेगी।
1: माँ जल्दी चलो मायरा।
4: जाओ अभीरा, एक माँ का फर्ज निभाओ और साबित कर दो कि एक औरत अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती।
0: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब हर भारतीय रसोई में ट्रेंड करते हैं मसाले। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया मसाला, इन मसालों की लिस्ट कभी नहीं होगी खत्म। और यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में ट्रेंड कर रही है ना खबरें, उनकी लिस्ट भी है एंडलेस। फिलहाल हम तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए वो तमाम खबरें जो मचा रही हैं एंटरटेनमेंट का शोर, यानी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज।
6: दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम में हो गई है धरिशा कल्याणी और चिराग जोशी की एंट्री। देख लीजिए इसका नया प्रोमो।
7: तू मेरी महबूबा,
8: कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है समीर। तुम्हें सक्सेस मैं दिलाऊंगी।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था समीर कि आप अपने सपनों के लिए अपनों का दामन छोड़ दें।
9: क्या समीर का विमान कर देगा उसे रिमझिम से अनजान?
6: इसी के साथ देख लीजिए कैसे रिमझिम यानी कि याशिका शर्मा पहुंची हैं अपने स्कूल, जहां उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें बेस्ट गाइड का अवार्ड भी मिला। याशिका के लिए भी है ये प्राउड मोमेंट। बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, तो भाई सीरियल में दो दो एंट्रीज होने वाली हैं। एक तो यंग एक्टर आदित्य गुप्ता की एंट्री होगी, तो वहीं सीनियर एक्ट्रेस शगुफ्ता अली भी शो में नजर आएंगी, यानी कि कहानी में जल्द ही बदलाव आएंगे। वैसे खबरें तो ये भी है कि सीरियल छोटा सा लीप भी लेने वाला है। जेनिफर विंगेट ने शेयर की है सोशल मीडिया पर अपनी शादी की कुछ और तस्वीरें, अपने हस्बैंड संग आप भी डाल लीजिए इन पर एक नजर।

काली काली आंखें फेम एक्ट्रेस आंचल सिंह ने कर ली है शादी इन्वेस्टमेंट बैंकर मोहित चावला से। देख लीजिए इनकी शादी की ये तस्वीरें

बीती शाम हुआ एक इवेंट खास कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसे अटेंड किया। राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर ने साथ नजर आई सोफी चौधरी। जल्द आने वाली है फिल्म ओ माई डॉग, जिसमें नजर आने वाले हैं पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा। ऐसे में ट्रेलर लॉन्च पर ये सभी पहुंचे। विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो नजर आएंगे मुसाफिर कैफे में। बीती शाम हुआ इसका एक खास इवेंट, देख लीजिए इस इवेंट के ये सभी नजारे। वैसे इसी के साथ महिमा मकवाना पहुंच गई है सिद्धि विनायक मंदिर मुसाफिर कैफे के लिए प्रार्थना करने और लेने बाप्पा की ब्लेसिंग्स। ब्लड डोनेशन ड्राइव में पहुंची भाग्यश्री और अवंतिका दसानी, जो पहुंची इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए।

बीती शाम हुई आने वाली फिल्म सिमुलाक्रा की स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए कई सितारे जैसे कि अक्षरा हसन, जॉनी लीवर, जेसी लीवर, जैमी लीवर, जावेद जाफरी और कई और सितारे जो हुए इस स्क्रीनिंग में शामिल।

0: चेहरा द फेम एक्टर शहबान आजम पहुंचे थे सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर लाठी चार्ज में उन्हें भी मारा गया और अपना ये एक्सपीरियंस उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है।
1: तो देखा आपने, आज तो मसालों को लेकर हमने आपके साथ कितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, और इसके साथ साथ लेकर आए ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। वेल, अभी तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन क्या करें, घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
3: रास्ता बहाल होने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर शुरू, सोनप्रयाग और गौरी कुंड से भक्त किए गए रवाना, लेकिन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा अभी भी बंद। पुरी के गुंडीचा मंदिर में बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां तेज, तीनों रथों का हुआ अनुष्ठान, ताल ध्वज और नंदीघोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ा गया। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी दिखी साथ, गुरु पूर्णिमा से पहले संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। मॉनसून के बीच चमोली के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्त खाल ट्रैक पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: लद्दाख में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गर्मियों के बीच अचानक जोरदार बर्फबारी, भारी बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ों का बर्फ से भव्य श्रृंगार। भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, पड़ रही सर्दियों जैसी ठंडक। उत्तराखंड के चमोली बर्फीले ट्रैकिंग रूट पर्यटकों से गुलजार, 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्त खाल ट्रैक पर उमड़ रही भीड़। चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ट्रैकिंग का आनंद ले रहे सैलानी। दिल्ली NCR में सुबह सुबह झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, बारिश से वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली NCR में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। दिल्ली के मोती बाग में भी हुई बारिश, तापमान में भी आई गिरावट। मुंबई में भी सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। रुद्रप्रयाग के छोड़ी में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। भारी भूस्खलन के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, भक्तों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में आया उफान, नदी के बीच में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे युवक का रेस्क्यू कर बचाई उसकी जान, लोगों से नदी और नाले से दूर रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, राहत बचाव का काम लगातार जारी। मड़गांव में भारी बारिश से आई बाढ़, प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव का काम। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। रजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों और दुकानों को पहुंचा नुकसान। रियासी में भारी बारिश से सलाल जलाशय का बड़ा जलस्तर, बांध के खोले गए गेट। कारगिल के करकीचू में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, फंसे कई लोग। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों का किया रेस्क्यू, प्रभावित गांवों में राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। रियासी में भारी बारिश के चलते खतरे के निशान के करीब पहुंची चुनाब नदी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। पुंज में चार दिनों से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त। उदयपुर में भारी बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। कटरा में भारी बारिश के चलते रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह। भलेसा में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, जनजीवन अस्त व्यस्त। रामबन के धुंध भरे पहाड़, मानसून की बारिश से बने खूबसूरत नजारे। वलसाड़ में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, यातायात प्रभावित। असम में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित, सभी जिलों में राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी। असम का शिवसागर जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित, 3.5 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 6 लाख लोग प्रभावित, 71 राहत शिविर में शिफ्ट किए जा रहे लोग। असम के 872 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 12,284 लोगों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्ध पोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ इसका भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में है माहिर, तटीय रक्षा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक अभियान चलाने की क्षमता से लैस है मालवन, टॉरपीडो और अन्य आधुनिक हथियार प्रणालियों से है सुसज्जित। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार, देश की रक्षा निर्माण क्षमता और नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 7वां दिन, महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू। गुंडीचा मंदिर के पास भगवान के तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है तैयार, सेवादारों ने रथों की जांच और रखरखाव का काम शुरू किया। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की पवित्र वापसी का प्रतीक, 7 दिनों तक मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद होती है वापसी यात्री। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भगवान की एक झलक पाने के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। बहुड़ा यात्रा दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु, पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें रहेंगे सक्रिय। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। नागपुर की सड़कें हुई भक्तिमय, श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ, हजारों भक्त भजन और कीर्तन कर नाचते गाते नजर आए, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ। मां नैना देवी के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या के
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने

कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्तर। ये गंधपुरा पत्तर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से

0: विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: May I have your attention, please?
3: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are built with input from industry experts and updated regularly. So what you learn is what employers need right now. Practical skills, recognized certifications, real-world relevance that opens doors. Get an education that actually delivers. It's one that prepares you for the career you're chasing today and the opportunities that will shape your tomorrow. Learn more at wgu.edu.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Scented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: रास्ता बहाल होने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर शुरू, सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भक्त किए गए रवाना, लेकिन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा अभी भी बंद। पूरे के गुंडीचा मंदिर में बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां तेज, तीनों रथों का हुआ अनुष्ठान, तालध्वज और नंदीघोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ा गया। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी दिखी साथ, गुरु पूर्णिमा से पहले संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। मॉनसून के बीच चमोली के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्तखाल ट्रैक पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कमीशन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भगवती से विशेष कामनाओं की पूर्ति के होते हैं ये गुप्त नवरात्र। देखिए, माना जाता है कि गुप्त नवरात्रों में आप देवी की विशेष उपासना से जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम आपको माँ दुर्गा के स्रोत और चमत्कारी कहे जाने वाले पाठ के बारे में बताएंगे। देखिए, माना जाता है कि देवी की कृपा से भरे ये पाठ और स्रोत आपके जीवन को संकटों से मुक्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो दिव्य पाठ।

0: अद्भुत है वो पाठ जो आपको दिलाता है दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल। अलौकिक है वो स्रोत जिसकी महिमा स्वयं देवाधिदेव महादेव ने बताई है। मान्यता है कि कामना पूर्ति के वरदान से भरा है वो दिव्य पाठ, जिसका सोपान कर लेने से सभी संकटों का नाश हो सकता है। भगवती की उपासना को समर्पित वो परम फलकारी और कल्याणकारी पाठ है सिद्ध कुंज का स्रोत। माना जाता है कि इसके गुप्त बीज मंत्रों से साधक की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे देवी की कृपा पाने के स्रोत, श्रुतियों और पाठ के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है सिद्ध कुंज का स्रोत की महिमा।
1: माँ दुर्गा में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र, पूरी दुर्गा सप्तशती का सिद्ध, सभी पूरे अध्यायों का, पूरे इनके कवच का एक सिद्ध स्त्रोत्र बनाया है, जिनको जिन लोगों ने के द्वारा पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का नहीं कर पाते हैं वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ कर लेने मात्र से उनको पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है, इसको सिद्ध कुंजिका कहते हैं।
0: सिद्ध कुंजिका स्रोत क्या है? ये स्रोत श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से उद्गृत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है, ऐसे में कुंजिका स्रोत का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा फलदायी भी। मात्र कुंजिका स्रोत के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। इसके मंत्र स्वतः सिद्ध किए हुए होते हैं, अतः इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। यह अद्भुत स्रोत है जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इसके नियमित पाठ से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि इस पाठ को करने से आप पर जगदम्बा की कृपा बरसती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यह चमत्कारी माना जाने वाला स्रोत जीवन से सभी बाधाओं को दूर करता है, साथ ही ये रोगों का नाश भी करता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर जीवन में किसी ने आपको परेशान कर रखा हो तो ये उस शत्रु को भी परास्त कर सकता है। चलिए जान लेते हैं सिद्ध कुंजिका स्रोत के कौन कौन से फायदे होते हैं।
1: सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र के पाठ से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसमें भय, नकारात्मकता और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु बाधा दूर होती है, ग्रह दोष दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: सिद्ध कुंजिका स्रोत के लाभ, व्यक्ति को वाणी और मन की शक्ति मिलती है, व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है, जीवन में धन समृद्धि मिलती है, तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। माना जाता है कि किसी भी स्रोत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे विधि विधान से किया जाए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस पाठ को करने का सही समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है। साथ ही यदि आप विशेष साधना कर रहे हैं तो रात 9 बजे के बाद या फिर मध्य रात्रि यानी निषेध काल में पाठ करना सबसे अधिक फलदायी होता है।
1: सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम प्रातः स्नान करके सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ किया जाता है, उनमें दुर्गा सप्तशती के दुर्गा देवी की तस्वीर रखी जाती है और सिद्ध कुंजिका स्रोत में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जब एक माला किया जाता है और सिद्ध कुंजिका स्रोत दुर्गा सप्तशती के लास्ट में है उसका पाठ किया जाता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताया गया अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, स्त्रोत्र है, जो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है।
0: कैसे करें सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ? संध्या के समय या रात्रि के समय इसका पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो और उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें, फिर कुंजिका स्रोत का पाठ करें। कुंजिका स्रोत का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का पालन करना पड़ता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्र, गुप्त नवरात्र, अष्टमी, नवमी, दीपावली और ग्रहण काल में किया गया पाठ शीघ्र सिद्ध होता है। माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्रोत को पढ़ने के लिए कवच, कीलक या अर्गला जैसे अन्य पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके मंत्र सीधे मन और वाणी को ऊर्जा देते हैं और आपकी कामनाओं को शीघ्र सिद्ध करते हैं। जानकार बताते हैं कि इसमें अनेक गुप्त बीज मंत्र हैं, जैसे एम रीम क्लीम शामिल है। माना जाता है कि ये मंत्र देवी भगवती को जल्द प्रसन्न करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे दुर्गा कवच के पाठ की महिमा। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए, प्रार्थना स्वीकार हो।
2: अभी हमने आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम की महिमा के बारे में बताया। चलिए अब आपको देवी कवच के पाठ की महिमा के बारे में बताते हैं। दरअसल माना जाता है कि देवी कवच का पाठ करने वाले भक्तों को माँ से अभय का वरदान मिलता है। अकाल मृत्यु की बाधा दूर हो जाती है, रोगों के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं देवी कवच के पाठ की महिमा के बारे में।

0: देवी कवच जिसकी महिमा कहता है मार्कंडे पुराण। देवी कवच जो है नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रमाण। दुर्गा कवच से आप होंगे निर्भय, होंगे बलशाली, मिलेगी मानसिक शांति, जीवन में होगी खुशहाली। माँ दुर्गा की उपासना हर समय कल्याणकारी मानी जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी कवच के पाठ से आपकी हर कामना की पूर्ति सरल हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं दुर्गा कवच या देवी कवच के प्रभाव पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: दुर्गा सप्तशती में देवी कवच, दुर्गा का एक कवच होता है, कवच मतलब रक्षा करने वाला। तो ये देवी कवच और दुर्गा कवच एक ही चीज है। ये दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के पहले ये दुर्गा देवी कवच होती है। इनका शरीर में अनेक प्रकार के जो भी रोग होते हैं, दोष होते हैं, विघ्न बाधाएं होती हैं, इस कवच का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार के भय नहीं आते हैं, संकट नहीं आते हैं, नकारात्मक शक्तियां से दूर होती हैं, रोग नहीं आते, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। ये सारी चीज दुर्गा कवच में विद्यमान है।
0: देवी कवच पाठ की महिमा। देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों और शक्तियों का उल्लेख है। इसके पाठ से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे आदि बाधाओं से बचा जा सकता है और यहाँ तक कि इसका पाठ मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी करा देता है। माना जाता है कि पाठ साधक के शरीर के हर अंग की सुरक्षा के लिए माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का आह्वान करता है, जिससे दुर्घटनाओं और अनहोनी से बचा जा सकता है। साथ ही कवच का नित्य पाठ शारीरिक रोगों को दूर करने और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायक है। माना जाता है कि देवी कवच के पाठ से न सिर्फ बुरी ऊर्जा के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, बल्कि साधक की आध्यात्मिक उन्नति के द्वार भी खुल जाते हैं। साथ ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ करने से शनि और राहु के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें ये अद्भुत पाठ, जिससे इस पाठ का ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको हो सके।
1: देवी कवच का पाठ करने के लिए प्रातः काल स्नान कर करके सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके माता दुर्गा की तस्वीर रख करके शांत मन से एकाग्रचित होकर के दुर्गा देवी का कवच का पाठ नियमित पाठ करना चाहिए और उसमें मानसिक शांति एकाग्रता पूर्ण होकर के पाठ करना चाहिए।
0: कैसे करें देवी कवच का पाठ? नित्य प्रातः या मध्य रात्रि में इसका पाठ करें। देवी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, सामने एक जल का पात्र रखें। इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ करें। पाठ के थोड़ी ही देर बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लें। अगर किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर जल लगाएं। इसको भोजपत्र पर लिखकर गले में धारण करना अमोघ होता है। इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का ही हिस्सा है दुर्गा कवच। माना जाता है कि ये पाठ रोग और दुर्घटनाओं में ढाल बन जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही प्रकट होता है दुर्गा कवच। ये भक्तों का सुरक्षा कवच बन जाता है। साथ ही इस अमोघ पाठ से जीवन में समृद्धि के योग बनते हैं। आगे हम आपको बताएंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की महिमा। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए, प्रार्थना स्वीकार हो।
2: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि देवी से वरदान पाने का अचूक पाठ है दुर्गा सप्तशती। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठ से भक्तों के जीवन के सभी संकट, भय और दरिद्रता दूर हो जाती है। ये ग्रंथ साधक के जीवन में सौभाग्य और आरोग्यता प्रदान करता है, तो साथ ही ज्ञात अज्ञात शत्रुओं पर विजय दिलाता है।

0: जब संकटों में भक्त करते हैं फरियाद, तीनों रूपों में देवी देंगी आशीर्वाद। चमत्कारी है 13 अध्याय और 700 श्लोक। भगवती की कृपा का है ये आलोक, एक ऐसा स्रोत जिसका हर अध्याय खास है। अलग उद्देश्य है, देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है वो। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि देवी कृपा पाने का महावरदान है दुर्गा सप्तशती। माना जाता है कि सप्तशती का पाठ एक कवच की तरह काम करता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि वैसे तो ये पाठ कभी भी किया जा सकता है, इसका फल अमोघ होता है, लेकिन नवरात्र की तिथियों में दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्व कामनाओं की पूर्ति करता है। जानकर बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन है। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है दुर्गा सप्तशती की महिमा।
1: दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। यह पवित्र भाग है मार्कंडेय पुराण का। इसमें 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों में दुर्गा देवी के अनेक प्रकार के विचित्र रूपों का वर्णन किया गया है तथा असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय कैसे प्राप्त हुई है, उनकी उपासना कैसे की जाएगी, उसका सर्वोच्च पद किस तरह से मनुष्य को मिलेगा, यह सब दुर्गा सप्तशती में वर्णित किया गया है।
0: माँ दुर्गा की आराधना के लिए तमाम मंत्रों, स्रोतों और साधना विधि का उल्लेख किया गया है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और अचूक स्रोत दुर्गा सप्तशती माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसका एक एक श्लोक एक महामंत्र है। केवल उस मंत्र का पाठ करने से भी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती बिना नियमों की जानकारी के नहीं पढ़ना चाहिए। दावा किया जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बटे हुए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है।
1: दुर्गा सप्तशती से पाठ करने से जीवन में आ रही अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सुख, दुख, समृद्धि और सफलता, दुख दूर होता है, सुख प्राप्त होता है, जीवन में अनेक प्रकार की संपन्नता आती है, शत्रुओं की नकारात्मक जो प्रभाव होता है वो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से समाप्त हो जाता है।
0: दुर्गा सप्तशती की महिमा। दुर्गा सप्तशती को मंत्रों से किलित कर दिया गया है। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के और स्तंभन तथा वशीकरण और विद्वेष के श्लोक दिए गए हैं। बिना इसको उत्कीलित किए हुए इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितने भी नियम और सावधानी से इसका पाठ किया जाए, बिना उत्कीलन के इसका प्रभाव शून्य ही होता है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती की 13 अध्याय को नियम के साथ अगर पढ़ें तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन इसके पाठ में गलतियों से बचना चाहिए। गौर से देखिए दुर्गा सप्तशती के पाठ और इसके सिद्ध मंत्रों का जाप और उसके नियम। दुर्गा सप्तशती के मंत्र, जाप के नियम। अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्र का चुनाव करें। कम से कम रोज 3 माला मंत्र जाप करें और लगातार 9 दिन तक मंत्र जाप करें। अगर रोज पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों का पाठ 7 दिनों में करके सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन मंत्र का जरूर जाप करें। चाहे तो उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करें और इसका पाठ करें। इस दौरान सात्विक रहें। अगर उपवास रख सकें तो और भी उत्तम होगा। मंत्र जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें।
1: दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का 4 नवरात्र होती है। 1 सर्दी नवरात्र होती है, 1 चैत्र की नवरात्र होती है, वांसंतिक जिसको वो बोलते हैं, 1 होती है अभी वर्तमान में चल रही है, ये गुप्त नवरात्र होती है, ये आषाढ़ में चलती है, और 1 माघ में आती है जो गुप्त नवरात्र का ये चौथा नवरात्र, 4 नवरात्र मानी जाती है। तो इन नवरात्र के दिनों में पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। उसके अलावा अष्टमी, नवमी और शुक्रवार का दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है।
0: दुर्गा सप्तशती कितनी प्रभावशाली है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को उत्कीलित यानी कि खोला कैसे जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका तरीका। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को कैसे खोले, उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन के मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र होगा ओम श्रीम क्लीम रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष से करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ को कैसे शुरू करना है ये तो आपने जान लिया, अब हम आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। सप्तशती का पाठ किसी भी समय में किया जा सकता है। नवरात्र में इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन भी सप्तशती का पाठ करें उतने ही दिन सात्विकता बनाए रखें। जानकार बताते हैं कि अगर कोई साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करता है उसे देवी कवच अर्गला स्रोत कीलकम का पाठ करके देवी सूक्तम जरूर पढ़ना चाहिए। तो आपने जाना कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है, जिससे आपके ऊपर भी भगवती की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The state of New Mexico is already famous for green chili and sunsets. And now we can add award-winning sparkling wine to the list of great things from New Mexico. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine that punches way above its price. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. So whether it's a special celebration or an ordinary Tuesday, Vara has a bottle for it. At Vara, we make seriously great wines for everyone and every occasion. Shop now at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
3: Good news today is really good. This is the news that is not the news that is not the news.
2: देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे ऐसी स्थिति में सेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं, आइए चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है, खड नालों के किनारे जाने से परहेज करें और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं अभी तक, कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है एसक्यू।
5: रात से
4: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी एसक्यू हो गया, काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अर्शफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
6: सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भगवान शिव की भक्ति का ये सबसे खास समय माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। देखिए, इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए दिल्ली, सहारनपुर से लेकर हरिद्वार तक तैयारियां की जा रही है। कैसे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में।

0: बोल बम हर हर महादेव, इन जय घोष के साथ एक बार फिर शिव भक्ति का महासागर उमड़ने वाला है। देवों के देव महादेव को समर्पित पावन सावन दस्तक देने वाला है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यही वजह है कि देश भर से लाखों शिव भक्त आस्था के कांवड़ उठाकर गंगा जल लेने निकल पड़ते हैं। नंगे पांव भोले के नाम का जय घोष करते हुए ये श्रद्धालु गंगा से जल भरते हैं और अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। घाटों की सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए उनसे अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सरकार का कहना है कि यात्रा के दौरान दुकानों के संचालन, रजिस्ट्रेशन, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। उधर यूपी के सहारनपुर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। यात्रा में इस्तेमाल होने वाली हर डीजे पेन ड्राइव का पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ स्वीकृत भक्ति गीतों को ही बजाने की अनुमति मिलेगी।
1: उनको ये निर्देश दिया गया, उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो डीजे की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा जो डीजे में बचेगा उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द खराब हो और किसी व्यक्ति को की जो भावना है वो आहत हो।
0: सहारनपुर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अग्निशमन के इंतजाम, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। शिविरों में केवल शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाएगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। वही उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी कांवड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी। खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की नियमित जाँच होगी और सभी भोजनालयों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। हरिद्वार से मुदित, सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae
7: exclusively on TuneIn.
8: This is classic hip hop
9: exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
2: खबरें तो आ रही
10: है। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
11: केदारनाथ पैदल मार्ग बहाल होने के बाद फिर शुरू हुई यात्रा। मलबे और पत्थरों के कारण रुकी थी यात्रा, खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा अभी भी स्थगित। पुरी के गुंडिचा मंदिर में बाहुडा यात्रा की तैयारियां तेज, तीनों रथों का हुआ अनुष्ठान। तालध्वज और नंदीघोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ा गया। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट और अनुष्का, करीब एक घंटे तक हुई एकांत वार्ता। कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चले। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नैना देवी शक्ति पीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे सुख समृद्धि की कामना।

तमिलनाडु के तिरुपुर में जननायकन टी शर्ट की भारी मांग। एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। कल रिलीज हो रही है फिल्म। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम। 24 सालों से मना जा रहा है भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शक। 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो।

0: स्वाभिमान वाली शादी, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सत्य घटना पर आधारित एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी पर एक बहस भी छिड़ गई है। इस पोस्ट में लड़की ने फुल टाइम बहू बनने से इनकार कर दिया। दावा यह है कि लड़की ने 48 लाख पैकेज वाले दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आई, लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। तो क्या अब सोच बदलने का समय आ गया है? क्या लड़की ने अपने फैसले से गहरा संदेश दिया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली की एक कामकाजी महिला है जिन्होंने एक पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। उन्होंने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर ये पोस्ट शेयर किया है। लिखा क्या है वो भी बताते हैं आपको। दिल्ली की वर्किंग लेडी की ये पोस्ट शादी के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकराने के बारे में है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस वायरल पोस्ट में करियर, जेंडर एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न रिलेशनशिप को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सत्य घटना पर आधारित टाइटल वाली इस पोस्ट में महिला ने बताया कि उसने क्यों 48 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लड़के से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला के मुताबिक दोनों परिवार शुरुआती दौर पर शादी को लेकर तैयार लग रहे थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से आई एक डिमांड ने सब कुछ पलट दिया। दरअसल लड़के के घर वालों ने यह मांग रखी कि शादी के बाद लड़की को अपनी जॉब छोड़नी होगी, लेकिन महिला ने खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और अपने करियर के प्रति लगाव का हवाला देकर शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला ने पोस्ट में लिखा है कि वो 48 लाख रुपए सालाना कमाता है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दूं, लिहाजा मैंने पूरी विनम्रता के साथ उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पोस्ट में महिला ने तर्क दिया है कि उसके लिए जॉब कोई हॉबी नहीं है जिसे वो किसी के कहने पर बदल दे। महिला ने साफ किया है कि फैसला लड़के की सैलरी या फिर आर्थिक सुरक्षा को लेकर अभी नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर था। लिंक्डइन पर शेयर किया गया ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिस पर हजारों यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्यादातर यूजर्स ने अपने रुख पर कायम रहने और मूल्यों के साथ समझौता न करने के लिए इस कामकाजी महिला की तारीफ भी की है। कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के युवा पेशेवर लोगों में शादी को लेकर सोच बदल रही है। आज के दौर में पार्टनर्स एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ावा देते हैं।
1: अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना है, तो मैं वो शादी नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा फर्स्ट मोटिव इज़ टू बी इंडिपेंडेंट। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि क्योंकि ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको हर चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते, तो मेरी आइडियोलॉजी तो ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और खुद अर्न करो, ताकि किसी से मांगना नहीं पड़े।
2: वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने अपना पैशन इतने फॉलो करा है तो ऑब्वियसली मेरे को करना पड़ेगा, और मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो मैं खुद के लिए अर्न कर रही हूँ, मेरे को अपने इन लॉस से बार बार पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा करा है, तो मैं पढ़ाया लिखा है, तो ऑब्वियसली मेरे को भी उनको कुछ देना पड़ेगा। खुद के ऊपर आइडेंटिटी ऑब्वियसली एक लड़की की होनी चाहिए, कहीं पता चले आगे चल के उनके इन लॉज ने उसके साथ कुछ करा तो वो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है एक लड़की।
3: मेरे हिसाब से लड़कियों को काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं, घर पर रहती हैं स्पेशली, तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नहीं, अगर शादी के बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है, तो आई विल प्रेफर कि मैं उसे छोड़ दूँ इंस्टेड ऑफ लीविंग माई जॉब, क्योंकि वो जॉब मुझे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस दे रहा है, एंड अगर मुझे कुछ लेना है या फिर मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है तो वो मुझे अच्छा इंडिपेंडेंस देता है। एंड कल को अगर मेरा हस्बैंड अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ करता है या फिर मेरे साथ कुछ गलत करता है, तो एंड अगर मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट ना करें, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं खुद के पैसे कमा रही हूँ तो खुद का स्टैंड ले सकती हूँ।
4: नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज शी सेड, एंड ऑल्सो कि अगर आप 45 लाख भी कमा रहे हो, अगर लड़की है वो अगर अपने जीने के लिए, अपनी लिविंग के लिए अगर वो 30,000 या 40,000 भी कमा रही है, वो भी इनफ है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, तो ये चीज़ तो नहीं, बहुत आई वुड से ये बहुत गलत हुआ। मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है, जो मतलब अपना बनाना, अपना वो करना, काम करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये बहुत ज़रूरी है. जैसे हम लोग के भी फैमिली वाले क्या कहते हैं कि हमारा शादी होना इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारा मतलब काम करना. अगर पति हम लोग का जो हस्बैंड है अगर वो हम लोग को नहीं चाहता कि मैं काम करूं, तो मेरे पेरेंट्स ये कहेंगे कि आप फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ ये डूइंग जॉब. तो अपना नाम कमाना वे, हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा.
0: तो स्वाभिमान वाली शादी आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे. आम जनता आम लोगों की राय आपने सुन ली है. खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. परिचय करा देती हूं. मनीषा सिंघल जी मैरिज काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं. मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हैं. प्रियंका राणा लॉयर भी हैं और वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं. और साथ ही साथ ज्योति तिवारी जी मेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. प्रियंका आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं. आप लोगों का इस पोस्ट को लेकर क्या कहना है?
5: देखिए नवजोत, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही आत्मविश्वास भी होना जरूरी है. और यही एक सोच है जो आज महिलाएं लेकर के आगे चल रही हैं. हर एक हम भी आजकल जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की है दोनों को यही सिखाते हैं ना कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और जिससे कि आपको आगे आने वाली जिंदगी में कोई परेशानी ना हो. कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं. बाकी आजकल मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में होते तो सबसे जरूरी है आपका आत्मनिर्भर होना. पैसा होगा तो आप उससे उभर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे. बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम आज भी जो हमारा समाज है वो उसी सोच के साथ चलता है कि अगर शादी हो गई है तो सारी जिम्मेदारी जो है वो एक औरत की हो जाती है. बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. हालांकि जब किसी मर्द की शादी होती है तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती है. कोई उसे ये नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए. ये एक्सपेक्टेशन भी सिर्फ महिलाओं के ऊपर ज्यादा होती है कि भाई अगर छोड़ना है तो सिर्फ महिलाएं छोड़ें.
0: यानी आप इस महिला के फैसले से सहमत हैं?
5: बिल्कुल सहमत है.
0: ठीक है, ज्योति तिवारी जी.
6: मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बोली वो. जो भी है वो पहले से बता देना बहुत सही रहता है. जिस तरह के अभी क्योंकि आप मैरिज काउंसलर भी हैं, मैं भी बहुत बार जो है हमारे पास भी आते हैं लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में आप कहें कि अरे आप पहले तो बोला नहीं फिर मैं अब जॉब नहीं छोड़ूंगी और वो टसल लो. इट्स गुड कि आपने पहले से बोल दिया और सब कुछ क्लियर है. नहीं करनी है नहीं करनी है. उनकी शर्तें भी ठीक थी, लड़के वालों की भी, इनकी भी ठीक थी. दोनों ने पहले से क्लैरिटी दे दी. बहुत अच्छी बात है. इतने समझदार लोगों की अभी जरूरत है.
0: ठीक है, चलिए इस लाइन पर तो कम से कम चीजें क्लियर हैं कि बाद में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है उससे बचने के लिए पहले ही आप चीजें क्लियर कर ले, एक अच्छा वाइज डिसीजन आपको लग रहा है. मीनल आपकी राय?
7: फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जितने भी टीयर वन या टीयर टू सिटीज हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन भी, चाहे जयपुर हो चाहे उससे, यू नो एवरीबॉडी हैज अ सेम ओपिनियन एंड द गर्ल्स नाउ नो दिस कि उनका इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है और उनका अपनी ओपिनियन को वॉइस करना भी कितना जरूरी है. एंड नोबडी एल्स कैन डिफाइन देयर लाइफ फॉर देम. आप किसी को ये बताओ कि आपको हमसे शादी करनी है और उसके बाद आपकी जॉब छोड़नी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी और का लाइफ ट्रैक डिसाइड कर रहे हैं. मतलब उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, वो किस तरह से आगे से रहेगी वो उसका शादी वाले लोग डिसाइड करना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली ऐसी मैरिज में कभी भी वॉक इन नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि वो प्यार नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, बट वो एक लड़की का जीवन डिफाइन नहीं कर सकते. आप कोई बैल या गाय से शादी नहीं कर रहे हैं जिसको बस उठा के अपने घर के खूंटे पे बांधेंगे. वो घर से बाहर भी तभी जाएगी जब आप चाहेंगे, वो जॉब भी तभी करेगी जब आप चाहेंगे, नहीं तो वो घर में ही रहेगी चाहे आपके पास. And what about the money? Money can not buy that happiness. Money is required just for your basic facilities. लेकिन आपके आप किस तरह से हर दिन पास करेंगे? Everyone has those 24 hours. वो आप define नहीं कर सकते अपनी wife के लिए. और आपकी wife किस से मिलेगी? क्या उसका friend circle होगा? क्या उसका colleague circle होगा? आप इस तरह से हर चीज define करना चाह रहे हैं. You are trying to define the entire life of the to-be wife.
0: जी.
7: Absolutely never walk into a relationship like that.
0: ठीक है, मनीषा जी आपकी राय इसको लेकर क्या है? आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं, आपकी राय क्या है इसको लेकर?
8: बिल्कुल इसमें कोई डाउट है ही नहीं. एक तो जहां तक हमारे इंडिया की बात है तो लड़की अपना घर छोड़ के, बाहर के कई और देशों में भी ऐसा होता है, तो पहले तो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रही है और उसके बाद उस पे बहुत सारे कंडीशंस लग रही हैं, स्पेशली उसके करियर के लिए, और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो उसको इमोशंस का भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इमोशनल उसको सिक्योरिटी कितनी मिलने वाली है, कितना उसको सपोर्ट मिलने वाला है. अगर उसकी ही राय जो एक हर ह्यूमन का राइट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि वो करियर में क्या चाहता है, किस तरह से अपनी लाइफ को वो आगे ले जाना चाहता है, अगर इसी चीज में उसको फ्रीडम नहीं है तो उस घर में उसकी लाइफ आगे क्या होने वाली है उसे कुछ पता ही नहीं है. तो बिल्कुल ये तो एकदम ठीक नहीं है. और मैं तो ये बोलूंगी कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत बहुत जरूरी है. किसी भी एक इंडिविजुअल को सबसे पहले फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़कियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता एक नए इंसान के घर में आप जा रहे हैं, एक नए घर में आप जा रहे हैं, वहां पे क्या कल को चैलेंजेस आएंगे. तो एटलीस्ट किसी भी वर्स्ट कंडीशन में, किसी भी ऐसे सिनेरियो में जहां पे आप आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो आप कम से कम आप तो अपने साथ हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, आप किसी भी मोमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. तो 100% करियर एक होना चाहिए
0: ठीक है
8: फीमेल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: प्रियंका जी देखिए, हम कह सकते हैं कि चलिए आज की तारीख में आप सभी ने एक राय दी है कि लड़की का जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है. अब इसको परिवार के नजरिए से भी देख लेते हैं. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, कहने को हम सब आज की तारीख में 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी है, भारत में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी है, इक्वल राइट्स देने की बात होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू महिला के अपने राइट्स, वो राइट्स आज की तारीख में भी परिवार डिसाइड करता है. क्या वो नौकरी करेगी नहीं करेगी, ये परिवार डिसाइड करेगा. अब यहां पर दोनों चीजें आती हैं. अगर लड़के के परिवार ने यह कहा कि आप शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दीजिए क्योंकि लड़का बहुत अच्छे से कमाता है, यह भी हो सकता है कि उनकी सोच ये हो कि वो परिवार की तरफ ध्यान दे. लड़की की बात अपनी जगह इसलिए सही हो जाती कि वो नहीं चाहती, जैसा मनीषा जी ने अभी कहा, उन्होंने कहा कि आगे आप जा रहे हैं किस तरह का परिवार होगा आप नहीं जानते, तो इसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है. तो ऐसे में बहुत थिन लाइन डिफरेंस रह जाता है किस तरीके से परिवार और अपना करियर बैलेंस कर सकती हैं लड़कियां, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे डिवोर्सेस का कारण ये भी हो रहा है कि लड़कियां भी चाह रही हैं कि हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, लड़का भी चाह रहा है, तो ऐसे में बीच में परिवार आ जाता है.
5: देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सीधा सी मतलब ये साफ है कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. और जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर अपनी ये सोच रखते हैं कि भाई एक जो आदमी है वो काम करे और एक जो आदमी है वो परिवार संभाले. हालांकि ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है. अगर बच्चा कुछ गलत करता है या कुछ करता है तो हम संस्कारों के नाम पर ये कह देते हैं कि महिला ने ठीक नहीं किया होगा, माँ ने क्या संस्कार दिए हैं या कुछ है. कभी भी पुरुषों पर इस तरह की उंगली नहीं उठाई जाती है, ज्यादातर महिलाओं पर उठाई जाती है. जब भी कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो भी महिला के ऊपर आती है कि भाई नहीं, पति है क्योंकि मेल है तो वो काम करेगा, आप अपनी जो है जॉब को सेक्रीफाइस कर दो. मुझे लगता है परिवारों को अपनी जो सोच है वो बदलना पड़ेगा. अगर वो चाहते हैं कि परिवार सही से चले, दोनों लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और खुशहाल जिंदगी जिए, तो मुझे लगता है परिवार, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. परिवार ये सोचे कि अगर आगे परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, तो आप लोग उनका साथ दें, और जो जितना साथ आप अपने बेटे का देते हैं उतना ही बहू का भी दें. तो अगर इस तरह की सोच हमारे समाज में बढ़ेगी और सिर्फ जिम्मेदारी एक महिला पर नहीं रहेगी. आज भी एक सोच होती है कि अगर महिला जॉब करती है और वो घर वापस आएगी तो सारे खाने की जिम्मेदारी या घर में कुछ कमी रह गई है उसकी जिम्मेदारी वो महिला की है. हालांकि कुछ पुरुषों की जो मानसिकता है वो बदली है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, आज जितनी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की है मैं भी उतना ही जिम्मेदार
0: हूं. शायद ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में, हालांकि ज्वाइंट फैमिली में भी ऐसा हो सकता है. लेकिन इसी के साथ साथ यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, ज्योति जी आप इस पर भी अपनी बात रखिएगा जो मैंने सवाल अभी प्रियंका जी से किया था. दूसरी बात यह है कि ये डिसाइड करना किसकी जिम्मेदारी है. एक लड़का और लड़की की आपस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या फिर परिवार की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ऐसा भी देखा गया चाहे वो लड़की का परिवार हो या लड़के का परिवार हो, उनकी एक अपनी सोच रहती है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं, या फिर ये छोड़ देना चाहिए लड़के और लड़की पे.
6: बिल्कुल ठीक बोला मैम आपने कि ये लड़के और लड़की को सोचना चाहिए कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो अब हम दोनों देखेंगे कि अच्छा ठीक है किसकी जॉब ज्यादा अच्छी है, तो किसको ज्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना, मान लीजिए दोनों में से एक को छोड़ना भी है तो, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहां लड़के भी जॉब छोड़ते हैं अगर लड़की अच्छी पोजिशन पे है तो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियली कौन ज्यादा साउंड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज
0: ऐसी
6: है।
0: रेशो हमारे
6: इसमें
0: देश में बहुत कम है
6: इसमें
0: वैसे।
6: परिवार ऐसे ऐसे परिवार बीच में मैं किसी के भी नहीं बोल रही हूँ, तो आई वुड से कि बीच में मत
0: नहीं
6: बोलिए।
0: नहीं मैं
6: तो
0: आपको बता रही थी
6: फैमिली
0: कि ऐसी
6: फैमिली
0: रेशो
6: आप
0: कम
6: मुझे,
0: है।
6: हाँ जी बता रही हैं आप, ठीक है आप अपने टाइम पे बताइएगा। तो फैमिलीज जब बीच में आती हैं तब प्रॉब्लम होती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दोनों साइड की फैमिलीज आती हैं, उनको लगेगा जैसे हम रहते थे वैसे ही रहो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे तुम लैपटॉप लेके बैठी हो और तुम्हारा हस्बैंड जो है वो चाय बना रहा है। तो ये दूसरे लोगों का

0: जो है हाल होगा या उनके बॉडी के क्या हालात हैं, वो संभाल पाएंगे या नहीं, हम नैनी इस पर भी नहीं डाल सकते। तो घर चलाना एक बहुत अलग चीज है इसमें। और एक चीज है जो हमने साइडलाइन कर दिया ना, जो घर चलाती थी लड़कियां ये बोल करके कि तुम घर में करती ही क्या हो, वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। 24/7 का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जो अभी जब आनंदी बेन ने कहा था तो बहुत हल्ला मचा था, थोड़े उनके शब्द गलत थे, उनको सही तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ का डिसीजन होना चाहिए कि ये हम दोनों की लाइफ है, अब इसमें हम आगे कैसे चलेंगे, हम दोनों काम
1: ठीक
0: करेंगे या फिर हम में से एक कोई ब्रेक लेगा। तो ये इनका डिसीजन होना चाहिए, परिवार का नहीं।
1: ठीक है मीनल, मीनल ये इसी से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए और एक और चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हाउसवाइफ की टर्म बदल दी गई है, उसको एक हाउसमेकर के तौर पर देखा जाता है और कहा जाता है कि भाई एक एक बच्चों को अगर वो पढ़ाती है, घर को अगर वो संभालती है, तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि एक कामकाजी महिला की।
2: बिल्कुल, सी द पॉइंट हियर इज दोनों वुमेन इज समथिंग विच शी शुड डिसाइड फॉर हर सेल्फ। अगर यू नो देर वॉज अ टाइम जब मैंने अपने लिए काम किया, मुझे काम करना था, आई वॉज एवीपी इन अ कॉर्पोरेट बैंकिंग और मैंने खूब लंबा 13-14 ईयर्स तक अपनी शादी के बाद काम किया। बट देन दो बच्चों के बाद मुझे समझ आया कि मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान देना है एंड आई वॉन्ट टू बी होम फॉर माई किड्स। तो अगेन वो मेरा डिसीजन था कि मैंने खुद डिसाइड किया कि अब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ को आई विल टेक अ लिटिल सबैटिकल एंड आई विल स्टे बैक एट होम। दैट्स अनदर थिंग कि फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बट आई एम सेइंग कि वो दोनों टाइम मेरा डिसीजन है और जस्ट बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली हैप्पीली विदाउट एनी बडी ध्यान देना है एंड आई वॉन्ट टू बी होम फॉर माई किड्स। तो अगेन वो मेरा डिसीजन था कि मैंने खुद डिसाइड किया कि अब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ को आई विल टेक अ लिटिल सबैटिकल एंड आई विल स्टे बैक एट होम। दैट्स अनदर थिंग कि फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बट आई एम सेइंग कि वो दोनों टाइम मेरा डिसीजन है और जस्ट बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली हैप्पीली विदाउट एनी बडीज यू नो नेगो। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई कौन लड़की क्या डिसीजन ले रही है, लेकिन सिमिलरली आप बाहर से भी एज आउट यू नो एज अ फैमिली या उसके पेरेंट्स या कोई वो भी डिफाइन नहीं कर सकता रहा। उसके अलावा अगर एक लड़की ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, शी इज मैनेज विद अ जॉब, उसके हाथ में अच्छी जॉब भी है, बट देन ऑल्सो आफ्टर हर मैरिज शी डिसाइड्स कि अगर उसको ब्रेक लेना है और उसको घर संभालना है, तो इट्स हर डिसीजन, वी शुड ऑल
1: मनीषा जी, मीनल की बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक एग्जाम्पल है मीनल का, हम जानते हैं मीनल को भी, उन्होंने बहुत समय तक, बहुत सालों तक, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि जॉब करती हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि नहीं अभी परिवार को हमारी जरूरत है, वो चाहे किसी भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन क्या इतना आसान होता है अपना प्रोफेशन छोड़ देना? क्या कंपनी प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर नहीं होता है? हालांकि परिवार की तरफ से तो जाहिर सी बात है कि हमेशा डिमांड्स रहती ही हैं। और अगर हम इसी केस की बात करें जहां इन-लॉज पहले से, जिस लड़के से शादी हो रही है वो परिवार पहले से ही कह दे रहा है कि आप नौकरी नहीं कीजिएगा, क्या उनको भी थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था कि दोनों हस्बैंड वाइफ आगे जाकर खुद डिसाइड करें कि कौन जॉब करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन घर पे कितना समय देगा, कौन नहीं देगा?
3: आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं नवजोत जी। और शादी दो लोगों की, दो दो जो लड़का लड़की की शादी होती है उसमें जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है या उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है शादी फिक्स होने के बाद, वो क्यों दिया जाता है, उसका रीजन क्या है, किस वजह से उनको टाइम दिया जा रहा है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं जो वो एक दूसरे के बारे में समझ पाए। और उसमें करियर और एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में किस तरह के क्या उनके घर का एनवायरमेंट है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कितनी उनको लिबर्टी दी जाती है, क्या इक्वेशंस हैं आपस में सब फैमिली मेंबर्स के बीच में, और क्या अगर सेम कास्ट सेम रिलीजन में भी मैरिज हो रही है तो भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सब चीजों को, एक दूसरे की फैमिली, एक दूसरे को समझने के लिए वो समय दिया जाता है कि अगर लग रहा है पॉसिबल है तो इस शादी को करना चाहिए। अदरवाइज फ्रीडम होती है पूरी. ऑल्दो हमारे सोसाइटी में एक ये पहले से समाज में चला आ रहा है कि भाई शादी पक्की हुई, लेकिन अगर शादी किसी भी वजह से कैंसिल हो गई है तो उसमें कहीं ना कहीं लड़के पे भी आता है और लड़की पे तो आता ही आता है कि अरे भाई लड़की इस शादी इसकी तो लड़की की शादी कैंसिल हो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट ग्लासेस के थ्रू देखना शुरू कर दिया जाता है. लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखें कि जो आज के टाइम में मैरिजेस

0: कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं और कितनी मैरिजेस में सेपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल सेपरेशन है चाहे वो अनऑफिशियल सेपरेशन है, उसके रीजन क्या है, वजह क्या है। और आज के टाइम में जहां पे लड़का लड़की दोनों बच्चों को सामान्य तरीके से एजुकेशन उनकी दी जा रही है और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं पेरेंट्स, तो क्यों वो बच्चा जो लड़की है वो ये चाहेगी कि मेरे करियर की डोर किसी और ऐसे फैमिली के हाथ में चली जाए जो मतलब सडनली उसकी लाइफ में आए हैं। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, ठीक है, अगर जो शादी होके जिस लड़के के घर में वो जा रही है वहां पर शुरू से कंडीशंस उन्होंने नहीं रखी, बाद में अगर उनके उनके मन मिलते हैं, उनको समझ आता है कि हाँ भाई कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है कभी लड़के को जॉब अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़े और कभी लड़की को भी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, इस तरह की अगर चीज, इस तरह के फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक यू नो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन अगर केवल लड़की को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि नहीं आप उसकी शादी के बाद आप अपना करियर नहीं आप परस्यू कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो लड़की के मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे उस लड़के की फैमिली के बारे में, तो ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट हैं और पेरेंट्स जो डावरी सिस्टम भी है अगर उसको चलाना है तो वो डावरी का नाम अगर हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसी डावरी के नाम पे हम वो एक जो अपनी लड़की है उसके लिए एक चाहे तो 1 BHK ही दे दें जितना भी हमारी हैसियत है, लेकिन एक घर लड़की के नाम पर उन्हें देना चाहिए शादी में, या लड़की को अपने नाम पर एक घर रखना चाहिए जिससे किसी भी तरह के डिफिकल्ट टाइम में उसको कहीं ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि ओ मैं घर में अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहाँ जाऊंगी, उसके पास अपना एक घर है
1: बिल्कुल।
0: जहां पे वो अपना एक करियर है जहां पे वो रह सकती है और अपना सब वो आराम से
1: जल्दी से एक बार ज्योति
0: गुजर रहा
1: तिवारी
0: है।
1: जी, यहां पर करियर को प्राथमिकता देना कितना सही है, और यहां पर इसी केस की अगर बात करें लड़के के पेरेंट्स की तरफ से या लड़के की तरफ से भी हो सकता है, उन्होंने जैसे कहा कि आप शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती, क्या ये सही है? क्या आप
0: हाँ
1: किसी को
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: गलत है,
1: कह सकते हैं?
0: बिल्कुल गलत है। मैं तो खुद अगर मेरे पास कोई भी सलाह लेने आएगा तो मैं उसको मना करूंगी कि नहीं, आपको कामकाजी लड़की ही लानी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपका डिवोर्स भी होता है तो भी हेल्प करता है, जो जिस तरह की एलिमनी और मेंटल हेल्थ के बाद में आते हैं, क्योंकि वकील भी हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, तो मुझे पता है कि किस तरह से डबल लिख के दिया जाता है। और जब इस तरह के घर पर अगर गिफ्ट में दिए जाएं तो प्रीनप साइन होने चाहिए कि ये घर अपनी मर्जी से दिया गया है, दहेज नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारी माओं को और बहनों को परेशान देखा है जो मैरिड है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारी परेशान होती हैं कि दहेज मांगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो प्लीज काम करने दीजिए उनको, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बैकअप सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की बातें अलग हमेशा रहेंगी, उनके इमोशंस, उनके सोचने का ढंग, साइकी, सब कुछ अलग होती है। लड़कों को ये समझने की जरूरत है, लड़कियों को भी ये समझने की एक दूसरे में जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी एक लड़की ही दूसरी लड़की का सपोर्ट करने के लिए नहीं आती, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो तब समझ में नहीं आता है क्या करें। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये गलत था, उनको काम करने देना चाहिए। बिजी
1: ठीक
0: रहना
1: है।
0: बहुत अच्छा होता है और एक घर में एक समन्वय बना रहता है, क्योंकि क्या होता है फिर आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, जब आपको एक
1: हाँ
0: दूसरे की जरूरतें खत्म हो जाती हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रिलेशनशिप में। ये भी एक आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि
1: ठीक है,
0: हम
1: तो
0: हर
1: करियर
0: चीज
1: को
0: सॉल्व नहीं कर
1: प्राथमिकता
0: पाते,
1: देना भी सही है,
0: डेफिनेटली
1: लेकिन
0: देना
1: यहां
0: चाहिए।
1: पर
0: हाँ
1: परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसका डिसीजन किसे लेना चाहिए, यहीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए आप रहिए हमारे साथ।

0: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search Sports to find the stations covering your teams.
5: बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा आज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला ने एक शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और जो लड़का था 48 लाख उसका सालाना पैकेज था, बावजूद इसके क्योंकि परिवार का ये प्रश्न था कि महिला शादी के बाद नौकरी नहीं कर पाएगी। करियर को चुनना एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मीनल आप खुद का एग्जाम्पल भी दे रही थी, करियर चुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि आप नौकरी कब तक करेंगी, करियर कहाँ तक आगे बढ़ाएंगी। ये कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी देखा जाए तो आपके फैमिली पर ही डिपेंड करता है, यानी कि इन लॉज फैमिली हो या फिर आपके हस्बैंड हो, ये एक कॉमन सी धारणा आज की तारीख में भी है।
1: तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम इन अ बिग जॉइंट फैमिली सेटअप, तो अभी कुछ टाइम तक मेरे मदर लॉ फादर लॉ भी हैं मेरे साथ, और मेरे परदादा मतलब मेरे हस्बैंड के परदादा परदादी भी हमारे साथ थे, सो वी हैड दिस वेरी बिग जॉइंट फैमिली। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि आई कैन नॉट लीव किड्स अलोन, मेरे बच्चे बहुत आराम से।
0: सो दैट वेज यू आर ब्लेस्ड।
1: यस आई एम ब्लेस्ड कि एक नहीं, आई हैव टू सेट ऑफ इन लॉज एट होम जो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, तो आई नेवर रियली हैड अ क्वेश्चन इन माइंड कि बच्चे सुरक्षित नहीं है या ऐसे। बट इन यू नो इट्स जस्ट आई थिंक इट्स जस्ट योर कॉलिंग समटाइम्स दैट यू फील कि अब मुझे पर्सनली मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा इस टाइप से ही हो कि फैमिली के थ्रू आए या लाइक आई सेड कि ये आपकी अपना डिसीजन होना चाहिए, आपकी अपनी इंटरनल कॉल होनी चाहिए कि अब आई वांट टू गिव अ ब्रेक टू दिस। एंड समवेयर वो जो आपकी एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है। यू फील लाइक नाउ आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माय किड्स, बिकॉज शायद ये करियर मैं ये वीपी से आगे स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन ये बच्चों का टाइम आई डोंट वांट टू वेस्ट, उनकी वो सारी छोटी छोटी हरकतें, वो स्कूल से आने के बाद की वो स्टोरीज।
0: ये चीज मीनल क्योंकि आप एंजॉय कर रही है, देखिए एज लॉन्ग एज एंड ऑफ द डे आपका हैप्पीनेस मैटर करता है, यू डिसाइड, आपने ये सब कुछ डिसाइड किया, क्योंकि पहली बात तो यू आर ब्लेस्ड, आपके पास एक अच्छी ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि मैं तो आज भी इस बात को मानती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा बेटर ज्वाइंट फैमिली होती है, स्पेशली अगर एक महिला वर्किंग है तो उसके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपके पास एक ज्वाइंट फैमिली है, पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, स्पेशली क्योंकि देखिए सवाल यहीं पर आता है जहां न्यूक्लियर फैमिली शुरू होती हैं, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, दोनों को बच्चों का ख्याल रखना है, दोनों का करियर इंपॉर्टेंट है, ईगो क्लैशेस वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं, कम्युनिकेशन गैप सबसे ज्यादा वहां पर आता है, डिफरेंसेस वहां पर शुरू होते हैं, और वहां एंड ऑफ द डे वही बात जो हम सभी बात कर रहे थे, किसको करियर छोड़ना पड़ता है ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, महिला को।
1: Yeah, that's right. कि बहुत मतलब in my career time also I have seen lot of times it's a woman who decides to step down because obviously ladies feel कि somewhere taking care of the kids and home is their prime responsibility. But I totally agree with that as well because ये हमारी primarily instinct है, अगर हम बच्चों को क्रेच में भी डाल दें या बच्चों के लिए एक नैनी भी रख लें, then also you know we are constantly in that kind of a juggle कि मतलब बच्चे घर में क्या कर रहे हैं और हम ऑफिस में है, हमें कहीं ना कहीं किसी टाइप का एक गिल्ट भी है जो खींचता रहता है, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस यू नो लाइक वी आर मदर्स। बट अगेन माई पॉइंट हियर इज कि आप एकदम से अपनी जॉब छोड़ने से पहले कुछ स्थिरता का एक यू नो जरिया ढूंढ सकते हैं। लाइक आई सेड दैट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई हैड रियली नथिंग इन माइंड, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि देयर सर्टेन थिंग्स विच आई कैन डू फ्रॉम माई होम, एंड आई स्टार्टेड माय you know fitness venture and hope, you know god bless it just turned out great. But I'm just saying that agar aap kabil hain aur aapne kuch time corporate life mein apne aap ko prove kiya hua hai, so you kind of generate those skills aur aap wo skills kahin par bhi prove kar sakte hain aage jaakar. But ekdam se ye decide karna ki just because ab meri shaadi ho rahi hai ab main kuch aur nahi karungi, that is a big decision because शादी के बाद ना सिर्फ प्यार और ये सब काफी नहीं है, एक रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत जरूरी है। और आप चाहे माने या ना माने, अंटी अनलेस यू आर नॉट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली और आप खुद अर्न नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ही नहीं आती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो वो जरा डिस्कस कीजिए, यहाँ पर हमें बताइए इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके पास है, आप लॉयर भी हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, परेशानी सबसे ज्यादा कहाँ पर आती है, क्या आज की तारीख में भी महिला आजाद है अपना करियर चुनने को?
2: देखिए नहीं, अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं, तो आप भी इससे सहमत होंगी कि हमारे देश के अंदर अभी भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिला है, वो सम्मान नहीं मिला है। तभी हमारी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे आज भी देती है। और वो कितने अमल होते हैं देश के अंदर ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं दहेज से जो है पीड़ित महिलाएं मर रही हैं, कई कोर्ट के आगे अपने आप को आग भी लगाती हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलता है। महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ आज भी वो भेदभाव है, पुरुष प्रधान देश आज भी हमारे देश को कहा जाता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत सी मानसिकता में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी उतना नहीं आया है। कई केसेस ऐसे आते हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारी इच्छा है कि हम बच्चे जो है शादी के बाद खुद संभालते हैं, नहीं संभालते हैं, नैनी रखते हैं या कुछ है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आखिरकार हमारे समाज जो है, जो समाज समाज के ठेकेदार बनते हैं वो किस पर रखते हैं। कई बार महिलाएं ऐसी होती हैं जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, और आज इसके ऊपर भी महिलाएं जो है आवाज उठाने लगी हैं। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, इवन सेलिब्रिटीज भी हैं जो मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं, क्योंकि उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं आखिरकार। तो ये आप अगर आम जनता की बात करते हैं और जो आपके निचले स्तर पे बात करेंगे, जो बिलो पॉवर्टी भी है, वो भी आप देखिए, अगर महिलाएं काम करती हैं तो अपना जीवन अच्छे से निकाल सकती हैं, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है तो आपको आखिरकार हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना आप किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे आत्मनिर्भर होना इसलिए जरूरी है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है आपके आत्मसम्मान की, आपके अभिमान की। तो आप हर चीज के लिए दूसरे के सामने क्यों किसी का मुंह देखें, क्यों परिवार का भी आप मुंह देखें, क्यों हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कल को ये ना हो कि आपके पास घर है कि नहीं है। आपके अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए इस समाज से लड़ने की, इस अपने आप को अपना घर दिलवाने की। आपको जो दुनिया में चाहिए, आपकी इच्छाएं क्या है, वो पूरा करने की आपके अंदर खुद काबिलियत होनी चाहिए, ना कि दूसरों को ये हक देना चाहिए कि भाई वो डिसाइड करे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम क्या पहनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या किस तरह से हमें अब अपना जीवन व्यापन करना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये दूसरों की सोच हमारे ऊपर थोपना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा जी, मैं लौटती हूं प्रियंका। मनीषा जी, इसको लेकर आपको याद होगा, मीनल भी यहाँ पर है इस पैनल में, हम बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर करते हैं, वुमेन मेन इक्वल राइट्स को लेकर हमने बहुत चर्चाएं की, लेकिन बावजूद इसके सोच अभी भी बिल्कुल वैसी है सरकार की तरफ से। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम नारे दिए जाते हैं, इसको लेकर काम किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, लेकिन बात जब फैमिली की आती है, फैमिली में बैलेंस बनाने की आती है, तो आज की तारीख में भी सोच बदली नहीं। आप खुद एक मैरिज काउंसलर हैं, कोई ऐसे केसेस आपके पास आए हैं, आप किस तरीके से बैलेंस बनाती हैं?
3: काफी केसेस आते हैं और स्पेशली कोविड के बाद से इस तरह के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था, पेंडेमिक में लोगों को आजकल जैसे ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की हम बात कर रहे थे, तो ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत थोड़ी खत्म हो गई है, और न्यूक्लियर फैमिली में भी अगर चार मेंबर्स हैं, दो बच्चे पेरेंट्स या फिर एक बच्चा है दो पेरेंट्स हैं, वो लोग भी आपस में हार्डली एक दूसरे से बात करते हैं। और पेंडेमिक का टाइम ऐसा था जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, आप घर में कन्फाइंड थे, और आप लोग का जो जो जो फैमिली का आपस में जो इंटरेक्शन था, वही इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो गया था जिसमें उनकी आदत नहीं थी, और उसकी वजह से क्लैशेस काफी हुए हैं, काफी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए। और ये तो खैर एक स्पेसिफिक केस था, लेकिन उस समय से जो केसेस बढ़े हैं उसमें मेंटल हेल्थ के लिए की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लोग इसके प्रति जागरूक हुए और उनको समझ आया। और इसमें जो ज्वाइंट फैमिलीज या मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो प्रिटी कॉमन नाउडेज, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज कि लड़की भाई उसने इतनी पढ़ाई करी है, वो अपना करियर वो अपने आप डिसाइड करना चाहती है और उसको पूरे राइट्स हैं। क्यों हम लड़कों पे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं कि भाई आप जॉब नहीं करोगे? क्या कभी आपने कोई फैमिली ऐसी देखी है जिसमें लड़के पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, लड़के को बोला जा रहा है, उसको एक कमांड दिया जा रहा है कि भाई शादी करनी है तो जॉब नहीं करनी है? तो ऐसा तो कभी रेयरली ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे सामंजस्य ऐसे बैठाया जाता है, अगर शादी नहीं हुई है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग, और अगर शादी हो चुकी है तब इस तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उनमें हम सेपरेट सेशंस देते हैं, देन फैमिली सेशंस भी होते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशंस होते हैं, जिसमें असस ये किया जाता है कि भाई कितना चांसेस हैं अंडरस्टैंडिंग के, और अगर पॉसिबिलिटीज कम है तो आप ज्वाइंट फैमिली सेटअप में एक तो कोई पॉइंट नहीं है अगर डेली कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो रहे हैं, और अगर साथ में रहते हुए हस्बैंड वाइफ भी उन दोनों में भी अगर क्लैश है तो फिर उसमें हम कैसे मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हैं। तो दोनों से हस्बैंड वाइफ को टारगेट किया जाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स को हम थोड़ा सा आउट करके पहले हम हस्बैंड वाइफ पे ही टारगेट करते हैं। एटलीस्ट उन दोनों के बीच में तो फ्रिक्वेंसी मैच हो कहीं ना कहीं। अगर 10 चीजें मैच नहीं हो रही हैं ठीक है, एटलीस्ट 5 चीजें 6 चीजें मैच होनी चाहिए। और कौन कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि मैरिज लव रिलेशनशिप कहा जाता है लेकिन अभी डेफिनेशन काफी चेंज हो गई है। ये एक कॉम्प्रोमाइज है और डेफिनेशन एक्चुअली अब समझ आने लग गई है लोगों को, क्योंकि आज के बच्चे थोड़े अवेयर हैं। वो हमारी इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है
0: जी
3: वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है
0: नहीं,
3: हमारे
0: आज के
3: पेरेंट के
0: बच्चे
3: साथ।
0: तो ऐसे भी हैं जो कि चाह रहे हैं कि अगर हमारी अच्छी नौकरी लगी है कि मैरिज का कंसेप्ट को वो फॉलो ही नहीं करते. आपको याद होगा हमने इसको लेकर भी बहुत चर्चा की है कि जेंजी को शादी नहीं चाहिए. जेंजी का मतलब ये है, जेंजी ये चाहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हमारी सैलरी पे पहला हक हमारे पेरेंट्स का ही होना चाहिए. ज्योति तिवारी जी, इस पर आप क्या कहेंगी?
4: हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारी क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे अपने अपने घर पे खर्च करूंगी। बाद में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए, पहले से आप काउंसलिंग करा लीजिए, पहले से आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। मेरे हिसाब से प्रीनप आना इस देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बातें बदल जाती हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं उनसे बहुत बातें बिगड़ती हैं, और उसमें महिलाएं घर की बहुत ज्यादा सफर करती हैं। पुरुषों को तो आप छोड़ दीजिए, वो सफर करने के लिए ही बने हैं। कि लड़कों के ऊपर अगर आता है, लोग बोलते हैं कि लड़कों से कोई नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि लड़कों के पास ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो करिए, तब आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर कितनी जैसे ही एक लड़का अगर कह दे कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मैं घर पे बैठूंगा, आप देखिए रिएक्शन क्या आता है समाज से। देखिए हमारी जो है इतनी बड़ी बॉक्सर थी, उन्होंने ही मैरी कॉम ने आखिरकार बोल ही दिया कि मेरी कमाई पे पलता था। तो ये सब सुनना पड़ता है ना लड़कों को। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जड़ों में और डीएनए में जाके ये चीज बैठ गई है कि ये बाहर जाएगा कमाने और ये घर पे रहेगी, और ये तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं में पुरुषों में दोनों में। सारी चीजें पहले से बता दीजिए कि मैं अपने पैसे कमाऊंगी और मैं अपने पैसे अपने माँ बाप को दूंगी। अगर लड़के वाला एग्री करता है तो आप शादी करिए, नहीं एग्री करता है तो मत करिए। फिर आरोप प्रत्यारोप बाद में नहीं आना चाहिए, दैट इज द
0: तो ये
4: मोस्ट इम्पोर्टेंट
0: कंपैटिबिलिटी
4: थिंग।
0: एक लड़के लड़की की आपस में नहीं होनी चाहिए, इसमें पेरेंट्स अगर
4: 100%
0: अगर
4: होनी
0: पीछे
4: चाहिए।
0: रहे तो बेटर नहीं है.
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर पेरेंट्स पीछे रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर लड़का भी तो कहेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स की से रहेगी, मैं भी अपने पेरेंट्स को के ऊपर खर्च करूंगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अभी ना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड, जॉइंट फैमिली
0: नहीं
4: क्या
0: ठीक है,
4: अपने
0: ऐसे
4: माँ बाप
0: बहुत
4: के साथ
0: सारे
4: भी रहना
0: केसेस हाल
4: पड़ेगा।
0: फिलहाल में आ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं.
4: हाँ
0: लेकिन
4: जी
0: प्रियंका जी, इस पर आपका क्या कहना है?
2: नहीं देखिए, पहले तो कौन ज्यादा कमाता है कौन कम कमाता है बात कमाने की है ही नहीं। कोई भी जितना भी कमाता है वो अपने लिए कमा रहा है, वो अपनी इच्छाओं के लिए कमा रहा है, वो अपने तरीके से जिंदगी जीवन कैसे व्यापन करना है उसके लिए कमा रहा है। किसी के सामने कोई हाथ फैलाएगा, अभी जो कहा कि जैसे पुरुषों के ऊपर पहले से जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज के समय समय में जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहती हैं, वो जिम्मेदारी दोनों तरीके से संभालने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ये पहले से ही ये कह रहा है कि भैया एक को काम करना पड़ेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो इससे इसकी मानसिकता दिखाई देती है। ये पता चलता है कि आप भी इस पहले से ही ये क्लियर करके चल रहे हो कि आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है, आपको तो सेक्रीफाइस करना ही है। तो ऐसे में कहां पर आप ये इसको डिपेंड करेंगे कि भाई जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर भी आज प्रेशर है। आज जितना पैसा खर्च लड़के की पढ़ाई में हो रहा है उतना ही माँ बाप जो है वो लड़कियों की शादी में भी कर रहे हैं। फिर दहेज और ये सब चीजें तो आती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज जो है दहेज प्रताड़ना भी सह रही है महिलाएं। बहुत सारी केसेस ऐसे हाल फिलहाल में भी आप ग्रेटर नोएडा में देखिए, आसपास के एनसीआर एरिया में देखिए कितने सामने आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब बदलने चाहिए, और जो महिलाओं के अधिकार हैं वो भी समझने पड़ेंगे कि अब जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं,
0: बिल्कुल
2: उनको अपनी स्वेच्छा से जो भी वो करना चाहती हैं उनको करने दिया जाना चाहिए।
0: और जैसे
2: तो
0: कि हमने अपने शो कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने अपने शो में भी कहा है स्वाभिमान वाली शादी, और यहाँ पर जैसे मीनल कह रही थी कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, वो महिला को भी उतनी ही मिलनी चाहिए, पुरुष को भी उतनी ही मिलनी चाहिए, और एंड ऑफ द डे आप दोनों आपस में ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन काम करेगा, कब तक काम करेगा, कौन घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों जगह पे बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: क्या बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है? क्या बुध की वजह से कान नाक गले में समस्या आ रही है? कौन सी हैं बुध की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: बात करते हैं पीवी सिंधु की, जिन्होंने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत कर 2 साल से ज्यादा का सूखा खत्म कर दिया। सिंधु नेपाल में जापान की अकाने यामागुची को हराया है और इस जीत के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मुश्किल दौर में विराट कोहली की एक सलाह ने न केवल उनका खेल बदला बल्कि उनकी जिंदगी बदल दी। तो कैसे आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
8: ये सिर्फ जापान ओपन की ट्रॉफी नहीं है, ये 2 साल के दर्द, संघर्ष, आंसुओं और अनगिनत सुबहों की कहानी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर न सिर्फ जीत का इंतजार खत्म किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी और 31 साल की उम्र में सुपर 750 जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी हैं। लेकिन असली कहानी मेडल या रिकॉर्ड की नहीं है, उस सोच की है जिसने सिंधु को फिर से चैंपियन बना दिया। सोचिए, जब चोटें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी तब पेरिस ओलंपिक की राह उनका दिल तोड़ चुकी थी। जब पीवी सिंधु को लेकर आलोचनाएं बढ़ रही थी तब उन्होंने उस खिलाड़ी को फोन किया जिसने खुद भी करियर में ऐसे ही तूफान देखे थे, नाम था विराट कोहली। सिंधु को किसी तकनीकी सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जो जीत के शोर और हार के सन्नाटे दोनों को समझता हो। विराट ने सिंधु से सिर्फ एक बात कही, ट्रॉफियों के पीछे भागना छोड़ो, खेल से फिर प्यार करो, उसी में अपनी खुशी तलाशो। बस यहीं से सब बदल गया। कोहली के विराट सलाह के बाद सिंधु ने सिर्फ मानसिकता नहीं बदली, खुद को पूरी तरह बदल डाला। उन्होंने 3.5 किलो वजन कम किया, नेट गेम सुधारा, ड्रॉप शॉट, हाफ स्मैश, लंबी रैलियों में धैर्य और आधुनिक बैडमिंटन की हर छोटी बड़ी जरूरत पर काम किया। इतना ही नहीं, अब उनकी तैयारी का नया साथी बन चुका है डेटा एनालिसिस, मतलब कब शरीर धीमा पड़ रहा है, कहां रिकवरी की जरूरत है और कौन सी कमजोरी सुधारनी है, हर जवाब अब आंकड़ों की भाषा में उनके पास था। और फिर आया जापान ओपन का फाइनल। सामने थी जापान की स्टार अकाने यामागुची। दबाव था लेकिन सिंधु के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि विश्वास था। 36 शॉट्स की लंबी रैली जीतकर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया और 17-17 के बाद लगातार अंक लेकर साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो पहले अपने मन को जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं तमाम उन वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर इस मजदूर को इतनी मेहनत करने के बावजूद मुस्कुराते देखना लोगों को बहुत भा रहा है। हर कोई ये समझ रहा है कि इस मुस्कान के पीछे न जाने कितनी अधूरी ख्वाहिशें दबी हैं और इतनी मेहनत आखिर एक बाप, एक बेटा या एक भाई क्यों करता है। इन तस्वीरों को देख लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां हर इंसान को जीना सिखा देती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बेशक भावुक हो जाएंगे और इस बच्चे पर आपको बेहद प्यार भी आएगा। बच्चे की माँ सबवे में थकान से जूझते हुए सो जाती है। अब इस माँ के इस छोटे से बेटे को बस एक ही चिंता है कि कहीं नींद में झटके से माँ को चोट न लग जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश में है कि माँ को चोट लगने से बचा ले। अब जो भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख रहा है, माँ बेटे की इस बॉन्डिंग और छोटे से बेटे को चिंतित देखकर इमोशनल हो रहा है। दादा और पोती के बीच का प्यार और बॉन्डिंग देखनी है तो ये तस्वीरें देखिए। दादा खाना खा रहे हैं और पोती बड़े प्रेम से किचन में रोटी बनाती अपनी माँ से गर्मा गर्म रोटी लेकर दादा को देने जा रही है। रोटी मिलने के बाद दादा अपनी पोती को प्यार भरा आशीर्वाद भी देते हैं। मानो बस इसी आशीर्वाद और प्यार के लिए पोती दादा को गर्मा गर्म रोटियां परोस रही है। लोग इस वीडियो को देख इमोशनल हैं और दादा पोती की इस बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल न जाने के लिए न सिर्फ बहाने बनाते हैं बल्कि दहाड़े मार कर रोते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बच्चे की तस्वीरें काफी वायरल हैं क्योंकि ये सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा है बल्कि ये किसी भी मुसीबत को पार कर सिर्फ स्कूल जाना चाहता है। उसके रास्ते में नदी का बहाव है लेकिन वो अकेला ही उसे पार कर दूसरी तरफ जाता है। लोग उसके साहस को सलाम कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी सी जान लोगों को सिखा रही है कि मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए। डॉग्स पपी जिसके पास भी होते हैं वो जानते हैं कि उनको सिखाना कितना मुश्किल है, लेकिन इस पपी की टीचर भी खुद बच्ची है जो उसे सीढ़ी से कैसे उतरते हैं ये सिखा रही है। और ये पपी इतना अलर्ट और अटेंटिव है कि बस दो बार बताने के बाद ही एकदम समझ जाता है और सीढ़ी से उतरकर अपनी छुटकी टीचर को खुश कर देता है। पपी और लिटिल गर्ल का ये वीडियो अब सुर्खियों में है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है? क्या बुध की वजह से कान नाक गले में समस्या आ रही है? कौन सी हैं बुध की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
3: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तस्वीरें दिखाएंगे पुरी की, क्योंकि पुरी की पावन धरती पर बिखरी है जगन्नाथ रथ यात्रा की सतरंगी छटा, गूंज रहे जय जगन्नाथ के जयकारे। गुंडिचा मंदिर में रुके महाप्रभु अब 24 जुलाई को श्री मंदिर वापसी करेंगे, तब निकलेगी बहुड़ा यात्रा। तो कैसी है इस यात्रा की तैयारी और क्या है उनको लगाने वाले पौड़ा पीठा भोग की मान्यता, सारी जानकारी आगे।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, सावन का महीना शुरू होने को है और हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। तो बाबा के भोले के लिए दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर से लेकर हरिद्वार तक कैसी है तैयारियां, इसको भी हम आपको तफसील से बताएंगे।
5: नमस्कार, मैं अंशु गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। मॉनसून गर्मी उमस से राहत जरूर दे रहा है, लेकिन इसी मॉनसून का जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा है। तो मुसीबत में फंसे लोगों को देवदूत बने सेना समेत तमाम एजेंसियां कैसे बचा रही हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें भी आई हैं, वो दिखाएंगे आपको।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, आस्था के रंग आज आपको दिखाएंगे, साथ ही में बात होगी कई और खबरों की भी और बात करेंगे जापान के साइकिल राइडर की, जिन्होंने ओलंपिक स्की जंप पर उल्टी दिशा में एक पहिए के सहारे चलाई साइकिल और बना दिए दो दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस पूरी खबर पर डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: पुरी के गुंडिचा मंदिर में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां तेज, तीनों रथों का हुआ अनुष्ठान, ताल ध्वज और नंदी घोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ा गया। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट, अनुष्का, करीब एक घंटे तक हुई एकांत वार्ता, कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चले। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे सुख समृद्धि की कामना। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी, आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम। दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2027 रैंकिंग जारी, मुंबई की रैंकिंग में भी सुधार। तमिलनाडु के तिरुपुर में जम नायकन टी शर्ट की भारी मांग, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज, कल रिलीज हो रही है फिल्म। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम, 24 सालों से मनाया जा रहा है भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक, 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो।

0: जय जगन्नाथ। जी हाँ, चाय पर चर्चा की शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि 16 तारीख से शुरू हुई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आज सातवां दिन है। आपको बता दें कि गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के प्रवास पर हैं। यहीं भक्तों की भीड़ भी गुंडिचा मंदिर में ही है उनके दर्शन के लिए, और वहां पहुंचकर वो धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बारिश हो या धूप, बस भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए, इतना ही चाहिए। देखिए, वाकई हमारे यहाँ भगवान को हम अपनी तरह, जैसे हम आप है ना, उसी तरह से हम उनको ट्रीट भी करते हैं। नहीं, अब वो बीमार हो गए हैं, अपनी मौसी की आए, इलाज चल रहा है, पत्नी वहां लक्ष्मी जी जो है वो परेशान हो के, नाराज हो के वो पहुंची हैं। तो बिल्कुल देखिए, हम किस तरह से अब एक अलग ही रिश्ता भगवान से हम महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए भगवान जगन्नाथ की अगर हम बात करें और इस रथ यात्रा के बारे में अगर हम बात करें ना मुख्यतः, तो शायद ये रथ यात्रा इसीलिए इतनी ज्यादा जरूरी होती है और इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये लोगों के दिलों में बसती है। और जैसे आपने कहा, जो तमाम अनुष्ठान है, जैसे माँ लक्ष्मी का रूठना, फिर वहां पर पहुंचना, उसको भी लेकर कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ नाम है उस परंपरा का, यहाँ पर भूल रही हूँ। और उसके बाद मौसी के घर वो रुकते हैं, वापस आते हैं, श्री मंदिर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि लोगों के दिलों में ये बसती है।
0: बिल्कुल, और ये भी तो कहा जाता है कि भाई साल में एक बार खुद भगवान जो हैं अपने भक्तों के बीच पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं।
2: मैं कह रही हूँ भगवान जी बहुत सेवा करा ली मौसी के घर, अब निकल आइए, क्योंकि हमें भी इंतजार है कि कब श्रद्धालु आपके दर्शन करेंगे। वैसे तो आप बीच में आ ही जाते हैं, हेड़ा रस्म उसको कहा जाता है, हेड़ा पंचमी के बारे में आप जिक्र कर रही थी। अब देखिए, देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहाँ निभाई जा रही रस्में और रिवाजों में शामिल होते हैं। अब बारी है बहुड़ा यात्रा की, उल्टा रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ के गुंडिचा से श्री मंदिर जाते वक्त शुरू होगी, लेकिन इसी दौरान भगवान को अर्पित की गई एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल सी भोग परंपरा निभाई जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आपको पूरी की धरती से बहुड़ा यात्रा की तैयारी कैसी है।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक बनी हुई है। हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजे हैं, जहां अडापा मंडप में अपने पालनहार को बेहद करीब से देखने का मौका भला कोई कैसे छोड़ सकता है। तो जिनको महाप्रभु के दर्शन हुए उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं।
1: मैं पहली बार दर्शन करने आई हूँ जगन्नाथपुरी में और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ में इतने अच्छे से दर्शन हो पाएगा, बट जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और मैं बहुत खुश हूँ।
2: पहली बार गुंडीचा मंदिर में आया हूँ, भगवान जगन्नाथपुरी में, जो कि हिंदुओं के चार धामों में से एक प्रमुख धाम है। और यहाँ मुझे आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति और सुकून मिला है। और मैं भगवान जगन्नाथ से गुजारिश करूँगा कि सभी ब्रह्मांड के जो भी जीव जंतु और सभी जो लोग हैं वो सुखी हो, संपन्न हो और समृद्ध रहें।
0: इस दौरान हुई हेरा पंचमी की रस्म पर मां लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया था। 9 दिनों तक ठहरने के बाद महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ वापस श्री मंदिर के लिए जब रवाना होंगे, उस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा गया है। उड़िया भाषा में बहुड़ा का मायना है वापसी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने अपने रथ से श्री मंदिर वापस लौटते हैं और आज क्योंकि रथ यात्रा का 7वां दिन है, ऐसे में उसी बहुड़ा यात्रा यानी दक्षिण मोड़ को लेकर गुंडीचा मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं। तो जिस किसी ने छेरा पहरा की रस्म के साथ श्री मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा में भगवान के दर्शन नहीं किए, उसके लिए 24 जुलाई को होने वाली बहुड़ा यात्रा अपने आराध्य की एक झलक पाने, उनके दर्शन करने का एक सुनहरा मौका है। बहुड़ा यात्रा या उल्टा रथ यात्रा से एक बेहद खूबसूरत और भावनात्मक लोक मान्यता भी जुड़ी है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ मुख्य मंदिर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में मौसी माँ मंदिर यानी गुंडीचा मंदिर पर रथ को कुछ समय के लिए रोका जाता है। यहाँ भगवान की मौसी उनके लिए विशेष रूप से पोड़ा पीठा का भोग तैयार रखती हैं। ये चावल, कद्दूकस किए हुए नारियल, गुड़ और छेने से बनी एक पारंपरिक बेक की हुई मिठाई होती है। माना जाता है कि भगवान अपनी मौसी के हाथ से बने इस स्वादिष्ट पीठे को खाए बगैर अपने मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं करते। ये परंपरा भगवान और भक्त के बीच के असीम प्रेम और पारिवारिक वात्सल्य को भी दर्शाती है। कहते हैं कि बहुड़ा यात्रा के दौरान रथ खींचने से सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो 24 जुलाई को आप भी बहुड़ा यात्रा का हिस्सा बनकर उनका रथ खींचकर भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। आप जैसे बोल रहे थे कि 10 दिन तक भगवान आते हैं, पूरा साल भक्त जाते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ भगवान खुद आते हैं। और आप जो कह रही थी ना कि बहुत दिन हो गए, शायद भक्तों को लग रहा होगा कि अभी बहुत दिन है, भगवान अभी और रुके।
4: बिल्कुल, मुझे लगता है कि कितने दिन के लिए रुकते हैं मौसी के घर?
3: मौसी
4: 9 दिन। तो सेवा ही इतनी हो जाती है मौसी के घर पे कि मुझे लगता है भगवान का निकलने का मन नहीं करता।
3: बहुड़ा यात्रा की एक और परंपरा, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी जी आती हैं यहाँ पे, जब वो वापस जाती, कहा भी जाता है कि वो जो भगवान जगन्नाथ का रथ है ना, उसको तोड़ के जाती है। और जब रथ मोड़े जाते हैं, मतलब टर्न किए जाते हैं, तो उसके बाद रथों को चेक किया जाता है कि क्या इसमें कुछ तोड़फोड़ तो नहीं हुई, अगर हुई है तो फिर उसको सही किया जाए, उसको ठीक।
5: अच्छा, बहुत खास भी माना जाता है बहुड़ा यात्रा को, क्योंकि मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो इसमें लिखा था कि अगर आपने अभी तक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन नहीं किए हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है कि कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुड़ा यात्रा अगर आपने देख ली है तो वो उससे ज्यादा पूर्ण।
3: तो आप देखिए तस्वीरें वहां की, सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं। खैर, ये हम केवल पुरी की बात नहीं कर रहे, हम पुरी में तो खैर है ही, जगन्नाथ रथ यात्रा हजारों सालों से मनाई जा रही, लेकिन इसके अलावा अगर हम पूरे देश की बात करें, अलग अलग जगहों पर, आपको याद होगा जिस दिन शुरुआत हुई थी रथ यात्रा की, हमने दिखाया था, चाहे वो दिल्ली हो या फिर राजस्थान के तमाम इलाके हों, गुजरात में इस उत्सव को मनाया जाता है, यानी देश के कई शहरों में ये रथ यात्रा पूरी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। नागपुर की तस्वीरें दिखाता है जहां भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई के साथ नगर भ्रमण पर निकले।
5: बिल्कुल, देखिए नागपुर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी रथ यात्रा की रौनक देखने लायक है। आइए आपको दिखाते हैं।

0: उत्साह है, उमंग है, रथ यात्रा उत्सव का जोश है। भगवान जगन्नाथ के भक्त देश के करीब करीब हर इलाके में पूरे जोश के साथ इस खास त्योहार को मना रहे हैं। पूरे 10 दिन तक चलने वाले रथ यात्रा उत्सव को लेकर नागपुर में तो अलग तरह का उत्साह ही देखने को मिला। यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गयी। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शहर के ही प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा के हरिहर मंदिर पहुंचने पर महाआरती हुई। श्रद्धालु झाल मृदंग की धुन पर भजन कीर्तन करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ यात्रा में शामिल हुए। जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसी तरह से पूरे विधि विधान के साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी रथ यात्रा हुई। यहाँ पर पूरी के एक दिन बाद हेरा पंचमी की रस्म निभाई गई। श्री मंदिर से जब माँ लक्ष्मी का रथ चला तो उसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। पुजारी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लेकर बैठे थे तो साथ में माँ लक्ष्मी के रूप में एक बच्ची भी मौजूद थी, जिसके एक हाथ में कमल का फूल तो दूसरा हाथ आशीर्वाद के लिए उठा था। माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर पहुंची तो भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच के प्रेम मनोहार और रूठने मनाने के दिव्य दृश्य के भक्त साक्षी बनी। पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। हेरा पंचमी के दिन ही भगवान जगन्नाथ के रथ की दिशा बदलकर वापस श्री मंदिर की ओर कर दी गई। दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के उत्तर से संतुष्ट होकर वापस श्री मंदिर लौट गईं। इससे पहले भगवान जगन्नाथ से नाराज माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ के रथ नंदीघोष के एक हिस्से को तुड़वा देती हैं। ये किसी दंड, अपमान या बदले की भावना से नहीं किया जाता है, बल्कि ये अपने पति के प्रेम और उनसे नाराज होने और फिर मान मनोहार कराने का प्रतीक माना गया है।
1: हाँ माता जी की हम लोग यहाँ थोड़ा उसको भव्य रूप में लेके आते हैं। माता जी जब माता जी वहाँ आते हैं तो खुशी होके आते हैं श्री मंदिर से, तो भव्य रूप से यहाँ आते हैं और जाते समय बड़े दुखी होके चले जाते हैं क्योंकि नाराज होके।
0: ये परंपरा भले ही अजीब लगे लेकिन ये भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी के प्रेम, विरह और वैवाहिक जीवन के पीछे छिपे सुंदर संदेश को दर्शाते हैं। भिलाई से रघुनंदन पांडा और नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए श्रद्धा उत्साह की तस्वीरें तो आपने देखी, अब बात राजस्थान के अलवर की रथ यात्रा की, जहां की जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे अनोखी होती है। दरअसल भगवान जगन्नाथ इंद्रदेव के विमान में सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उनसे पहले पुराना कटला के भगवान जगन्नाथ मंदिर से शाम को भगवान सीताराम की सवारी निकाली गई। पहले भगवान सीताराम की आरती हुई, उसके बाद भगवान को रथ में विराजमान किया गया। रथ में विराजमान करने से पूर्व भगवान को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद ये रथ यात्रा शुरू हुई।
3: आपको बता दें रथ यात्रा के दौरान बैंड बाजे के साथ ढोल घंटा घड़ियाल बजाते हुए भक्त रथ के आगे चल रहे थे। जब रथ यात्रा वन विहारी के मंदिर पर पहुंची तो वहां भगवान सीताराम को रथ से उतारकर मंदिर में ले जाकर विराजमान किया गया। सालों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान सीताराम मेला स्थल पर पहुंचकर अपनी बहन जानकी के विवाह की तैयारियों का जायजा लेते हैं।
4: हिमाचल के बिलासपुर में है विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी। देखिए इन दिनों यहाँ पर गुप्त नवरात्र पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। यहाँ हो रहे हवन पूजन में भाग लेकर लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की लगातार कामना कर रहे हैं।
5: दरअसल आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई और राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दरबार में आकर मत्था टेकते हैं और इसीलिए इन लोगों की सुख सुविधा के लिए प्रशासन ने भी तमाम सुविधाएं यहां पर रखी है।

ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे मां नैना देवी शक्तिपीठ में इन दिनों आस्था उमड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ पर हर तरह गुप्त नवरात्र की धूम है। बड़ी संख्या में भक्त मां नैना देवी के दर्शन के लिए मंदिर आ रही हैं। गुप्त नवरात्र में अष्टमी और नवमी पर मंदिर परिसर में भक्तों का अद्भुत उत्साह दिखा।

0: नवरात्र में मां नैना देवी का दर्शन अत्यंत फलदायी माना गया है। गुप्त नवरात्र के शुभ दिनों में मां की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस शक्तिपीठ पर पूरे साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। एक नवरात्र चैत्र मास में मनाया जाता है। इसके बाद अश्विन मास में भी एक नवरात्र होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र मनाया जाता है। इसके बाद माघ माह के शुक्ल पक्ष में भी एक गुप्त नवरात्र मनाया जाता है।
1: आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। ऋषि मुनियों ने इनको अपने लिए गुप्त रखा था। इन दिनों में ऋषि मुनि जो है वो सिद्धियां प्राप्त करने हेतु जप तप करते थे, लेकिन आज जो है मीडिया के माध्यम से ये नवरात्र जो है वो प्रचलित हो चुके हैं, तो अब आम आदमी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। जय माता।
0: गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर हर साल नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए इस बार दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना आए, इस उद्देश्य से भी आधुनिक सोलर हट्स की सुविधा शुरू की गई है। हर सोलर हट में श्रद्धालु आराम से बैठ सकते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं।
2: आज हमने विकासात्मक कार्य जो हमारे मंदिर परिसर में चले हैं उसका हमने जायजा लिया और शुभारंभ भी किया। अगले महीने हमारे श्रावण अष्टमी का मेला है, जिसमें हमने लाइव ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा स्क्रीन की व्यवस्था की है, ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं या वे दूर दराज जगह पे आते हैं उनको प्रॉपर 4K की सुविधा हो, तो ये इसका भी शुभारंभ किया है। साथ साथ हमने जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोलार की व्यवस्था को देखते हुए उसका हमने सोलार हट्स बनाए हैं जो पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग जगह रहेंगे। इसमें श्रद्धालु की सुविधा है, जैसे इसमें बैठने की व्यवस्था है और पूरा ये सोलार से चलेगा, चार्जिंग की व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था है, तो इसका हमने शुभारंभ किया है। मोस्टली ये इसको जो हमारा अगले महीने श्रावण अष्टमी का जो मेला है उसको देखते हुए हमने इसका शुभारंभ किया।
0: प्रशासन की कोशिश यही है कि नैना देवी मंदिर में आने वाले भक्तों को मां के दर्शन में कोई दिक्कत न आए और इस मंदिर की यात्रा सभी भक्तों के लिए यादगार बन जाए। बिलासपुर से मुकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए बिलासपुर से आप आस्था की तस्वीरें देख रहे थे, खबर देख रहे थे, अब राजस्थान आपको लिए चलते हैं। वहां आस्था का एक और रंग आपको दिखाते हैं। दरअसल राजस्थान के अजमेर से आस्था की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहां पर चामुंडा माता मंदिर में एक श्रद्धालु ने माता के चरणों में करीब 6.25 तोला सोने का छत्र भेंट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने इस छत्र को भेंट किया है। बताया जा रहा है कि ये छत्र 6.25 तोला सोने से बना हुआ है। इस सोने के छत्र की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मां के चरणों में इसे अर्पित करने वाले लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि उनकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए उन्होंने माता को ये स्वर्ण छत्र अर्पित किया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों की खुशहाली, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना भी की।
4: बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह ने अपनी इच्छा पूरी होने पर इंद्रकोट के जनेश्वर महादेव मंदिर में भेंट चढ़ाई थी। आस्था और विश्वास की यही परंपरा आज भी मंदिरों में जीवंत है, जहां श्रद्धालु अपनी खुशियों और मनोकामनाओं के पूरे होने पर भगवान का धन्यवाद अलग अलग तरीकों से करते हैं।
5: ये मेरी बड़ी दिल से तय दिल से इच्छा थी कि माता जी के मैं सोने का छत्र चढ़ाऊं, मेरी मनोकामना थी, तो मेरा आज पूरे परिवार वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलके मैंने खुशी से ये माता जी को छत्र अर्पण करा है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये छत्र अर्पण करके। और मैं यही चाहता हूँ कि बस इससे मेरे परिवार खुशहाल रहे, मेरे फ्रेंड सर्किल सब खुशहाल रहे।
6: देखिए हमारा देश ना एक तरीके से 365 दिन अगर हम मनाते तो 365 दिन हम लोग उत्सव ही मनाते रहते हैं, है ना। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके बाद सावन की तैयारी, फिर उसके बाद गणेश उत्सव आ जाएगा, फिर इस बीच जन्माष्टमी, फिर उसके बाद दशहरा, दीपावली, नवरात्र, मतलब पूरा साल हम लोग
7: पूरा साल
8: स्केड्यूल
7: हमारा। और अगर कहीं अपने त्योहार तो मनाते हैं, हम क्रिसमस में मनाते हैं।
4: मैं कह रही हूँ अगर आप कहीं और नहीं जा सकते आप GNT पर ही आ जाइए, क्योंकि सारे त्योहार हम दिखा देते हैं।
6: अब हम सावन की तैयारी भी करेंगे।
4: yes.
6: आप तो व्रत भी रखती हैं सावन के? सभी रखते हैं आई थिंक आप लोग सब?
7: नहीं, सावन के व्रत नहीं रखते,
6: सावन के
7: हाँ शिव

0: जी की पूजा होती है, आराधना होती है, तो इस दौरान हम पूजा करते हैं,
1: जल अर्पित करेंगे।
2: और आपको पता ही है कि सावन के दौरान हम लोग अपने यहाँ पे कांवड़ यात्रा भी, मनीष हमारे जाते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, तो वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए आप तैयारी आप भी कर लीजिए, क्योंकि सावन का महीना 30 तारीख से शुरू होने वाला है और शिव भक्ति के रंग आपको दिखेंगे कहाँ, गुड न्यूज टुडे पर। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जरूर निकलेंगे, श्रद्धालु गंगा जल

0: निकलेंगे, श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई कांवड़ यात्रा के लिए जा रहा है तो बता दें कि इस बार रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
1: बिल्कुल, और अक्सर जिस तरह के गाने बजते थे उस पर भी मुझे लगता है नकेल कसने की तैयारी है, तो जो पेन ड्राइव होगी गानों की उसको भी देखा जाएगा, परखा जाएगा। और क्योंकि देखिए, इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, ऐसे में दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर से लेकर हरिद्वार का प्रशासन कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए क्या तैयारी कर रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: बोलबम का जयकारा लगने वाला है। एक बार फिर भोले की भक्ति उमड़ने वाली है। बाबा को समर्पित पावन सावन आने वाला है। इसी सावन के महीने में देश भर से लाखों शिव भक्त आस्था की कावड़ उठाकर नंगे पांव गंगा जल लेने निकलते हैं और अपने अपने शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल ये कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर खास तौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। कांवड़ ले जाने वाला हर भोला सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से बाबा का जलाभिषेक कर पाए, इसको सुनिश्चित करवाने के लिए ही मेरठ में प्रदेश स्तर की हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। यहां पहुंचे अधिकारियों ने सबसे पहले ओगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद कमिश्नर ऑफिस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रशासनिक तैयारियों पर बात हुई।
1: जो हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और ये भी आपत्तिजनक वस्तु में के बारे में इस साल में कानून है। कांवड़ जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनको उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि जो कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। जो शासन के नियम हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियम है इस बारे में, इसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा।
0: क्योंकि हर साल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी कांवड़ यात्री शामिल होते आए हैं, इसलिए इस बैठक में इन राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान घाटों की सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए उनसे अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सरकार का कहना है कि यात्रा के दौरान दुकानों के संचालन, रजिस्ट्रेशन, भोजन की क्वालिटी और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए होगी। क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे अलर्ट पर रहेगी। खाने पीने की वस्तुओं की क्वालिटी की नियमित जांच होगी और सभी भोजनालयों पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर यहां बैठक में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में इस्तेमाल होने वाली हर डीजे पेन ड्राइव का पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ स्वीकृत भक्ति गीतों को ही बजाने की परमिशन मिलेगी। सहारनपुर प्रशासन ने साफ कर दिया कि 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर शिविर में सीसीटीवी लगेंगे, अग्निशमन के इंतजाम, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। शिविरों में केवल शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाएगा, जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: उनको ये निर्देश दिया गया, उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो डीजे की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा जो डीजे में बचेगा उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द खराब हो और किसी व्यक्ति को की जो भावना है वो आहत हो।
0: यही नहीं, झारखंड के देवघर में

0: सावन के महीने में श्रावणी मेला आयोजित होना है, तो ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी देवघर में जिला प्रशासन और दूसरे डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
1: श्रावणी मेला बाबा भोलेनाथ, लाख श्रद्धालु आएंगे प्रतिदिन, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, खान पीन सबने विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया।
0: धार्मिक मान्यताएं भी कहती हैं कि सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे खास समय माना गया है और हर साल इस महीने का इंतजार शिव भक्त पूरी बेसब्री के साथ करते हैं। यही वजह है कि भोले बाबा के भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ही सरकारी तंत्र कांवड़ यात्रा को बेहद सुव्यवस्थित बनाए रखने के हर संभव प्रयास करता आया है, ताकि हर भोला अपने आराध्य का जलाभिषेक पूरे इत्मीनान के साथ कर पाए। मेरठ से उस्मान चौधरी, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार और झारखंड के देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सोचिए जरा, एक ऐसा कुंड जहां मौसम बदलते ही पानी भी अपना मिजाज बदल ले, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। कोटा के चंबल किनारे मौजूद एक ऐसा ही प्राचीन और प्राकृतिक कुंड है। ये कुंड करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। इसकी यही खासियत इसे बाकी जल स्रोतों से अलग बनाती है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस कुंड को बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही, आखिर इसमें लगातार आने वाला पानी कहां से आता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं मिला। मंदिर के पुजारी के मुताबिक उनका परिवार 3 पीढ़ियों से इस कुंड की सेवा कर रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक इस कुंड को कभी सूखते नहीं देखा। पहले जब इलाके में पानी की सुविधा नहीं थी, तब धार्मिक कार्यक्रम और भोजन बनाने के लिए भी इसी कुंड का पानी इस्तेमाल किया जाता था।
3: वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता ये भी है कि इस कुंड के पानी की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। उनका विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से दांत खाद खुजली जैसे चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। हालांकि इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं हुई है। इसी आस्था के कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। कई लोग इस पानी को अपने साथ घर भी ले जाते हैं। मंदिर में हर रोज भगवान का जलाभिषेक भी इसी पानी से होता है। ये पानी गौमुखी से होकर सीधे चंबल नदी में मिलता है। श्रद्धालु इसी जलधारा के नीचे स्नान करते हैं और इसे शुभ मानते हैं। लगातार बहते पानी और रोज होने वाली सफाई की वजह से कुंड का पानी साल भर साफ और पारदर्शी रहता है।
4: यहाँ पे सुकून मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं, या चंबल माता की सेवा कर लेते हैं, पशु पक्षी की सेवा कर लेता हूँ। इधर वो जो बंदर आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत मिलता है, कोई लाता है जो वो खिला देता हूँ, ये सेवा करता हूँ। ये मेरे को 22 साल हो गए साहब, 22 साल से जब से आया हूँ तब से इन्हीं सेवा में लगा हूँ। चंबल के किनारे क्या स्वर्ग है हमारे लिए, तो यहाँ पे इतना सुकून मिलता है जैसे कि हमने स्वर्ग में पैर रख लिया।
5: चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ के दरबार में एक बार फिर से आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के देवास जिले से आए एक परिवार ने भगवान श्री सावलिया सेठ को 11 किलो 400 ग्राम के चांदी की 19 छोटी छोटी सिल्लियां भेंट की है। चढ़ाए गए चांदी की कीमत 26 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हाल ही में एक भक्त ने भगवान को करीब 137 ग्राम की सोने की बांसुरी भेंट की थी, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई थी। सावलिया सेठ के दरबार में हर साल करोड़ों रुपए की नकद राशि के साथ बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और आभूषण भक्त भेंट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भक्त अगर भगवान के दरबार में अपनी फरियाद कर दे तो भगवान मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त भगवान को बहुमूल्य भेंट देते हैं।
6: तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए, कुदरत की चुनौती के बीच हौसले से पूरा हो रहा है रेस्क्यू मिशन।
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2027 रैंकिंग जारी, मुंबई की रैंकिंग में भी सुधार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे सुख और समृद्धि की कामना। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी, आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन नायकन टी शर्ट की भारी मांग, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज, कल रिलीज हो रही फिल्म। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम, 24 सालों से मनाया जा रहा भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक, 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो।
1: देखिए देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, जम्मू कश्मीर समेत कई और जगहों पर भी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है।
4: ये खबर पढ़ते हुए मुझे बहुत जेलस फील होता है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बादल जो है ना तरसा रहे, रोज सुबह उठो एकदम काली घटा, फिर उसके बाद जैसे दिन आगे आगे बढ़ता है तो धूप निकल
5: नहीं, नहीं होती तो है 74 में होती है, 76 में नहीं होती, 75 में होती है।
6: हाँ तो ये जो 74-76 बता रही है सेक्टर से, यहाँ के आपको बता दे तो हम पहले भी कह चुके हैं कई बार कि यहाँ सेक्टर वाइज बारिश होती है।
5: आप 76 से निकलते हैं नोएडा सिटी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बारिश मिलती है।
4: हाँ, उसके बाद यहाँ छाता खुलता है, अभी खुलता ही इतने में छाता बंद कर लेते क्योंकि बारिश नहीं होती,
1: इसे बारिश नहीं कहते।
4: खैर दिल्ली वालों पर भी जल्दी से ये मेहरबानी हो, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दे कि कहीं बारिश राहत तो कहीं आफत लेकर आई है, पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते।

0: जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मानसूनी मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की मार झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई लोग मुसीबत में फंस जा रहे हैं। मुसीबत में फंसे ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं सेना, NDRF और SDRF के जवान। ये देवदूत अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती जलधारा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। राहत और बचाव की ये तस्वीरें कारगिल के करकीचू की हैं, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर पुल पानी में बह गया। पुल टूटने की वजह से स्कूली छात्र और महिलाएं समेत कई लोग यहां फंस गए। इंडियन आर्मी को जैसे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, वो तुरंत दल बल और साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सेना के जवानों ने तत्काल एक फुट ब्रिज तैयार किया और उस पुल से एक एक कर बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित निकाला। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने जरूरतमंद लोगों को मेडिकल मदद भी पहुंचाई।
1: यहाँ पे स्कूल के बच्चे और लेडीज को क्रॉस करते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस गांव के बच्चे और बुजुर्गों को, लेडीज को क्रॉस किया है।
0: राहत और बचाव की ये तस्वीर कठुआ जिले के बिलावर इलाके की है। तेज बारिश की वजह से बिलावर के भिन्नी नाले का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया और इस उफनती जलधारा के बीचों बीच दो लोग फंस गए। बिलावर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो जरूरी साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे बीच धारा में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कई इलाके भारी बारिश और बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से सुरनकोट के बुफलियाज और दारा संगला इलाके में भारी तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही के बीच राहत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं लोकल प्रशासन के साथ सेना के जवान। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने मात्र 3 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त पुलों और रास्तों को ठीक कर कनेक्टिविटी बहाल कर दी। वहीं SDRF और पुलिस ने कलाई, चांधक, दहेरा और बांच जैसे क्षेत्रों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत और बचाव की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रावी की उफनती धारा के बीच एक व्यक्ति फंस गया था। उफनती नदी के बीच मौजूद एक बड़े चट्टान पर यह व्यक्ति फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रावी की तेज धारा इसे अपना ग्रास बना लेगी, लेकिन समय रहते स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और एक लंबी सीढ़ी के सहारे इस व्यक्ति का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहां मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही, जिसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। इसी बीच बरेली तहसील के पास घोघरा नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से खेतों में काम कर रहे 9 मजदूर फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होमगार्ड की डिजास्टर रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा, जिन्होंने बोट और लाइफ जैकेट की मदद से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। साफ है कि कई इलाकों में मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है, तो राहत और बचाव से जुड़ी टीमें देवदूत बनकर संकट में फंसे लोगों को बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारी बारिश और खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित है, लेकिन कटरा में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार जुटा है।
3: आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर, चाय, नाश्ते और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा भी लगातार चौथे दिन शुरू नहीं की जा सकी।
4: आस्था और भक्ति की इस यात्रा में मौसम की वजह से थोड़ी अड़चने जरूर आई। दोनों ही धामों की यात्रा पिछले 4 दिनों से स्थगित है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। हर किसी को उम्मीद है कि मौसम की दुश्वारियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी और वो अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर पाएंगे। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से माँ वैष्णो देवी यात्रा आज भी रुकी है। कटरा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर का इंतजाम किया है। श्रद्धालुओं को गर्म खाना, चाय, पीने का पानी समेत दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
5: पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ। 19 तारीख हम रात को यहाँ पे आ गए थे, पर श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था हो रही है सर, लोगों के लिए खाने के लिए, पानी व्यवस्था के लिए और रहने के लिए भी डोर मैट उन्होंने फ्री सुविधा कर रखी है। जब तक यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से चाय, नाश्ता, पानी और डोर मैट के लिए व्यवस्था दे रखी है। हम
6: यहाँ पे आया हुआ 4 रोज हो गया, यहाँ का व्यवस्था खाना का अच्छा लगा और 4 रोज से बंद है माँ वैष्णो देवी का। हम घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे अच्छा लगा खाना का व्यवस्था। हम लोग 5 रोज से हैं, यही है। जय माता जी।
4: आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सफाई कर्मी दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि मार्ग जल्दी से जल्दी सुरक्षित बनाया जाए और श्रद्धालु फिर से उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ें। कुछ ऐसे ही हालात अमरनाथ यात्रा रूट पर भी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू बेस कैंप पर तैयार है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की हुई है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन का पूरा जोर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर है, लिहाजा श्रद्धालुओं को बालटाल और नुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंपों में ठहराया गया है और जरूरत की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इंतजार बस अब मौसम के ठीक होने का है, जिससे अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जा सके। श्री अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने मौसम में सुधार होने और रास्तों को सुरक्षित होने तक आवाजाही रोक दी है। खराब मौसम के कारण बुधवार को लगातार 4th दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और बालटाल और नुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंप में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवखेड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा लगातार 4th दिन भी बंद रही। जम्मू से सुनील जी भट्ट और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मिसेज इंडिया आकांक्षा चौधरी की कामयाबी की कहानी।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: No.
1: Oh, no?
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
4: She has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody who?
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: चलिए बात करते हैं ब्यूटी विद माइंड की मिसाल बनी आकांक्षा चौधरी की, जिन्होंने 18 जुलाई को मिसेस इंडिया 2026 का खिताब जीता है. राजस्थान में अजमेर की रहने वाली आकांक्षा चौधरी के लिए मिसेस इंडिया का ताज जीतना एक सुनहरा पल है, जब वो 7 महीने के बेटे आसिफ की माँ भी है.
9: बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आकांक्षा के लिए मिसेस इंडिया का ताज सिर्फ उनके लिए एक जीत नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत है जो शादी और माँ बनने के बाद अपने सपनों को अधूरा मान लेती हैं. वो सोचती हैं कि बस अब उनकी जिंदगी थम गई है. तो चलिए जानते हैं आकांक्षा चौधरी की ही जुबानी कि मदरहुड के बीच मिसेस इंडिया का खिताब जीतना उनके लिए कितना मायने रखता है.
10: बहुत ही मुश्किल रहा है. मैं 7 मंथ ओल्ड की मदर हूँ तो फिटनेस में वापस आना, पूरा मॉडलिंग का रैंप वॉक वापस सीखना, हील्स में इतनी देर खड़े होना नो ऑपरेशन के बाद, तो बहुत ही मुश्किल रहा है. बट एकदम मीठा एंड मिला मेहनत का.
8: डिग्री मिलते ही नौकरी की तलाश, यही आजकल ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद होती है. लेकिन राजस्थान के कोटा के एक युवा ने भीड़ से अलग रास्ता चुना. उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी के बजाय खेती पर भरोसा किया. जेब में सिर्फ 10,000 रुपए थे लेकिन इरादे बड़े थे. 50 बैग से शुरू हुई मशरूम की खेती आज सालाना 20 लाख रुपए के टर्नओवर वाली एग्री स्टार्टअप में बदल चुकी है.
5: बिल्कुल, कोटा में रहने वाले यशराज ने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की. कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान मशरूम उत्पादन की बारीकियां सीखी. वहीं उन्हें समझ में आ गया कि राजस्थान में इसकी मांग तो अच्छी है लेकिन उत्पादन बहुत कम है. बस यहीं से उन्होंने नौकरी छोड़ खेती में भविष्य तलाशने का फैसले 15,000 रुपए जुटाए और एक छोटे कमरे में सिर्फ 50 बैग से मशरूम उगाना शुरू किया. पहली ही फसल ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दे दिए. करीब 15,000 से 20,000 रुपए का मुनाफा मिला और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया. अब यशराज की सफलता की कहानी दूसरे नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गई है. अंतरिक्ष में भेजे गए विक्रम 1 रॉकेट के साथ डायमंड से बना एक डायमंड लोटस ज्वेलरी को भेजा गया है। सूरत की कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि डायमंड ज्वेलरी स्पेस में भेजी गई हो। ये ज्वेलरी पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, निर्माण और पॉलिश की गई है। कमल के आकार वाली इस ज्वेलरी में 18 कैरेट येलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 16.16 कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग किया गया। इस खास ज्वेलरी की लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस ज्वेलरी का डिजाइन बनाने में 1 महीने का वक्त लगा था।
9: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कहते हैं कि नामुमकिन सिर्फ एक सोच है और जापान के एक साइकिल राइडर ने इसे सच कर दिखाया है। उन्होंने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है।
2: ओलंपिक्स की जंप पर उल्टी दिशा में सिर्फ एक पहिए के सहारे साइकिल चलाकर उन्होंने दो दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

0: ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक असली वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। जापान के स्टंट साइकिल राइडर टोमोमी निशिकुबो एक ऐसे स्की जंप पर खड़े हैं जहां आमतौर पर स्की खिलाड़ी बर्फ पर फिसलते हैं, लेकिन आज यहां बर्फ नहीं बल्कि साइकिल का कमाल दिखने वाला है। टोमोमी ने अपनी साइकिल को उल्टी दिशा में मोड़ा और सिर्फ आगे वाले पहिए पर बैलेंस बनाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये रास्ता करीब 37.5 डिग्री की खड़ी ढलान वाला था, जरा सी गलती उन्हें सीधे नीचे गिरा सकती थी। करीब 136.6 मीटर तक टोमोमी ने बिना संतुलन खोए ये हैरतअंगेज सफर पूरा किया। इस दौरान उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही, लेकिन उन्होंने पूरे 35 सेकंड तक कमाल का बैलेंस बनाए रखा। यही कारनामे ने उन्हें दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिला दिया।
1: I was hooked on this challenge and I was like, okay, let's do my favorite trick on the ski jump landing. Ski jump landing is such a unique location and you know, it's very slippery for ski jumpers. So my challenge was like opposite challenge. I need grip. I want to go down as slow as possible. So very, very opposite location to do my favorite trick. But I love crazy challenge. So I was like, okay, it's gonna be the farthest first. So I did it.
0: लेकिन ये सफलता एक दिन में नहीं मिली। साल 2025 में उनके पहले 35 प्रयास नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने अभ्यास के लिए 10 मीटर लंबी वैसी ढलान तैयार की और बार बार प्रैक्टिस की। आखिरकार साल 2026 में दूसरी कोशिश में उन्होंने इतिहास रच दिया। इस रिकॉर्ड को देखने के लिए उनकी फैमिली और करीब 20 लोगों की टीम वहां मौजूद थी। जैसे ही टोमोमी ने अपना रन पूरा किया, हर तरफ तालियां गूंज उठी। ये कारनामा साबित करता है कि अगर हौसला बड़ा हो तो सबसे मुश्किल रास्ता भी जीत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नी सिरे।
2: तो देखिए, टीवी के सबसे चर्चित, सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो यानी बिग बॉस के फैंस का इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है। देखिए, मेकर्स ने बिग बॉस 20 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
3: बिल्कुल, देखिए शो का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है जिसने सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। आखिर इस बार क्या खास होने वाला है बिग बॉस के इस सीजन में, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: करीब दो दशक से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने 20वें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। 19 सफल सीजन के बाद मेकर्स ने बिग बॉस 20 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शो का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस रियलिटी शो की खास पहचान बन चुके बिग बॉस की आंख को मेकर्स ने बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मल्टी कलर आई लोगों के साथ लिखा गया है, दो दशक बाद अभी भी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बिग बॉस की आंख बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर। हालांकि मेकर्स ने अभी तक शो की प्रीमियर डेट और इस बार थीम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भी शो की कमान सुपरस्टार सलमान खान ही संभाल सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बार बिग बॉस सिर्फ अपने नए सीजन की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े रिकॉर्ड की वजह से भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार बिग बॉस के सभी 6 रीजनल एडिशन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सितंबर 2026 में एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिग बॉस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा। शो के ऐलान के साथ ही अब सबसे ज्यादा चर्चा कंटेस्टेंट को लेकर हो रही है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के कई चर्चित सितारों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नामों को अप्रोच किया जाने की चर्चा है उनमें रिद्धिमा गुप्ता, रुरु ठाकुर, भागीरथ भट्ट, निया शर्मा, जन्नत जुबैर, मिस्टर फैजू, करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, भव्या सिंह, सेंटी शर्मा और अरबाज पटेल शामिल हैं। लेकिन ये सभी नाम फिलहाल सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। वही सोशल मीडिया पर फैंस की अपनी अलग ही डिमांड है। कई लोग चाहते हैं कि स्प्लिट विला फेम रूरू ठाकुर इस बार बिग बॉस के घर में जरूर नजर आए। वही कुछ फैंस रूरू के साथ आकांक्षा चौधरी को भी शो में देखना चाहते हैं, ताकि घर के अंदर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिले। हालांकि नामों को लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बिग बॉस 20 का सिर्फ पहला लुक सामने आया है। अब फैंस को इंतजार है प्रीमियर डेट, थीम और फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट का। एक बात तो तय है, दो दशक पूरे करने जा रहा बिग बॉस इस बार भी टीवी और ओटीटी की दुनिया में जबरदस्त धमाका करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर शाम 5 बजे चाय पर मुलाकात होगी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है की संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
7: दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2027 रैंकिंग जारी, मुंबई की रैंकिंग में भी सुधार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे सुख और समृद्धि की कामना। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी, आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम। काशी की गुलाबी मीनाकारी का दुनिया भर में बढ़ा क्रेज, 20 परिवार संभाल रहे 400 साल पुरानी विरासत, GI टैग और ODOP योजना में शामिल। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम, 24 सालों से मनाया जा रहा भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक, 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। GNT स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। आज इंडियन नेवी को ताकत का नया और स्वदेशी बूस्टर डोज मिल गया है। आज एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। INS मालवन को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2026 अभी आधे से कुछ ही ज्यादा गुजरा है और अब तक केवल इसी साल में आधा दर्जन के करीब स्वदेशी युद्धपोत नेवी को मिल चुके हैं। हाल ही के सालों में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया और अब एक और स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल है।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और उन्हीं शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघ नख। आपको बता दें कि वाघ नख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघ नख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स है पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: आईएनएस मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बी के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर हैं, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बी के खिलाफ सफल हो जाएंगी। साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है। ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट जो है वो देश में बने हुए।
0: आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्र सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी दो हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: स्थित प्रज्ञरणीषु अपराजितः, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, और ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है, और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है, और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डन ईच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 60 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और बिंदगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।

डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्धपोतों ने जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत INS अग्रे और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्धपोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रे का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रे अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे

0: खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रह के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं।
0: खास बात ये कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की आज की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बड़ा फैसला, अब 5 संतों के पास रहेगा राम मंदिर से जुड़े धर्म कार्यों का दायित्व, ट्रस्ट के प्रवक्ता की भी होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। सूरत के डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी, आध्यात्मिक सोच और आध्यात्मिक भारत का नया अनोखा संगम। काशी की गुलाबी मीनाकारी का दुनिया भर में बढ़ा क्रेज, 20 परिवार संभाल रहे हैं 400 साल पुरानी विरासत, GI टैग और ODOP योजना में शामिल। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम, 24 सालों से मनाया जा रहा है भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंच रहे दर्शक, 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि अब राम मंदिर का पूरा जो धार्मिक कार्यभार है वो अयोध्या के 5 संतों को सौंपा जाएगा और उनके निर्देश में ही राम मंदिर का पूरा संचालन किया जाएगा। देखिए, इसके लिए एक धार्मिक समिति का बाकायदा गठन किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। और देखिए, साथ ही साथ संतों को बड़ा सम्मान भी मिला,
4: यानी अब राम मंदिर का पूरा संचालन अयोध्या के संतों के हाथ में होगा। एक धार्मिक समिति बनाई गई है और उस धार्मिक समिति के निर्देशन में ही अब ये ट्रस्ट काम करेगा। आज ये फैसला लिया गया है और गोविंद देव गिरी ने बताया कि इसमें अयोध्या के 5 बड़े संत होंगे जिनके निर्देशन में अब ये पूरा ट्रस्ट और साथ साथ ये राम मंदिर का धार्मिक संचालन होगा। धार्मिक समिति बनाई गई है और इसमें जो 5 संत अयोध्या से नए जोड़े गए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जो है कमल नयन दास का है, जो कि उत्तराधिकारी भी हैं इस छोटी छावनी के। इसके अलावा रामानंद दास, राजकुमार दास, सरीखे कई ऐसे संत हैं जो कि अब इस धार्मिक समिति में होंगे। लेकिन अभी 5200 से ज़्यादा CEO के पद के लिए लोगों की एप्लीकेशन आई हुई है। कहा यह जा रहा है कि 1 महीने में जब SIT की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही नए ट्रस्टी, नए CEO या फिर नए महासचिव होंगे। हालांकि एक प्रवक्ता का पद बनाया जाएगा और फिलहाल महासचिव के पद पे कृष्ण मोहन बने रहेंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या।
3: और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट, GNT एक्सप्रेस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: ओडिशा के पुरी में बाहुड़ा यात्रा की भव्य तैयारियां, गुंडीचा मंदिर के सामने किया गया ताल ध्वज और नंदीघोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ने का पवित्र अनुष्ठान। बाहुड़ा यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर के सामने तीनों विशाल रथों को दक्षिणी दिशा की ओर मोड़ा जाता है। बावड़ा यात्रा के साथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की होती है मुख्य मंदिर में वापसी। गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक विश्राम करने के बाद होती है यात्रा। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा लगातार जारी। आज इंद्र विमान में सवार होकर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। एक दिन पहले भगवान सीताराम जी की निकाली जाती है सवारी। रात में विराजमान करने से पहले पुलिस लाइन से आई गार्ड ने भगवान को सलामी दी। यहां भगवान जगन्नाथ और माता जानकी जी के विवाह की भी परंपरा। नागपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नागपुर की सड़कें हुई भक्ति में, श्रद्धालु ने खींचा भगवान का रथ। हजारों भक्त भजन और कीर्तन पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। श्रद्धालु ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने को बताया जीवन का सौभाग्य। विलासपुर के नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि में उमड़ा आस्था का जनसला। बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ। मां नैना देवी के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए किया गया रवाना। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा के जवान तैनात। देर रात से पहाड़ी टूटने के कारण बंद कर दिया गया था मार्ग। यात्रा मार्ग से बाहर बोल्डर हटाने के बाद संकररा मार्ग से होते हुए यात्रियों को निकालने की मदद कर रहे एनडीआरएफ के जवान। अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से रोक दी गई है श्रद्धालुओं की आगे की आवाजाही। अयोध्या के 5 संतों को सौंपा जाएगा राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार। उनके निर्देशन में ही होगा राम मंदिर का पूरा संचालन। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन। भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी करने का फैसला किया गया। सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच। प्रेमानंद महाराज से मिले वृंदावन पहुंचे विराट। अनुष्का करीब 1 घंटे तक एकांत वार्ता। कीचड़ भरे भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर भी होगा सहारनपुर पुलिस का शिकंजा। कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस करेगी डीजे पैन ड्राइव की जांच। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेले की तैयारियां तेज की। श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से अगले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी हो चुकी हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम। एक भक्त ने चढ़ाया 6.25 तोले का सोने का छत्र। अगरतला में आज होगा 7 दिवसीय खर्ची मेले का शुभारंभ। चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रच दिया इतिहास। विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। आध्यात्मिक सोच और आध्यात्मिक भारत का अनोखा संगम है यह खास ज्वेलरी। लैब ग्रोन डायमंड से तैयार की गई लोटस के आकार वाली ज्वेलरी। यह ज्वेलरी पूरी तरीके से भारत में ही डिजाइन और पॉलिश कर दी गई है। इस ज्वेलरी में 18 कैरेट येलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर में छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है दिल्ली। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2037 रैंकिंग जारी हुई। मुंबई की रैंकिंग में भी सुधार। हर साल जारी की जाती है रैंकिंग ताकि स्टूडेंट्स एकेडमिक क्वालिटी, खर्च की क्षमता, करियर के मौकों और स्टूडेंट के कुल अनुभव के आधार पर फैसला कर सकें। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत। मालवन कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने और ट्रैक करने में पूरी तरीके से सक्षम। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक का अभियान चलाने की क्षमता से लैस है ये मालवन। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार। देश की रक्षा निर्माण क्षमता और नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम। तमिलनाडु के तिरुपति में जन नायकन टी शर्ट की भारी डिमांड। एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस की जबरदस्त क्रेज। कल रिलीज होने जा रही फिल्म जननायकन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम देखने के लिए पहुंची ट्रेनी आईएएस अधिकारी, एनसीसी अधिकारियों और कैडेट से मुलाकात। चंडीगढ़ में ब्रिक्स के प्रतिनिधिमंडल ने किया योग, लोगों से योग करने की अपील की। श्रीनगर में एनजीओ में जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पश्चिम बंगाल को मिली 50 एसी बसों की सौगात, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया, 235 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ कॉरिडोर। पंचकूला में मुख्यमंत्री सैनी ने युवा संवाद एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल हुए। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली वो शामिल हुए। कोटा के युवक ने नौकरी छोड़कर शुरू किया मशरूम की खेती, सालाना 20 लाख की कमाई। जयपुर में मिसेज इंडिया बनी आकांक्षा चौधरी ने महिलाओं को किया प्रेरित, कहा शादी के बाद भी सपने पूरे होते हैं।

0: लद्दाख में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मियों के बीच अचानक जोरदार बर्फबारी। भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, पहाड़ों का बर्फ से भव्य श्रृंगार। भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, पड़ रही है सर्दियों जैसी ठंड। उत्तराखंड के चमोली बर्फीले ट्रैकिंग रूट पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार, 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गुप्त खाल ट्रैक पर उमड़ रही है भारी भीड़। चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर, ट्रैकिंग का आनंद ले रहे हैं सैलानी। करगिल के किरकिचू में बादल फटने से अचानक बाढ़ फंसे कई लोग। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, प्रभावित गांव में राहत बचाव कार्य तेज। रियासी में भारी बारिश के चलते खतरे के निशान के करीब पहुंच गई चिनाब नदी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। पुंछ में चार दिनों से लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त। उदयपुर में भारी बारिश, लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश, पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, अवरुद्ध सड़कों पर पहुंच रहा है पहाड़ी मलबा। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में आया उफान, नदी के बीच फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे बचाई युवक की जान। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दारमा घाटी में हुआ भारी भूस्खलन, लाइव वीडियो सामने आया। वलसाड़ में भारी बारिश का असर, रेलवे ट्रैक के किनारे जमीन धस गई, रेल सेवा प्रभावित। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, रौद्र रूप दिखा रही है अंबिका नदी, खतरे के निशान के ऊपर। असम में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित, सभी जिलों में राहत बचाव कार्य तेज। उमस का असम का शिवसागर जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है, 3.5 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए, 71 राहत शिविर में शिफ्ट किए जा रहे हैं। असम के 872 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 12,284 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी। कल से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है यह सीरीज। जिम्बाब्वे के हरारे में खेला जाएगा पहला मुकाबला, भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे लाइव। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का ऐलान कर दिया, ईशान किशन नंबर 1। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 में बनाए हुए हैं अपनी जगह। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ किया है करार। बिग बॉस 20 का नया लोगो आउट हुआ, बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक जारी हुआ। दलपति विजय की फिल्म जननेता का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विजय की फिल्म जननेता ने रिलीज होने से पहले शानदार कमाई की, फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज हो गया, फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रीस्थल पड़े मुख्य भूमिका में। ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया नजर आएंगे। चीन के चोंकिंग जू में जायंट पांडा के जुड़वा बच्चे यू और यूआई ने अपना चौथा जन्मदिन मनाया। जू के कर्मचारियों ने बांस के अंकुरों, सेब और गाजर ने इन जुड़वा बच्चों के लिए बनाया खास केक। 22 जुलाई 2022 को जायंट पांडा एयर शून्य हुआ था इन दोनों का, जुड़वा पांडे का जन्म। मिस्र के कायरा में मरम्मत के बाद फिर से खुला मामलुक सुल्तान अल अशरफ खैताब का मकबरा। इस मकबरे को 15वीं सदी की मामलुक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में पिंगटियन झील पर देखा एक अनोखा नजारा, एक शानदार आसमान के आईने जैसा नजर आया, एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता हुआ नजर आया पानी। चीन के ताइवान क्षेत्र में पेंगू की आतिशबाजी और ड्रोन शो ने रात के आसमान में रोशनी कर दी। चीन के ताइवान क्षेत्र में गर्मियों का सबसे बड़ा आतिशबाजी उत्सव माना जाता है पेंगू इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान आसपास के इलाके स्थानीय सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पादों के साथ साथ खाने पीने के भी लगते हैं स्टॉल्स। जापान के नागानो शहर में साइकिल राइडर ने दिखाया अनोखा कारनामा, बनाए 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तोमोमी निशिकुबो ने ऊंची ढलान पर एक पहिए से पीछे की ओर दौड़ाई साइकिल। तोमोमी ने हाकुबा स्की जंप स्टेडियम 136 मीटर की ढलान को पार किया। तोमोमी ने ढलान और दूरी का अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, 37.5 डिग्री की ढलान पर दिखाया करतब। 2 साल से अनोखा रिकॉर्ड बनाने की कर रहे हैं कोशिश। चीन में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शिनजियांग बना पर्यटकों की पहली पसंद, गर्मी में भी राहत का नया ठिकाना। 3100 मीटर ऊंचाई पर ताश कुरगान में बर्फीले पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। पर्यटकों के लिए खास इंतजाम, पामीर टॉरेस्ट एरिया में लोक संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे की व्यवस्था। प्राचीन कशरग शहर में पर्यटक स्थानीय व्यंजन भी तैयार। 16 जुलाई तक कशगर एयरपोर्ट से 27.4 लाख यात्रियों ने सफर किया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है, क्या बुध की वजह से कान नाक गले में समस्या आ रही है, कौन सी हैं बुध की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव
6: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात करते हैं मौसम की। देखिए, देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई और जगहों पर भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना तमाम राहत एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है।

0: जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मानसूनी मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की मार झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई लोग मुसीबत में फंस जा रहे हैं। मुसीबत में फंसे ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं सेना, NDRF और SDRF के जवान। ये देवदूत अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती जलधारा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। राहत और बचाव की ये तस्वीरें कारगिल के करकीचू की हैं, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर पुल पानी में बह गया। पुल टूटने की वजह से स्कूली छात्र और महिलाएं समेत कई लोग यहां फंस गए। इंडियन आर्मी को जैसे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, वो तुरंत दल बल और साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सेना के जवानों ने तत्काल एक फुट ब्रिज तैयार किया और उस पुल से एक एक कर बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित निकाला। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने जरूरतमंद लोगों को मेडिकल मदद भी पहुंचाई।
1: यहाँ पे स्कूल के बच्चे और लेडीज को क्रॉस करते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस गांव के बच्चे और बुजुर्ग और लेडीज को क्रॉस किया है।
0: राहत और बचाव की ये तस्वीर कठुआ जिले के बिलावर इलाके की है। तेज बारिश की वजह से बिलावर के भिन्नी नाले का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया और इस उफनती जलधारा के बीचों बीच दो लोग फंस गए। बिलावर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो जरूरी साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे बीच धारा में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कई इलाके भारी बारिश और बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से सुरनकोट के बुफलियाज और दारा संगला इलाके में भारी तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही के बीच राहत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं लोकल प्रशासन के साथ सेना के जवान। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने मात्र 3 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त पुलों और रास्तों को ठीक कर कनेक्टिविटी बहाल कर दी। वहीं SDRF और पुलिस ने कलाई, चांधक, दहेरा और बांच जैसे क्षेत्रों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत और बचाव की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रावी की उफनती धारा के बीच एक व्यक्ति फंस गया था। उफनती नदी के बीच मौजूद एक बड़े चट्टान पर ये व्यक्ति फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रावी की तेज धारा इसे अपना ग्रास बना लेगी, लेकिन समय रहते स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और एक लंबी सीढ़ी के सहारे इस व्यक्ति का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहां मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही, जिसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। इसी बीच बरेली तहसील के पास घोघरा नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से खेतों में काम कर रहे 9 मजदूर फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होमगार्ड की डिजास्टर रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा, जिन्होंने बोट और लाइफ जैकेट की मदद से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। साफ है कि कई इलाकों में मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है, तो राहत और बचाव से जुड़ी टीमें देवदूत बनकर संकट में फंसे लोगों को बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: आ गया समुद्र में हिंद का नया रक्षक, महाप्रभु के धाम लौटने की तैयारी, पुशअप मैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
4: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, CEO की नियुक्ति फिलहाल टली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, श्री नाना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे सुख समृद्धि की कामना। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी, आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम। काशी की गुलाबी मीनाकारी का दुनिया भर में बढ़ा क्रेज, 20 परिवार संभाल रहे हैं 400 साल पुरानी विरासत, GI टैग और ODOP योजना में शामिल। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूम, 24 सालों से मनाया जा रहा है भव्य उत्सव, हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक, 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा शानदार शो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, जगन्नाथ धाम में अब महाप्रभु की घर वापसी की तैयारियां शुरू हो गई है। रथ यात्रा उत्सव के अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव बहुड़ा यात्रा से पहले धार्मिक परंपराओं का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, महाप्रभु के अपने घर लौटने की तैयारी। जी हाँ, पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू गई है। ये रथ यात्रा उत्सव का आखिरी पड़ाव है, मंगलवार को इससे जुड़े अनुष्ठान किए गए, रथों की जांच की गई, साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई गई। इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के तीनों रथों को दक्षिण दिशा में मोड़ कर रखा गया। यहीं से 24 अप्रैल को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी। दरअसल बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है। इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे और वापसी के दौरान देवताओं का रथ मौसी माँ मंदिर के पास रुकता है, जहां भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। आपको बता दें कि बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडिचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए गए, जिस रथ में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे थे, उन रथों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, ताकि गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए।
9: पहली बार गुंडिचा मंदिर में आया हूँ, भगवान जगन्नाथपुरी में, जो कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, और यहाँ मुझे आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति और सुकून मिला है। और मैं भगवान जगन्नाथ से गुजारिश करूँगा कि सभी ब्रह्मांड के जो भी जीव जंतु और सभी जो लोग हैं वो सुखी हो, संपन्न हो और समृद्ध रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, यहाँ के प्रशासनिक जो भी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, और जो मंदिर के लोग हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ के जो लोकल भी है वो भी बहुत अच्छे से ये करते हैं।
8: सावन का पवित्र और पावन महीना आने वाला है और शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है श्रावणी मेले के लिए सच रहा शिव धाम। करोड़ों कांवड़ियों के आगमन को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। हरिद्वार से लेकर सहारनपुर और मेरठ तक प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सके।

0: कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। हरिद्वार से लेकर सहारनपुर और मेरठ समेत कांवड़ मार्ग से जुड़े जिलों में लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कांवड़ मार्ग पर सड़क मरम्मत, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा शिविर, मोबाइल हेल्थ यूनिट और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही संवेदनशील स्थानों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए और इस साल अधिकारियों ने यात्रा में इस्तेमाल होने वाले डीजे को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। गानों की लिस्ट को लेकर भी नियम बनाए हैं। इन नियमों के हिसाब से यात्रियों को डीजे पर चलने वाले गानों की पेन ड्राइव का पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा और सिर्फ स्वीकृत भक्ति गीतों को ही बजाने की अनुमति मिलेगी।
1: उनको ये निर्देश दिया गया, उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो डीजे की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा जो डीजे में बचेगा उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द खराब हो और किसी व्यक्ति को कि जो भावना है वो आहत हो।
0: सहारनपुर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अग्निशमन के इंतजाम, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। शिविरों में केवल शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाएगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: देखिए, हर जगह हमारे जो फोर्स की व्यवस्था की गई है, हर जगह पे सेक्टर वाइज सेक्टर मस्टर्ड लगाए गए हैं और हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति होगा, जो भी हमारा श्रद्धालु होगा, उसको जो सुविधाएं सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी।
0: वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा घाटों, पार्किंग स्थलों और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
2: पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने उस पर भी विचार हुआ है, डीजे इत्यादि। चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो, उसके निमित्त की गई अच्छी तैयारियां हुई है।
0: झारखंड के देवघर में भी विश्व प्रसिद्ध श्रावण मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है। मंदिर परिसर से लेकर यात्रा मार्ग तक हर व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। दरअसल हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में लगातार समीक्षा बैठकें और फील्ड निरीक्षण किए जा रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ऊंची पहाड़ी पर स्थित हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आजकल गुप्त नवरात्रों का उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्त नवरात्रों में दर्शनों के लिए माता के दरबार पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है नैना देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। गुप्त नवरात्रों में भी माता जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। वर्ष भर में जहां पर चार नवरात्रे मनाए जाते हैं जिनमें चैत्र मास की नवरात्रि, आश्विन मास की नवरात्रि और ये दो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के और माघ मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इन नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। गुप्त नवरात्रों की अष्टमी और नवमी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मंदिर न्यास लगातार आधुनिक तरीके से जो भी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को मुहैया करने के लिए पूरी प्रयास में लगा है। जो श्रद्धालु दूसरे प्रदेशों से आते हैं उन्हें माता जी के दरबार के लाइव दर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वहां पर आधुनिक 16 हट्स लगाए गए हैं जिसमें आधुनिक तरीके से मोबाइल चार्ज करने और भक्तों के विश्राम करने की सुविधा मौजूद है।
4: आज श्री नैना देवी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ के असीम कृपा हम सभी जिलावासियों पे बनी रहे। आज हमने विकासात्मक कार्य जो हमारे मंदिर परिसर में चले हैं उसका हमने जायजा लिया और शुभारंभ भी किया। अगले महीने हमारे श्रावण अष्टमी का मेला है जिसमें हमने लाइव ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा स्क्रीन की व्यवस्था की है ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं या विदूर दराज जगह पे आते हैं उनको प्रॉपर 4K की सुविधा हो, तो ये इसका भी शुभारंभ किया है। साथ साथ हमने जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोलार की व्यवस्था को देखते हुए उसका हमने सोलार हट्स बनाया है जो पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग जगह रहेंगे। इसमें श्रद्धालु की सुविधा है, जैसे इसमें बैठने की व्यवस्था है और पूरा ये सोलार से चलेगा, चार्जिंग की व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था है, तो इसका हमने शुभारंभ किया है।
3: और समंदर का नया बाहुबली सामने आ चुका है। INS मालवन नौसेना में शामिल हो गया है। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार INS मालवन भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है समंदर का सिकंदर INS मालवन नौसेना में शामिल। आपको बता दें कि INS मालवन अब भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनकर समंदर की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की जिम्मेदारी निभाएगा।
5: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की ये सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में एक ऐसे महाबली की एंट्री हुई है जो पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइन बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉरपीडो सिस्टम से लैस INS मालवन जंग के मैदान का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को निस्तेनाबूद कर सकता है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माही क्लास की दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है।
6: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है।
5: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉरपीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉरपीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है, चौड़ाई लगभग 11 मीटर, इसका वजन करीब 1100 टन है, इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पे कुल 57 लोग तैनात रहते हैं।
6: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपनी ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है।
5: भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडरवाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वारों और द्वीपों के पास तैनात रह पाए। इस युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है। ये जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। INS मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोत है। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगर आपका बच्चा घंटों मोबाइल में व्यस्त रहता है तो इस पर आप नजरअंदाज इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोबाइल एडिक्शन और उससे जुड़ी मानसिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में बच्चों की इस समस्या के समाधान के लिए प्रयागराज में मोबाइल कर्फ्यू का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मोबाइल कर्फ्यू से छूटेगी बच्चों में मोबाइल की लत। जी हाँ, प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के मनोचिकित्सकों के पास हर महीने औसतन 8 ऐसे मामले पहुंच रहे हैं जिनमें बच्चे मोबाइल की लत, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध विदेशी कंटेंट, खास करके कोरियन कंटेंट के प्रति अत्यधिक आकर्षण के कारण मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बच्चे इन्हें केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखते बल्कि अपनी जीवन शैली और पहचान का हिस्सा बनाने लगते हैं। ऐसे में परिवार के साथ मतभेद बढ़ने लगते हैं और कई बार बच्चे अपनी ही संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से दूरी बनाने लगते हैं। मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में ऐसे बच्चों के लिए मोबाइल कर्फ्यू की सलाह दी जा रही है। इसके तहत शाम के समय मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से बंद कराया जाता है। बच्चों को खेल, पढ़ाई, बातचीत और पारिवारिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है और बच्चे के स्क्रीन टाइम के नियमित निगरानी की जाती है।
7: प्रयागराज के सरकारी हॉस्पिटल में हर इलाज के साथ मोबाइल छुड़ाने की भी लत का इलाज किया जाता है। और हम देखेंगे जिस पास खड़े हैं ये राकेश पासवान डॉक्टर हैं और मनोचिकित्सक कक्ष है 13 नंबर। इस कक्ष में इलाज होता है खासकर उन चीज़ों का जो बच्चे मूल तौर पर मोबाइल के शिकार हैं या मोबाइल की लत के शिकार हैं, तो ऐसे पेशेंटों का इलाज प्रयागराज के इस हॉस्पिटल में किया जाता है। और बाकायदा बच्चे काफ़ी संख्या में आते हैं, उनके माता पिता साथ में आते हैं इस आशय से कि उनके बच्चों के जो मोबाइल के लत है उसकी लत छुटाए जाने का इलाज किया जाता है। और बता दें जो इस हॉस्पिटल में एक मोबाइल कर्फ्यू नाम से एक स्कीम भी चलाई जाती है जिसमें छोटे बच्चों का जो मोबाइल की लत है, छोटे बड़े बच्चे उन सब के मोबाइल की लत को छुड़ाने का काम किया जाता है। और ऐसे में प्रयागराज के इन ये डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में तो इलाज करते ही हैं, साथ में हॉस्पिटल के अलावा घर पर जाकर भी उन बच्चों का इलाज करते हैं, बकायदा काउंसलिंग करते हैं और बच्चों के माता पिता का काउंसलिंग करते हैं।
3: दिल्ली के रोहताश चौधरी ने फिटनेस के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। रोहताश ने पीठ पर 27 किलो से ज्यादा वजन रखकर एक घंटे में 847 पुशअप्स मारकर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। पीठ पर 27 किलो वजन रखकर पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी हाँ, रोहताश चौधरी ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। दिल्ली के रोहताश चौधरी ने 27.2 किलो का वजन पीठ पर बांधकर सिर्फ एक घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
5: पीठ पर वजन रखकर पुशअप्स करते ये हैं रोहताश चौधरी। रोहताश चौधरी ने पुशअप्स में एक नया कारनामा कर दिखाया है। रोहताश चौधरी ने 27 किलोग्राम से ज्यादा वजन पीठ पर बांधकर महज एक घंटे में 847 पुशअप्स कर एक नया इतिहास रच दिया है। रोहताश की इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। देश में पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहताश चौधरी ने फिटनेस की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने अपनी पीठ पर 60 पाउंड यानी 27.2 किलोग्राम का वजन रखकर एक घंटे में 847 पुशअप्स पूरे किए हैं। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने सीरिया के सामी जोमा हसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
8: नया रिकॉर्ड है ये मैंने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ में नेहरू स्टेडियम में रिकॉर्ड ब्रेक किया था और हमारे सेंटर के स्पोर्ट मिस्टर डॉक्टर वंशुख माड़िया जी रिकॉर्ड के दौरान मौजूद थे।
9: ये गिनीज में भी रिकॉर्ड हो गया अब।
8: ये अभी 3 दिन पहले ही गिनीज की वेबसाइट पे आया है और बताना चाहूंगा ये रिकॉर्ड मैंने भारतीय सेनाओं को समर्पित किया है।
5: इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी भी छिपी है। रोहताश एक समय सड़क हादसे का शिकार हुए थे और करीब 2 साल तक सामान्य रूप से चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन इस घटना को पीछे छोड़ते हुए वो इस मुश्किल दौर से बाहर निकले और उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया। रोहताश अपनी मेहनत और लगन से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफल हुए हैं।
8: एम्स के डॉक्टर थे, मैंने उनसे बात की थी कि मैं क्या दोबारा से वर्कआउट कर पाऊंगा, तो डॉक्टरों का कहना यही था कि फिलहाल तो आप सही तरह चल लोगे, वही बहुत है। काफ़ी अपने आप में ही एक मंथन सा रहा रहता चलता रहता था, आपस में क्या कर सकते हैं। एक बार जीवन सिर्फ एक ही था कि एक बार जीवन मिला है, ये ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
5: रोहताश पिछले 10 वर्षों से लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो इसके लिए रोजाना कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान देते हैं। रोहताश फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर भी हैं और युवाओं को फिटनेस अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहताश ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 21 जून 2016 को 36.6 किलोग्राम वजन के साथ 1 मिनट में 51 पुशअप्स लगाए। 12 जनवरी 2024 को 37 किलोग्राम वजन के साथ 1 घंटे में 744 पुशअप्स लगाए और 9 नवंबर 2024 को 28 किलोग्राम वजन के साथ 1 घंटे में 721 वन लेग पुशअप्स पूरे किए। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रोहताश अपनी पीठ पर 100 किलो का वजन रखकर प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं।
8: सेल्फ प्रैक्टिस की है और वहां से ये जर्नी बिल्कुल चेंज अपने आप, मतलब माता पिता का और ईश्वर का, भगवान जी का आशीर्वाद था कि जय मैं सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने में कामयाब।
9: डॉक्टर से बात हुई, उस भी जवाब शुरू करने जा रहे थे कि मैं फिर से इस तरफ जा रहा हूँ?
8: हाँ, एक डॉक्टर थे मेरी, उन्होंने से बात हुई थी, मैंने बताई थी मैं 10,000 पुशअप का एक रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये कहते थे, उनको शायद 1,000 सुनी थे, वो कह रहे थे 1,000 पुशअप तो बहुत ज्यादा होती है।
5: सिर्फ 60 मिनट के अंदर 847 पुशअप्स लगातार लगाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में रोहताश चौधरी की ये उपलब्धि बता रही है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और लगातार मेहनत के दम पर असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।
9: आपको भी फिटनेस का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। इनकी जर्नी आपने सुनी, 2 साल तक अस्पताल में बेड पर रहे, डॉक्टर ने कहा चल लोगे इतना ही बहुत है, इन खड़े हुए, जिम गए और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, मैंने आज इनके साथ यहाँ से शुरुआत की है। आप सोचिए कि आपको कहाँ से शुरू करना है, लेकिन शुरू ज़रूर करिए।

आज ने कॉरपोरेट नौकरी की कतार में खड़े होने के बजाय खेती में अवसर तलाशने और मशरूम की खेती को अपना भविष्य बना लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। मशरूम की खेती से बदली कोटा के युवा की तकदीर। राजस्थान के कोटा के रहने वाले यशराज ने साबित कर दिया है कि अगर सोच नई हो और हौसले बुलंद हो तो खेती भी करोड़ों सपनों को पंख दे सकती है। आज उनका एग्री स्टार्टअप सालाना 20 लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है और वो 15 से 20 लोगों को रोजगार भी दे रहा है।

0: डिग्री के बाद नौकरी, यही सपना ज्यादातर युवा देखते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा के एक युवा ने इस सोच को बदल दिया। बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद कोटा के यशराज साहू ने नौकरी की बजाय खेती को अपना करियर बनाया। मशरूम की वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की। शुरुआत में चुनौतियां भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन और सही मार्केटिंग के दम पर उन्होंने रणनीति बनाई और धीरे धीरे उनका स्टार्टअप रफ्तार पकड़ता गया।
1: बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है तो मुझे पढ़ने के दौरान ही आइडिया आया कि एग्रीकल्चर में भी कुछ स्टार्टअप करें, तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और सबसे पहले मैंने मशरूम लगाई। मशरूम के 50 बैग मैंने लगा करके देखे तो उनसे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने 25,000 रुपये की लागत से मैंने 500 बैग से शुरुआत करी। 500 बैग में मुझे 50 से 60 हज़ार का फायदा हुआ। फिर उसके बाद से मैंने धीरे धीरे धीरे मशरूम का काम शुरू किया।
0: कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मिनी ट्रेनिंग ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कृषि प्रशिक्षण में उन्हें मशरूम उत्पादन, डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी तकनीकों को करीब से समझने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने एक अहम बात पर ध्यान दिया कि राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उत्पादन बेहद कम है। यही से उन्हें बाजार की जरूरत और अवसर दोनों दिखाई दिए। उन्होंने तय कर लिया कि नौकरी नहीं बल्कि इसी कमी को अपना कारोबार बनाएंगे। मशरूम का एक कारोबार बढ़ता गया और आज उनका सालाना टर्नओवर करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है।
1: मशरूम की डिमांड भी अच्छी रहती है और न्यूट्रिटिव पावर भी अच्छी है, तो बिकने के भी अच्छे चांस है, प्रॉफिट का भी अच्छा चांस। पहले साल का टर्नओवर की बात करी जाए तो हमारा उस टाइम पे कम था, क्योंकि नया बिजनेस था, पता नहीं के प्रॉफिट होगा भी या ना होगा। तो एजुकेशन के टाइम पे हमने जो मशरूम लगाई थी उससे हमें शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ। और आज के समय जो हम बात करें तो 5 से 6 साल का जो बीच में गैप आया, तो इसमें हमारी इनकम 1 से 1.5 लाख पर मंथ पहुँची है।
0: कभी 50 बैग से शुरू हुआ मशरूम उत्पादन अब एक सफल एग्री स्टार्टअप में बदल चुका है। उनका कारोबार सालाना 20 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल कर रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये ही नहीं बल्कि उन्होंने केवल खुद को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाया बल्कि 15 से 20 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया है। स्टूडेंट लाइफ में मामूली रकम से शुरू हुआ उनका प्रयास आज एक सफल और मुनाफे का बिजनेस का रूप ले चुका है।
1: शुरुआत में जो हमें समस्या आई, तो इसका प्रोडक्शन जो हमने करा, इसकी प्रोसेसिंग कैसे करें, बेचे कैसे, इसको मार्केट में कैसे लाया जाए, इसके क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, इसको फिर धीरे धीरे नॉलेज लेकर के हमने इसके कुछ प्रोडक्ट बनाए, मंडियों में गए, हमने वहाँ पे मशरूम भी बेची। धीरे धीरे करके हम इसकी प्रोसेसिंग में आने लगे, फिर प्रोसेसिंग से आकर के फिर इसके फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाए।
0: आज जब बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, ऐसे समय में यशराज की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है और ये नई सोच की मिसाल है जो बताती है कि खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा रोजगार का अवसर भी बन सकती है। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
2: तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.

0: gracious, great balls of fire.
1: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत का दबदबा, टॉप फाइव में भारत के तीन बल्लेबाज, कोहली रोहित का जलवा कायम, शुभमन गिल नंबर वन के बेहद करीब। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, पांच संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गुप्त नवरात्रों की रौनक, त्रिनैना देवी शक्तिपीठ में आस्था का मेला, श्रद्धालु मां से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। गोरखपुर का पहला सिक्स लेन फ्लाईओवर तैयार, कल सीएम योगी करेंगे लोकार्पण, कुल 430 करोड़ रुपए की आई है लागत। पहाड़ से लेकर मैदान तक जन सैलाब, राजौरी में लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित, गुजरात के वलसाड मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ के जवान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आसमान में दिखाए गए अद्भुत ड्रोन शो का यह वीडियो है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग का यह वीडियो है। इस दावे की पड़ताल भी आगे होगी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: दिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आसमान में चल रहे एक भव्य ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर एक बेहद आकर्षक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई सारे ड्रोन एक साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके रथ भी दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रोन्स ने हिंदी में जय जगन्नाथ, पुरी धाम, रथ यात्रा भी लिखा। इस नजारे को वहाँ मौजूद सैकड़ों लोग अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा में एक शानदार ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। जय जगन्नाथ, उनकी कृपा से सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर बेहद आकर्षक वीडियो वायरल किया जा रहा है और वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाती रंग बिरंगी लाइटों के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल आकृतियां, रथ और कमल का फूल बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे खड़े सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई के लिए सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी मिली कि प्रशासन ने मंदिर परिसर के ऊपर किसी उड़ने वाली चीज को मंजूरी नहीं दी है। रथ यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने 16 से 27 जुलाई तक पुरी शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया है, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में मौजूद भीड़ में जितने भी लोग मोबाइल हाथ में लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सभी के हाथ की स्थिति, मोबाइल का मॉडल और स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हाल ही में वाकई ऐसा ड्रोन शो हुआ होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसके बारे में खबरें छापी होती, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। सर्च के दौरान हमें 10 जुलाई 2026 को एक वेबसाइट प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार पुरी प्रशासन ने 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 16 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक मंदिर के आसपास किसी भी व्यक्ति, संस्था या निजी ऑपरेटर को ड्रोन या मानव रहित विमान उड़ाने की सख्त मनाही है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 11 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुरी जगन्नाथ परिसर को साल 2028 तक रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन को तुरंत हवा में ही निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई ऐसी खामियां नजर आईं जो इसके एआई जनरेटेड होने की पुष्टि करती हैं। उदाहरण के तौर पर वीडियो के नीचे दाईं तरफ ध्यान से देखने पर गूगल के एआई मॉडल जिमिनी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये लोगो ऐसे वीडियो और तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल एआई के जरिए बनाया जाता है। इसके बाद हमने वीडियो को सिंथ आईडी टूल से चेक किया। गूगल एआई से बनी तस्वीरों और वीडियोस को डिटेक्ट करने वाला टूल सिंथ आईडी ने भी यही बताया कि इसे एआई से बनाया गया है। वायरल वीडियो को हमने हाई मॉडरेशन पर भी चेक किया। इस टूल ने 94.3% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। अक्टूबर 2025 से ही डीजीसीए ने जगन्नाथ मंदिर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। क्या इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज क्षेत्र में ईरानी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए चाबहार, तबरीज, बुशहर और बंदर अब्बास के आसपास के क्षेत्रों में लगातार एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी जंग से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिखाई दे रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है और यह हाल फिलहाल का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर हुए मिसाइल अटैक के बाद का ये पूरा मंजर है, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिसाइल अटैक का ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिसाइल अटैक हुआ होता तो फिर आसपास बर्बादी के निशान जरूर देखने को मिलते, लोगों के बीच दहशत का माहौल होता, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सच के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि जेद्दा में तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमला हुआ, जिससे दो स्टोरेज टैंकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक फेसबुक पेज से 25 मार्च 2022 को इसी घटना का दूसरा एंगल का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अनुसार सऊदी अरब के शहर जेड्डा में एक ऑयल डिपो में भीषण आग लगने की खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने माना है कि उन्होंने सऊदी अरब पर कई हमले किए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए। जेड्डा में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। एक YouTube चैनल पर भी 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो को सऊदी अरब के शहर जेड्डा में हुए हमले का बताकर पोस्ट किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो सऊदी अरब के जेड्डा का है, जहां तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमले में आग लग गई थी। इस वीडियो का हालिया जंग से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: आ गया समुद्र में हिंद का नया रक्षक, महाप्रभु के धाम लौटने की तैयारी, पुशअप मैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये मां सर आइजैक न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए मां ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। मां ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे में एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया है और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया है। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है तो वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर टोकरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े की लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देख माँ की जमकर सराहना कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उन माओं को कि अगर उनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं तो वो ये तस्वीरें देखकर सीख लें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई थी जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस आयोजन की धूम पूरी दुनिया के साथ गांवों, कस्बों और गलियों तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए नन्हे बच्चे भी अब पीछे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली है। अब इस मासूमियत से भरी यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की कोशिश दिख रही है जहां उन्होंने महंगी सजावट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो तो बस अपनी ही तरह छोटी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। रथ को खास तरीके और चीजों से बनाया गया है। रथ बनाने के लिए पॉलिथीन और अखबार का इस्तेमाल हुआ है जो अक्सर घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। बच्चों ने इन्हीं चीजों को कुछ इस तरह में लगाया है कि रथ की सुंदरता बढ़ी है, चमकीली और रंगीन सजावट की कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो में नन्हे बलभद्र और सुभद्रा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी मोहल्ले के बस स्टैंड पर बड़े आराम से सड़क की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ देर में स्कूल की बस आने वाली है। किसी ने उसे वहाँ जाने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग दी गई। फिर भी वो हर दिन सही समय पर बस स्टॉप पहुँच जाता है और अपनी नन्ही दोस्त का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आकर वहाँ रुकती है। बस का दरवाजा खुलते ही छोटी बच्ची नीचे उतरती है। अपनी प्यारी दोस्त को देखते ही डॉगी खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुँचता है और उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है और चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये पल उसके लिए कितना खास है। बच्ची भी मुस्कुराते हुए अपने वफादार दोस्त से मिलती है। दोनों का ये खूबसूरत मिलन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्ची अपने वफादार दोस्त से तो मिलती ही है, साथ साथ और भी दो तीन डॉगी से मिलती है और वीडियो के सबसे आखिर में एक डॉगी के बच्चे से भी मिलती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो नन्ही बहनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि बच्चियों के आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई है जबकि दूसरी बच्ची उसके पैरों पर संतुलन बनाते हुए खड़ी नजर आती है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चियां इस पूरे पल को किसी खेल की तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही है। ऊपर खड़ी बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम जमाए हुए है जबकि नीचे लेटी उसकी बहन उसे पूरी तरह सपोर्ट करती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस वीडियो को और भी खास बना देती है। दोनों बहनें अलग अलग अंदाज में बैलेंस बनाती नजर आती हैं। कभी वो अपने हाथों पर संतुलन बनाती हैं, तो कभी पैरों के सहारे एक दूसरे को संभालती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वो उल्टा होकर भी मजेदार करतब दिखाती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा इस वीडियो की सबसे खास बात है। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है। स्केट्स के साथ उसके मूव दर्शकों को खूब भा रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभाल लेती है, फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट्री और असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता कि वो संभली है। लोग उसे उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा मान लेते हैं। लोगों को न सिर्फ उसका टैलेंट पसंद आ रहा है बल्कि उसकी सूझबूझ और कुशलता को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। भाई बहन की मासूम बॉन्डिंग और एक मजेदार पल ने हर किसी को अपने बचपन की याद दिला दी है। वीडियो में एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को मशहूर नर्सरी राइम जॉनी जॉनी यस पापा याद कराने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो बिल्कुल किसी टीचर की तरह धैर्य के साथ भाई को लाइन दर लाइन कविता सिखाती है, लेकिन छोटा भाई हर बार कुछ न कुछ भूल जाता है या गलत बोल देता है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है।
10: जॉनी जॉनी यस पापा बोल।
11: जॉनी जॉनी
12: जॉनी जॉनी यस पापा।
11: यस पापा बोलना तेरे को।
12: क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या?
11: जॉनी जॉनी
12: बोल।
11: यस पापा बोल।
12: यस पापा।
11: ईटिंग शुगर।
12: ईटिंग
11: शुगर ना पापा।
9: वीडियो में बहन बार बार अपने भाई को सही शब्द बोलने के लिए समझाती है, कभी प्यार से तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे दोहराने के लिए कहती है। दूसरी ओर भाई भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मासूम गलतियां देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की ये प्यारी बातचीत लोगों को अपने बचपन और भाई बहन के साथ बिताए ऐसे ही पलों की याद दिला रही है।
11: जॉनी जॉनी यस पापा बोल।
12: जॉनी जॉनी
11: जॉनी जॉनी यस पापा।
12: यस पापा बोलना तेरे को।
11: क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या?
12: जॉनी जॉनी
11: बोल। यस पापा बोल।
12: यस पापा।
11: ईटिंग शुगर।
12: ईटिंग
11: शुगर ना पापा।
12: टेलिंग
11: गाय नो पापा। ओपन ना माउथ बोल। हा हा हा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
13: क्या बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है? क्या बुध की वजह से कान नाक गले में समस्या आ रही है? कौन सी हैं बुध की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आ गया समुद्र का महारक्षक, नौसेना को मिले INS मलबन की ताकत समझिए। पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारी, आस्था के अद्भुत रंग आगे दिखाएंगे। और एक घंटे में 847 पुशअप्स का रिकॉर्ड, पुशअप मैन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: ICC वनडे रैंकिंग में भारत का दबदबा, टॉप 5 में भारत के 3 बल्लेबाज, कोहली रोहित का जलवा कायम, शुभमन गिल नंबर 1 के बेहद करीब। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, CEO की नियुक्ति फिलहाल टली। देश भर में कावड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गोरखपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर तैयार, कल CM योगी करेंगे लोकार्पण, कुल 430 करोड़ रुपए की आई है लागत। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल सैलाब, राजौरी में लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित, गुजरात के वलसाड में मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ के जवान। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले भारतीय नौसेना की करेंगे, जिसके बेड़े में आज एक नया युद्धपोत शामिल हो गया है, जिसका नाम है INS मालवन। ये माही क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जो करीब 80% स्वदेशी तकनीक से बना है। माइन बिछाने में मास्टर और घातक रॉकेट टॉर्पीडो से लैस ये नया युद्धपोत पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। INS मालवन में के शामिल होने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

समुद्र में इसका वार अचूक है, इसकी ताकत का कोई सानी नहीं है। आकार में भले ही ये बड़ा न हो, लेकिन इसकी हथियार प्रणाली इसे बेहद घातक बनाती है। नाम है INS मालवन।

0: जिसे आज नौसेना की बेड़े में शामिल किया गया है। इस नए नवेले युद्धपोत की कमिश्निंग सेरेमनी कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे पर हुई। कमिश्निंग सेरेमनी में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद रहे।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरिड आर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आर आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: हिंद महासागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए हाल के कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े की मजबूती के लिए एक के बाद एक कई आधुनिक और घातक युद्धपोत शामिल किए हैं। इस लिस्ट में अब आईएनएस मालवन का नाम शामिल हो गया है, जो माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इस क्लास की युद्धपोतों को खास तौर पर समुद्र के उथले इलाकों में छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। आईएनएस मालवन में फुर्ती, सटीकता और लंबे समय तक समुद्र में रहने जैसी क्षमताएं हैं। यही खूबियां इसे समुद्र में दुश्मन के खिलाफ बेहद घातक बनाती है।
2: इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले चार हफ्तों में ये पांचवा शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके तीन अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था और अभी कुछ दिन पहले आईएनएस महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया आईएनएस मालवन।
0: इस युद्धपोत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, जिसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत का प्रतीक है और इसका प्रतीक चिन्ह वाघ नख है। भारतीय नौसेना ने बताया कि ये प्रतीक चिन्ह केवल एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वीरता, रणनीतिक कौशल, सतर्कता और आक्रामकता क्षमता को दर्शाता है।
3: Brazenly flaunting the Wagner.
0: नौसेना के मुताबिक इस क्लास की युद्धपोत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे।
4: आईएनएस मालवन के आने से भारत की नौसेना में ताकत में काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि ये पनडुब्बियों का किलर कह सकते हैं, पनडुब्बियों को शिकारी कह सकते हैं। और जिस प्रकार से आज का युद्ध है कि जब कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, उधर से बांग्लादेश सिर उठा रहा है और भारत की समुद्री सीमा जिसको कि नेवी गार्ड करती है वो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने गार्ड करना है, ऐसे में जरूरी है कि हमारी ताकत बढ़ती रहे। भारत की नेवी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ गई है। देखा जाए तो इस साल का 8वां प्लेटफॉर्म है और अगले कुछ महीनों में 12 प्लेटफॉर्म और बनने हैं, 51 से ज़्यादा नेवी के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं और उम्मीद है कि 2030 तक 150 से 160 प्लेटफॉर्म नेवी को सौंपे जाएंगे।
0: नेवी के इस नए सूरमा की एक खूबी यह भी है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, क्योंकि इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके हथियारों की बात करें तो दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इसमें RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पेडो लॉन्चर्स लगे हैं। वहीं यह समुद्र में गुप्त रूप से बारूदी सुरंग बिछाने की महारत रखता है। साथ ही एक 30mm क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 12.7mm की रिमोट कंट्रोल गन्स लगी है। इसके अलावा इसमें देश में ही विकसित अभय सोनार और लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगा है, जो पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ लेता है।
4: ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बियों के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है। तो कई तरह से ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, सबमरीन में के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम है।
0: हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए INS मालवन का नौसेना में आना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसकी बदौलत न सिर्फ देश की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा और मजबूत होगी बल्कि अवैध भी होगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियों की, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद अब बहुड़ा यात्रा की तैयारी की जा रही है। इससे जुड़े अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है, रथों की जांच के साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई जा चुकी है। अब इंतजार बस उस पल का है जब महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर से अपने घर यानी श्री मंदिर के लिए रवाना होंगे। 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी और इससे पहले पुरी में हर दिन परंपराओं का दौर भी जारी है, लेकिन इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक है। गुंडीचा मंदिर में भक्त महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो जगन्नाथ धाम में पूजा पाठ जारी है।

0: आस्था, भक्ति और अपार उल्लास का ये पावन सैलाब जो सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में ही देखने को मिलता है। पुरी की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ अटूट श्रद्धा और आस्था की झलक देखने को मिल रही है। ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए लोग पूरे साल तक इंतजार करते हैं। यहाँ न कोई छोटा दिखता है न बड़ा, सबके मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु की एक झलक और उनके रथ की रस्सी को छूने का सौभाग्य। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही वाद्य यंत्रों की धुन और जय जगन्नाथ के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय है। गुंडीचा मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा है। लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ ही उनके रथों का दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
1: मैं पहली बार दर्शन करने आई हूं जगन्नाथपुरी में और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ में इतने अच्छे से दर्शन हो पाएगा, बट जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और मैं बहुत खुश हूँ।
2: यहाँ मुझे आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति और सुकून मिला है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के प्रशासनिक जो भी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और जो मंदिर के लोग है वो भी काफी कोऑपरेटिव है, अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ के जो लोकल भी है वो भी बहुत अच्छे से ये करते हैं।
0: मान्यता है कि रथों का स्पर्श और दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से आए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर केवल एक बार अपने प्रभु को निहार लेना चाहते हैं। फिलहाल महाप्रभु भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान हैं, जहां अडापा मंडप में अपने पालनहार को बेहद करीब से देखने का मौका भला कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन अब समय महाप्रभु की वापसी का है, वो पल जब भगवान अपने घर यानी श्री मंदिर में वापसी करेंगे। 9 दिनों तक मौसी के घर ठहरने के बाद जब महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ वापस श्री मंदिर के लिए रवाना होंगे तो उस भव्य और दिव्य यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। दरअसल उड़िया भाषा में बहुड़ा का मतलब ही होता है वापसी, इसीलिए इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है। इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे। वापसी के दौरान देवताओं का रथ मौसी माँ मंदिर के पास रुकता है। भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
3: महाप्रभु की पवित्र आज्ञा माला पाने के बाद आज दक्षिण मोड़ नीति प्रारंभ हो गया है। दक्षिण मोड़ नीति में सारे हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सभी आज मिलके अभी रथ को खींच के अपने सरदावाली में जहाँ पे स्थान है वहाँ पे सब रथ को ले आएंगे और इस प्रक्रिया में भी सारा अरेंजमेंट किया गया है और बाहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट सभी लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है।
0: बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिन रथों में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। उन रथों को एक बार फिर जांचा और परखा जा रहा है ताकि गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए।
4: देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया होगा, कुछ कील वील निकल गया हो तो उसको चेकिंग करते हैं और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोरा कुछ कील वील निकल गया था, उसको हम चेकिंग कर लेंगे।
0: जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर से बाहर खड़े अपने रथ में सवार होकर श्री मंदिर वापस लौटते हैं तो उससे पहले एक अहम रस्म निभाई जाती है। रथ यात्रा के सातवें दिन तीनों रथों को दक्षिण मोड़ दिया जाता है, मतलब ये कि तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार से हटाकर दक्षिण दिशा में नक्षणा द्वार तक लाया जाता है और नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन तीनों रथों को वापसी के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया।
5: रथ दक्षिण मोड़ बोला जाता है और एक अहम प्रक्रिया है जिसमें रथ को दोबारा से मोड़ के गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार से नक्षणा द्वार में जाके उसकी स्थापना की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं। उसके साथ हमारे जो रथ के जो भोई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं और सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जाहिर है महाप्रभु की रथ यात्रा जितनी भव्य होती है उतनी ही दिव्य उनकी बहुड़ा यात्रा भी होती है, जिसको लेकर गुंडीचा मंदिर में तैयारियां जारी हैं। भले ही महाप्रभु की श्री मंदिर में वापसी की बेला आ गई हो, लेकिन इस दौरान हुई हेरा पंचमी की रस्म में भव्य का उत्सव देखने को मिला। माँ लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया। आगामी 24 जुलाई को महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर से वापस अपने निवास श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुड़ा यात्रा के इस ऐतिहासिक दिन फिर से वही नजारा होगा। लाखों हाथ विशाल रस्सियों को खींचेंगे और बड़ा डांड फिर से भक्ति के महासागर में तब्दील हो जाएगा। तो जिस किसी ने छेरा पेहरा की रस्म के साथ श्री मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा में भगवान के दर्शन नहीं किए, उसके लिए 24 जुलाई को होने वाली बहुड़ा यात्रा अपने आराध्य की एक झलक पाने, उनके दर्शन करने का एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के पुशअप मैन की, रोहतास चौधरी के विश्व रिकॉर्ड की, जिन्होंने अपना और देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। रोहतास ने अपनी पीठ पर 27 किलो से ज्यादा वजन रखकर एक घंटे में 847 पुशअप कर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। हालांकि रोहतास ने यह रिकॉर्ड पिछले साल नवंबर में बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। रोहतास का ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस रिकॉर्ड को भारतीय सेना को समर्पित किया है। वैसे रोहतास के नाम ये अकेला रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले भी वो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और देश का नाम रोशन कर चुके हैं।

0: पीठ पर भारी भरकम 27 किलो से ज्यादा का वजन, 847 पुशअप्स और सिर्फ 60 मिनट का समय, ये कोई आम बात नहीं बल्कि इंसान की ताकत और जुनून की वो इंतहा है जिसने इतिहास रच डाला है। ये वो चमत्कार है जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। ये फौलादी इरादों का वो जुनून है जिसके बल पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया इतिहास दर्ज हो गया। जरा सोचिए, एक घंटे तक लगातार पीठ पर 27 किलो का बोझ उठाकर पुशअप्स लगाना क्या आसान है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत के एक जाबाज ने इस असंभव से दिखने वाले कारनामे को न सिर्फ संभव बनाया है बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पन्नों पर भारत का नाम एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है।
1: नया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से आपके नाम आया है, 27 किलो 200 ग्राम।
2: मिडल इसका रिकॉर्ड था 27 केजी 600 ग्राम के साथ में, 820 पुशअप का रिकॉर्ड था, मैंने 28 केजी लिया था और 844 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था।
1: ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है,
2: ये मैंने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ में नेहरू स्टेडियम में रिकॉर्ड ब्रेक किया था।
0: मिलिए दिल्ली के रहने वाले और पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहताश चौधरी से, जिन्होंने इस अनोखे और हैरान कर देने वाले कारनामे को अंजाम दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रोहताश चौधरी ने इस तरह का कारनामा किया हो। इससे पहले भी रोहताश अलग अलग रिकॉर्ड बना और तोड़ चुके हैं। सही कहें तो ये अब रोहताश की एक आदत सी बन गई है। जून 2016 में रोहताश ने 36.6 किलो वजन के साथ एक मिनट में 51 पुशअप्स किए और इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा। जनवरी 2024 में उन्होंने 37 किलो वजन के साथ एक घंटे में 744 पुशअप्स किए और स्पेन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। नवंबर 2024 में रोहताश ने 28 किलो वजन के साथ एक घंटे में 721 वन लेग पुशअप्स कर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने 27.6 किलो के साथ एक घंटे में 847 पुशअप्स की और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। हालांकि ये रिकॉर्ड अब जाकर आधिकारिक रूप से गिनीज बुक में दर्ज हुआ है।
1: अभी जो रिकॉर्ड बनाया हमने वो 27.5 केजी का,
2: 27.5 केजी के साथ में मिडल इसका रिकॉर्ड था, 820 पुशअप का रिकॉर्ड था, मैंने 28 केजी लिया, 600 ग्राम वेट फालतू लिया था और जो 820 पुशअप का रिकॉर्ड था एक घंटे में वो 847 पुशअप कर वो ब्रेक किया मैंने। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिकॉर्ड मैंने भारतीय सेनाओं को समर्पित किया अपना रिकॉर्ड।
0: रोहताश के इस विश्व रिकॉर्ड की चमक के पीछे सालों की तपस्या, दर्द और अटूट संघर्ष की दास्तान छिपी है। एक वक्त ऐसा भी था जब रोहताश एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हालात इतने गंभीर थे कि वो करीब 2 सालों तक तो सामान्य रूप से चल फिर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। रोहताश ने भी ऐसा ही किया। पिछले 10 सालों से वो रोजाना घंटों कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी डाइट पर सख्त ध्यान देते हैं और मानसिक मजबूती के लिए ध्यान भी लगाते हैं।
1: कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन बात सिर्फ पुशअप की नहीं है। पुशअप तक पहुंचने के लिए ओवरऑल आपको फिट रहना पड़ता है, कई तरह की हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी रोहताश जी प्लैंक करने जा रहे हैं और वेट रखा है, आप देख रहे हैं 20-20 केजी की 5 प्लेट हैं, यानी कि 100 किलो। कितनी हार्ड ट्रेनिंग आप खुद को देते हैं?
2: डेली का मेरा चार घंटे का वर्कआउट रहता है। चार घंटे का डेली वर्कआउट होता है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे मैं जिम में आ जाता हूँ और 5 बजे से मेरा 9 बजे तक, 10 बजे तक वर्कआउट रहता है।
0: देखने और सुनने में ये भले ही आसान लगता हो लेकिन ये कितना मुश्किल है इसकी हकीकत तब पता चलती है जब कोई शख्स उसे खुद करता है। हमारे संवाददाता ने भी रोहताश के साथ कमर पर वजन रखकर पुशअप्स की।
1: रोहताश भाई ने इंग्लैंड, स्पेन, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है पुशअप मारने में, उस पर भी पीठ पर वजन रख कर। लेकिन आज मैं भी इनके साथ ट्राई करने जा रहा हूँ। जब ऐसे किसी महारथी से मिला हूँ तो मैं खुद को एक चैलेंज देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि मैं रोहताश भाई के साथ कितने पुशअप मार सकता हूँ। और इससे पहले मैंने कभी भी खुद पर वेट रख के पुशअप नहीं मारे हैं, लेकिन आज ट्राई करते हैं कि रोहताश भाई आप कितना का वेट रख रहे हो?
2: 20 केजी।
1: 20 केजी का वेट वो रख रहे हैं, 10 का मैं रख लेता हूँ।
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इज्जत वाली बात नहीं है, जज्बा बहुत है, भले ही ताकत हो चाहे ना हो, चेक करते हैं, चलिए।

0: सड़क हादसे से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के मंच तक का ये सफर साबित करता है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके अटूट संकल्प में छिपी होती है। रोहताश ने न सिर्फ दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि भारत का परचम भी पूरी दुनिया में लहराया है।
1: 2 साल तक अस्पताल में बेड पर रहे, डॉक्टर ने कहा चल लोगे इतना ही।

0: आप सोचिए कि आपको कहाँ से शुरू करना है, लेकिन शुरू जरूर करिए। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: क्या बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है? क्या बुध की वजह से कान नाक गले में समस्या आ रही है? कौन सी हैं बुध की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे।

0: बात करेंगे कि बुध ग्रह कौन सी बीमारियां देता है और उन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 7:03 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:01 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बुध ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है और किस तरह की बीमारियां देता है। देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का स्वामी है और ये ज्ञानेंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन्स से और संचार तंत्र कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, त्वचा है, जबान है, कान, नाक, आंख है, इनसे बुध का सीधा संबंध है। बुध जो है ये चीजों को समझने की शक्ति देता है कि आप चीजों को कैसे और कितना समझ पाएंगे। आपके शरीर में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है कान, नाक और गले से। बुध का इसके साथ सीधा संबंध है। साथ ही साथ बुध आपके मस्तिष्क के तंत्र को यानी ब्रेन को सीधा प्रभावित करता है और बुध का संबंध आपकी त्वचा से, आपकी स्किन से भी होता है। तो मुख्यतः बुध कान, नाक, गला, त्वचा, ब्रेन, इन सब चीजों से ज्यादा संबंध रखता है, आपकी बुद्धि को शार्प बनाता है और चीजों को समझने की शक्ति आपको बुध प्रदान करता है। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको पहले बताया कि आपके शरीर का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कान, नाक और गला है, अगर बुध इसमें समस्या दे रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कुंडली में बुध खराब हो गया तो संचार तंत्र की, कम्युनिकेशन जो शरीर में होता है, सुनना और बोलना, इससे संबंधित समस्या हो सकती है। और बुध के खराब होने पर सुनने की या सूंघने की समस्या भी हो सकती है। बुध अगर ज्यादा खराब हो जाए तो बोलने की समस्या भी हो जाती है। बुध खराब हो तो बच्चे बचपन में देर से बोलते हैं या नहीं बोल पाते या स्पष्ट अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बुध अगर कमजोर हो तो मामला इतना जटिल नहीं होता, कुछ समय बाद ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। कान, नाक, गले की समस्या आम तौर पर उम्र बढ़ने पर ज्यादा होती है, क्योंकि बुध युवावस्था का स्वामी है और 60s के बाद कान में दिक्कत होना, नाक में या बोलने में दिक्कत होना, ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुध का उतना सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी समस्या होने पर प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। अगर नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो फायदा होगा। संगीत सुनने से और मंत्र जप करने से भी लाभ होगा। अगर कान पूरी तरह से खराब नहीं है तो संगीत सुनने से भी फायदा होगा, और अगर वाणी में दिक्कत आ रही है तो मंत्र जप से भी आपको लाभ होगा। कान, नाक, गले की समस्या होने पर सलाह लेकर एक पेरीडॉट पहनना चाहिए। थोड़ा बड़ा पेरीडॉट 8-9 रत्ती का या तो लॉकेट में या अंगूठी में बनवाकर धारण करें। कान, नाक, गले की समस्या के मामले में पेरीडॉट पहनने से बहुत लाभ होता है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी त्वचा, और बुध आपके स्किन को, आपकी त्वचा को नियंत्रित करता है। बुध अगर त्वचा की समस्या दे तो क्या होगा, क्या उपाय करें? देखिए, बुध की त्वचा अगर समस्या दे, बुध अगर यहां समस्या पैदा करे तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जो लोग उम्र के पहले आपको थोड़े बुजुर्ग दिखते हैं, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, वहां बुध कमजोर होता है। कभी कभी त्वचा रूखी हो जाती है और खराब भी हो जाती है। त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं। बुध अगर गड़बड़ होगा तो त्वचा की छोटी छोटी समस्याएं निरंतर लगी रहेंगी, और बुध की त्वचा की समस्या में छोटी छोटी झाइयां, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, ये आपके स्किन पर आ सकती है। अगर बुध की वजह से त्वचा में समस्या है तो क्या करेंगे? ऐसे में अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। सौंदर्य प्रसाधन का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करें, और अगर त्वचा की समस्या कंट्रोल में ना आ रही हो तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के अगर बुध त्वचा की समस्या दे रहा है तो उगते सूर्य की रोशनी, खान पान और पन्ना, इसका प्रयोग करने से आपके त्वचा की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बुध आपके ब्रेन का भी स्वामी है, इसीलिए बुध ब्रेन से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे सकता है। कैसे? आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे आपका दिमाग काम करता है, बुध ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्वामी है। ये दिमाग को ठीक से काम करने में मदद करता है। बुध अगर कमजोर होगा तो आप चीजें भूलेंगे, आपको याददाश्त की समस्या परेशान करेगी। और बुध अगर खराब हो तो अल्जाइमर की समस्या, चीजों को भूल जाना, इसकी समस्या हो सकती है। पार्किंसंस, जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैरों में कंपन की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में अगर याददाश्त या ब्रेन की कोई दिक्कत आ रही है तो प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना लाभकारी होता है। साथ ही साथ हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सलाह लेकर एक पन्ना या एक नीलम अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको बुध से संबंधित स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है, बुध आपके लिए मारक है या आपके सेहत को बिगाड़ रहा है, तो रोज सवेरे एक बार अगर आप नारायण कवच का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर घर का काफी पैसा बीमारियों में खर्च होता हो, ज्यादातर पैसा रोग में, इलाज में खर्च होता हो, तो क्या करेंगे? घर का जो मुखिया है वो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएगा और हर अमावस्या को उनको खाने पीने की वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: क्या बुध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप तनिष्का और प्राची ने रचा इतिहास, मेन ड्रॉ के लिए किया क्वालिफाई, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी। आईसीसी वन डे रैंकिंग में भारत का दबदबा, टॉप फाइव में भारत के तीन बल्लेबाज, कोहली रोहित का जलवा कायम, शुभमन गिल नंबर एक के बेहद करीब। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, पांच संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली।

0: देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार। 30 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल सैलाब। रजौरी में लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। गुजरात के वलसाड में मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ के जवान। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बारिश और कीचड़ में नंगे पांव चलकर गुरु पूर्णिमा से पहले वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे विराट और अनुष्का की भी है।
1: क्रिकेटर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में गुरु पूर्णिमा से पहले संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। दोनों आज सुबह महाराज जी के नए आश्रम यमुना विहार कुंज पहुंचे। चेहरे पर मास्क लगाकर नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ था। विराट अनुष्का का हाथ थाम कर कीचड़ में चलते नजर आए। प्रेमानंद जी के शिष्यों ने उनकी अगवानी की। दोनों करीब एक घंटे तक आश्रम में रहे। बाहर आए तो विराट के माथे पर चंदन का टीका और हाथ में प्रसाद था। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर में बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। आज मंदिर में तीनों रथों का अनुष्ठान किया गया और तालध्वज और नंदी घोष रथों को दक्षिण की तरफ मोड़ा गया। पूरी बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर गुंडीचा मंदिर से मुख्य श्री मंदिर की वापसी यात्रा है जो 24 जुलाई को आयोजित होगी। ये पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन उत्सव है जिसमें तीनों दिव्य रथों को भक्त खींच कर वापस ले जाते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। देर रात पहाड़ी टूटने के चलते बंद पड़े केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को आने जाने के लिए दुरुस्त कर लिया गया। मजदूरों और सुरक्षा जवानों ने कड़ी मशक्कत करके यात्रा मार्ग से बोल्डर हटाए। रास्ता ठीक होने के बाद सोनप्रयाग व गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान लैंडस्लाइड वाली जगह पर तैनात किए गए। राजस्थान के अजमेर में एक भक्त ने अनूठी भक्ति दिखाई। अजमेर के ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर में एक श्रद्धालु ने अपनी मुराद पूरी होने पर भक्ति भाव से 6.25 तोले के वजन का सोने का छत्र अर्पित किया जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर यह ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। ये प्राचीन मंदिर लगभग 1140 साल पुराना बताया जाता है। ये चौहान वंश के शासकों की आराध्य स्थली रहा है। यहाँ माता चामुंडा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में मॉनसून के बीच भी ट्रैकिंग का रोमांच चरम पर है। भारी बारिश के बावजूद इस साल उच्च हिमालय ट्रैकों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। खासकर गुप्तखाल ट्रैक जो कि लगभग 5000 मीटर यानी करीब 16400 फीट ऊंचा है और नीति घाटी को माणा घाटी से जोड़ता है, इन दिनों ट्रैकिंग प्रेमियों की पहली पसंद बना हुआ है। देश के कई राज्यों से प्रकृति प्रेमी और ट्रैकर्स यहां पहुंच रहे हैं। इन दिनों यहां का बदलता मौसम और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
0: न्यूज पथ में बात अब कांवड़ यात्रा की जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से होगी और इसका समापन 11 अगस्त को शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ होगा। इस कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। साथ ही इस वर्ष सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं ताकि इस दौरान किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। खास करके डीजे और गानों के साथ ही शिविरों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी और उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने पर शासन प्रशासन का पूरा जोर नजर आ रहा है।

0: भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह सावन, जिसमें आस्था के दिव्य रंग देखने को मिलते हैं। इस बार 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा में सड़कें एक बार फिर से भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठेंगी। धार्मिक, सांस्कृतिक, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का ये जीवंत उत्सव हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ मेले की तैयारी चल रही है। शासन प्रशासन के स्तर पर जगह जगह श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें हो रही हैं, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। यूपी में कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्से से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर से होकर गुजरती है। हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगा जल लेकर कांवड़िए भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए जाते हैं। इस दौरान तेज आवाज में बजने वाले बड़े बड़े डीजे भी देखने को मिलते हैं। इस बार यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और गानों को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। इसीलिए इस बार डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट तय की गई है। समय सीमा से अधिक ऊंचे डीजे वाहनों को यूपी की सीमा में एंट्री की अनुमति नहीं। साथ ही अश्लील या भड़काऊ गानों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। सहारनपुर जैसे जिलों में डीजे संचालकों को गानों की पेन ड्राइव पहले ही थाने में जमा करनी होगी। पुलिस की जांच के बाद भजनों या गानों की अनुमति दी जाएगी। साउंड की भी अधिकतम सीमा 75 डेसिबल तय की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे सीज करने और संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
1: हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, गावड़ की हाइट, गावड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है उसके बारे में इस साल भी लागू रहेगा। जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनको उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। 6 स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की ये जो मीटिंग हुई, इसमें उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के अधिकारी इसमें शामिल हुए।
2: जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छी रहे, आते हैं वो सफल हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहे, सफाई हो, सुरक्षा हो, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो और यात्रा पूरी अच्छी तरह से भरी प्रकार से संपन्न हो। और जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि हुए, कैसे हुए, क्या सावधानियां हमें और बरतनी है। मुझे आशा है कि आगे हमारी जो यात्रा और ये आयोजन है,
0: साफ है कि शासन प्रशासन का पूरा फोकस कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के संपन्न करवाने पर है। इसी को लेकर मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सहारनपुर में DM और SSP ने DJ संचालकों और शिविर आयोजकों के साथ संबंध में बैठक की, जिसमें सहारनपुर के साथ हरियाणा के यमुनानगर और करनाल समेत आसपास के जिलों से आए DJ संचालक और कांवड़ शिविर आयोजकों ने हिस्सा लिया, जिसमें अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों की उन्हें जानकारी दी। बैठक में कांवड़ शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक शिविर सड़क से कम 25 मीटर की दूरी पर लगाने होंगे। कांवड़ रखने के लिए मजबूत लोहे, बांस या बल्लियों का इस्तेमाल करना होगा। हर शिविर में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा रसोई वाले इलाके में CCTV कैमरे लगाने होंगे। साथ ही फायर सेफ्टी, प्राथमिक उपचार किट, शौचालय, विश्राम और पेयजल जैसी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली कनेक्शन सिर्फ बिजली विभाग से ही लेना होगा, यानी किसी भी स्थिति में बिजली के खंभों से अवैध तरह से कनेक्शन नहीं जोड़ा जाए। बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर के नीचे शिविर नहीं लगाए जाएंगे। भोजन और नाश्ते की पूरी तरह शाकाहारी व्यवस्था रखनी होगी, जिसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। बैठक में DJ की ऊंचाई, रूट, सुरक्षा और गानों को लेकर सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और सभी से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई।
3: पुलिस लाइन में बहुत ही बृहद बैठक हुई है, खास करके इसमें यमुनानगर के लोग, करनाल के लोग और सहारनपुर के जो लोग हैं, जो शिविर लगाते हैं, जो उस समय DJ लेकर चलते हैं, चाहे DJ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके साथ बैठक हुई है और उनको जो शासन के निर्देश से बताया गया है कि उसका पालन करेंगे। हम लोग सभी सुविधाएं, जो लॉजिस्टिक की सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी की सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको ये निर्देश दिया गया। उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो DJ की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा जो DJ में बचेगा उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द खराब हो और किसी व्यक्ति को की जो भावना है वो आहत हो।
0: इन सब के अलावा बैठक में बाइक को मॉडिफाई करने और बिना साइलेंसर के चलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी के अलावा उत्तराखंड में कांवर मेले को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने आने वाले कांवड़ियों का राज्य में स्वागत की भी बात कही। साथ ही उन्होंने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि ना श्रद्धालुओं को और ना ही स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी हो और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो।
4: पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, हाथों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। ये इत्यादि चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें, सभी जनप्रतिनिधि की, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न होगी, उसके निमित्त की भी अच्छी तैयारियां हुई है और आगे के दिनों में जो भी काम हुए हैं, सड़क मार्ग है, यात्रा डाइवर्जन है, उन पर विधिवत तरीके से काम करें। स्थानीय लोग हैं उनको भी जो है कोई परेशानी ना हो, उसके निमित्त भी जो है प्लान बनाया जा रहा है।
0: कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर टिहरी गढ़वाल की डीएम नितिका खंडेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं, जिसमें अधिकारियों को पार्किंग, पेयजल, बिजली, शौचालय, सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
5: यूपीसीएल को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बारिश का समय है और जिनके पोल्स होते हैं उसको इंसुलेट करें ताकि किसी को भी करंट से कोई शिकायत ना आए। पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित कर दिया है कि जहाँ जहाँ इनको व्यू कटर्स लगाने हैं, जहाँ जहाँ इनको रोड ठीक करनी है वो कर दें। जो मेजरली हमारी पार्किंग्स है चंद्रभागा और खारसरो, उसके अस्थायी ठेके जो है वो इन्होंने अवगत कराए कि वो हो गए हैं और उसमें भी जल्दी बिजली और पानी और शौचालय की व्यवस्था कर ली जाएगी।
6: पूरा जो कांवड़ मेला क्षेत्र है वो हमारा 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स में विभाजित रहता है। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है। जो सुपर जोन है उसमें प्रभारी जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी रहते हैं, तो इसमें हमारे को जो जो अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसके लिए आईजी रेंज सर को हमने पत्र प्रेषित किया गया है। हमने पर्याप्त संख्या में इसमें पीएसी बल भी हमारे जोन्स में तैनात रहेगा। मुख्यतः जो हमारा रहता है वो ढालवाला की तरफ से हमारा ट्रैफिक कांवड़ियों का जो है इनकमिंग रहता है, ये मुख्य जनरली नीलकंठ की ओर जाते हैं और इनका वापसी जो है वो वन वे बराज से इनकी वापसी रहती है, तो उस संदर्भ में ट्रैफिक प्लान जो है वो पहले से लागू कर दिया जाएगा।
0: यूपी और उत्तराखंड के अलावा झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
7: लाख श्रद्धालु आएंगे, प्रतिदिन उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, खान पीन सब पे विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया जिला प्रशासन से, हमारी टीम से। और एक साल के बाद इस साल हम लोग कष्ट करेंगे, कोई दुर्घटना ना हो, हमने निर्देश भी दिया है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, एकदम कोई दिक्कतें नहीं आने दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ।
0: श्रावणी मेले को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही पर मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त चेतावनी भी जारी की है। मेरठ से उस्मान चौधरी, सहारनपुर से राहुल कुमार, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: दुनिया की QS बेस्ट टूरिंग सिटीज 2027 रैंकिंग में चमके दिल्ली और मुंबई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2027 रैंकिंग में भारत के दो महानगरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई देश की सबसे बेहतर स्टूडेंट सिटी बन गई है, जबकि दिल्ली ने पहली बार दुनिया के टॉप 100 में जगह बनाने के साथ ही छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर होने का खिताब हासिल किया है। मुंबई ने 7 स्थान छलांग लगाते हुए 98 स्थान से 91 स्थान पर पहुँच कर भारत की सबसे ऊँची रैंक वाली स्टूडेंट सिटी बनने का गौरव हासिल किया है। दिल्ली को एम्प्लॉयर एक्टिविटी में भी दुनिया में 29वां स्थान हासिल हुआ है, जिससे साफ होता है कि यहाँ पढ़ाई के बाद रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। दिल्ली का कुल स्कोर 60.3 रहा। डायमंड सिटी सूरत की डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने स्पेस के लिए एक नया इतिहास रच दिया। भारत के विक्रम मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए विक्रम 1 रॉकेट के साथ सूरत की प्रसिद्ध कंपनी नित्या जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड की तैयार की गई एक विशेष लैब ग्रोन डायमंड लोटस ज्वेलरी को स्पेस भेजा गया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि डायमंड ज्वेलरी स्पेस में भेजी गई है। स्पेस भेजी गई ज्वेलरी आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम है, जिसमें 18 कैरेट येलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 16.16 कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड लगे हैं। केरल सरकार ने रैगिंग की शिकायतों को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इस मोबाइल ऐप का नाम सिद्धार्थन डिस्ट्रेस ऐप रखा गया है। सरकार ने रैगिंग के खिलाफ कानून लागू करने की भी घोषणा की है, जिसका नाम J.S. सिद्धार्थन के नाम से होगा। सिद्धार्थन एक वेटनरी स्टूडेंट था जिसने 2024 में रैगिंग की वजह से खुदकुशी कर ली थी। सरकार के इस कदम का मकसद संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा में सुधार करना और रैगिंग के खिलाफ सख्ती करना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ के दरबार में एक बार फिर से आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ से आए एक श्रद्धालु परिवार ने श्री सांवलिया सेठ को 11 किलो 400 ग्राम वजनी चांदी की 19 छोटी छोटी सिल्लियां भेंट की हैं। वर्तमान बाजार मूल्य के मुताबिक इनकी कीमत 26 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही। श्रद्धालु परिवार ने सबसे पहले भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन कर चांदी की सिल्लियां ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की। इसके बाद मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में पहुंचकर विधिवत भेंट जमा कराई और उसकी रसीद प्राप्त की। मंदिर मंडल की ओर से परिवार का उपराना उढ़ाकर सम्मान किया गया और श्री सावलिया सेठ की छवि के साथ प्रसाद भी भेंट किया गया।
8: न्यूज वक्त में अब बात समंदर के नए सूरमा की, जिसे आज नौसेना में शामिल कर लिया गया है। नाम है INS मालवा, जो कि देश की समुद्री सुरक्षा की नई ताकत है। खास बात यह है कि इसे 80% स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। माहे क्लास का दूसरा जहाज है ये विशेष रूप से उथले पानी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर नष्ट करने में सक्षम है। चुपके से हमला करने की अपनी क्षमता की वजह से ये दुश्मन के लिए बड़ा खतरा साबित होगा।
10: जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्ध पोत INS मालवण।

0: समंदर में और बढ़ी भारत की ताकत। INS मालवन अब उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट का दूसरा युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। इस खास मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। उन्होंने INS मालवन के कमीशन को लेकर अपनी खुशी जताई।
1: अनदर वॉरशिप टू इंडियन नेवी, द सेवंथ इन दिस ईयर, सेवंथ मंथ एंड सेवंथ वॉरशिप, एंड वी हैव 12 मोर टू गो। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट इंडियन नेवी इज ग्रोइंग एट द पेस दैट दे वांट टू ग्रो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट with 80% indigenous content in this warship, this Atmanirbhar Bharat, जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था।
0: INS मालवन में 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, जो रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक शानदार उदाहरण है। पश्चिमी नौसेना के कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय बात्सायन ने INS मालवन को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के अवसर पर इसे भारत की समुद्री यात्रा में एक और अहम मील का पत्थर करार दिया।
2: Growing strategic importance of the maritime domain and the Indian Ocean region. As India's maritime interests expand, the Indian Navy remains committed to safeguarding national interests, ensuring freedom of navigation and promoting regional stability.
0: खास बात यह है कि INS मालवन कारवार नौसेना बेस पर कमीशन किया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना युद्धपोत है। ये समंदर का वो महाबली है जो पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की ताकत रखता है। माइन बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नाबाक चाल को नेस्त नाबूद कर सकता है। करीब 80 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़े इस युद्धपोत का वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वाटर जेट सिस्टम से चलता है, जिससे जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लेस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये बगैर रुके 14 दिनों तक लगातार समंदर में तैनात रह सकता है।
3: शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपनी ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: वाटर जेट तकनीक के इस्तेमाल की वजह से INS मालवन बिना शोर किए दुश्मन के पास पहुंच सकता है। RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के अंदर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेट से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स यानी ALWT से लैस है, जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। INS मालवन समंदर में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है, जो हवाई और सतही खतरों से निपटती है।
3: भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडरवाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे एक साइलेंट हंटर की जरूरत थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वारों और द्वीपों के पास तैनात रह सके। इस युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है। ये जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। INS मालवन के निशान में बाघ नखा यानी शेर के पंजे का चित्र है जो बहादुरी, युद्ध की रणनीति, फुर्ती और हिम्मत का प्रतीक है। और इसका आदर्श वाक्य साइलेंट क्लॉज, घातक क्षमता, चुपके से काम करने और दुश्मन पर तेजी से हमला करने की काबिलियत को दिखाता है। INS मालवन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता और मजबूत हुई है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
5: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 22 जुलाई बुधवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 715 अंकों की गिरावट के साथ 76,755 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला NSE निफ्टी 191 अंकों की गिरावट के साथ 23,996 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में फिर से मजबूती देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,600 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई। एक किलो चांदी की कीमत 22 जुलाई को 8,500 रुपए बढ़कर 2,30,000 रुपए तक पहुंच गई। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बीच 22 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 34 पैसे कमजोर होकर 96.59 के स्तर पर बंद हुआ।
4: भारी बारिश और खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित है, लेकिन कटरा में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड

0: व्यवस्था के लिए और रहने के लिए भी डोरमेट इन्होंने फ्री सुविधा कर रखी है। जब तक यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से चाय, नाश्ता, पानी और डोरमेट्री के लिए व्यवस्था दे रखी है। हम
1: यहाँ पे आया हुआ 4 रोज हो गया, यहाँ का व्यवस्था खाना का अच्छा लगा और 4 रोज से बंद है माँ वैष्णो देवी का। हम घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे अच्छा लगा खाना का व्यवस्था। हम लोग 5 रोज से हैं, यही है। जय माता दी।
2: आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सफाई कर्मी दिनरात मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि मार्ग जल्दी से जल्दी सुरक्षित बनाया जाए और श्रद्धालु फिर से उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। कुछ ऐसे ही हालात अमरनाथ यात्रा रूट पर भी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू बेस कैंप पर तैयार है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की हुई है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन का पूरा जोर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर है, लिहाजा श्रद्धालुओं को बालटाल और लुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंपों में ठहराया गया है और जरूरत की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इंतजार बस अब मौसम के ठीक होने का है, जिससे अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जा सके। अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने मौसम में सुधार होने और रास्तों को सुरक्षित होने तक आवाजाही रोक दी है। खराब मौसम के कारण बुधवार को लगातार 4th दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और बालटाल और नुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंप में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवखेड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा लगातार 4th दिन भी बंद रही। जम्मू से सुनील जी भट्ट और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में तनिक्षा और प्राची ने रचा इतिहास, मेन ड्रॉ के लिए किया क्वालिफाई, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत का दबदबा, टॉप 5 में भारत के 3 बल्लेबाज, कोहली रोहित का जलवा कायम, शुभमन गिल नंबर 1 पर बेहद करीब। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। तमिलनाडु के थुतुकुडी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देशभर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। और चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
5: ये बच्चा क्लास के बाहर है और बाहर निकलने वाले हर बच्चे को 4 ऑप्शन दीवार पर लिखे मिलते हैं और वो एक ऑप्शन चुनता है और बच्चे के साथ वही ऑप्शन वाला व्यवहार करता है। यहाँ से निकलने वाले लगभग हर बच्चे ने लव का साइन चुना और बाहर खड़े बच्चे से गले मिलकर उसे प्यार किया। स्कूल में शायद ये अरेंजमेंट किसी टीचर ने किया था जो बच्चों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखने का संदेश दे रहा है और बच्चे भी सीख ले रहे हैं, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होंगे। जब भी किसी दिव्यांग शख्स को आम सामान्य शख्स की तरह उसी इच्छा शक्ति, जुनून और जुझारूपन के साथ काम करते देखने को मिलता है तो जिंदगी से होने वाली हजार शिकायतें उन्हें देख खामोशी का दामन पकड़ लेती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस दिव्यांग शख्स को पेट्रोल पंप पर एक पैर न होने के बावजूद पूरी तन्मयता से काम करते हुए देख लोगों को ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए हर कोई इन तस्वीरों को देख कर प्रेरणा ले रहा है और जिंदगी से शिकायतों को तौबा कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान आने वाली है। ये लोग बेचारे छत पर बिल्ली को अटका समझ उसे बचाने की जुगत लगाने के लिए खिड़की से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लटक गए। जो ही बिल्ली के पास आखिरी व्यक्ति का हाथ पहुंचा, बिल्ली को कुछ पल्ले नहीं पड़ा और वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए छलांग लगाते हुए भाग निकली। मिल्ली को बचा।

0: बचाने के लिए जुगत लगाने वाले बेचारे लटके ही रह गए और बिल्ली इन्हें गच्चा दे गई। अब लोग इन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि लगता है बिल्ली को लगा होगा कि उसकी किडनैपिंग होने वाली है। परिवार का प्यार मिलना किस्मत की बात होती है। अब इन तस्वीरों में मैराथन दौड़ रहे अपने पिता को फिनिश लाइन के पास आते देख छोटी सी बेटी से रहा नहीं गया। वो पिता के पास पहुंच जाती है, हाथ पकड़कर आखिरी कुछ कदम उनके साथ पूरा करती है। तीन मासूम बच्चियां खेल रही हैं, जिसमें दो एक समान ड्रेस पहनी हुई हैं। बच्चियां एक दूसरे की बहन लग रही हैं। तीसरी बच्ची जो कि सफेद ड्रेस पहनी है उसे देखिए जरा, वो तीनों में सबसे छोटी बच्ची को उसकी बहन से बचाती है क्योंकि उसकी बहन उस छोटी बच्ची को मार रही है। बच्ची मार खाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और चुप ही नहीं होती। उसका दुख बड़ा भी तो है आखिर, क्योंकि उसे तो उसकी अपनी बहन ही रुला रही है। देखने वालों को ये मासूम सी लड़ाई बेहद भा रही है।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर हुई अहम बैठक की। अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे चली इस बैठक में, क्या कुछ हुआ आइए आपको विस्तार से बताते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति, चढ़ावा गणना व्यवस्था सुधारने, ट्रस्ट में रिक्त पदों को भरने और मंदिर की परंपरागत पूजा व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि चढ़ावा राशि की गणना में हुई कथित गड़बड़ी की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ चढ़ावा राशि की गणना के लिए हुए एमओयू की भी समीक्षा की गई और बैंक की कार्य प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई। ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लिए गठित समिति ने बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का हवाला देते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इस बीच श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार और आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। समाज और मीडिया के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंदिर की पूजा पद्धति की परंपरागत शुद्धता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन भी किया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को धार्मिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें बड़े संत सदस्य बनाए गए हैं। जाहिर है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट में हलचल तेज है और श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसा मजबूत रखने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर हमने अयोध्या में श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
2: सर, इतना होना चाहिए कि जो ट्रस्ट में चोरियां हो रही है ये सारी बंद होना चाहिए। बंद होने के बावजूद इसको जो है युवा के हाथ में देना चाहिए टेस्ट को, तो इसका बदलाव सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहेगा। अगर बुजुर्गों को देंगे तो उसमें चोरियां होती रहेंगी। आजकल युवा जो है बेरोजगार हैं, इनकी तो पीढ़ियां पूरी बन चुकी हैं महंतों की। तो प्रयागराज से, प्रयागराज से धर्म नगरी है, दूसरी धर्म नगरी आ रहे हैं।
3: क्या देखा जा रहा है राम मंदिर में, क्या होना चाहिए?
2: राम मंदिर, राम मंदिर की व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन चोर जहाँ रहते हैं वहाँ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बस मैं इतना ही कहूँगा,
4: रखना चाहिए जो लोग यहाँ रह के काम देख सके। ये नहीं किसी को कोषाध्यक्ष मिला वो पुणे में रह रहा है, महीने में एक दिन आ रहा है, दो दिन आ रहा, नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हमारे हिसाब से तो ट्रस्ट में नहीं रहना चाहिए। जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ निवास करके यहाँ काम देखना चाहिए, भले वही हो जो गलत उनको निकाल करके, लेकिन जो अधिकारी हो उनको यहीं पे रखना चाहिए, यहीं रह के काम देखना चाहिए, तब तो रुकेगी, वरना कहाँ तो रुकेगा। कोई पुणे में रह रहा है और काम यहाँ हो रहा है तो कहाँ से होगा।
5: ठीक है, जहाँ इतना बड़ा काम होता है आयोजन होता है वहाँ गलतियाँ होना स्वाभाविक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उनको हटाया जाए, उन्हें नियुक्ति की जाए, भरोसेमंद लोगों को लाई जाए।
6: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश को मतलब बहुत तकलीफ है इस चीज को सुनकर के, कि हमारे मतलब देश में ऐसा बड़ा बहुत समय के बाद मंदिर बना है और फिर अचानक ये सब चीज हो गए, तो लोग पब्लिक बहुत दुखी हुई है सुनकर के, काफी निराशा उनके मन में आई इस चीज को देख करके या सुन करके कि हाँ इतना बड़ा चोरी हो गया, मतलब पब्लिक इतना तकलीफ में है। तो ये थोड़ा सा है कि ऐसे लोगों को संतुष्टि होनी चाहिए कि आगे बदलाव अच्छी तरह से हुआ, अच्छे लोग आए और मतलब जिनको जिन्होंने गलत काम किया उसको सजा मिली।
7: आ रहा है बिग बॉस सीजन 20। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
8: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेकर्स ने बिग बॉस 20 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। शो का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है जिसने सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है। रियलिटी शो की खास पहचान बन चुकी बिग बॉस की आंख को मेकर्स ने बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। माना जा रहा है कि इस बार भी शो की कमान सुपरस्टार सलमान खान ही संभाल सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की जननायकन का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। रिलीज से पहले सामने आए नए प्रोमो में फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है। दमदार एक्शन, पुलिस अवतार और हाई ऑक्टेन सीक्वेंस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अब सभी की नजरें 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस मेगा फिल्म पर टिकी हुई है। वहीं इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक सीटों सहित 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और रिलीज से पहले ही इसके 6 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। नई फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रिलीज के पहले फिल्म मेकर्स ने एक दिल छू लेने वाला नया पोस्टर जारी किया। कीटनाशकों के इस्तेमाल वाली खेती के मुद्दे पर बनी ये फिल्म एक ऐसे विषय को उठाती है जिस पर बड़े पर्दे पर शायद ही कभी बात की गई हो। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर द इंडिया स्टोरी हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी।
9: हेलीकॉप्टर से कीटनाशक को छिड़काया जा रहा है।
8: फूलन देवी की कहानी एक बार फिर दर्शकों के बीच आ रही है। नमः पिक्चर्स फूलन के जरिए दस्यु सुंदरी की कहानी दर्शकों तक ला रहा है, जिसे एमी अवार्ड विजेता फिल्ममेकर ऋचि मेहता ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। इस हिंदी फिल्म में एक्शन ड्रामा फूलन में स्नेहा कुमारी लीड रोल में नजर आएंगी, जो फूलन देवी का किरदार निभा रही है। उनके अलावा इस एक्शन ड्रामा में अनुराग ठाकुर, आकाश दहिया, विक्रम प्रताप सिंह, प्रतीक पचौरी और देवदत्त बुधौलिया जैसे चर्चित कलाकार भी हैं। फिल्म को 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना जा चुका है। 10 से 20 सितंबर 2026 तक चलने वाले TIFF 2026 में फूलन को स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन के लिए चुना गया है और 16 सितंबर को शाम 6 बजे प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग होगी। फूलन के इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद इसे OTT पर भी लाने की तैयारी है, हालांकि OTT स्ट्रीमिंग को लेकर अभी डेट्स पर सस्पेंस बरकरार है।
7: और अब बात मॉनसून की। देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई और जगहों पर भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना तमाम राहत एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है।

0: जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मानसूनी मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की मार झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई लोग मुसीबत में फंस जा रहे हैं। मुसीबत में फंसे ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं सेना, NDRF और SDRF के जवान। ये देवदूत अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती जलधारा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। राहत और बचाव की ये तस्वीरें कारगिल के करकीचू की हैं, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर पुल पानी में बह गया। पुल टूटने की वजह से स्कूली छात्र और महिलाएं समेत कई लोग यहां फंस गए। इंडियन आर्मी को जैसे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, वो तुरंत दल बल और साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सेना के जवानों ने तत्काल एक फुट ब्रिज तैयार किया और उस पुल से एक एक कर बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित निकाला। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने जरूरतमंद लोगों को मेडिकल मदद भी पहुंचाई।
1: यहाँ पे स्कूल के बच्चे और लेडीज को क्रॉस करते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस गांव के बच्चे और बुजुर्ग और लेडीज को क्रॉस किया है।
0: राहत और बचाव की ये तस्वीर कठुआ जिले के बिलावर इलाके की है। तेज बारिश की वजह से बिलावर के भिन्नी नाले का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया और इस उफनती जलधारा के बीचों बीच दो लोग फंस गए। बिलावर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो जरूरी साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे बीच धारा में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कई इलाके भारी बारिश और बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से सुरनकोट के बुफलियाज और दारा संगला इलाके में भारी तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही के बीच राहत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं लोकल प्रशासन के साथ सेना के जवान। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने मात्र 3 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त पुलों और रास्तों को ठीक कर कनेक्टिविटी बहाल कर दी। वहीं SDRF और पुलिस ने कलाई, चांधक, दहेरा और बांच जैसे क्षेत्रों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत और बचाव की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रावी की उफनती धारा के बीच एक व्यक्ति फंस गया था। उफनती नदी के बीच मौजूद एक बड़े चट्टान पर ये व्यक्ति फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रावी की तेज धारा इसे अपना ग्रास बना लेगी, लेकिन समय रहते स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और एक लंबी सीढ़ी के सहारे इस व्यक्ति का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहां मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही, जिसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। इसी बीच बरेली तहसील के पास घोघरा नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से खेतों में काम कर रहे 9 मजदूर फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होमगार्ड की डिजास्टर रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा, जिन्होंने बोट और लाइफ जैकेट की मदद से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। साफ है कि कई इलाकों में मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है, तो राहत और बचाव से जुड़ी टीमें देवदूत बनकर संकट में फंसे लोगों को बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चीन की एक झील में दिखता है आसमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: चीन के अनहुई प्रांत में एक झील के बीचों बीच बने पुल पर कार दौड़ाना एक रोमांचक अनुभव है। चीन की पिंगलियान झील एक खूबसूरत और प्रसिद्ध झील है। ये अपने कांच जैसे शांत और चमकदार पानी के चलते मिरर ऑफ द स्काई भी कहलाती है, जहां गाड़ी चलाने पर ऐसा लगता है जैसे वाहन बादलों के बीच तैर रहे हों। इस झील का पानी इतना साफ और शांत रहता है कि आसमान और बादलों की परछाई से सड़क हवा में तैरती हुई महसूस होती है। ये इलाका यहाँ का वेटलैंड पार्क है। प्राचीन काल में इसे बैशा झील कहा जाता था। चीन के चोंगकिंग जू में जायंट पांडा के जुड़वा बच्चों यूके और यूआई का चौथा जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जू कीपर्स ने उनके लिए खास दावत तैयार की। जू के कर्मचारियों ने बांस के अंकुरों, सेब और गाजर से इन जुड़वा बच्चों के लिए खास केक बनाया। साथ ही गर्मी से राहत दिलाने के लिए जुड़वा पांडा को बर्फ के टुकड़े और फ्रोजन ट्रीट भी दी गई। आज ही के दिन 22 जुलाई को 2022 में एयरशुन पांडा ने इन दोनों जुड़वा पांडा को जन्म दिया था। एयरशुन ने कनाडा से चोंगकिंग जू लौटने के बाद इन नन्हे पांडाओं को जन्म दिया। चीन में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच यहां का शिनजियांग पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। सैलानियों के लिए गर्मी में ये राहत का नया ठिकाना है। यहां 3100 मीटर ऊंचाई पर बसे ताश कुर्गान में बर्फीले पहाड़, झीलें और हरे भरे मैदान सैलानियों को लुभा रहे हैं। पर्यटकों के लिए यहां खास इंतजाम है। पामी टूरिस्ट एरिया में लोक संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे के साथ सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्राचीन कशगर शहर में पर्यटक स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक घरों और सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहे हैं। ताइवान में आतिशबाजी और ड्रोन शो की धूमधाम है। यहाँ हर साल गर्मियों में होने वाला पेंगू इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल अपनी खास आतिशबाजी के लिए मशहूर है। यहाँ ड्रोन शो भी होता है जो काफी पॉपुलर है। 24 सालों से यहाँ मनाया जा रहा ये लोकप्रिय उत्सव पेंगू द्वीप समूह के ग्वान यिंटिंग रिक्रिएशन एरिया में आयोजित किया जाता है। इस साल ड्रोन शो और आतिशबाजी ड्रैगन बॉल थीम पर बेस्ड है। ये शो रात के समय हजारों दर्शकों की मौजूदगी में होता है। ड्रोन और आतिशबाजी का ये शानदार शो यहाँ 25 अगस्त तक इसी तरह चलेगा। मिस्र के काहिरा में मरम्मत के बाद मामलुक सुल्तान अल अशरफ कैदबे का मकबरा फिर से खोला गया, जिसे देखने के लिए यहां सैलानी आना शुरू हो गए हैं। ये मकबरा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल इस इलाके का हिस्सा है। इस मकबरे को 15वीं सदी के मामलुक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना गया है। मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज की देखरेख में यहां मरम्मत का काम किया गया था, जिसके बाद अब मकबरा फिर आम पब्लिक के लिए उपलब्ध है।
2: कहते हैं कि नामुमकिन सिर्फ एक सोच है, और जापान के एक साइकिल राइडर ने इसे सच करके भी दिखाया है। उन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है।

0: ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक असली वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। जापान के स्टंट साइकिल राइडर टोमोमी निशिकुबो एक ऐसे स्की जंप पर खड़े हैं जहां आमतौर पर स्की खिलाड़ी बर्फ पर फिसलते हैं, लेकिन आज यहां बर्फ नहीं बल्कि साइकिल का कमाल दिखने वाला है। टोमोमी ने अपनी साइकिल को उल्टी दिशा में मोड़ा और सिर्फ आगे वाले पहिए पर बैलेंस बनाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये रास्ता करीब 37.5 डिग्री की खड़ी ढलान वाला था। जरा सी गलती उन्हें सीधे नीचे गिरा सकती थी। करीब 136.6 मीटर तक टोमोमी ने बिना संतुलन खोए ये हैरतअंगेज सफर पूरा किया। इस दौरान उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही, लेकिन उन्होंने पूरे 35 सेकंड तक कमाल का बैलेंस बनाए रखा। यही कारनामे ने उन्हें 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिला दिया।
1: I was hooked on this challenge and I was like, okay, let's do my favorite trick on the ski jump landing. Ski jump landing is such a unique location and you know, it's very slippery for ski jumpers. So my challenge was like opposite challenge. I need grip. I want to go down as slow as possible. So very, very opposite location to do my favorite trick. But I love crazy challenge. So I was like, okay, it's gonna be the farthest first. So I did it.
0: लेकिन ये सफलता एक दिन में नहीं मिली। साल 2025 में उनके पहले 35 प्रयास नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने अभ्यास के लिए 10 मीटर लंबी वैसी ढलान तैयार की और बार बार प्रैक्टिस की। आखिरकार साल 2026 में दूसरी कोशिश में उन्होंने इतिहास रच दिया। इस रिकॉर्ड को देखने के लिए उनकी फैमिली और करीब 20 लोगों की टीम वहां मौजूद थी। जैसे ही टोमोमी ने अपना रन पूरा किया, हर तरफ तालियां गूंज उठी। ये कारनामा साबित करता है कि अगर हौसला बड़ा हो तो सबसे मुश्किल रास्ता भी जीत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नी सिरे।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: Good news today is really good. It's in this, right? उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
8: आईसीसी की ताजा T20 और ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय क्रिकेटर्स का दबदबा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
9: भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल 23 जुलाई से 3 मैचेस की T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। टीम इंडिया पिछली सीरीज में मिले डबल झटके की भरपाई करने की फिराक में रहेगी। भारत का पिछली 2 20 सीरीज में सुपड़ा साफ हुआ है। श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान पहली जीत दर्ज करने को बेताब रहेंगे। कल के मैच में एक बार फिर सबकी नजरें वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करेंगे। कल हरारे में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से पहला मुकाबला शुरू होगा। भारत और जिम्बाब्वे की कल शुरू होने वाली T20 सीरीज से ठीक एक दिन पहले यानी आज ICC ने T20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में ईशान किशन पहले स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। ईशान के 892 रेटिंग अंक हैं, जबकि अभिषेक शर्मा उनसे पीछे चल रहे हैं और उनके 858 रेटिंग अंक हैं। ईशान पिछले 3 सप्ताह से लगातार पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद जारी ICC की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बना हुआ है। कप्तान शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक अंक दूर हैं, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप 5 में बने हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 188 रन बनाने वाले गिल के खाते में अब 801 रेटिंग अंक है, और वो शीर्ष पर मौजूद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल के 802 अंक से सिर्फ एक अंक पीछे हैं। वहीं विराट कोहली 767 अंकों के साथ तीसरे और रोहित शर्मा 758 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं ताजा ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में जो रूट, श्रेयस अय्यर और जोफ्रा आर्चर को भी फायदा मिला है। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। 31 साल के कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ करार किया है। वो 5 वनडे कप मैच और सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप के 3 फर्स्ट क्लास मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्हें इस शुक्रवार को ग्लैमरगन के खिलाफ होने वाले 50 ओवर के मैच के लिए यॉर्कशायर की टीम में शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने चयन की खबर के बाद इंग्लैंड में खेलने को रोमांचक बताया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 21 जुलाई को एलीट पोल मुकाबलों में पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-4 और मेजबान ओमान को 14-0 से हराया। वहीं महिला टीम ने चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद उज्बेकिस्तान को 16-0 से मात दी। इन नतीजों के साथ भारत की दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय हैं और यूथ हॉकी 5S वर्ल्ड कप में जगह बनाने के करीब पहुंच गई हैं।
8: तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
4: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
6: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Stack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
10: महाराष्ट्र के जाननामी आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शामिल।
4: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी की रथ यात्रा की, जो अब अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर रही है। दो दिन बाद यानी यात्रा के नौवें दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ वापस अपने धाम की ओर चलेंगे। वापसी की ये यात्रा यानी बहुडा यात्रा भी भव्य होती है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में लोग पुरी पहुंचने वाले हैं, और इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज आपको गुंडीचा मंदिर की वो तस्वीरें दिखाएंगे जब रथों को दक्षिण दिशा में यानी श्री मंदिर की ओर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये विस्तार से बताएंगे। इसके बाद चलेंगे कटरा, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी, लेकिन वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हजारों लोग अभी भी कटरा में डटे हुए हैं और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू में भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर फिलहाल मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, लेकिन जो शिव भक्त जम्मू या बेस कैंप में मौजूद हैं, उनको हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं पुरी से। रथ यात्रा शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं, तब से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ गुंडीचा मंदिर में हैं, लेकिन अब वहां से वापसी की यात्रा शुरू होने वाली है। 24 जुलाई यानी यात्रा के 9वें दिन गुंडीचा मंदिर से बाहुडा यानी वापसी की यात्रा शुरू होगी। बाहुडा यात्रा से पहले सदियों पुरानी परंपरा दक्षिण मोड़ा निभाई गई, जिसमें तीनों रथों की दिशा श्री मंदिर की ओर बदल दी गई। रथों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।

0: देखते ही देखते 7 दिन गुजर गए। गुंडिचा मंदिर में भगवान को आनंद मिला, भक्तों को परम आनंद। पर अब मुख्य मंदिर यानी कि श्री मंदिर वापस जाने की घड़ी करीब आ गई है और इसीलिए एक एक करके तीनों रथों यानी भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष, बलभद्र जी के रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ की दिशा बदल दी गई।
1: ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं, उसके साथ हमारे जो रथ के जो भूई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं और सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: रथ यात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा जो प्रतीक है भगवान के एक बार फिर से अपने धाम जाने की, उसी धूमधाम और उत्साह से पूरी होती है जैसे रथ यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले पुजारियों द्वारा आज्ञामाल यानी कि भगवान से अनुमति ली जाती है। फूलों की ये माला जो भगवान की आज्ञा की प्रतीक है जिसे लेकर पुरोहित आए। उसके बाद दक्षिण मोड़ा की प्रक्रिया शुरू हुई। रथ के पहिए को तेल और लकड़ी के गुटकों की मदद से घुमाकर उनकी दिशा बदली गई। फिर रथों को खींचकर उस दिशा पर लगाया गया जहां से वापसी की यात्रा शुरू होगी। रथों को दक्षिण दिशा यानी श्री मंदिर की ओर मोड़ने की इस परंपरा को दक्षिण मोड़ा कहा जाता है। दिशा बदलकर रथों को गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से नकाचना द्वार पर खड़ा किया जाता है। यात्रा के 9वें दिन यानी कि इस साल 24 जुलाई को वापसी यानी कि बहुड़ा यात्रा की शुरुआत होगी।
2: बहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट सभी लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। सारा अरेंजमेंट लाइक पुलिस अरेंजमेंट, हमारा वाटको की तरफ से पानी का व्यवस्था, मेडिकल की तरफ से हेल्थ टीम्स की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्थाएं अभी हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज।
3: ये प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ भक्तों का भी बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो रहा है, इसके लिए भी टायरलेसली आप लोग अधिकारी
2: ये हमारे सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं का जैसे अच्छे से दर्शन हो उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं।
0: जिसके लिए गुंडिचा मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक है। जिस भक्ति भाव से जगन्नाथ मंदिर से भगवान का रथ खींच कर लाए थे, उसी श्रद्धा भाव से भगवान के रथ को खींचते हुए श्री मंदिर ले जाएंगे। जाहिर है कि इस बार भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे और एक बार फिर से उत्सव जैसा ही माहौल होगा। बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए अभी से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है।
4: और मैं पहली बार दर्शन करने आई हूँ जगन्नाथपुरी में और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ में इतने अच्छे से दर्शन हो पाएगा, बट जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और मैं बहुत खुश हूँ।
5: ये पहली बार गुंडिचा मंदिर में आया हूँ भगवान जगन्नाथपुरी में, जो कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, और यहाँ मुझे आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति और सुकून मिला है। और मैं भगवान जगन्नाथ से गुजारिश करूँगा कि समीप ब्रह्मांड के जो भी जीव जंतु और सभी जो लोग हैं वो सुखी हो, संपन्न हो और समृद्ध रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के प्रशासनिक जो भी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और जो मंदिर के लोग हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ के जो लोकल भी है वो भी बहुत अच्छे से ये करते हैं।
0: 16 जुलाई को जब तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर से चले तब रथों के साथ करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद थे। वैसे गुंडिचा मंदिर की ये यात्रा 3 किलोमीटर की है, लेकिन भक्ति के ऐसे सैलाब से होकर गुजरने में वक्त तो लगता ही है। जब यात्रा ऐसी हो तो लाजमी है कि रथों को भी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी।
6: हम कुछ देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया हो, कुछ कील वील निकल गया तो उस सबको चेकिंग करते हैं और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोरा कुछ कील वील निकल गया तो हमने शिपिंग कर लिया। फिर कल तो दक्षिण मोड़ उसको क्या बोलते हैं, रथ यू टर्न करना है।
0: रथ विशाल है जिन पर भगवान के साथ बड़ी तादाद में पुजारी और सेवायत सवार होते हैं, इसीलिए हर हिस्से की बारीकी से जांच कर ली गई है। पहिए भी दुरुस्त कर लिए गए हैं। पिछले 7 दिन से यानी जब से भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में विराजमान है, माना जाता है कि भक्तों के ज्यादा पास होते हैं। पूजा अर्चना, अनुष्ठान और तमाम विधि विधान, इसके दरमियान आस्था के अद्भुत रंग जिसमें रंगे हैं अमेरिका और यूरोप से आए भक्त भी।
7: My first visit to Puri. How is my first visit to Puri? Very nice. It's best experience of my life being here for Rath Yatra.
8: I love Rath Yatra. I never miss it.
9: Last time in Puri.
8: No, I've been in Puri 39 times. I used to live here.
0: रथ यात्रा अपने अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हालांकि उत्सव में भक्तों का जोश पहले दिन जैसा ही है और सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है। बहुड़ा यात्रा के दौरान करीब 1500 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा रेस्क्यू टीम और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम भी होगा। वापसी की यात्रा पहंडी की रस्म के साथ शुरू होगी। पहला पड़ाव माँ अर्धसनी मंदिर यानी कि मौसी माँ के घर पर होगा, जहाँ महाप्रभु और उनके भाई बहन कुछ देर के लिए ठहरेंगे और विशेष भोजन यानी कि पोडो पीठा का आनंद लेते हैं। फिर श्री मंदिर तक की यात्रा शुरू होती है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: पुरी में जगन्नाथ यात्रा की उत्साह देखने को मिल रही है तो कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्रा को फिलहाल रोका गया है। इसी तरह अमरनाथ यात्रा को भी एहतियातन रोक दिया गया है। कटरा से लेकर जम्मू बेस कैंप तक हजारों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं और विश्वास के साथ डटे हैं। इस बीच उनकी सुविधा और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि मौसम सामान्य होते ही दोनों यात्राएं पूरी सुरक्षा के साथ फिर से शुरू कर दी जाएंगी। रिपोर्ट देखिए।

0: तुम आवाज दोगी तो जरूर आएंगे माँ, तुम हाथ पकड़ोगी तो पहाड़ भी चढ़ाएंगे माँ। यही विश्वास हर उस श्रद्धालु के चेहरे पर दिखाई दे रहा है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुँचा है, लेकिन मौसम का रुख ऐसा है कि दर्शन ही गेट पर अटका है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को रोक दिया गया है। बारिश रुकेगी तो यात्रा बढ़ेगी। माता रानी के दर्शन के इंतजार में खड़े भक्तों को उसी पल का इंतजार है।
1: हम कटरा वैष्णो देवी में हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा वैष्णो देवी ट्रैक जो है वो यात्रा के लिए क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु जो है वो कटरा में ही रुके हुए हैं, ठने हुए हैं कि यहीं से जो यात्रा पूरी कर फिर ही अपने घर को वापस लौटेंगे। आइए कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या नाम है आपका?
2: भानु सोनी।
1: कितने दिन से आप कटरा में?
2: 3 दिन से।
1: तो किस इंतजार में है?
2: कि दर्शन खुल जाए माता रानी के, इस इंतजार में है। पर लगता है कि नहीं खुलेंगे दर्शन, बहुत बारिश है।
1: आपको बता दें कि श्रद्धालु जो है वो होटल्स के रूम से निकलकर यहां पर दर्शनी गेट पर पहुंच रहे हैं और माता जी का यहीं से माता जी को माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितने दिन से आप कटरा में?
3: हमको भैया 3 दिन हो गए हैं।
1: क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब बारिश रुकेगी?
3: बारिश लगता है, बता रहे हैं कि 30 तारीख तक तो कोई चांस है नहीं, ऐसे बता रहे हैं साइन बोर्ड वाले। बात हुई थी मेरी तो बता रहे थे कि 30 तारीख तक कोई चांस नहीं है मौसम का। मौसम ठीक होगा तो जब आगे देखा जाएगा अपडेट।
1: तो आप 30 तारीख तक कटरा में रुकने वाले हैं?
3: नहीं, एक या दो दिन लास्ट है, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे वापस।
1: एक दो दिन अभी और देखेंगे।
3: हाँ जी,
1: कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी कहाँ से आए आप?
4: बिहार से।
1: कितने दिन से बारिश हो रही है?
4: आज 4 दिन से आए हैं।
1: 4 दिन से। माता वैष्णो देवी के प्रति जो है वो आस्था है इतनी गहरी है कि श्रद्धालु जो है वो लगातार मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आप?
5: हम बलिया से आए हैं, यूपी बलिया।
1: कितने दिन से आप कटरा में?
5: 3 दिन हो गया सर, कल हमारा टिकट भी है।
1: ओके।
5: बहुत दिक्कत में हम लोग सोच रहे भवन का दर्शन भी कल, यहाँ का दर्शन कर ले हम लोग।
1: अच्छा,
5: कल टिकट है हमारा, कल निकलना है हम लोगों को। बहुत परेशानी में चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दर्शन हो जाए माता जी का, लेकिन क्या किया जा सकता है, यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, सब गिर रहे हैं सब।
1: आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है वो बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अगर पहाड़ों की बात करें, आपको पहाड़ों के व्यूज दिखाएं जहां पर वैष्णो देवी की यात्रा जहां पर चलती है, सारा ट्रैक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो माता वैष्णो देवी का पहाड़ है, जहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु कटरा से वैष्णो देवी जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मजबूर हैं कि यहीं पे जो है वो दर्शनी गेट पर माथा टेक रहे हैं। और यही नहीं, हर रोज जो है श्रद्धालु दर्शनी गेट पर पहुंच रहे हैं और यहीं से माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है और यहीं पे माथा टेकते हैं, भक्ति भावना लेकर यहीं पे आप इमोशनल होते भी यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि काफी श्रद्धा भावना लेकर अपने घरों से आते हैं और भीग रहे हैं यहाँ पर।
0: लगातार हो रही भारी बारिश और भवन क्षेत्र में बने जोखिम भरे हालात को देखते हुए 18 जुलाई की रात से श्री माँ वैष्णो देवी यात्रा को एहतियातन रोका गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए श्राइन बोर्ड ने यह फैसला लिया। 4थे दिन भी यात्रा बंद रही। कटरा से लेकर पूरे रास्ते तक बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। कोई 2 दिन से इंतजार कर रहा है तो कोई 3 दिन से मौसम साफ होने की आस लगाए बैठा है।

0: हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम मैं वैष्णो माँ के पर्वत पार यूं वीराने में तेरी याद आती है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी के प्रति काफी श्रद्धा है,
2: माता रानी के दर्शन हो जाते तो हम लोग सारे खुश हो जाते। और तीन दिन से हम लोग यहाँ फंसे हैं इस इंतजार में कि आज खुलेगी नहीं कल खुलेगी, धूप निकलेगी, लेकिन कभी कभी मायूस भी हो जा रही हूँ बाकी लोगों की बाती को सुनकर।
3: कई श्रद्धालुओं के लिए बिना दर्शन किए लौटना कठिन फैसला है, इसलिए मौसम खराब होने के बाद भी वो अडिग हैं। ऐसे हजारों लोग कटरा में डटे हैं जिनकी नजर आसमान पर है और हर जुबान पर प्रार्थना कि माँ के दर्शन हो जाए।
4: संडे को आए थे
1: तो क्या माता रानी को क्या माता
4: हम लोग फंसे हुए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, बरसात हो रही है, बरसात रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है, हम लोग तीन दिन से फंसे हैं, माता रानी से कृपा कर रहे हैं जो अभी भी खोल दे, रास्ता खोल दे, हम लोग वहाँ पे दर्शन जाया कर ले।
2: माता बहुत शक्तिशाली है, जो कोई जो कहता है वो इच्छा पूरा करती है, बहुत दयालु माँ है, यहाँ हर श्रद्धालु का श्रद्धा पूरा होता है, जो कहता है वो पूरा होता है।
3: श्राइन बोर्ड लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, मौसम सामान्य होने और रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं से धैर्य रखने, अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। कटरा में ठहरे लोगों के लिए जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है।

0: कठोर प्रशासन द्वारा तब तक ये दर्शन बंद रहेंगे जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। आप अक्सर देखते हैं कि लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है और किसी भी श्रद्धालु को किसी किस्म का नुकसान ना हो उसके लिए इस बार श्राइन बोर्ड प्रशासन पूरा तत्पर है। जैसे ही बरसात शुरू हुई और मौसम ज्यादा खराब होता दिखा तो श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा 18 तारीख की रात को ऑर्डर कर दिया गया कि तब तक जो है वो रास्ता नहीं खुलेगा जब तक जहां पर मौसम ठीक नहीं होता और श्रद्धालुओं को की सहूलियत पूरी देखी ना जाए तब तक जो है वो दर्शन बंद रहेंगे। आप देख सकते हैं यहां का माहौल देख सकते हैं, माता के जयकारे के साथ यहां पर दर्शनी गेट पर माता के जयकारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। काफी भक्ति में माहौल जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया। मैं कैमरामैन को कहूंगा यहाँ के दृश्य दिखाएं और कितना जुनून है माता वैष्णो देवी की आस्था किस कदर जो है वो श्रद्धालुओं में है कि यहीं से जो है वो माथा टेक रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि कितनी श्रद्धा लेकर ये लोग कटरा वैष्णो देवी पहुंचे हैं और थोड़े उदास भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं कि काफी अच्छा फैसला जो लिया गया है श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर।
1: जम्मू के आगे कटरा में वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है तो जम्मू से ही अमरनाथ के लिए निकलने वाले जत्थे को भी रोका गया है, वजह बारिश ही है। लगातार चौथे दिन जम्मू बेस कैंप से नया जत्था आगे नहीं भेजा गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। भारी बारिश की वजह से पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों पर आवाजाही रोकी गई है।
2: साफ पूरा बरकरार है, बरसात होने दीजिए, बिना दर्शन के हम लोग नहीं जाएंगे। मूड बना है पूरा दर्शन करना ही करना है, किसी भी हालत में माता वैष्णो देवी दर्शन करना है, यहाँ के भी दर्शन करना है, बाबा अमरनाथ का। समय नहीं हमारे पास तो हम लोग गुलमार्ग, श्रीनगर, पहलगाम ये सब पूरा जितना जहाँ तक घूमने जाता है वो पहले घूम लेंगे, जब बाबा बुलाएंगे जाएंगे। जब
3: अभी कहाँ कहाँ घूमे यहाँ जम्मू आए?
2: अभी जम्मू अमृतसर, बाघा बॉर्डर और जितने लोकल सब सीन सब घूम लिया है। अब समय बचा है, जब बुलाएंगे बाबा तब तक और जगह घूम ले, श्रीनगर घूम लिया जाए, दो चार दिन पिता से घूम लेंगे।
3: तो यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी?
2: व्यवस्था चकाचक, व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है।
3: बहुत क्या खाना भोजन वगैरह
2: सब सब बढ़िया, सब नंबर एक, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था सब बढ़िया है।
4: देश भर के लिए
3: क्या संदेश रहेगा?
2: देश भर के संदेश इसलिए है कि जो आस्था बनाए अपनी आस्था बनाए रहे। बाबा पिघल गए लेकिन वहाँ पे जो आस्था बनी हुई है वो आस्था बना रहे। बाबा का पिघलना कोई माने नहीं रखता, वहाँ पे पहुँचना माने रखता है, चाहे जितनी कठिन चढ़ाई आए लेकिन बाबा पर पहुँचना जरूरी है। जय बाबा, जय बाबा फानी।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your team.

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
8: I have no idea how this election is going to play out,
7: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे दो बंदियों ने परिवार के सामने लिए सात फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बाराती शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असम में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित, सभी जिलों में युद्ध स्तर पर जारी है राहत बचाव। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। असम का शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। बाढ़ पीड़ित से मिलने के लिए रिलीफ कैंप पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, प्रभावित लोगों से संवाद किया। रिलीफ कैंपों में मिल रही सुविधाओं का लिया गया जायजा, रेस्क्यू टीमों को सभी मदद करने के निर्देश। असम में बाढ़ से करीब 6 लाख लोग हुए प्रभावित, 71 राहत शिविरों में 12,000 से ज्यादा शिफ्ट। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कमर तक पानी में डूबे रिहायशी इलाके, रेस्क्यू जारी। लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वलसाड़ में भारी बारिश का असर, रेलवे ट्रैक के किनारे की जमीन धंसी, रेल सेवा प्रभावित। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश के चलते सूरत की सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलजमाव। पापों से पानी निकासी में जुटे हुए नगर निगम के कर्मचारी एहतियात के तौर पर रेस्क्यू के लिए खड़ी फायर डिपार्टमेंट की पोर्ट। राजौरी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, जगह जगह भूस्खलन। भूस्खलन के कारण कई घंटों तक बंद रहा जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे, राजौरी या थाना मंडी रोड भी लगभग 4 घंटे तक बंद रहा। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते दारमा घाटी में भी भारी भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश, पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सड़कों पर पहुंच रही पहाड़ी मलबा। सीहोर में उफान पर चरनाल नदी पुल के ऊपर आया नदी का पानी। करगिल के किरकिचू में बादल फटने से अचानक बाढ़ फंसे कई लोग। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को रेस्क्यू किया, प्रभावित गांव में राहत बचाव कार्य तेज। रियासी में भारी बारिश के चलते खतरे के निशान के करीब पहुंच गए चिनाब नदी, या लोगों से सतर्क रहने की अपील। पुंछ में 4 दिनों से लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में आया उफान, नदी के बीच फंसा युवक। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। तमिल कैलेंडर के आदि महीने के दौरान पूरे तटीय क्षेत्र और मंदिरों में विशेष उत्सव के साथ मनाया गया त्योहार। जालना में श्री आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव का हुआ 5वां दिन, दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। यात्रा महोत्सव के 5वें दिन श्री आनंदी स्वामी महाराज को धारण कराया जाता है भगवान पांडुरंग का स्वरूप। आषाढ़ी सप्ताह में श्री आनंद स्वामी महाराज को प्रतिदिन अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप धारण कराया जाता है। ओडिशा के पुरी में बाहुड़ा यात्रा की भव्य तैयारियां, गुंडीचा मंदिर के सामने किया गया ताल ध्वज और नंदीघोष रथ को दक्षिण की ओर मोड़ने की पवित्र अनुष्ठान। बाहुड़ा यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर के सामने तीनों विशाल रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा गया। बाहुड़ा यात्रा के साथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की होती है मुख्य मंदिर वापसी। अलवर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा जारी है। आज इंद्र विमान में सवार होकर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। एक दिन पहले भगवान सीताराम जी की निकाली जाती है सवारी। रथ में विराजमान करने से पहले पुलिस लाइन से आई गार्ड ने भगवान को सलामी दी। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए किया गया रवाना। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा में जुटे हुए हैं जवान। यात्रा मार्ग से बोल्डर हटाने के बाद सक्रिय मार्ग से यात्रियों को निकालने की मदद कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवान। अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से रोक दी गई है श्रद्धालुओं की आगे आवाजाही। अयोध्या के पांच संतों को सौंपे जाएगा राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन। भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला। सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की वॉच। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट, अनुष्का करीब एक घंटे तक एकांत वार्ता। कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते हुए नजर आए, गुरु पूर्णिमा पर्व से पहले महाराज का आशीर्वाद। दुनिया भर में मशहूर बनारस की गुलाबी मीनाकारी, भारत सरकार ने जीआई टैग देकर इस कला को सम्मानित किया। सोने और चांदी पर रंगों की बारी का कारीगरी का अद्भुत नमूना है गुलाबी मीनाकारी। काशी में सुंदर कला से जुड़े हुए हैं 20 परिवार, संभाला 400 साल पुरान विरासत का। दिल्ली में एक शख्स ने अपनी छत को बनाया मिनी जंगल, लगाए 500 पौधे, अब छत 100 प्रजाति की चिड़िया और 25 प्रजाति की तितलियां का डेरा। 14 साल की उम्र में अमन ने पर्यावरण संरक्षण को बनाया अपना उद्देश्य। करनाल में मक्के की फसल बनी किसानों की आमदनी का मुख्य स्रोत, बाजार में मक्के की बंपर डिमांड के चलते किसान खुश। इस साल मंडी में मक्का की उपलब्धता में 60% की बढ़ोतरी। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बना सहारनपुर, मुस्लिम कारीगरों ने तैयार की लाखों कांवड़ ड्रेस। कांवड़ यात्रा से 1.5 महीने पहले ही तैयारियां शुरू, बाजार में महाकाल और भोलेनाथ की प्रिंट वाली ये ड्रेस सबसे ज्यादा डिमांड। लगातार बारिश के कारण 4 दिन की स्थगित कर दी गई वैष्णो देवी यात्रा, प्रशासन रख रहा है कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालुओं का ध्यान। कल गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। कुल 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ यह फ्लाईओवर कुल 430 करोड़ की लागत से 2.65 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण। इस फ्लाईओवर के बनने से शहर के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। बस्ती, संत कबीर नगर और लखनऊ जाने वाले के साथ साथ देवरिया के लोगों को भी मिलेगा लाभ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और चमचमाता नया शहर, यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव। करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रच दिया इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार वाली ज्वेलरी। आध्यात्मिक सोच और आत्मनिर्भर भारत का अनोखा संगम है ये खास ज्वेलरी। ये ज्वेलरी पूरी तरीके से भारत में ही डिजाइन और पॉलिश की गई है। इस ज्वेलरी में 18 कैरेट येलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर में छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है दिल्ली। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2027 रैंकिंग जारी। हर साल जारी की जाती है रैंकिंग ताकि स्टूडेंट्स एकेडमी क्वालिटी खर्च की क्षमता के हिसाब से अनुभव लें। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन। कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह। भारत में आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम तटीय रक्षा के लिए जबरदस्त। आकार में छोटा लेकिन तेज गति फुर्ती और लंबी अवधि तक का अभियान चलाने की क्षमता से लैस है मालवन। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन नायकन टी शर्ट की भारी डिमांड। एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। कल रिलीज होने जा रही फिल्म जन नायकन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म। मुरादाबाद में त्रिशूर वॉर म्यूजियम देखने पहुंचे ट्रेनी आईएएस अधिकारी। चंडीगढ़ में ब्रिक्स के प्रतिनिधिमंडल ने किया योग, लोगों से योग करने की अपील की। श्रीनगर में एनजीओ में भी जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कल से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला। आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 मैच हारने के बाद अहम है यह सीरीज। जिम्बाब्वे के हरारी में खेला जाएगा पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे लाइव। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी। ईशान किशन नंबर 1। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 में शुमार। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ किया है करार। बिग बॉस 20 का नया आई लोगो हुआ आउट। बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक राज। थलपति विजय की फिल्म जन नेता का नया प्रोमो हुआ रिलीज। कल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विजय की फिल्म जन नेता ने रिलीज होने से पहले शानदार कमाई की। फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़ी का अहम रोल। ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी। अनुराग ठाकुर विक्रम प्रताप नजर आएंगे। चीन के कोंगकिंग जू में जायंट पांडा के जुड़वा बच्चे यू और यूआई ने अपना चौथा बर्थडे मनाया। जू के कर्मचारियों ने बांस के अंकुरों सेब और गाजर से इन जुड़वा बच्चों के लिए बनाया शानदार केक। 22 जुलाई 2022 को जायंट पांडा एयर शुन से हुआ था इन दोनों जुड़वा पांडों का जन्म। मिस्र के काहिरा में मरम्मत के बाद फिर से खुला मामलुक सुल्तान अल अशरफ कैतबे। इस मकबरे को 15वीं सदी की मामलुक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में पिंगटियन झील पर दिखाई करों का नजारा एक शानदार आसमानी आईने जैसी लगती है शांत झील। एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता है पानी आसमान और क्षितिज पर पड़ता है एक जैसा असर। ताइवान के पेंगू में आतिशबाजी और ड्रोन शो ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। हजारों लोग पहुंचे। द ताइवान में गर्मियों का सबसे बड़ा आतिशबाजी उत्सव माना जाता है पेंगू इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान आसमान में जबरदस्त नजारा देखने को मिला, सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पाद भी देखने को मिले।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या बुध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tunians how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भगवान शिव की भक्ति का ये सबसे खास समय माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर में जबरदस्त तैयारियां हैं।

0: बोलबम का जयकारा लगने वाला है। एक बार फिर भोले की भक्ति उमड़ने वाली है। बाबा को समर्पित पावन सावन आने वाला है। इसी सावन के महीने में देश भर से लाखों शिव भक्त आस्था की कावड़ उठाकर नंगे पांव गंगा जल लेने निकलते हैं और अपने अपने शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल ये कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर खास तौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। कांवड़ ले जाने वाला हर भोला सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से बाबा का जलाभिषेक कर पाए, इसको सुनिश्चित करवाने के लिए ही मेरठ में प्रदेश स्तर की हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। यहां पहुंचे अधिकारियों ने सबसे पहले ओगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद कमिश्नर ऑफिस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रशासनिक तैयारियों पर बात हुई।
1: जो हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और ये भी आपत्तिजनक वस्तु के बारे में इस साल में कानून है। कांवड़ जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनको उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि जो कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे, जो शासन के नियम हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियम है इस बारे में, इसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा।
0: क्योंकि हर साल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी कांवड़ यात्री शामिल होते आए हैं, इसलिए इस बैठक में इन राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान घाटों की सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए उनसे अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सरकार का कहना है कि यात्रा के दौरान दुकानों के संचालन, रजिस्ट्रेशन, भोजन की क्वालिटी और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए होगी। क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे अलर्ट पर रहेगी। खाने पीने की वस्तुओं की क्वालिटी की नियमित जांच होगी और सभी भोजनालयों पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर यहां बैठक में डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में इस्तेमाल होने वाली हर डीजे पेन ड्राइव का पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ स्वीकृत भक्ति गीतों को ही बजाने की परमिशन मिलेगी। सहारनपुर प्रशासन ने साफ कर दिया कि 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर शिविर में सीसीटीवी लगेंगे, अग्निशमन के इंतजाम, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। शिविरों में केवल शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाएगा, जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: उनको ये निर्देश दिया गया, उनसे एक गुजारिश की गई है कि खासकर जो डीजे की हाइट है उनको लेके जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी जो गाना होगा, जो डीजे में बचेगा, उसकी एक पेन ड्राइव जो संबंधित थानेदार उनको देंगे, टेस्ट के बाद ही चलाएंगे। ऐसे कोई गाना नहीं चलाएंगे जिससे जो सौहार्द खराब हो और किसी व्यक्ति को की जो भावना है वो आहत हो।
0: यही नहीं, झारखंड के देवघर में सावन के महीने में श्रावणी मेला आयोजित होना है, तो ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी देवघर में जिला प्रशासन और दूसरे डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
3: श्रावणी मेला बाबा भोलेनाथ में लाख श्रद्धालु आएंगे प्रतिदिन, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, खान पीन सब विस्तार पूर्वक चर्चा किया।
0: धार्मिक मान्यताएं भी कहती हैं कि सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे खास समय माना गया है और हर साल इस महीने का इंतजार शिव भक्त पूरी बेसब्री के साथ करते हैं। यही वजह है कि भोले बाबा के भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ही सरकारी तंत्र कांवड़ यात्रा को बेहद सुव्यवस्थित बनाए रखने के हर संभव प्रयास करता आया है, ताकि हर भोला अपने आराध्य का जलाभिषेक पूरे इत्मीनान के साथ कर पाए। मेरठ से उस्मान चौधरी, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार और झारखंड के देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
13: महाराष्ट्र के जालनामी आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शामिल।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध हमें किस तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं देते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं, उनसे बचने के समाधान क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपको बुध से संबंधित स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है, बुध आपके लिए मारक है या आपके सेहत को बिगाड़ रहा है, तो रोज सवेरे एक बार अगर आप नारायण कवच का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 23 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 7:03 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:01 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं बुध हमारे शरीर से किस प्रकार संबंध रखता है और ये किस प्रकार की बीमारियां हमें देता है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बुध ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है और किस तरह की बीमारियां देता है। देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का स्वामी है और ये ज्ञानेंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन्स से और संचार तंत्र कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, त्वचा है, जबान है, कान, नाक, आंख है, इनसे बुध का सीधा संबंध है। बुध जो है ये चीजों को समझने की शक्ति देता है कि आप चीजों को कैसे और कितना समझ पाएंगे। आपके शरीर में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है कान, नाक और गले से। बुध का इसके साथ सीधा संबंध है। साथ ही साथ बुध आपके मस्तिष्क के तंत्र को यानी ब्रेन को सीधा प्रभावित करता है और बुध का संबंध आपकी त्वचा से, आपकी स्किन से भी होता है। तो मुख्यतः बुध कान, नाक, गला, त्वचा, ब्रेन, इन सब चीजों से ज्यादा संबंध रखता है, आपकी बुद्धि को शार्प बनाता है और चीजों को समझने की शक्ति आपको बुध प्रदान करता है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज की मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं कि अगर बुध कान नाक गले की समस्या दे रहा हो तो इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये समस्याएं दे रहा है और इसके उपाय क्या हैं?
1: जैसा आपको पहले बताया कि आपके शरीर का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कान नाक और गला है, अगर बुध इसमें समस्या दे रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कुंडली में बुध खराब हो गया तो संचार तंत्र की कम्युनिकेशन जो शरीर में होता है, सुनना और बोलना, इससे संबंधित समस्या हो सकती है। और बुध के खराब होने पर सुनने की या सूंघने की समस्या भी हो सकती है। बुध अगर ज्यादा खराब हो जाए तो बोलने की समस्या भी हो जाती है। बुध खराब हो तो बच्चे बचपन में देर से बोलते हैं या नहीं बोल पाते या स्पष्ट अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बुध अगर कमजोर हो तो मामला इतना जटिल नहीं होता, कुछ समय बाद ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। कान नाक गले की समस्या आम तौर पर उम्र बढ़ने पर ज्यादा होती है, क्योंकि बुध युवावस्था का स्वामी है और 60s के बाद कान में दिक्कत होना, नाक में या बोलने में दिक्कत होना, ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुध का उतना सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी समस्या होने पर प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। अगर नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो फायदा होगा। संगीत सुनने से और मंत्र जप करने से भी लाभ होगा। अगर कान पूरी तरह से खराब नहीं है तो संगीत सुनने से भी फायदा होगा, और अगर वाणी में दिक्कत आ रही है तो मंत्र जप से भी आपको लाभ होगा। कान नाक गले की समस्या होने पर सलाह लेकर एक पेरीडॉट पहनना चाहिए, थोड़ा बड़ा पेरीडॉट 8-9 रत्ती का, या तो लॉकेट में या अंगूठी में बनवाकर धारण करें। कान नाक गले की समस्या के मामले में पेरीडॉट पहनने से बहुत लाभ होता है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुडलक में वक्त है आज के सवालों का और उनके जवाब देने का जो पंडित जी उन्हें देते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल का जवाब वो किसका देने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न दीपशिखा जी ने हमें लिखा है, आगरा उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। 18 नवंबर 1982 का जन्म है, शाम को 6:40, जन्म स्थान है फर्रुखाबाद में, लिखती हैं आगरा से। दीपशिखा जी कह रही हैं कि बहुत समय से मैं और मेरे पति एक मकान लेना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कब तक हमें हमारा मकान मिल पाएगा, कब तक हम अपना मकान खरीद पाएंगे। दीपशिखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान खरीदने का समय चल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगी, जमीन खरीदकर मकान बनवाने की संभावना नहीं लगती, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगी, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, इस साल के अक्टूबर के बाद पूरी तरह से कोशिश करिए, साल के अंत तक आपको लाभ हो जाएगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी अगला प्रश्न विनीता शर्मा ने हमें लिखा है और विनीता हमें मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 जून सन 2000। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन कर चुका है, क्या आगे उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या किसी और क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए? विनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से ये समझ में आता है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी तो पहले से ही कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी वो जारी रखें, गवर्नमेंट जॉब में उनके जाने की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 उनके लिए बेहतर है जब उनको सफलता मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके उनको पहना दीजिएगा, 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और सुबह और शाम उनसे कहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर बुध त्वचा की समस्या दे रहा हो, त्वचा से मतलब अगर आपके अनचाहे दाने हो रहे हो, रैशेस हो रहे हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है और इनके उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं।
1: देखिए, सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी त्वचा, और बुध आपके स्किन को, आपकी त्वचा को नियंत्रित करता है। बुध अगर त्वचा की समस्या दे तो क्या होगा, क्या उपाय करें? देखिए, बुध की त्वचा अगर समस्या दे, बुध अगर यहां समस्या पैदा करे, तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जो लोग उम्र के पहले आपको थोड़े बुजुर्ग दिखते हैं, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, वहां बुध कमजोर होता है। कभी कभी त्वचा रूखी हो जाती है और खराब भी हो जाती है। त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं। बुध अगर गड़बड़ होगा तो त्वचा की छोटी छोटी समस्याएं निरंतर लगी रहेंगी। और बुध की त्वचा की समस्या में छोटी छोटी झाइयां, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, ये आपके स्किन पर आ सकती है। अगर बुध की वजह से त्वचा में समस्या है तो क्या करेंगे? ऐसे में अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। सौंदर्य प्रसाधन का कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करें, और अगर त्वचा की समस्या कंट्रोल में ना आ रही हो तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के अगर बुध त्वचा की समस्या दे रहा है तो उगते सूर्य की रोशनी, खान पान और पन्ना, इसका प्रयोग करने से आपके त्वचा की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं कि अगर बुध ब्रेन या न्यूरो से संबंधित हमें समस्याएं दे रहा हो तो उसके पीछे के कारण क्या है और उससे बचने के उपाय क्या है, उनका समाधान क्या है।
1: देखिए, बुध आपके ब्रेन का भी स्वामी है, इसीलिए बुध ब्रेन से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे सकता है। कैसे? आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे आपका दिमाग काम करता है, बुध ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्वामी है। ये दिमाग को ठीक से काम करने में मदद करता है। बुध अगर कमजोर होगा तो आप चीजें भूलेंगे, आपको याददाश्त की समस्या परेशान करेगी। और बुध अगर खराब हो तो अल्जाइमर की समस्या, चीजों को भूल जाना, इसकी समस्या हो सकती है। पार्किंसंस, जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैरों में कंपन की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में अगर याददाश्त या ब्रेन की कोई दिक्कत आ रही है तो प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना लाभकारी होता है। साथ ही साथ हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सलाह लेकर एक पन्ना या एक नीलम अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए गुड लक में आप जानेंगे कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न राजदीपक जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1980। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। राजदीपक जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी के लिए अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं और इस वजह से मैं नौकरी बदलना चाहता हूं। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और नौकरी में बदलाव के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? राजदीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि वर्तमान नौकरी के जाने का संकट भी आ सकता है। इसलिए नौकरी बदलिए और अगर आप अभी कोशिश करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आपकी नौकरी बदल सकती है। आप बेहतर नौकरी में जा सकते हैं। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और रोज सुबह 108 बार हनुमान जी का मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न गौरव जी ने हमें लिखा है और गौरव जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1979। जन्म का समय शाम के 3:45। जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं गुड़गांव से। गौरव कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा? गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे चल करके आप व्यापार ही करेंगे। आपकी कुंडली में आगे व्यापार की ही संभावना बनती है और व्यापार के लिए आप जून 2027 के बाद अगर प्रयत्न करें तो अच्छा होगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार करने से बचिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार आपको सूट नहीं करेगा। बेहतर व्यापार और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में दाहिने हाथ

0: नई उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी, एक प्रश्न था, बुध का जो प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर वो कब सबसे ज्यादा दिखाई देता है और उसका लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है?
0: जी देखिए, बुध जो है वो किशोरावस्था में तीन एज में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव होता है। उम्र के 12 साल से लेकर 24 साल तक जो तीन एज का समय है उसमें बुध की भूमिका सर्वाधिक होती है, और उसी समय में बच्चे का या जिस भी व्यक्ति की उम्र 12 से 24 साल के बीच की है उसका दिमाग शार्प होता है या कमजोर होता है। तो अगर आपकी उम्र 12 साल से 24 साल के बीच की है तो आप बुध को बेहतर करके अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अच्छा बना पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। और सबसे आसान तरीका है बुध को बेहतर रखने का कि साफ सफाई से रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए और कोई ना कोई मंत्र जप या नाम जप निरंतर आप करते रहें तो आपका बुध बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 23 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी, धन के निवेश में सावधानी बनाए रखें, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो उसको पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, भूत है, प्रेत है, इस तरह की बात करते हैं। क्या ये सही है? देखिए, गर्भावस्था में किसी भी भारी और बड़े वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, क्योंकि उसकी डाल टूटने का खतरा है और बड़े वृक्षों के पास सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनसे भी खतरा हो सकता है। इसलिए खतरे से बचाने के लिए ऐसा कहा गया है, इसका भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं है।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं 23 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब हम जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है धनु। इनको शुक्र और शनि ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए, ऐसा करने से करियर और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर घर का काफी पैसा बीमारियों में खर्च होता हो, ज्यादातर पैसा रोग में, इलाज में खर्च होता हो, तो क्या करेंगे? घर का जो मुखिया है वो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएगा और हर अमावस्या को उनको खाने पीने की वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: बात करेंगे भारतीय नौसेना की, जिसके बेड़े में आज एक नया युद्धपोत शामिल किया गया, जिसका नाम INS मालवन है। ये माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो करीब 80% स्वदेशी तकनीक से बना है। माइनस बिछानी में मास्टर और घातक रॉकेट टॉर्पीडो से लैस ये नया युद्धपोत पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को पल भर में तबाह करने में सक्षम है।

समुद्र में इसका वार अचूक है, इसकी ताकत का कोई सानी नहीं है। आकार में भले ही ये बड़ा न हो, लेकिन इसकी हथियार प्रणाली इसे बेहद घातक बनाती है। नाम है INS मालवन।

0: जिसे आज नौसेना की बेड़े में शामिल किया गया है। इस नए नवेले युद्धपोत की कमिश्निंग सेरेमनी कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे पर हुई। कमिश्निंग सेरेमनी में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद रहे।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरिड आर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आर आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: हिंद महासागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए हाल के कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े की मजबूती के लिए एक के बाद एक कई आधुनिक और घातक युद्धपोत शामिल किए हैं। इस लिस्ट में अब INS मालवन का नाम शामिल हो गया है, जो माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इस क्लास की युद्धपोतों को खास तौर पर समुद्र के उथले इलाकों में छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। INS मालवन में फुर्ती, सटीकता और लंबे समय तक समुद्र में रहने जैसी क्षमताएं हैं। यही खूबियां इसे समुद्र में दुश्मन के खिलाफ बेहद घातक बनाती है।
2: इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले चार हफ्तों में ये पांचवा शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके तीन अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारबार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: इस युद्धपोत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, जिसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत का प्रतीक है और इसका प्रतीक चिन्ह वाघ नख है। भारतीय नौसेना ने बताया कि ये प्रतीक चिन्ह केवल एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वीरता, रणनीतिक कौशल, सतर्कता और आक्रामकता क्षमता को दर्शाता है।
3: Brazenly flaunting the Vagnak.
0: नौसेना के मुताबिक इस क्लास की युद्धपोत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे।
4: INS मालवन के आने से भारत की नौसेना में ताकत में काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि ये पनडुब्बियों का किलर कह सकते हैं, पनडुब्बियों को शिकारी कह सकते हैं। और जिस प्रकार से आज का युद्ध है कि जबकि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, उधर से बांग्लादेश सिर उठा रहा है और भारत की समुद्री सीमा जिसको कि नेवी गार्ड करती है वो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने गार्ड करना है, ऐसे में जरूरी है कि हमारी ताकत बढ़ती रहे। भारत की नेवी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ गई है। देखा जाए तो इस साल का 8वां प्लेटफॉर्म है और अगले कुछ महीनों में 12 प्लेटफॉर्म और बनने हैं। 51 से ज़्यादा नेवी के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं और उम्मीद है कि 2030 तक 150 से 160 प्लेटफॉर्म नेवी को सौंपे जाएंगे।
0: नेवी के इस नए सुरमा की एक खूबी यह भी है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, क्योंकि इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके हथियारों की बात करें तो दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इसमें RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पेडो लॉन्चर्स लगे हैं। वहीं यह समुद्र में गुप्त रूप से बारूदी सुरंग बिछाने की महारत रखता है। साथ ही एक 30mm क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 12.7mm की रिमोट कंट्रोल गन्स लगी है। इसके अलावा इसमें देश में ही विकसित अवैध सोनार और लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगा है, जो पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ लेता है।
4: ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बियों के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है। तो कई तरह से ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, सबमरीन में के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम है।
0: हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए INS मालवन का नौसेना में आना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसकी बदौलत न सिर्फ देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा और मजबूत होगी बल्कि अवैध भी होगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात करते हैं पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियों की। देखिए, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद अब बहुड़ा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। इससे जुड़े अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है। रथों की जांच के साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई गई। अब इंतजार उस पल का है जब महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर से अपने घर यानी श्री मंदिर के लिए दोबारा रवाना होंगे। 24 अप्रैल को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी।

0: आस्था, भक्ति और अपार उल्लास का ये पावन सैलाब जो सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में ही देखने को मिलता है। पुरी की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ अटूट श्रद्धा और आस्था की झलक देखने को मिल रही है। ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए लोग पूरे साल तक इंतजार करते हैं। यहाँ न कोई छोटा दिखता है न बड़ा, सबके मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु की एक झलक और उनके रथ की रस्सी को छूने का सौभाग्य। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही वाद्य यंत्रों की धुन और जय जगन्नाथ के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय है। गुंडीचा मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा है। लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ ही उनके रथों का दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
1: मैं पहली बार दर्शन करने आया हूं जगन्नाथपुरी में और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ में इतने अच्छे से दर्शन हो पाएगा, बट जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और मैं बहुत खुश हूँ।
2: यहाँ मुझे आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति और सुकून मिला है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के प्रशासनिक जो भी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और जो मंदिर के लोग हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ के जो लोकल भी है वो भी बहुत अच्छे से ये करते हैं।
0: मान्यता है कि रथों का स्पर्श और दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से आए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर केवल एक बार अपने प्रभु को निहार लेना चाहते हैं। फिलहाल महाप्रभु भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान हैं, जहां अडापा मंडप में अपने पालनहार को बेहद करीब से देखने का मौका भला कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन अब समय महाप्रभु की वापसी का है, वो पल जब भगवान अपने घर यानी श्री मंदिर में वापसी करेंगे। 9 दिनों तक मौसी के घर ठहरने के बाद जब महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ वापस श्री मंदिर के लिए रवाना होंगे तो उस भव्य और दिव्य यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। दरअसल उड़िया भाषा में बहुड़ा का मतलब ही होता है वापसी, इसीलिए इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है। इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे। वापसी के दौरान देवताओं का रथ मौसी माँ मंदिर के पास रुकता है। भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
3: महाप्रभु की पवित्र आज्ञा माला पाने के बाद आज दक्षिण मोड़ नीति प्रारंभ हो गया है। दक्षिण मोड़ नीति में सारे हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सभी आज मिलके अभी रथ को खींच के अपने सरदावाली में जहाँ पे स्थान है वहाँ पे सब रथ को ले आएंगे और इस प्रक्रिया में भी सारा अरेंजमेंट किया गया है और बाहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट सभी लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है।
0: बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिन रथों में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। उन रथों को एक बार फिर जांचा और परखा जा रहा है ताकि गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए।
4: देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया हो या कुछ कील वील निकल गया हो तो उसको चेकिंग करते हैं और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोरा कुछ कील वील निकल गया था, उसको हम चेकिंग कर लें।
0: जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर से बाहर खड़े अपने रथ में सवार होकर श्री मंदिर वापस लौटते हैं तो उससे पहले एक अहम रस्म निभाई जाती है। रथ यात्रा के सातवें दिन तीनों रथों को दक्षिण मोड़ दिया जाता है, मतलब ये कि तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार से हटाकर दक्षिण दिशा में नक्षणा द्वार तक लाया जाता है और नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन तीनों रथों को वापसी के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया।
5: रथ दक्षिण मोड़ बोला जाता है और एक अहम प्रक्रिया है जिसमें रथ को दोबारा से मोड़ के गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार से नक्षणा द्वार में जाके उसकी स्थापना की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं। उसके साथ हमारे जो रथ के जो भूई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं और सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जाहिर है महाप्रभु की रथ यात्रा जितनी भव्य होती है उतनी ही दिव्य उनकी बहुड़ा यात्रा भी होती है, जिसको लेकर गुंडीचा मंदिर में तैयारियां जारी हैं। भले ही महाप्रभु की श्री मंदिर में वापसी की बेला आ गई हो, लेकिन इस दौरान हुई हेरा पंचमी की रस्म में भव्य का उत्सव देखने को मिला। माँ लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया। आगामी 24 जुलाई को महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर से वापस अपने निवास श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुड़ा यात्रा के इस ऐतिहासिक दिन फिर से वही नजारा होगा। लाखों हाथ विशाल रस्सियों को खींचेंगे और बड़ा डांड फिर से भक्ति के महासागर में तब्दील हो जाएगा। तो जिस किसी ने छेरा पेहरा की रस्म के साथ श्री मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा में भगवान के दर्शन नहीं किए, उसके लिए 24 जुलाई को होने वाली बहुड़ा यात्रा अपने आराध्य की एक झलक पाने, उनके दर्शन करने का एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित है, लेकिन कटरा में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर, चाय, नाश्ते और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी यात्रा को परेशानी का सामना न करना पड़े।
7: आस्था और भक्ति की इस यात्रा में मौसम की वजह से थोड़ी अड़चने जरूर आई। दोनों ही धामों की यात्रा पिछले चार दिनों से स्थगित है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। हर किसी को उम्मीद है कि मौसम की दुश्वारियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी और वो अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर पाएंगे। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से माँ वैष्णो देवी यात्रा आज भी रुकी है। कटरा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर का इंतजाम किया है। श्रद्धालुओं को गर्म खाना, चाय, पीने का पानी समेत दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
8: पिछले तीन दिन से यहाँ पे हूँ। 19 तारीख हम रात को यहाँ पे आ गए थे, पर श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था हो रही है सर, लोगों के लिए खाने के लिए, पानी व्यवस्था के लिए और रहने के लिए भी डोर मैट उन्होंने फ्री सुविधा कर रखी है। जब तक यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से चाय, नाश्ता, पानी और डोर मैट्री के लिए व्यवस्था दे रखी है। हम
9: यहाँ पे आया हुआ चार रोज हो गया, यहाँ का व्यवस्था खाना का अच्छा लगा और चार रोज से बंद है माँ वैष्णो देवी का। हम घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे अच्छा लगा खाना का व्यवस्था। हम लोग पांच रोज से हैं, यही है जय माता जी।
7: आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सफाई कर्मी दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि मार्ग जल्दी से जल्दी सुरक्षित बनाया जाए और श्रद्धालु फिर से उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। कुछ ऐसे ही हालात अमरनाथ यात्रा रूट पर भी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू बेस कैंप पर तैयार है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की हुई है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन का पूरा जोर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर है, लिहाजा श्रद्धालुओं को बालटाल और लुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंपों में ठहराया गया है और जरूरत की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इंतजार बस अब मौसम के ठीक होने का है, जिससे अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जा सके। श्री अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने मौसम में सुधार होने और रास्तों को सुरक्षित होने तक आवाजाही रोक दी है। खराब मौसम के कारण बुधवार को लगातार चौथे दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और बालटाल और नुनवान के ट्रांजिट कैंप्स और बेस कैंप में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवखेड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा लगातार चौथे दिन भी बंद रही। जम्मू से सुनील जी भट्ट और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
12: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
2: किस साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बाराती हुए शामिल।

मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव. आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल. जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे. आज इंडियन नेवी को ताकत का नया और स्वदेशी बूस्टर डोज मिल गया है. आज एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है. कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया. इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. आईएनएस मालवन को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि 2026 अभी आधे से कुछ ही ज्यादा गुजरा है और अब तक केवल इसी साल में आधा दर्जन के करीब स्वदेशी युद्धपोत नेवी को मिल चुके हैं. हाल ही के सालों में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया और अब एक और स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया. ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल है.

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और उन्हें शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघ नख। आपको बता दें कि वाघ नख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघ नख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस मिशन में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स है पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: INS मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बी के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर है, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज है, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बी के खिलाफ सफल हो जाएंगी। साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है। ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट जो है वो देश में बने हुए।
0: RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: स्थित प्रज्ञरणीषु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डनरीच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंदगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
0: निश्चित रूप से भारत के महेंद्र बाहुबली ने नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा किया है। INS महेंद्रगिरी की कमिशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्ध पोतों ने, जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्ध पोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध पोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्ध पोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्धपोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्धपोतों की एक साथ कमिश्निंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रय का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और

0: कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शाम।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज इन 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आसमान में दिखाए गए अद्भुत ड्रोन शो का ये वीडियो है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी हमले के

0: बाद ऑयल डिपो में लगी आग का ये वीडियो है। इस दावे की पड़ताल भी आगे होगी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: शाकेपुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आसमान में चल रहे एक भव्य ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर एक बेहद आकर्षक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई सारे ड्रोन से एक साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके रथ भी दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रोन्स ने हिंदी में जय जगन्नाथ पुरी धाम रथ यात्रा भी लिखा। इस नजारे को वहाँ मौजूद सैकड़ों लोग अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा में एक शानदार ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। जय जगन्नाथ, उनकी कृपा से सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा को का बताकर बेहद आकर्षक वीडियो वायरल किया जा रहा है और वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाती रंग बिरंगी लाइटों के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल आकृतियां रथ और कमल का फूल बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे खड़े सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई के लिए सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सर्च के दौरान ये जानकारी मिली कि प्रशासन ने मंदिर परिसर के ऊपर किसी उड़ने वाली चीज को मंजूरी नहीं दी है। रथ यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने 16 से 27 जुलाई तक पूरी शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया है, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में मौजूद भीड़ में जितने भी लोग मोबाइल हाथ में लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सभी के हाथ की स्थिति, मोबाइल का मॉडल और स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हाल ही में वाकई ऐसा ड्रोन शो हुआ होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसके बारे में खबरें छापी होती, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। सर्च के दौरान हमें 10 जुलाई 2026 को एक वेबसाइट प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार पुरी प्रशासन ने 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 16 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक मंदिर के आसपास किसी भी व्यक्ति, संस्था या निजी ऑपरेटर को ड्रोन या मानव रहित विमान उड़ाने की सख्त मनाही है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 11 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुरी जगन्नाथ परिसर को साल 2028 तक रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन को तुरंत हवा में ही निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई ऐसी खामियां नजर आईं जो इसके AI जनरेटेड होने की पुष्टि करती हैं। उदाहरण के तौर पर वीडियो के नीचे दाईं तरफ ध्यान से देखने पर गूगल के AI मॉडल जिमिनी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये लोगो ऐसे वीडियो और तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया जाता है। इसके बाद हमने वीडियो को सिंथ ID टूल से चेक किया। गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियोस को डिटेक्ट करने वाला टूल सिंथ ID ने भी यही बताया जबकि इसे एआई से बनाया गया है। वायरल वीडियो को हमने हाई मॉडरेशन पर भी चेक किया। इस टूल ने 94.3% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। अक्टूबर 2025 से ही डीजीसीए ने जगन्नाथ मंदिर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। क्या इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज क्षेत्र में ईरानी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए चाबहार, तबरीज, बुशहर और बंदर अब्बास के आसपास के क्षेत्रों में लगातार एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी जंग से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिखाई दे रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है और ये हाल फिलहाल का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर हुए मिसाइल अटैक के बाद का ये पूरा मंजर है, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिसाइल अटैक का ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिसाइल अटैक हुआ होता तो फिर आसपास बर्बादी के निशान जरूर देखने को मिलते, लोगों के बीच दहशत का माहौल होता, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि जेद्दा में तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमला हुआ, जिससे दो स्टोरेज टैंकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक फेसबुक पेज से 25 मार्च 2022 को इसी घटना का दूसरा एंगल का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अनुसार सऊदी अरब के शहर जेड्डा में एक ऑयल डिपो में भीषण आग लगने की खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने माना है कि उन्होंने सऊदी अरब पर कई हमले किए। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने बताया कि यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए। जेड्डा में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। एक YouTube चैनल पर भी 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो को सऊदी अरब के शहर जेड्डा में हुए हमले का बताकर पोस्ट किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो सऊदी अरब के जेड्डा का है, जहां तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमले में आग लग गई थी। इस वीडियो का हालिया जंग से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्चक में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्चक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
3: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये मां सर आइजैक न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए मां ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। मां ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे में एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया है और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया है। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है तो वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर टोकरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े की लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देख माँ की जमकर सराहना कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उन माओं को कि अगर उनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं तो वो ये तस्वीरें देखकर सीख ले। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई थी जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस आयोजन की धूम पूरी दुनिया के साथ गांवों, कस्बों और गलियों तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए नन्हे बच्चे भी अब पीछे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली है। अब इस मासूमियत से भरी यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की कोशिश दिख रही है जहाँ उन्होंने महंगी सजावट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो तो बस अपनी ही तरह छोटी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। रथ को खास तरीके और चीजों से बनाया गया है। रथ बनाने के लिए पॉलिथीन और अखबार का इस्तेमाल हुआ है जो अक्सर घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। बच्चों ने इन्हीं चीजों को कुछ इस तरह में लगाया है कि रथ की सुंदरता बढ़ी है, चमकीली और रंगीन सजावट की कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो में नन्हे बलभद्र और सुभद्रा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी मोहल्ले के बस स्टैंड पर बड़े आराम से सड़क की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ देर में स्कूल की बस आने वाली है। किसी ने उसे वहां जाने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग दी गई। फिर भी वो हर दिन सही समय पर बस स्टॉप पहुंच जाता है और अपनी नन्ही दोस्त का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आकर वहां रुकती है। बस का दरवाजा खुलते ही छोटी बच्ची नीचे उतरती है। अपनी प्यारी दोस्त को देखते ही डॉगी खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुंचता है और उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है और चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये पल उसके लिए कितना खास है। बच्ची भी मुस्कुराते हुए अपने वफादार दोस्त से मिलती है। दोनों का ये खूबसूरत मिलन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्ची अपने वफादार दोस्त से तो मिलती ही है, साथ साथ और भी दो तीन डॉगी से मिलती है और वीडियो के सबसे आखिर में एक डॉगी के बच्चे से भी मिलती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो नन्ही बहनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि बच्चियों के आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई है जबकि दूसरी बच्ची उसके पैरों पर संतुलन बनाते हुए खड़ी नजर आती है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चियां इस पूरे पल को किसी खेल की तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही है। ऊपर खड़ी बच्ची पूरे विश्वास के साथ अपने कदम जमाए हुए है जबकि नीचे लेटी उसकी बहन उसे पूरी तरह सपोर्ट करती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस वीडियो को और भी खास बना देती है। दोनों बहनें अलग अलग अंदाज में बैलेंस बनाती नजर आती हैं। कभी वो अपने हाथों पर संतुलन बनाती हैं, तो कभी पैरों के सहारे एक दूसरे को संभालती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वो उल्टा होकर भी मजेदार करतब दिखाती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा इस वीडियो की सबसे खास बात है। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है। स्केट्स के साथ उसके मूव दर्शकों को खूब भा रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभाल लेती है, फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट्री और असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता कि वो संभली है। लोग उसे उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा मान लेते हैं। लोगों को न सिर्फ उसका टैलेंट पसंद आ रहा है बल्कि उसकी सूझबूझ और कुशलता को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। भाई बहन की मासूम बॉन्डिंग और एक मजेदार पल ने हर किसी को अपने बचपन की याद दिला दी है। वीडियो में एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को मशहूर नर्सरी राइम जॉनी जॉनी यस पापा याद कराने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो बिल्कुल किसी टीचर की तरह धैर्य के साथ भाई को लाइन दर लाइन कविता सिखाती है, लेकिन छोटा भाई हर बार कुछ न कुछ भूल जाता है या गलत बोल देता है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है।
4: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी
5: जॉनी जॉनी
4: जॉनी यस पापा बोलना। देखो क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल। यस पापा बोल।
5: यस पापा।
4: ईटिंग शुगर। ईटिंग शुगर ना पापा।
3: वीडियो में बहन बार बार बार अपने भाई को सही शब्द बोलने के लिए समझाती है, कभी प्यार से तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे दोहराने के लिए कहती है। दूसरी ओर भाई भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मासूम गलतियां देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की ये प्यारी बातचीत लोगों को अपने बचपन और भाई बहन के साथ बिताए ऐसे ही पलों की याद दिला रही है।
4: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी यस पापा। यस पापा बोलना तेरे को। क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल। यस पापा बोल।
5: यस पापा।
4: ईटिंग शुगर।
3: सोशल मीडिया पर पिता का अनोखा पढ़ाने का तरीका लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता अपने छोटे से बच्चे को मैथ के अलग अलग साइन बड़े ही मजेदार अंदाज में सिखाते नजर आ रहे हैं। कभी वो अपने हाथों को क्रॉस करके डिवीजन का साइन बनाते नजर आते हैं, तो कभी पूरे शरीर और हाथों की मदद से स्क्वायर रूट समझाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग हाथों के मूवमेंट और इशारों के जरिए जोड़, घटाव, गुणा, प्रतिशत और बराबर जैसे मैथ के चिन्हों को बेहद आसान और मजेदार तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में बच्चे का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर खड़ा है और वो वहाँ खड़े होकर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वो खड़े खड़े पीछे की तरफ झुकता है और अपने सिर को पीछे की तरफ से ही पैरों के बीच तक ला देता है। ऐसा वो कई बार करके दिखाता है और रफ्तार बड़ी गजब की है। इसके बाद वो एक बार फिर से ऐसा ही करता है, मगर इस बार वो सिर को पीछे की तरफ से पैरों के बीच से निकालता है और फिर पूरी तरह से सीधा हो जाता है। ऐसा भी वो दो बार करता है। इसके बाद वो अपने शरीर को एक अलग ही आकार में करके लोगों को दिखाता है और वो भी हैरान करने जैसा ही था। शैतान कौवे की कारकस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौवा सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता है। बिल्ली ने सोचा दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, फिर क्या, दोनों लड़ पड़ती है। इधर कौवा फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौवा तो उड़नछू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती है। यूजर्स इन तस्वीरों को देख खूब लुफ्त उठा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
7: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
6: to live sports action.
8: To the near side corner, to wrap around, he scores!
6: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे ऐसी स्थिति में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं, आइए चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं, और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है, खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें, और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11

0: से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है एसक्यू। जैसे आप लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलंगट हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया, काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
1: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अर्षफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या बुद्ध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुद्ध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुद्ध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion.

0: topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शामिल।

मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव. आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल. जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे. आज इंडियन नेवी को ताकत का नया और स्वदेशी बूस्टर डोज मिल गया है. आज एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है. कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया. इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. आईएनएस मालवन को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि 2026 अभी आधे से कुछ ही ज्यादा गुजरा है और अब तक केवल इसी साल में आधा दर्जन के करीब स्वदेशी युद्धपोत नेवी को मिल चुके हैं. हाल ही के सालों में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया और अब एक और स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया. ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल है.

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और उन्हें शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघ नख। आपको बता दें कि वाघ नख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघ नख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स है पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: INS मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर है, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज है, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बियों के खिलाफ सफल हो जाएंगी। साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है। ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट जो है वो देश में बने हुए।
0: RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: कथित प्रज्ञरणीषु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डन ईच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 60 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंदगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
0: निश्चित रूप से भारत के महेंद्र बाहुबली ने नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा किया है। INS महेंद्रगिरी की कमिशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्ध पोतों ने, जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्ध पोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध पोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्ध पोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्धपोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्धपोतों की एक साथ कमिश्निंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रय का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान, और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेज है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी

0: सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: क्या बुध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शाम।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: नमस्कार, नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पूरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आसमान में दिखाए गए अद्भुत ड्रोन शो का ये वीडियो है। क्या है इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग का ये वीडियो है। इस दावे की पड़ताल भी आगे होगी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आसमान में चल रहे एक भव्य ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर एक बेहद आकर्षक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई सारे ड्रोन एक साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके रथ भी दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रोन्स ने हिंदी में जय जगन्नाथ पुरी धाम रथ यात्रा भी लिखा। इस नजारे को वहां मौजूद सैकड़ों लोग अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा में एक शानदार ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। जय जगन्नाथ, उनकी कृपा से सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर बेहद आकर्षक वीडियो वायरल किया जा रहा है और वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाती रंग बिरंगी लाइटों के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल आकृतियां रथ और कमल का फूल बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे खड़े सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई के लिए सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी मिली कि प्रशासन ने मंदिर परिसर के ऊपर किसी उड़ने वाली चीज को मंजूरी नहीं दी है। रथ यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने 16 से 27 जुलाई तक पूरी शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया है, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में मौजूद भीड़ में जितने भी लोग मोबाइल हाथ में लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सभी के हाथ की स्थिति, मोबाइल का मॉडल और स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हाल ही में वाकई ऐसा ड्रोन शो हुआ होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसके बारे में खबरें छापी होती, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। सर्च के दौरान हमें 10 जुलाई 2026 को एक वेबसाइट प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार पुरी प्रशासन ने 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 16 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक मंदिर के आसपास किसी भी व्यक्ति, संस्था या निजी ऑपरेटर को ड्रोन या मानव रहित विमान उड़ाने की सख्त मनाही है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 11 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुरी जगन्नाथ परिसर को साल 2028 तक रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन को तुरंत हवा में ही निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई ऐसी खामियां नजर आईं जो इसके AI जेनरेटेड होने की पुष्टि करती हैं। उदाहरण के तौर पर वीडियो के नीचे दाईं तरफ ध्यान से देखने पर Google के AI मॉडल जिमिनी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये लोगो ऐसे वीडियो और तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें Google AI के जरिए बनाया जाता है। इसके बाद हमने वीडियो को सिंथ ID टूल से चेक किया। Google AI से बनी तस्वीरों और वीडियोस को डिटेक्ट करने वाला टूल सिंथ ID ने भी यही बताया कि इसे AI से बनाया गया है। वायरल वीडियो को हमने हाई मॉडरेशन पर भी चेक किया। इस टूल ने 94.3% स्कोर के साथ इसे संभावित AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये AI जनरेटेड वीडियो है। अक्टूबर 2025 से ही DGCA ने जगन्नाथ मंदिर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। क्या इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मोस क्षेत्र में ईरानी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए चाबहार, तबरीज, बुशहर और बंदर अब्बास के आसपास के क्षेत्रों में लगातार एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी जंग से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिखाई दे रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है और ये हाल फिलहाल का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर हुए मिसाइल अटैक के बाद का ये पूरा मंजर है, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिसाइल अटैक का ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिसाइल अटैक हुआ होता तो फिर आसपास बर्बादी के निशान जरूर देखने को मिलते, लोगों के बीच दहशत का माहौल होता, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली है। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि जेद्दा में तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमला हुआ, जिससे दो स्टोरेज टैंकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक फेसबुक पेज से 25 मार्च 2022 को इसी घटना का दूसरा एंगल का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अनुसार सऊदी अरब के शहर जेड्डा में एक ऑयल डिपो में भीषण आग लगने की खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने माना है कि उन्होंने सऊदी अरब पर कई हमले किए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए। जेड्डा में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। एक YouTube चैनल पर भी 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो को सऊदी अरब के शहर जेड्डा में हुए हमले का बताकर पोस्ट किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो सऊदी अरब के जेड्डा का है, जहां तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमले में आग लग गई थी। इस वीडियो का हालिया जंग से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
5: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये मां सर आइजैक न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए मां ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। मां ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे में एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया है और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया है। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है तो वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर टोकरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े की लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देख माँ की जमकर सराहना कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उन माओं को कि अगर उनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं तो वो ये तस्वीरें देख कर सीख लें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई थी जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस आयोजन की धूम पूरी दुनिया के साथ गांवों, कस्बों और गलियों तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए नन्हे बच्चे भी अब पीछे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली है। अब इस मासूमियत से भरी यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की कोशिश दिख रही है जहां उन्होंने महंगी सजावट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो तो बस अपनी ही तरह छोटी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। रथ को खास तरीके और चीजों से बनाया गया है। रथ बनाने के लिए पॉलिथीन और अखबार का इस्तेमाल हुआ है जो अक्सर घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। बच्चों ने इन्हीं चीजों को कुछ इस तरह में लगाया है कि रथ की सुंदरता बढ़ी है, चमकीली और रंगीन सजावट की कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो में नन्हे बलभद्र और सुभद्रा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी मोहल्ले के बस स्टैंड पर बड़े आराम से सड़क की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ देर में स्कूल की बस आने वाली है। किसी ने उसे वहां जाने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग दी गई। फिर भी वो हर दिन सही समय पर बस स्टॉप पहुंच जाता है और अपनी नन्ही दोस्त का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आकर वहाँ रुकती है। बस का दरवाजा खुलते ही छोटी बच्ची नीचे उतरती है। अपनी प्यारी दोस्त को देखते ही डॉगी खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुँचता है और उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है और चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये पल उसके लिए कितना खास है। बच्ची भी मुस्कुराते हुए अपने वफादार दोस्त से मिलती है। दोनों का ये खूबसूरत मिलन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्ची अपने वफादार दोस्त से तो मिलती ही है, साथ साथ और भी दो तीन डॉगी से मिलती है और वीडियो के सबसे आखिर में एक डॉगी के बच्चे से भी मिलती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो नन्ही बहनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि बच्चियों के आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई है जबकि दूसरी बच्ची उसके पैरों पर संतुलन बनाते हुए खड़ी नजर आती है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चियां इस पूरे पल को किसी खेल की तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही है। ऊपर खड़ी बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम जमाए हुए है जबकि नीचे लेटी उसकी बहन उसे पूरी तरह सपोर्ट करती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस वीडियो को और भी खास बना देती है। दोनों बहनें अलग अलग अंदाज में बैलेंस बनाती नजर आती हैं। कभी वो अपने हाथों पर संतुलन बनाती हैं, तो कभी पैरों के सहारे एक दूसरे को संभालती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वो उल्टा होकर भी मजेदार करतब दिखाती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा इस वीडियो की सबसे खास बात है। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है। स्केट्स के साथ उसके मूव दर्शकों को खूब भा रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभाल लेती है, फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट्री और असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता कि वो संभली है। लोग उसे उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा मान लेते हैं। लोगों को न सिर्फ उसका टैलेंट पसंद आ रहा है बल्कि उसकी सूझबूझ और कुशलता को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। भाई बहन की मासूम बॉन्डिंग और एक मजेदार पल ने हर किसी को अपने बचपन की याद दिला दी है। वीडियो में एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को मशहूर नर्सरी राइम जॉनी जॉनी यस पापा याद कराने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो बिल्कुल किसी टीचर की तरह धैर्य के साथ भाई को लाइन दर लाइन कविता सिखाती है, लेकिन छोटा भाई हर बार कुछ न कुछ भूल जाता है या गलत बोल देता है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है।
6: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी यस पापा। यस पापा बोलना तेरे को। क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल। यस पापा बोल।
7: यस पापा।
6: ईटिंग शुगर।
5: वीडियो में बहन बार बार अपने भाई को सही शब्द बोलने के लिए समझाती है, कभी प्यार से तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे दोहराने के लिए कहती है। दूसरी ओर भाई भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मासूम गलतियां देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की ये प्यारी बातचीत लोगों को अपने बचपन और भाई बहन के साथ बिताए ऐसे ही पलों की याद दिला रही है।
6: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी यस पापा बोलना तेरे को। क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल। यस पापा बोल।
7: यस पापा।
6: ईटिंग शुगर। ईटिंग शुगर नो पापा। टेलिंग गाय नो पापा। ओपन माउथ बोल। हा हा हा।
5: सोशल मीडिया पर पिता का अनोखा पढ़ाने का तरीका लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता अपने छोटे से बच्चे को मैथ के अलग अलग साइन बड़े ही मजेदार अंदाज में सिखाते नजर आ रहे हैं। कभी वो अपने हाथों को क्रॉस करके डिवीजन का साइन बनाते नजर आते हैं, तो कभी पूरे शरीर और हाथों की मदद से स्क्वायर रूट समझाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग हाथों के मूवमेंट और इशारों के जरिए जोड़ घटाव गुणा प्रतिशत और बराबर जैसे मैथ के चिन्हों को बेहद आसान और मजेदार तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में बच्चे का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग दंग है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर खड़ा है और वो वहाँ खड़े होकर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वो खड़े खड़े पीछे की तरफ झुकता है और अपने सिर को पीछे की तरफ से ही पैरों के बीच तक ला देता है। ऐसा वो कई बार करके दिखाता है और रफ्तार बड़ी गजब की है। इसके बाद वो एक बार फिर से ऐसा ही करता है, मगर इस बार वो सिर को पीछे की तरफ से पैरों के बीच से निकालता है और फिर पूरी तरह से सीधा हो जाता है। ऐसा भी वो दो बार करता है। इसके बाद वो अपने शरीर को एक अलग ही आकार में करके लोगों को दिखाता है और वो भी हैरान करने जैसा ही था। शैतान कौवे की कारकस्तानी की तस्वीरें देखिए सरा। कौवा सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता है। बिल्ली ने सोचा दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, फिर क्या, दोनों लड़ पड़ती है। इधर कौवा फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौवा तो उड़नछू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देख खूब लुफ्त उठा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे ऐसी स्थिति में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मनोवर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं, और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी लेकिन गंवाए राहत शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें, और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है एसक्यू।
5: रात से
4: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी एसक्यू हो गया, काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अशफवानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या बुद्ध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुद्ध आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुद्ध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here.
9: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देशभर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शामिल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। आज इंडियन नेवी को ताकत का नया और स्वदेशी बूस्टर डोज मिल गया है। आज एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आईएनएस मालवन को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2026 अभी आधे से कुछ ही ज्यादा गुजरा है और अब तक केवल इसी साल में आधा दर्जन के करीब स्वदेशी युद्धपोत नेवी को मिल चुके हैं। हाल ही के सालों में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया और अब एक और स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल है।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, और उन्हीं शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघनख। आपको बता दें कि वाघनख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघनख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स है पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: आईएनएस मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर है, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज है, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बियों के खिलाफ सफल हो जाएंगी। साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है। ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट्स जो है वो देश में बने हुए।
0: आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: निर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: स्थित प्रज्ञरणीषु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, और ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है, और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डन ईच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और बिंदगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
0: निश्चित रूप से भारत के महेंद्र बाहुबली ने नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा किया है। INS महेंद्रगिरी की कमिशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्ध पोतों ने जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्ध पोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध पोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्ध पोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्ध पोतों का कमीशनिंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्ध पोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्ध पोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्ध पोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रय का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्ध पोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई वहां के जो मैपिंग है,

0: भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं।
1: खास बात ये कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शाम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात सोशल

0: मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आसमान में दिखाए गए अद्भुत ड्रोन शो का ये वीडियो है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग का ये वीडियो है। इस दावे की पड़ताल भी आगे होगी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: कि पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आसमान में चल रहे एक भव्य ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर एक बेहद आकर्षक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई सारे ड्रोन से एक साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके रथ भी दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रोन्स ने हिंदी में जय जगन्नाथ पुरी धाम रथ यात्रा भी लिखा। इस नजारे को वहां मौजूद सैकड़ों लोग अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा में एक शानदार ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। जय जगन्नाथ, उनकी कृपा से सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा का बताकर बेहद आकर्षक वीडियो वायरल किया जा रहा है और वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाती रंग बिरंगी लाइटों के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल आकृतियां रथ और कमल का फूल बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे खड़े सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रही वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई के लिए सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी मिली कि प्रशासन ने मंदिर परिसर के ऊपर किसी उड़ने वाली चीज को मंजूरी नहीं दी है। रथ यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने 16 से 27 जुलाई तक पूरी शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया है, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में मौजूद भीड़ में जितने भी लोग मोबाइल हाथ में लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सभी के हाथ की स्थिति, मोबाइल का मॉडल और स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हाल ही में वाकई ऐसा ड्रोन शो हुआ होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसके बारे में खबरें छापी होती, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। सर्च के दौरान हमें 10 जुलाई 2026 को एक वेबसाइट प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार पुरी प्रशासन ने 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर के 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 16 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक मंदिर के आसपास किसी भी व्यक्ति, संस्था या निजी ऑपरेटर को ड्रोन या मानव रहित विमान उड़ाने की सख्त मनाही है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 11 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुरी जगन्नाथ परिसर को साल 2028 तक रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन को तुरंत हवा में ही निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई ऐसी खामियां नजर आईं जो इसके एआई जेनरेटेड होने की पुष्टि करती हैं। उदाहरण के तौर पर वीडियो के नीचे दाईं तरफ ध्यान से देखने पर गूगल के AI मॉडल जिमिनी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये लोगो ऐसे वीडियो और तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया जाता है। इसके बाद हमने वीडियो को सिंथ ID टूल से चेक किया। गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियोस को डिटेक्ट करने वाला टूल सिंथ ID ने भी यही बताया कि इसे AI से बनाया गया है। वायरल वीडियो को हमने हाई मॉडरेशन पर भी चेक किया। इस टूल ने 94.3% स्कोर के साथ इसे संभावित AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये AI जनरेटेड वीडियो है। अक्टूबर 2025 से ही DGCA ने जगन्नाथ मंदिर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। क्या इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज क्षेत्र में ईरानी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए चाबहार, तबरीज, बुशहर और बंदर अब्बास के आसपास के क्षेत्रों में लगातार एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी जंग से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिखाई दे रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है और ये हाल फिलहाल का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान पर हुए मिसाइल अटैक के बाद का ये पूरा मंजर है, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिसाइल अटैक का ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिसाइल अटैक हुआ होता तो फिर आसपास बर्बादी के निशान जरूर देखने को मिलते, लोगों के बीच दहशत का माहौल होता, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि जेद्दा में तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमला हुआ, जिससे दो स्टोरेज टैंकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक फेसबुक पेज से 25 मार्च 2022 को इसी घटना का दूसरा एंगल का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अनुसार सऊदी अरब के शहर जेड्डा में एक ऑयल डिपो में भीषण आग लगने की खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने माना है कि उन्होंने सऊदी अरब पर कई हमले किए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए। जेड्डा में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। एक YouTube चैनल पर भी 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो को सऊदी अरब के शहर जेड्डा में हुए हमले का बताकर पोस्ट किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो सऊदी अरब के जेड्डा का है, जहां तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमले में आग लग गई थी। इस वीडियो का हालिया जंग से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
3: कुछ दिल को छू जाती है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये मां सर आइजैक न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए मां ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। मां ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे में एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया है और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया है। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है तो वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर टोकरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े की लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देख माँ की जमकर सराहना कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उन माओं को कि अगर उनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं तो वो ये तस्वीरें देखकर सीख लें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई थी जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस आयोजन की धूम पूरी दुनिया के साथ गांवों, कस्बों और गलियों तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए नन्हे बच्चे भी अब पीछे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली है। अब इस मासूमियत से भरी यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की कोशिश दिख रही है जहाँ उन्होंने महंगी सजावट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो तो बस अपनी ही तरह छोटी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। रथ को खास तरीके और चीजों से बनाया गया है। रथ बनाने के लिए पॉलिथीन और अखबार का इस्तेमाल हुआ है जो अक्सर घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। बच्चों ने इन्हीं चीजों को कुछ इस तरह में लगाया है कि रथ की सुंदरता बढ़ी है, चमकीली और रंगीन सजावट की कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो में नन्हे बलभद्र और सुभद्रा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी मोहल्ले के बस स्टैंड पर बड़े आराम से सड़क की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ देर में स्कूल की बस आने वाली है। किसी ने उसे वहाँ जाने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग दी गई। फिर भी वो हर दिन सही समय पर बस स्टॉप पहुँच जाता है और अपनी नन्ही दोस्त का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आकर वहाँ रुकती है। बस का दरवाजा खुलते ही छोटी बच्ची नीचे उतरती है। अपनी प्यारी दोस्त को देखते ही डॉगी खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुँचता है और उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है और चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये पल उसके लिए कितना खास है। बच्ची भी मुस्कुराते हुए अपने वफादार दोस्त से मिलती है। दोनों का ये खूबसूरत मिलन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्ची अपने वफादार दोस्त से तो मिलती ही है, साथ साथ और भी दो तीन डॉगी से मिलती है और वीडियो के सबसे आखिर में एक डॉगी के बच्चे से भी मिलती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो नन्ही बहनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि बच्चियों के आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई है जबकि दूसरी बच्ची उसके पैरों पर संतुलन बनाते हुए खड़ी नजर आती है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चियां इस पूरे पल को किसी खेल की तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही है। ऊपर खड़ी बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम जमाए हुए है जबकि नीचे लेटी उसकी बहन उसे पूरी तरह सपोर्ट करती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस वीडियो को और भी खास बना देती है। दोनों बहनें अलग अलग अंदाज में बैलेंस बनाती नजर आती हैं। कभी वो अपने हाथों पर संतुलन बनाती हैं, तो कभी पैरों के सहारे एक दूसरे को संभालती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वो उल्टा होकर भी मजेदार करतब दिखाती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा इस वीडियो की सबसे खास बात है। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है। स्केट्स के साथ उसके मूव दर्शकों को खूब भा रही हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभाल लेती है। फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट्री और असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता कि वो संभली है। लोग उसे उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा मान लेते हैं। लोगों को न सिर्फ उसका टैलेंट पसंद आ रहा है बल्कि उसकी सूझबूझ और कुशलता को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। भाई बहन की मासूम बॉन्डिंग और एक मजेदार पल ने हर किसी को अपने बचपन की याद दिला दी है। वीडियो में एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को मशहूर नर्सरी राइम जॉनी जॉनी यस पापा याद कराने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो बिल्कुल किसी टीचर की तरह धैर्य के साथ भाई को लाइन दर लाइन कविता सिखाती है, लेकिन छोटा भाई हर बार कुछ न कुछ भूल जाता है या गलत बोल देता है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है।
5: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी यस पापा। यस पापा बोलना तेरे को। क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल। यस पापा बोल।
6: यस पापा।
5: ईटिंग सुगर। ईटिंग सुगर ना पापा।
4: वीडियो में बहन बार बार अपने भाई को सही शब्द बोलने के लिए समझाती है, कभी प्यार से तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे दोहराने के लिए कहती है। दूसरी ओर भाई भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मासूम गलतियां देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की ये प्यारी बातचीत लोगों को अपने बचपन और भाई बहन के साथ बिताए ऐसे ही पलों की याद दिला रही है।
5: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी जॉनी जॉनी यस पापा, यस पापा बोलना तेरे को। क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल, यस पापा बोल,
6: यस पापा।
5: ईटिंग सुगर, ईटिंग सुगर ना पापा। टेलिंग गाय नो पापा,
6: टेलिंग गाय नो पापा।
5: ओपन ना माउथ बोल, हा
4: सोशल मीडिया पर पिता का अनोखा पढ़ाने का तरीका लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता अपने छोटे से बच्चे को मैथ के अलग अलग साइन बड़े ही मजेदार अंदाज में सिखाते नजर आ रहे हैं। कभी वो अपने हाथों को क्रॉस करके डिवीजन का साइन बनाते नजर आते हैं, तो कभी पूरे शरीर और हाथों की मदद से स्क्वायर रूट समझाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग हाथों के मूवमेंट और इशारों के जरिए जोड़, घटाव, गुणा, प्रतिशत और बराबर जैसे मैथ के चिन्हों को बेहद आसान और मजेदार तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में बच्चे का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग दंग है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर खड़ा है और वो वहाँ खड़े होकर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वो खड़े खड़े पीछे की तरफ झुकता है और अपने सिर को पीछे की तरफ से ही पैरों के बीच तक ला देता है। ऐसा वो कई बार करके दिखाता है और रफ्तार बड़ी गजब की है। इसके बाद वो एक बार फिर से ऐसा ही करता है, मगर इस बार वो सिर को पीछे की तरफ से पैरों के बीच से निकालता है और फिर पूरी तरह से सीधा हो जाता है। ऐसा भी वो दो बार करता है। इसके बाद वो अपने शरीर को एक अलग ही आकार में करके लोगों को दिखाता है और वो भी हैरान करने जैसा ही था। शैतान कौवे की कारकस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौवा सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता है। बिल्ली ने सोचा दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, फिर क्या, दोनों लड़ पड़ती है। इधर कौवा फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौवा तो उड़नछू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देख खूब लुफ्त उठा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे ऐसी स्थिति में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं, आइए चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें, और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं अभी तक, कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है एसक्यू।
5: रात से
4: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी एसक्यू हो गया, काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अर्षभ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: क्या बुद्ध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुद्ध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुद्ध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शामिल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। आज इंडियन नेवी को ताकत का नया और स्वदेशी बूस्टर डोज मिल गया है। आज एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आईएनएस मालवन को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2026 अभी आधे से कुछ ही ज्यादा गुजरा है और अब तक केवल इसी साल में आधा दर्जन के करीब स्वदेशी युद्धपोत नेवी को मिल चुके हैं। हाल ही के सालों में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया और अब एक और स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ गया। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल है।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और उन्हें शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघ नख। आपको बता दें कि वाघ नख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघ नख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं पनडुब्बियों के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनर सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: आईएनएस मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर हैं, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बियों के खिलाफ सफल हो जाएंगी। साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है। ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट जो है वो देश में बने हुए।
0: आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ वीरा रिपोर्ट।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: स्थित प्रज्ञरणीषु अपराजिते, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पिडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजिनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डन ईच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 60 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और बिंदगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
0: निश्चित रूप से भारत के महेंद्र बाहुबली ने नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा किया है। INS महेंद्रगिरी की कमिशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांग पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्ध पोतों ने जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्ध पोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध पोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्ध पोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्ध पोतों का कमीशनिंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्ध पोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्ध पोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्ध पोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रे का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रे अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रे के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान, और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर के जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सब

0: इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की आज की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बार आती हुए शाम।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। क्या इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मोस क्षेत्र में ईरानी सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए चाबहार, तबरीज, बुशहर और बंदर अब्बास के आसपास के क्षेत्रों में लगातार एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसी जंग से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिख रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक इमारत में लगी भयंकर आग दिखाई दे रही है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह वीडियो ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का है और ये हाल फिलहाल का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान पर हुए मिसाइल अटैक के बाद का ये पूरा मंजर है, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिसाइल अटैक का ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिसाइल अटैक हुआ होता तो फिर आसपास बर्बादी के निशान जरूर देखने को मिलते, लोगों के बीच दहशत का माहौल होता, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।

0: इसके अलावा सर्च के दौरान हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि जेद्दा में तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमला हुआ, जिससे दो स्टोरेज टैंकों में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक फेसबुक पेज से 25 मार्च 2022 को इसी घटना का दूसरा एंगल का वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अनुसार सऊदी अरब के शहर जेड्डा में एक ऑयल डिपो में भीषण आग लगने की खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने माना है कि उन्होंने सऊदी अरब पर कई हमले किए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए। जेड्डा में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। एक YouTube चैनल पर भी 26 मार्च 2022 को वायरल वीडियो को सऊदी अरब के शहर जेड्डा में हुए हमले का बताकर पोस्ट किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो सऊदी अरब के जेड्डा का है, जहां तेल कंपनी अरामको के पेट्रोलियम उत्पाद वितरण स्टेशन पर हमले में आग लग गई थी। इस वीडियो का हालिया जंग से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
7: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये मां सर आइजैक न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए मां ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। मां ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे में एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया है और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया है। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है तो वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर टोकरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े की लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देख माँ की जमकर सराहना कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उन माओं को कि अगर उनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं तो वो ये तस्वीरें देखकर सीख लें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई थी, जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस आयोजन की धूम पूरी दुनिया के साथ गांवों, कस्बों और गलियों तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए नन्हे बच्चे भी अब पीछे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपनी रथ यात्रा निकाली है। अब इस मासूमियत से भरी यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की कोशिश दिख रही है, जहां उन्होंने महंगी सजावट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो तो बस अपनी ही तरह छोटी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। रथ को खास तरीके और चीजों से बनाया गया है। रथ बनाने के लिए पॉलिथीन और अखबार का इस्तेमाल हुआ है, जो अक्सर घरों में यूं ही पड़े रहते हैं। बच्चों ने इन्हीं चीजों को कुछ इस तरह में लगाया है कि रथ की सुंदरता बढ़ी है, चमकीली और रंगीन सजावट की कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो में नन्हे बलभद्र और सुभद्रा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी मोहल्ले के बस स्टैंड पर बड़े आराम से सड़क की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ देर में स्कूल की बस आने वाली है। किसी ने उसे वहाँ जाने के लिए नहीं कहा, न ही उसे कोई ट्रेनिंग दी गई। फिर भी वो हर दिन सही समय पर बस स्टॉप पहुँच जाता है और अपनी नन्ही दोस्त का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आकर वहाँ रुकती है। बस का दरवाजा खुलते ही छोटी बच्ची नीचे उतरती है। अपनी प्यारी दोस्त को देखते ही डॉगी खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुँचता है और उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है और चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये पल उसके लिए कितना खास है। बच्ची भी मुस्कुराते हुए अपने वफादार दोस्त से मिलती है। दोनों का ये खूबसूरत मिलन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्ची अपने वफादार दोस्त से तो मिलती ही है, साथ साथ और भी दो तीन डॉगी से मिलती है और वीडियो के सबसे आखिर में एक डॉगी के बच्चे से भी मिलती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो नन्ही बहनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि बच्चियों के आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई है, जबकि दूसरी बच्ची उसके पैरों पर संतुलन बनाते हुए खड़ी नजर आती है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चियां इस पूरे पल को किसी खेल की तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही है। ऊपर खड़ी बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम जमाए हुए है, जबकि नीचे लेटी उसकी बहन उसे पूरी तरह सपोर्ट करती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान इस वीडियो को और भी खास बना देती है। दोनों बहनें अलग अलग अंदाज में बैलेंस बनाती नजर आती हैं। कभी वो अपने हाथों पर संतुलन बनाती हैं, तो कभी पैरों के सहारे एक दूसरे को संभालती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वो उल्टा होकर भी मजेदार करतब दिखाती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोनों के बीच का तालमेल और एक दूसरे पर भरोसा इस वीडियो की सबसे खास बात है। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्र अंदाज लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है। स्केट्स के साथ उसके मूव दर्शकों को खूब भा रही हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभाल लेती है, फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट्री और असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है, जो पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता कि वो संभली है। लोग उसे उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा मान लेते हैं। लोगों को न सिर्फ उसका टैलेंट पसंद आ रहा है, बल्कि उसकी सूझबूझ और कुशलता को भी सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। भाई बहन की मासूम बॉन्डिंग और एक मजेदार पल ने हर किसी को अपने बचपन की याद दिला दी है। वीडियो में एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को मशहूर नर्सरी राइम जॉनी जॉनी यस पापा याद कराने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो बिल्कुल किसी टीचर की तरह धैर्य के साथ भाई को लाइन दर लाइन कविता सिखाती है, लेकिन छोटा भाई हर बार कुछ न कुछ भूल जाता है या गलत बोल देता है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है।
6: जॉनी जॉनी यस पापा बोल। जॉनी जॉनी
8: जॉनी जॉनी
6: जॉनी यस पापा बोलना तेरे को, क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल यस पापा बोल।
8: यस पापा
6: ईटिंग शुगर
7: वीडियो में बहन बार बार अपने भाई को सही शब्द बोलने के लिए समझाती है, कभी प्यार से तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे दोहराने के लिए कहती है। दूसरी ओर भाई भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मासूम गलतियां देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की ये प्यारी बातचीत लोगों को अपने बचपन और भाई बहन के साथ बिताए ऐसे ही पलों की याद दिला रही है।
6: जॉनी जॉनी यस पापा बोल।
8: जॉनी जॉनी
6: जॉनी जॉनी यस पापा बोलना तेरे को, क्या दिमाग खराब नहीं हो गया क्या? जॉनी जॉनी बोल यस पापा बोल।
8: यस पापा
6: ईटिंग शुगर
8: शुगर
6: ईटिंग शुगर नो पापा
8: पापा
6: टेलिंग गाय नो पापा
8: टेलिंग गाय नो
7: सोशल मीडिया पर पिता का अनोखा पढ़ाने का तरीका लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता अपने छोटे से बच्चे को मैथ के अलग अलग साइन बड़े ही मजेदार अंदाज में सिखाते नजर आ रहे हैं। कभी वो अपने हाथों को क्रॉस करके डिवीजन का साइन बनाते नजर आते हैं, तो कभी पूरे शरीर और हाथों की मदद से स्क्वायर रूट समझाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग हाथों के मूवमेंट और इशारों के जरिए जोड़, घटाव, गुणा, प्रतिशत और बराबर जैसे मैथ के चिन्हों को बेहद आसान और मजेदार तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में बच्चे का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर खड़ा है और वो वहाँ खड़े होकर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वो खड़े खड़े पीछे की तरफ झुकता है और अपने सिर को पीछे की तरफ से ही पैरों के बीच तक ला देता है। ऐसा वो कई बार करके दिखाता है और रफ्तार बड़ी गजब की है। इसके बाद वो एक बार फिर से ऐसा ही करता है, मगर इस बार वो सिर को पीछे की तरफ से पैरों के बीच से निकालता है और फिर पूरी तरह से सीधा हो जाता है। ऐसा भी वो दो बार करता है। इसके बाद वो अपने शरीर को एक अलग ही आकार में करके लोगों को दिखाता है और वो भी हैरान करने जैसा ही था। शैतान कौवे की कारकस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौवा सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता है। बिल्ली ने सोचा दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, फिर क्या, दोनों लड़ पड़ती है। इधर कौवा फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौवा तो उड़नछू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देख खूब लुफ्त उठा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे ऐसी स्थिति में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं, आइए चलिए आपको दिखाते हैं।

0: ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है, और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF 24 घंटे मोर्चे पर डटी है।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
0: बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्ररूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है।
3: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें, और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, NDRF, SDRF के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
4: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं अभी तक, कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है एसक्यू। रात से कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया, काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हमें हम लोग बहुत रेस्क्यू आदमी को रेस्क्यू किया है।
0: असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अर्षफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: क्या बुद्ध की गड़बड़ी से कान नाक गले की समस्या होती है? क्या बुद्ध आपके ब्रेन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है? कौन सी हैं बुद्ध की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
10: महाराष्ट्र के जालना में आनंदी स्वामी महाराज के आषाढ़ी यात्रा महोत्सव की रौनक, मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव की रौनक, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, सहारनपुर में शिव भक्तों के लिए सज गए बाजार, 30 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में गूंजे ढोल नगाड़े, उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों ने परिवार के सामने लिए 7 फेरे, अनूठे विवाह में कुल 21 बाराती हुए शामिल।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है।

शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, और उन्हें शिवाजी महाराज की याद दिलाता है ये घातक युद्धपोत जो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है।

0: एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन, जिसे अपना नाम मिला है महाराष्ट्र के छोटे से तटीय कस्बे मालवन से।
1: मालवन, a small coastal town of Maharashtra, the land that echoes the fearless spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj,
0: जिसके क्रेस्ट पर किसी आभूषण की तरह सजा है छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य शौर्य, अप्रतिम साहस और ज्वलंत जज्बे का प्रतीक वाघ नख। आपको बता दें कि वाघ नख धातु से बना एक ऐसा हथियार होता है जो उंगलियों में पहना जाता है और हथेली में पूरी तरह छिप जाता है। बाघ के पंजे जैसा आकार होने के चलते इसे वाघ नख कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज हमेशा वाघ नख अपने पास रखते थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को अपने वाघ नख से मौत के घाट उतारा। मसलन 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की और खंजर से वार किया, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी वाघ नख से उसका पेट चीर दिया था। INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रचंड शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर है। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना के बेड़े में इस महाबली की एंट्री हुई और यह पलक झपकते दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट, घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन समुद्री जंग का एक ऐसा गेम चेंजर है जो समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन की हर नापाक चाल को बेअसर कर सकता है।
2: एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट मालवन आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये शैलो वाटर्स यानी उथले जल में किसी भी तरह के सबमरीन का पता लगाता है और उसे नष्ट भी करता है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी फ्लीट के भीतर इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए वॉरशिप्स को बढ़ा रही है और पिछले 4 हफ्तों में ये 5वां शिप है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल कमिशनिंग करके 3 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले INS महेंद्र गिरी, जो एक और स्टेल्थ वॉरशिप है, वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। और अब मालवन एक ग्रैंड सेरेमनी में कारवार में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया और बन गया INS मालवन।
0: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे क्लास के दूसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया है। मालवन एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी इस युद्धपोत को खास तौर पर उथले और तटीय समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए बनाया गया है।
3: INS मालवन, जिसको कि हम पनडुब्बी शिकारी भी कह सकते हैं, इसका नेवी में शामिल होना नेवी की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि कम गहरे पानी में भी चल सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी कि पनडुब्बी के खिलाफ खास तौर से काफ़ी कारगर है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं पनडुब्बी के खिलाफ, इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इसके अंदर माइन बिछाने की क्षमता है, इसके अंदर देश में बना हुआ वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम है जो कि अलग अलग गहराई में भी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, और इसके अंदर वाटर प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ है बजाय नॉर्मल जेट प्रोपेलर के, जिससे आवाज़ भी बहुत कम करता है। इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन है 30 mm, साथ में 12.7 mm गन है जो ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल गन है।
0: कम शोर करने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहता है। आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम की वजह से उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए बेहद खतरनाक है। वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे ये युद्धपोत इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टॉर्पीडो उसकी सबमरीन के परखच्चे उड़ा चुका होता है। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर। इसका वजन करीब 1100 टन है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वॉरजेट सिस्टम से चलता है, जिससे ये जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। ये स्टेल तकनीक से भी लैस है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिना रुके 14 दिनों तक समुद्र में लगातार तैनात रह सकता है।
2: मालवन की अगर हम बात करें तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसके कंटेंट की बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बने हुए कंपोनेंट से इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना 2047 तक खुद को 100% आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसीलिए अपने ताकत में आत्मनिर्भरता के साथ इजाफा कर रही है। मालवन की ताकत की अगर हम बात करें तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 11,000 टन की ये शिप है। इसके भीतर टॉर्पीडो और तमाम हथियार हैं जिससे किसी भी तरह के सबमरीन को खत्म किया जा सकता है।
0: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की अंडर वाटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को ऐसे ही एक साइलेंट हंटर की जरूरत है जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके।
3: आईएनएस मालवन का भारत की नौसेना में शामिल होना भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेगा, क्योंकि ये कम पानी में चलने में समर्थ होता है और पनडुब्बी का शिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर पनडुब्बियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर है, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज है, ये माइन बिछाने में सक्षम है जो कि पनडुब्बियों के खिलाफ सफल हो जाएंगी, साथ साथ में सोनर सिस्टम है जो कि देश में बना हुआ सोनर सिस्टम है जो कि वेरिएबल डेप्थ वाला, कम गहरा और ज़्यादा गहरे पानी में भी जो काम करता है, ये वाटर प्रोपेल्ड इंजन से लैस है जो कि कम आवाज़ करता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और ये इसके 80% पार्ट जो है वो देश में बने हुए।
0: आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये पानी के भीतर अलग अलग गहराइयों पर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर भारी रॉकेटों से सटीक हमला कर सकता है। ये युद्धपोत 2 ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर यानी ALWT से लैस है जो पानी के नीचे चलते फिरते टारगेट को आसानी से भेद सकता है। समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने और दुश्मनों का रास्ता रोकने में सक्षम है। इसमें 30 mm की मुख्य नेवल सरफेस गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी है जो हवाई और सतह के खतरों से निपटती है। माहे क्लास का INS मालवन भारत की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है।
3: आज भारत की नेवी और भारत के शिपयार्ड ज्यादातर, चाहे वो फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो, ASW शिप्स हो, हाइड्रोग्राफिक रेकी के शिप्स हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में आज हमारे शिपयार्ड सक्षम है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। 1.5 से 2 महीने के बीच में एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भारत की नेवी में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब 11,000 किलोमीटर से की कोस्ट लाइन को गार्ड करना है और 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर EZ को गार्ड करना है, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना की नेवी की बढ़ती हुई संख्याएं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नेवी मॉडर्न हो और आत्मनिर्भर हो। यही ताकत के लिए बड़ा एक अहम कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है।
0: भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में INS मालवन की एंट्री एक बड़ा कदम माना जा रहा है। INS मालवन की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का यह प्रहरी अहम भूमिका निभाएगा।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू यू नो ग्रो, एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉर।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक ऐसी मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्ध पोतों ने, जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्ध पोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध पोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्ध पोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्धपोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्धपोतों की एक साथ कमिश्निंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रय का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान, और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सबको करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं।
0: खास बात ये कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों ही योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे जब विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह हुआ था। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल हुआ है।

0: स्थित प्रज्ञरणीषु अपराजिते, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य है इस युद्धपोत में, जिसे हम नौसेना का महेंद्र बाहुबली बुलाते हैं। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला। जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है महेंद्रगिरी पर्वत। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डील और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात यह कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से जमीन पर मार करता है, यानी कि शिप से जमीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक यह कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
2: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजिनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस फ्रिगेट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है, उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कंसेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
1: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि दो शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डन ईच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस है, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट्स के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
2: प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
0: निश्चित रूप से भारत के महेंद्र बाहुबली ने नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा किया है। INS महेंद्रगिरी की कमिशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मालवन और महेंद्रगिरी से पहले इसी साल नौसेना ने एक और ऐतिहासिक दिन देखा। इंडियन नेवी में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों की कमिशनिंग हुई थी, यानी डबल नहीं बल्कि पावर का ट्रिपल बूस्टर डोज, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसी साल 21 जून को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और नौसेना का सवे युद्धपोत INS संशोधक को नौसेना में शामिल किया गया। ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत आज देश की रक्षा में तैनात हैं।

लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघ पाना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा इस साल कुछ और मजबूत हो गई। और इसे मजबूत बनाया उन तीन शानदार युद्धपोतों ने जिन्हें एक ही दिन एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत INS अग्रय और भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह हुआ। हाल के सालों में ये दूसरा ऐसा मौका था जब तीन एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को एक साथ कमीशन किया गया था। इन तीन युद्धपोतों ने न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाया बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा किया है। तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा हैं। चलिए अब आपको इन तीनों महाबलियों की ताकत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इन घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। अब बात सागर के उस योद्धा की जो याद दिलाता है भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून को नौसेना में कमीशन हुए INS अग्रय का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे खासतौर से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इस युद्धपोत ने भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती दी है। 21 जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर INS संशोधक को भी उतारा गया। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संशोधक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक को सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्र